0: निरुद्ध किए गए थे, आज दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
1: और लोग आरोपी है इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
0: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
2: तो पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य आरोपी नंदन यादव जमुई के प्रतापपुर गांव का रहने वाला है, जो नाबालिग छात्रा से की गई जगह से नजदीक है।
3: इसी सड़क से आगे जब आप किउल नदी की तरफ जाते हैं तो वहां पर खनन का काम चलता है, और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी नंदन यादव है और उसका सहयोगी हरेराम यादव, ये दोनों बालू खनन के कारोबार में शामिल हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बालू की जो घाट से निकासी होती है उसको लेकर के।
2: नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में हरेराम यादव का पैर टूट गया। बिहार पुलिस कह रही है कि वो इस वारदात में शामिल किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? नंदन यादव जैसे दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जानवरों की तरह एक नाबालिग छात्रा पर टूट पड़े?
3: छोटे सा पहाड़ है और दो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ और दूसरी पहाड़ी हमारी ठीक बाई तरफ। इन दो पहाड़ियों पर चढ़ना भी आसान है, उतरना भी आसान है, अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं और घूमने के लिए अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं।
2: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में। लेकिन सवाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर है। क्या हाफ इनकाउंटर से नंदन यादव जैसे लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सकता है? शशि भूषण, जमुई, आज तक।
4: अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा आदि शक्ति के रूप में करेगा। विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उसी देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को बार बार कहना पड़ता है। बेटियों को देर तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह अक्सर ही दी जाती है, लेकिन कोई सरकार, कोई राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता दावा नहीं कर पाता।
3: यहीं पर यह घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरेराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज इनकाउंटर किया, हाफ इनकाउंटर। इनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानन में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
2: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया।
5: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
2: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
6: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं है।
2: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
7: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था न? आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
8: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
2: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
9: Moral policing can be on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion. But the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
2: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
10: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
2: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
4: बिहार के जमुई में दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
11: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती है।
4: बिहार की तरह दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा गया है। दिल्ली के कालकाजी में एक नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

0: बड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
1: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस इनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
1: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसला कर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है, ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद, जो कि उसे पहले से जानता था, उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
1: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे ही बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकालें ना निकालें, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा है, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
1: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: यूपी के लखीमपुर खीरी से भी बहुत ही डराने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक टीचर ने आरोपी से बात करना बंद किया तो उसने स्कूल में घुसकर टीचर को गोलियों से भून डाला और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली।
6: बात करने से बंद किया तो स्कूल में घुसकर गोली मारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की इस वारदात ने देश को झकझोर दिया है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी के इस स्कूल में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में एक टीचर को ब्रेकअप से नाराज हत्यारा सऊद अंसारी घसीटता हुआ ले जाता है। वारदात की ये सीसीटीवी तस्वीरें टीचर निशात फातिमा की हत्या से ठीक पहले की है, जहां आरोपी सऊद अंसारी पहले टीचर को जबरन कॉरिडोर में ले गया, फिर कुछ देर के विवाद के बाद महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला टीचर की हत्या के बाद आरोपी सऊद अंसारी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये सब देखकर स्कूल का स्टाफ सकते में आ गया।

0: बच्चे ऐसी वारदात का गवाह बन गए जिसकी बुरी यादें उनके जहन में हमेशा रहेंगी।
1: चार गोलियां चली, चार गोलियां चली, हाँ चार चली, फिर आवाज आई, मैं डॉक्टर पीछे मुड़ा, तभी
2: यहाँ निशान में एक टीचर आया, उसके अंदर आया और उसका यहाँ पर पूरा काट दिया।
0: इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल स्कूल की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें आरोपी इतनी आसानी से दाखिल हो जाता है। आखिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं?
3: ये पहले जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो तो कैमरा फुटेज में है ना।
4: उसमें कैसे आ गया ये थोड़ा सा सवाल होता है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या
3: सारी व्यवस्था है यहाँ पे आईडी कार्ड देखकर ही बच्चों को दिया जाता है, ऐसा नहीं नॉर्मल स्कूल। अरे वही तो कह रहे हैं आप लोग, देखिए अभी जो चीज़ आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, पहले देखिए जो चीज़, मेरे ख्याल से ये सवाल आप बेहतर होगा पुलिस से इसलिए पूछे क्योंकि अभी वो कैमरा फुटेज वो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें बेहतर पता लग जाएगा क्या हुआ। ऐसे तो आप मुझसे सवाल कुछ पूछेंगे,
4: सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था स्कूल में, क्या
3: स्कूल में सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या होनी चाहिए आप बताइए, क्या होनी चाहिए
4: गेट पे कम से कम चेक होना चाहिए,
3: क्या होना चाहिए चेक छुट्टी के टाइम पे, तो सिक्योरिटी हमारा है ना, माय गार्ड है और सिक्योरिटी में कैमरे हैं, सब चीज है, तभी तो पता लगेगा, वरना पता कैसे लगेगा। तो कैमरे नहीं चल रहे तो फिर पुलिस क्या कर रही है अंदर?
0: जिस वक्त आरोपी टीचर को घसीट कर ले जाता दिख रहा है, उस वीडियो में बच्चों के साथ दो महिलाएं भी नजर आ रही हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला।
5: शहर का सबसे सुरक्षित इलाका कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ जिले के डीएम बैठते हैं, जहाँ जिले की एसपी बैठती है, उस सुरक्षित परिसर के आसपास पड़ोस में बना एक निजी स्कूल जो है वहाँ पर शूट आउट होता है। एक लड़का अपने बैग में तमंचा लेकर पहुँच जाता है, उसके बाद क्लास में घुसता है, पहले जो अपनी प्रेमिका है या टीचर है उसको गोली मारता है, उसको खुद गोली मारकर हत्या कर देता है। सवाल ये उठता है कि शहर के पड़ोस में जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका जिसको कहा जाता है, जहाँ जिले की डीएम एसपी तक बैठते हैं, हम कोशिश करेंगे, देखिए वो स्टाफ है, ये स्टाफ उस समय कितना सहम गया होगा, कितना डर गया होगा। मैडम क्या हुआ था उस समय, क्या जान पाएंगे आप लोग? आपके यहाँ और टीचर्स भी हैं, ये भी स्टाफ है, ऐसे तो फिर कोई भी,
6: देखिए हम लोग इस चीज के लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते और ना समझ सकते हैं आपको और ना समझा।
5: टीचर कैसी थी, उसका नेचर कैसा था जो आपके यहाँ पढ़ा?
6: बहुत बढ़िया नेचर था,
5: मिलनसार थी।
6: हाँ मिलनसार बिल्कुल। मॉर्निंग में हम लोग की मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में ही अभी हम लोग की मॉर्निंग हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था।
5: अच्छा ये लड़का जिसपे आरोप है कभी आया यहाँ पर?
6: मुझे नहीं मालूम।
5: लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर देखिए इतना डर है इस शूट आउट को देखकर, देखिए जो टीचर्स हैं जो पढ़ाने का, जिनके जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं।
0: मरने वाली टीचर निशात फातिमा के पिता लखीमपुर खीरी के सुमेर नगर गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। निशात फातिमा का परिवार आरोपी सऊद अहमद के घर में किराए पर रह चुका है, इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी, लेकिन साल भर से निशात फातिमा ने सऊद अंसारी से बात करना भी कम कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि निशात फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई थी, यही बात आरोपी सऊद अंसारी को नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दिया।
7: इसी तरह की कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया, ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी थी, यदि उसको डिटेन किया जाता गेट पर तो शायद इस तरह की घटना एक टीचर के साथ न होती। निर्मम हत्या हुई उस लड़की की, उस लड़की की मैं चाचा हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के स्कूल अपने कमियों को छिपाने के लिए अभी तक किसी तरह का उन्होंने पुलिस में या अन्य कार्रवाई नहीं की।
0: निशात की नाराजगी की वजह से सऊद न सिर्फ तनाव में था बल्कि मरने मारने पर आमादा था। इसका संकेत उसके सोशल मीडिया स्टेटस से लगता है, जिसमें उसने अपने दोस्तों से अपील की थी कि अगर वो मर जाए तो उसकी फोटो वो हटा दे। कहा जा रहा है कि सऊद को उसके दोस्त समझाते थे, लेकिन माना जा रहा है कि निशात से उसका मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उसने पहले सरेआम उसे गोलियों से भूना और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
8: और अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव के बारे में, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है।
9: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है, सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
10: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो दुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं, कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
11: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST सेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
10: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है वो तो कम्प्लीटली बेसलेस ही हुआ ना, फिर वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
9: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर ढुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर ढुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया। फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो, मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
12: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण दुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
9: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
8: और अब बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन हुआ है दिल्ली से बाहर केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
13: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या कुत्ते को पालने से आने वाला संकट टल जाता है? क्या गाय की सेवा करने से ग्रह बेहतर हो जाते हैं? क्या पक्षियों को पालने से पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है? क्या है पशु पक्षियों के पालन का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
2: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
3: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
4: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
2: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रहे हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
5: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

ईरान को ट्रंप की फिर से बड़ी धमकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले, ईरान समझौता करे नहीं तो पूरी तरह तबाह कर देंगे। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन। सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पूजा कराने घर आए दो पंडितों और पत्नी की शख्स ने की हत्या। रेस्क्यू ऑपरेशन में आरोपी भी ढेर। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान। बोले, अपराधी को नहीं होती कोई जाति, मेरे पुलिस पीछे नहीं हटेगी। सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। और कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।

0: देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर के बाद पुलिस की गोलीबारी में आरोपी ढेर हो गया है। आरोपी के मारे जाने से पहले करीब 8 घंटे तक बेहद नाटकीय अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की गई। इसका समापन खूनी एनकाउंटर के रूप में हुआ। तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला आजमगढ़ के शंभूपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी अरविंद सिंह की पत्नी घर में पूजा करवा रही थी। इसी दौरान अरविंद ने दोनों पुजारी और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो अपनी दो बेटियों और एक बेटी के साथ कमरे में खुद को उसने बंद कर लिया। अब कमरे से आरोपी को निकालने, बंधक बच्चों को छुड़ाने और करीब 8 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चली। ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस की ओर से नेगोशिएशंस किए गए। आरोपी को कमरे से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड स्पेशल कमांडो भी बुलाए गए, लेकिन आरोपी बाहर नहीं आया। पुलिस के मुताबिक कमरे के अंदर से जब गोली की आवाज आई तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़कर जब कमरे में दाखिल हुआ वहां आरोपी का एक बच्चा लहूलुहान पड़ा था। आरोपी ने पुलिस पर गोली भी चलाई और फिर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में आरोपी मारा गया। 8 घंटे बेहद नाटकीय अंदाज से, एक तरह का हॉस्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं, ये एक हॉस्टेज सीन था। 8 घंटे बंधक बना। ये देखिए, स्पेशल कमांडो रात को बुलाए गए थे जिनकी दक्षता ये थी कि बंद कमरे में जो हॉस्टेज है उनको निकाला जाए, बंधकों को निकाला जाए, नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी किया जाए। और अब जो कुल और मरने वालों का की पूरी संख्या वो 5 है। सोचिए, इसमें आरोपी भी मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, उसने सोचिए 3 बच्चों को बंधक बना लिया था और उसकी पत्नी भी, यानी पूरे परिवार समेत पत्नी बेटे 2 पुजारी की उसने हत्या की। और ऐसे में आरोपी ने फिर बाद में जब वो एनकाउंटर में मारा गया, 8 घंटे का ये पूरा जो ऑपरेशन चला है आजमगढ़ में, सोचिए दिल दहला देने वाली, कलेजा कांप जाए कि क्या परिस्थितियों के चलते ये सब हुआ होगा। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन आप सोचिए कि एक परिवार, एक पिता जिसने अपने ही घर में, शंभूपुर का इलाका है ये आजमगढ़ का, तो अरविंद सिंह अपनी जिसकी पत्नी घर में पूजा करवा रही थी, उसके बाद क्या हुआ अभी पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन उसने तुरंत पुजारी और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद वो एक कमरे में बंद हो जाता है जहां पर उसके बच्चे भी थे, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा, उनको लेकर के वो बंद कमरे में चला जाता है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस के बाद फिर स्पेशल कमांडोज बुलाए जाते हैं, जो नेगोशिएशन की प्रक्रिया होती है वो भी की जाती है, उसे बार बार अपील की जाती है वो बाहर आए। लेकिन 8 घंटे जब ये हॉस्टेज ड्रामा चला उसके बाद कमरे में से आवाजें आती हैं गोलियां चलने की, और इन्हीं आवाजों के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ के वो अंदर गई तो उसका एक बेटा जो था वो पूरी तरह लहूलुहान था। और इसी दौरान, इसी कार्यवाही के दौरान आरोपी अरविंद सिंह ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की। अब सोचिए, उसने बेटे की हत्या की, बेटियों की हत्या की, पत्नी की हत्या की, पुजारी की हत्या की, 4 हत्याओं के बाद उसने पुलिस पर भी गोली चलाई और जब जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायर किया तो मारा गया। वहां के SSP क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं।
1: क्या कहना है सर पूरे घटनाक्रम?
2: देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को पहले आपको अवगत कराया जा चुका है कि शाम में लगभग 5:30-6 बजे सूचना मिली कि शंभूपुर गांव थाना एरोला में एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर, 2 उसके मेहमान थे और एक उनकी पत्नी थी स्वयं की, अपनी पत्नी और 2 मेहमानों को गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पे जब गहन छानबीन की गई तो ये जानकारी में आया कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब था और उसका BHU में उसकी जो भतीजियां, उन्होंने बताया कि मानसिक चिकित्सालय में उसका इलाज भी चल रहा था और बता रहे हैं कि उसमें उसके परिजन जो है उसकी मानसिक बीमारी के संबंध में ये मानते थे कि उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान जो है वो आयोजित किया हुआ था और उस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए जो 3 लोग इन्वाइटेड थे उसमें से 2 लोग और जो पत्नी, उनको धार्मिक अनुष्ठान जो का आयोजन हो रहा था उसी बात से वो नाराज था, चूंकि मेंटली डिस्टर्ब था, उसी से नाराज होके संभवतः उसने फायरिंग करके और इस घटना को अंजाम दिया है।
0: तो आप समझिए कि इस पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में आपको ऐसी कोई घटना समझ में नहीं आएगी, क्या परिस्थितियां थी जिसके चलते उसने पत्नी को गोली मारी। पुलिस कह रही है कि हालांकि वो धार्मिक अनुष्ठान से नाराज था जिसके बाद उसने जो पुजारी को भी गोली मारी, अपने बच्चों को लेकर को कैद हो जाता है। ये देखिए, उस समय जब ये 8 घंटे पूरा नाटकीय तरीके से हॉस्टेज सीन चल रहा था उस समय पुलिस वहां पर पहुंची थी और कैसे कोशिश की जा रही थी कि जो बच्चे उसके कब्जे में थे, बंद कमरे में थे, उसको उनको बचाया जाए, निकाला जाए, अरविंद सिंह को भी कमरे से निकाला जाए और उसके बाद ताकि जांच भी हो सके, पता तो चले कि स्थिति क्या रही। लेकिन ये देखिए, ये स्पेशल कमांडोज की भी तस्वीरें हैं और पूरी रात लगभग 8 घंटे नाटकीय तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुए। और उसके बाद जब अंदर से फिर गोली की आवाज आई, जब उसने संभवतः अपने बेटे को भी गोली मारी और उसके बाद पुलिस अंदर पहुंचे दरवाजा तोड़ करके, और जब देखा कि बेटा भी लहूलुहान पड़ा था, और उसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। और अभी पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, बचने की कोशिश की। तो आज संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, हाल फिलहाल में ऐसा कोई घटना, मतलब समझिए कि इसको खबर को पढ़ते ही आपके जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहला दे कि एक हॉस्टेज ड्रामा, पत्नी को गोली मारना, बच्चों को लेकर के बंधक बनाना, स्पेशल टीम का बुलाया जाना, जानकारी दीजिए विस्तार से। आगे पुलिस को कुछ पता चला है जांच में?
3: देखिए, इस पूरे वास्तव में लोमहर्षक घटना है। आदमी शहर उठा कि एक व्यक्ति जिसके जिसके जिसकी शांति के लिए उसकी पूजा पाठ करा रही थी, तो पहले वो घर के अंदर जाता है, उन दो पुजारियों को मार देता है। कुल 3 पुजारी पूजा के लिए बुलाए गए थे, इसका एक पुजारी किसी तरीके से जान बचाकर भाग गया, 2 पुजारियों की हत्या करता है, उसके बाद पत्नी की हत्या करता है और उसके बाद अपने ही 3 बच्चों को बंधक बना लेता है। और बंधक बनाने के बाद इसी पूरे हाई और सॉसेज ड्रामा में उसके बेटे की भी हत्या करती है। माना जा रहा है कि इस पूरे पुलिस को घटनाक्रम को रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 घंटे लगे और इसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर में जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 पुजारी और बेटे की हत्या की, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है, उसको भी मार गिराया गया है। क्योंकि पुलिस इन बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी, जिन 3 बच्चों को इसने बंधक बनाया था, तो जब पुलिस को दिखाई पर चारों तरफ से घेरने के बाद, मान मनोवल के बाद आरोपी अरविंद सिंह बच्चों को छोड़ने को नहीं तैयार था। इसी बीच में गोली की आवाज आती है। जब गोली की आवाज सुनकर आती है तो पुलिस को अंदाजा लग जाता है कि हिंसक हो गया है, और उसी बीच उसने स्टैंड ग्रेनेड और टियर गैस का इस्तेमाल किया और फोर्स की टीम में
0: हॉस्टेज क्राइसिस में नेगोशिएशन प्रोटोकॉल का पुलिस ने पालन किया और जब स्थिति हाथ में काबू होते बाहर देखी, पुलिस दरवाजा तोड़ करके अंदर की। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। सोचिए कि ऐसी घटना, एक हॉस्टेज सीन और आखिरकार वो पिता भी मारा जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के शालीमार बाग में देर रात बुलडोजर की कार्यवाही हुई जिससे हड़कंप मच गया। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मदीना मस्जिद आसपास के अवैध निर्माण को ढहाया गया बीती रात। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के तहत इस रोड पर पहले भी कार्यवाही हो चुकी है और अगले चरण की कार्यवाही रात हुई है, तो बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम वहां पर जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। सड़क चौड़ीकरण के लिए अभियान चल रहा था तो वहां पर एक मदीना मस्जिद और उसी के साथ साथ अवैध निर्माण आसपास जो बने थे वहां उन्हें तोड़ा गया, उन्हें डिमोलिश किया गया। और इस बुलडोजर एक्शन के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और कानून व्यवस्था की तैयारी की गई ताकि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो, हंगामा ना हो। और बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बीती रात की तस्वीरें हैं जब डिमोलिशन कार्यवाही हो रही थी वहां पर मदीना मस्जिद और उसके साथ इलाके में जो दूसरे अवैध निर्माण, कथित तौर पर अवैध निर्माण थे, जो अवैध निर्माण इसी पुलिस, इसी नगर निगम, इसी सरकार के नीचे नाक के बने हैं, दिल्ली में व्यवस्थाओं के नीचे बने हैं, अब उन्हें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हटाया जा रहा है। और उसी हटाने के लिए कहीं पर हो हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए तैनाती की गई। तो दिल्ली में बुलडोजर कार्यवाही बीते कुछ समय से लगातार जारी है। शालीमार बाग में फिर एक बार बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक मस्जिद और अवैध निर्माण को वहां से हटाया गया है। हालांकि किसी तरह की अनहोनी या कानून व्यवस्था खराब होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पहले से ही एहतियात के तौर पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई थी।
4: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में रात के अंधेरे में एक बार फिर से पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको ठीक पीछे दिखाएंगे, ये मदीना मस्जिद है जहां पर डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ घर भी हैं जिनको डेमोलिश किया जा रहा है। और आपको ये भी याद दिला दें कि अब से पहले यही मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग वाली रोड है जहां पर करीब 150 मकानों को जमींदोज किया गया था, ध्वस्त किया गया था और पहले उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद यहां पर डेमोलिशन की एक बड़ी ड्राइव चलाई गई जिसमें 150 घरों को तोड़ा गया था। और आज फिर से जो डेमोलिशन की ड्राइव है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताऊं, यहां पर मदीना मस्जिद और आसपास के कुछ घर जो उस वक्त रह गए थे और उस डेमोलिशन के डिमार्केशन के जद में आते थे, उन पर डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो रोड है, ये रोड का चौड़ीकरण होना है, इसी के चलते यहां पर डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। आज बड़ी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया और रात के अंधेरे में ही डेमोलिशन की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। हर्षित मिश्रा, आज तक।
0: अगली खबर भी दिल्ली से आ रही है। आनंद पर्वत इलाके से बड़ी खबर है कि 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। नई बस्ती का इलाका है, गली नंबर 16। जो जानकारी आ रही है उसमें कुणाल ढींगरा नाम का एक शख्स है, इस पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। कुणाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। वारदात के बाद आरोपी तो फरार है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की तलाश हो सके। तो पहाड़गंज, ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका समझिए, लुटियंस दिल्ली के बेहद खास, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है ताकि आरोपियों की तलाश हो सके। कुणाल दरअसल जिस इलाके में था वहां पर कुछ लोग आते हैं, चाकू से हमला करते हैं और उसका, और ये नई बस्ती दरअसल जिस इलाके का जिक्र हो रहा है, तो मृतक का भाई क्या कह रहा है एक बार आपको भी सुनवाते हैं।
5: मेरे भाई को 16 चाकू मार के मार दिया गया, 16 नंबर गली आनंद पर्वत, और जिन लड़कों के नाम आए हैं सब पुलिस वालों को बता दिए हैं, कोई अभी कार्रवाई नहीं है। बस ये लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ना किसी को उठा रहे, बस कह रहे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। धमकी मिली है कि तुझे भी मार देंगे, गालियां दे रहा है, हम पे रिकॉर्डिंग है, हमने वो भी भेज दी है सर को, पुलिस वालों को भेज दिया, वो भी वो सब अब वो अपने आप सुनेंगे। और मेरे भाई को तो मार दिया इन्होंने, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
0: उधर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। कैंपस में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया, आवाजाही रोकी। प्रदर्शनकारियों ने छात्राओं की सुरक्षा और कैंपस में बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। ये प्रदर्शन ताप्ती हॉस्टल के पास कथित घटना के एक दिन बाद हुआ है। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जमुई के बाद अब उड़ीसा के ढेकानाल से सामने तस्वीरें आई हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। एक महिला से छेड़खानी की शर्मनाक घटना घटी, लेकिन बीच सड़क पर एक महिला के साथ इस तरह कथित बदसलूकी, मारपीट की नौबत क्यों आई? 18 सितंबर से इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उड़ीसा में भी चिंता बढ़ा दी, वो भी तब जब ज्यादा समय नहीं हुआ जब जमुई में हमने उस चिंताजनक तस्वीरें देखी हैं। देखिए रिपोर्ट।
6: ये तस्वीरें सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून का डर कितना जरूरी है ये सवाल भी खड़ा करती है। 18 सितंबर को ढेकानाल कपिलाशा रोड पर एक युवती और उसके साथी को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया। वीडियो में युवती मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती की अपील के बावजूद उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने लोगों का ध्यान खींचा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त दोनों पर्यटक जोड़ा कपिलाशा से लौट रहा था, जहां पर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। बीच सड़क पर कुछ लोगों ने जोड़े के आचरण पर आपत्ति जताई, उसके बाद उन्हें रोककर बहस और मारपीट की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं, आखिर सड़क पर हो या पर्यटन स्थल, क्या महिलाएं आज भी बिना डर के सुरक्षित सफर कर सकती हैं? क्या ऐसी घटनाएं महिला सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करती? जवाब कानून व्यवस्था और निष्पक्ष जांच से ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: और बात करेंगे बिहार की जमुई की उस घटना की, जिसने पूरे बिहार को, देश को शर्मसार किया। एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस इस केस के आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। कल पुलिस ने नंदन यादव के नाम के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर उसे पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। अब तक मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जमुई की वो घटना जिसके बाद लगातार सरकार पर, कानून व्यवस्था पर बिहार में सवाल उठ रहे हैं, और उसके बाद अब कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारियां हुई हैं। नंदन यादव के पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर के जहां सियासत चल रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार ये कह रही है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? सरेआम इस तरह छेड़खानी और छेड़खानी के बाद अब कार्रवाई के नाम पर मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। हाफ एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की आदिशक्ति के रूप में पूजा करेगा, लेकिन विडंबना ये देखिए कि जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उस देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को कहना पड़ता है। बेटियों को देर रात तक बाहर न रहने, अकेले न जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोई सरकार राज्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर के पुख्ता दावा नहीं करता।
7: पर यह घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
8: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाखड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
9: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
8: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
10: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो, अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़ बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
8: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़ बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
11: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
7: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए, जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
8: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
12: Moral policing can be one on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
8: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे moral policing कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
13: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
8: भारत में महिला अपराधों पर, यहां तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
0: जमुई की घटना पर बिहार सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे, और जब सवाल उठे हैं तो उस दरिंदगी पर सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान आ गया है सामने। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। सम्राट चौधरी का कहना है कि पुलिस को अब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं। सुनिए क्या कह रहे सम्राट चौधरी।
14: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: चलिए बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जिसका पहली बार आयोजन दिल्ली से बाहर केवड़िया में किया गया। नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया गया था, जिसमें फिल्म जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया।
15: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए, इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।
0: यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या कुत्ते को पालने से आने वाला संकट टल जाता है? क्या गाय की सेवा करने से ग्रह बेहतर हो जाते हैं? क्या पक्षियों को पालने से पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है? क्या है पशु पक्षियों के पालन का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आजमगढ़ में चार हत्याओं के बाद अपने तीन बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर। घर में पूजा से नाराज आरोपी ने की थी पत्नी और पंडित की हत्या, बाद में एक बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एनसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। और ईरान को ट्रंप की फिर से बड़ी धमकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले ईरान समझौता करे नहीं तो पूरी तरह तबाह कर देंगे। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंत नाग।

0: के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर के बाद पुलिस की गोलीबारी में आरोपी भी ढेर हो गया। बीती रात 8 घंटे होस्टेज क्राइसिस पूरा ड्रामा चलने के बाद, पूरा घटनाक्रम जानिए। आरोपी को मारे जाने से पहले 8 घंटे तक नाटकीय अंदाज में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसका समापन खूनी एनकाउंटर के रूप में हुआ। पूरा मामला बताते हैं आपको। आजमगढ़ के शंभूपुर गांव की का यह मामला है। आरोपी अरविंद सिंह की पत्नी घर में पूजा करवा रही थी। इसी दौरान अरविंद ने दोनों पुजारी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वो अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ कमरे में खुद को बंद कर लिया। कमरे से आरोपी को निकालने, बंधक बच्चों को छुड़ाने के लिए 8 घंटे पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। नेगोशिएशन चले, बातचीत चली, हर उस प्रोटोकॉल के तहत कोशिश की गई कि बंधकों को बाहर निकाला जाए। इतना ही नहीं, आरोपी को कमरे से बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, यूपी पुलिस की स्पेशल कमांडो टीम को भी बुलाया गया, लेकिन आरोपी बाहर नहीं आया। अब पुलिस के मुताबिक कमरे से जब गोली चलने की आवाज आई तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़कर वो कमरे में दाखिल हुए, तब वहां आरोपी का एक बच्चा और लहूलुहान पड़ा था। आरोपी ने पुलिस पर तुरंत गोली चलाई, भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीती रात होस्टेज संकट की। इस पूरे क्राइसिस के बाद 8 घंटे का बंधक संकट खूनी खेल का अंत 4 हत्याओं के बाद आरोपी अरविंद भी मारा गया।
1: क्या कहना है सर पूरे घटनाक्रम?
2: देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को पहले आपको अवगत कराया जा चुका है कि शाम में लगभग 5:30-6 बजे सूचना मिली कि शंभूपुर गांव थाना अरोला में एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर 2 उसके मेहमान थे और 1 उनकी पत्नी थी स्वयं की, अपनी पत्नी और 2 मेहमानों को गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पे जब गहन छानबीन की गई तो ये जानकारी में आया कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब था और उसका BHU में उसकी जो भतीजियां हैं उन्होंने बताया कि मानसिक चिकित्सालय में उसका इलाज भी चल रहा था और बता रहे हैं कि उसमें उसके परिजन जो है उसकी मानसिक बीमारी के संबंध में ये मानते थे कि उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान जो है वो आयोजित किया हुआ था और उस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए जो 3 लोग इन्वाइटेड थे उसमें से 2 लोग और जो पत्नी, उनको धार्मिक अनुष्ठान जो का आयोजन हो रहा था उसी बात से वो नाराज था, चूंकि मेंटली डिस्टर्ब था, उसी से नाराज होकर संभवतः उसने फायरिंग करके और इस घटना को अंजाम दिया है।
0: इधर जमुई की घटना पर जो आक्रोश था वो भी शांति नहीं हुआ था। उसके बाद अब उड़ीसा के ढेंकानाल से एक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें भी सवाल खड़े कर रही है। एक महिला से छेड़खानी की शर्मनाक घटना, आखिर बीच सड़क पर एक महिला के साथ कथित बदसलूकी की, मारपीट की नौबत क्यों आई? 18 सितंबर की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उड़ीसा में भी चिंता बढ़ा दी है।
3: ये तस्वीरें सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून का डर कितना जरूरी है ये सवाल भी खड़ा करती है। 18 सितंबर को ढेंकानाल कपिलाशा रोड पर एक युवती और उसके साथी को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया। वीडियो में युवती मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती की अपील के बावजूद उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने लोगों का ध्यान खींचा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त दोनों पर्यटक जोड़ा कपिलाशा से लौट रहा था, जहां पर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। बीच सड़क पर कुछ लोगों ने जोड़े के आचरण पर आपत्ति जताई, उसके बाद उन्हें रोककर बहस और मारपीट की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं, आखिर सड़क पर हो या पर्यटन स्थल, क्या महिलाएं आज भी बिना डर के सुरक्षित सफर कर सकती हैं? क्या ऐसी घटनाएं महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल या निशान नहीं खड़ा करती? जवाब कानून व्यवस्था और निष्पक्ष जांच से ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको बिहार के उस जमुई की घटना के बारे में बताते हैं। एक नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस केस के आरोपियों की धरपकड़ में लगी है बिहार की पुलिस। पुलिस ने कल नंदन यादव नाम के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया, उसे पकड़ लिया। हाफ एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में जब उसके पैर में गोली लगी, अब तक मुख्य आरोपी समेत पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रा से अभद्रता के वीडियो को वायरल करने के मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार के जमुई की वो घटना जिसने पूरे राज्य को शर्मसार किया, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार के जमुई की दरिंदगी पर आखिरकार राज्य के मुखिया सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चुनौती देगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
4: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: उड़ीसा, दिल्ली, बिहार का जमुई, इन सब घटनाओं के बीच आप सोचिए कि अगले महीने शारदीय नवरात्रि में सारा देश मां दुर्गा की पूजा करेगा, आदिशक्ति के रूप में उनकी अर्चना करेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में देवी शक्ति का प्रतीक है उस देश में बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने को माता पिता को कहना पड़ता है।
5: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद में उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
6: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया था।
7: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे, रूल ऑफ लॉ है।
6: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
8: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं।
6: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती है। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया।
9: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था। कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था। आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन।
5: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी घटना हो रही है हमारे लिए दुखद है, हम उसके लिए मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
6: बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था।
10: Moral policing can be one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion, but the way that they mistreated the boy and the girl together is absolutely not tolerable. It's not tolerable.
6: सवाल यह है कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे मॉरल पुलिसिंग कहा जा सकता है, जबकि यह मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
11: घटना बहुत दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को लेके सिर्फ सरकार के लोग दुखी नहीं है, सरकार के लोग चिंतित नहीं है, सरकार के लोग मर्माहत नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में जिनको जानकारी मिली सब दुखी है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा।
6: भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
0: बिहार ही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और इसे लेकर सवाल दो वारदातों से और गहरा हो गया। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से पार्क में गैंगरेप किया गया, तो सदर बाजार इलाके में स्टेशनरी की दुकान पर जा रही एक बच्ची का दुकानदार ने यौन शोषण किया।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था कुंज पार्क में, जहां पर सोमवार देर शाम 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आसिफ के पैर में गोली लगी है, वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम उनको जानकारी मिली, शिकायत मिली कि 17 साल की एक लड़की के साथ इस पार्क में तीन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि 7:30 बजे के आसपास तीनों इस पार्क में दाखिल होती है, वो मंदिर आई थी और उसके बाद उसके बैक गेट के इलाके से होते हुए आस्था कुंज पार्क में आ जाती है गेट नंबर 7 से, और इस पार्क के अंदर जब वो पहुंचती है तो अंधेरा हो ही चुका था, लाइट जल रही थी लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी। तभी वो तीनों सामने आ जाते हैं, उन्होंने खुद को पुलिस वाला बनाया ताकि लड़कियों को डराया जा सके, और पुलिस वाला बनाने के बाद वो पीड़िता को अलग कर दिए, दो लड़कियों को एक तरफ उन्होंने कर दिया और पीड़िता को एक तरफ ले गए। वहां पर आसिफ नाम का आरोपी जो एनकाउंटर के बाद घायल हुआ है, पकड़ा गया है, उसने मंचा निकाला और उसने पीड़िता को डराना धमकाना शुरू किया और एक ने चाकू निकाला, दोनों ने मिलकर पीड़िता को धमकाया और उसके बाद बारी बारी तीनों ने गलत हरकत को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
0: इस वारदात के एक मुख्य आरोप

0: वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में, जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ, जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी, वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है, इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा, पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है, जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
0: पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं।
2: एक अक्यूज जो है आशीष, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के तहत सुबह अर्ली मॉर्निंग पकड़ा है। दो और लोगों के नाम सामने आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी बाकी जो अरेस्ट हैं वो भी डाले जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।
0: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि थाने में बंद आरोपी और उसके परिजन भीड़ के निशाने पर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बच्ची से रेप की वारदात 16 सितंबर रात को हुई, जब छठी में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी। तभी टेलरिंग की दुकान चलाने वाले 56 साल के मकसूद ने उसे बहला फुसलाकर दुकान के अंदर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
3: मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, ये सदर बाजार का इलाका है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अगर आप देखें ये पूरे इलाके को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कंजस्टेड इलाका है। और उसके साथ ही साथ एक ऐसा इलाका है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी आप देखें तो ये जो पूरी गली है, इसी गली में ये दूसरी दुकान जो है ये बताई जा रही है, ये मकसूद की है, जहां वो टेलर का काम करता था। 16 तारीख की रात करीब 11 बजे के आसपास जो नाबालिग बच्ची है वो अपने घर से नीचे उतरती है, स्टेशनरी जाती है, कॉपी पेंसिल लेने के लिए जाती है, लेकिन मकसूद, जो कि उसे पहले से जानता था, उसे अपनी दुकान में लाता है। आरोप यह है कि उसके हाथ पैर बांधता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है।
0: बच्ची से इस तरह की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
4: हमारे ही बच्चे फिरते हैं, एक टाइम हमारे बच्चों को भी डर लगने लगा है कि हम बाहर निकाले ना निकाले, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर अगर रात को 1 बजे भी बच्चा आता हम बेफिक्र रहते थे, लेकिन अब हमें फिक्र महसूस हो गया, क्योंकि अब जब ऐसा इंसान, नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत कर रहा, शैतान जाग के अंदर, तो हर आदमी को डर लगेगा।
0: राजधानी दिल्ली की दोनों ही वारदातें याद दिलाती हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बेटियां बार बार निशाना बन रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
5: और बात आईआईटी बॉम्बे में जारी तनाव की, जहां एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अब फैकल्टी और छात्र आमने सामने हैं। इसे लेकर लगातार प्रदर्शन भी जारी है।
6: आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला।
7: We want justice! We want justice!

0: पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं।
1: सर रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने कहा बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफकोर्स ना मेरे साथ, ना मेरे किसी दोस्त के साथ, ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
2: उनके पास कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साहिल ने जो है उनको किसी बार अप्रोच भी किया हो या कुछ अपनी शंका भी जताई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पिछले 4-5 महीने का नहीं है। यह स्टेटमेंट SC/ST स्टेल IIT बॉम्बे ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है।
1: इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है। तो जो केस उनके ऊपर लग रहा है SC/ST, वो तो कम्प्लीट बेसलेस ही हुआ ना फिर, वो तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाया जा रहा है।
0: एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RPI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। 3 दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ है कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है, जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था, साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। वहीं परिवार मामले में CBI जांच की मांग कर रहा है।
3: चौकशी चालू है, वो चौकशी चालू करेंगे, लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है।
0: बहरहाल अब जंग छात्र और फैकल्टी के बीच आ गई है, जिस पर अब जाति पर घमासान की एंट्री हो चुकी है। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
4: उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण हुआ। 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई मुद्दों पर बोला, लेकिन पूरा फोकस ईरान अमेरिका युद्ध पर था। यूएन के मंच से ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराया कि अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं होगा तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कहा कि किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।

0: दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण पर टिकी थी। उम्मीद यही थी कि करीब 7 महीने से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ईरान के साथ समझौते का संकेत दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी भाषण में ईरान को लेकर वही बातें दोहराई जो लगातार कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया, दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना लेता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक आतंकी हमलों को अंजाम देता।
1: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: ट्रंप की माने तो अमेरिकी हमले में ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये दावा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइलों का कहर थमा नहीं है। मतलब यही है कि ट्रंप ने जो कहा उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है।
1: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in Seoul would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their Navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their Air Force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone, their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: भाषण के दौरान ट्रंप ने होर्मुज को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात कही। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मिड टर्म के बाद ईरान के साथ होर्मुज पर कोई बड़ी डील हो सकती है, लेकिन ये डील होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूली को लेकर होगी। यानी होर्मुज पर टैक्स को ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका का भी हिस्सा होगा।
1: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries. I want to thank the UN Security Council for voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's despicable terrorist attacks on commercial shipping. Thank you very much. Now we must be equally united in maintaining pressure. The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz, and more oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के साथ डील की बात करते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर कोई ठोस दलील पेश नहीं की, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे।
1: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it. 25,000 young people, mostly soldiers, a month are dying. 25,000 a month. And I look at those battlefield pictures and I really don't want to see them anymore. It's so horrible to see. 25,000 a month, both sides. We continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing, as I said, thousands and thousands of people every month. Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities, and if necessary, I will have to use them. It's time to stop the killing.
0: ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम में उलझे ट्रंप यूक्रेन और रूस को युद्ध में उलझाने का दम भर रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? आज तक ब्यूरो
2: जी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संकट टल जाता है? क्या गाय की सेवा करने से ग्रह बेहतर हो जाते हैं? क्या पक्षियों को पालने से पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है? क्या है पशु पक्षियों के पालन का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आजमगढ़ में चार हत्याओं के बाद अपने तीन बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर। घर में पूजा से नाराज आरोपी ने की थी पत्नी और पंडित की हत्या, बाद में एक बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। और ईरान को ट्रंप की फिर से बड़ी धमकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले ईरान समझौता करे नहीं तो पूरी तरह तबाह कर देंगे। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पशु पक्षी को पालते हैं तो उसका आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

नवंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग पशु और पक्षियों को पालते हैं। पशु पक्षियों को पालने का हमारे जीवन पर क्या कोई असर पड़ता है? अगर हम पशु पक्षी पालें तो इसका भाग्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर पशु के अंदर और हर पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा, एक विशेष तरह की तरंग होती है। उस ऊर्जा की वजह से, उस तरंग की वजह से उस पशु या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग का, पशु पक्षी की आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी असर जरूर पड़ता है। और पशु पक्षी पालने का हमारे जीवन पर असर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी ये असर बहुत कम होता है। हम कोई पशु पक्षी पालते हैं, जितना पशु पक्षी के निकट रहेंगे पशु पक्षी का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ज्यादा होगा। पशु पक्षी को पालने से और उसके संपर्क में रहने से आपकी मानसिक स्थिति पर और आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा जिस पशु को पाला जाता है दुनिया भर में वो कुत्ता है। कुत्ते को पालने का किस तरह का प्रभाव जीवन पर पड़ता है? देखिए, कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना जाता है और कुत्ते का संबंध राहु, केतु या शनि के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन दूर होता है और आने वाली दुर्घटनाओं से, आने वाली विपत्तियों से, बाधाओं से आपकी रक्षा होती है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है, भूरा कुत्ता राहु का प्रतीक है और चितकबरा कुत्ता, मल्टी कलर का कुत्ता, केतु का प्रतीक है।
अगर कुंडली में केतु आपके निगेटिव है, अगर कुंडली में केतु आपका खराब है, तो सामान्यतः कुत्ता नहीं पालना चाहिए। लेकिन अगर शनि खराब है और शनि की वजह से जीवन में दिक्कत है, तो कुत्ता पालने से आपको लाभ होगा। पशु पक्षियों के पालने पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि अगर आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गाय और भैंस दोनों ही पशु दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले हैं और बहुत मेहनती हैं। गाय के वंश को, वृषभ को शिव जी की सवारी माना जाता है और भैंस को यमराज की सवारी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को अत्यंत पवित्र मानते हैं। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है और भैंस के अंदर महाकाल का वास माना जाता है। अगर आप गाय की नियमित सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, चारा खिलाते हैं, समय समय पर उसकी पूजा करते हैं, तो समस्त ग्रह आपके नियंत्रित होते हैं। अगर आप भैंस पालते हैं, भैंस की सेवा और देखभाल करते हैं, तो आए हुए संकट आपके टल जाते हैं।
जिन लोगों को जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए, उनको अपने घर में गाय पालनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर गाय नहीं पाल सकते, फ्लैट में रहते हैं या मकान छोटा है, तो गौशाला में जाकर गाय की नियमित सेवा करिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, जिनको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, उनको भैंस पालनी चाहिए, भैंस की देखभाल करनी चाहिए, जीवन का संघर्ष कम होगा। पशु पक्षियों के पालन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

अब के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

थकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते

स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। बहुत सारे लोग पशुओं के अलावा पक्षी भी पालते हैं, जैसे तोता, मैना, कबूतर। बहुत सारे लोग रंग बिरंगे पक्षी भी पालते हैं। इसका जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है? देखिए, पक्षियों का संबंध होता है आपकी आर्थिक स्थिति से, फाइनेंशियल कंडीशन से, और आपके पारिवारिक जीवन से। मनोरंजन के लिए, प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालना बिल्कुल शुभ नहीं होता। अगर आप अपने घर में पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखेंगे, पक्षियों को पालेंगे, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आएंगी, फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंसेस शुरू हो जाएंगी। पक्षियों को अगर आप खरीद करके कैद से, पिंजरे से आजाद कराते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। आप जो शौक के लिए रंग बिरंगे पक्षी पालते हैं या पक्षियों को कैद करते हैं, ये आपकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे खराब कर देंगे और धीरे धीरे आपका कर्ज बढ़ेगा और आप कर्ज में डूब सकते हैं। पशु पक्षियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत सारे लोग पशु पक्षियों के अलावा अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, एक्वेरियम में मछली पालते हैं। मछली को पालने का किस तरह का असर होता है? देखिए, मछली का संबंध होता है चंद्रमा के साथ और आपकी मानसिक स्थिति के साथ। मछली पालने से सामान्यतः घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आप अपने घर में फिश एक्वेरियम रखते हैं तो मछलियों को घर के पूरब उत्तर के कोने में रखना चाहिए। और मछलियों को अगर आप पालते हैं तो इनके देखभाल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप लापरवाही करें और निरंतर मछलियां आपके एक्वेरियम में मरती जाएं तो आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन हो, मानसिक अवसाद हो, तनाव पालते हो या क्रोध की समस्या हो, ऐसे लोगों को मछली पालना शुभ होता है। या अगर आप मछली ना भी पालें, नियमित रूप से नदी में या तालाब में मछलियों को दाना डालें या चारा खिलाएं तो ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अब जानते हैं कि पशु पक्षियों को पालने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षी मत पालिए। कुछ कुत्तों की ब्रीड, कुछ कुत्तों की नस्ल जंगली और खतरनाक होती है, ऐसे कुत्ते भी ना पालें। अगर आपने अपने घर में पशु पक्षियों को पाला है तो उनकी पूरी देखभाल करें और उनको मारे पीटे नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग अपने घर में गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं और क्रोध में आके उन्हें मारते भी हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए वरना इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। देखिए, बहुत जरूरी ना हो तो पक्षियों को कभी मत पालिए। पक्षियों को पालना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये आपके जीवन में अशांति का और आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें, पक्षियों के लिए पानी रखें, पक्षियों को पिंजड़े से छुड़ाएं तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और जीवन में अपयश से आपकी हमेशा रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर
मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर।

करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

पारिवारिक समस्या हल होगी। गणेश जी की उपासना करने तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणपति की जो मूर्ति घर में स्थापित की जाती है उसमें उनकी सूंड़ दाहिनी तरफ नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, वैसे तो गणपति की स्थापना में सबसे ज्यादा आवश्यक है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ आप स्थापित करते हैं, थोड़ी गलती हो भी जाती है तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। लेकिन अगर हम नियमों की बात करें तो मंदिरों में गणपति की जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसमें उनकी सूंड़ दाहिनी तरफ होती है और उनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। और जो घर में गणपति की मूर्ति स्थापित होती है या तो उसमें उनकी सूंड़ सीधी होनी चाहिए या बाई तरफ होनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे गणपति की मूर्ति को आप विसर्जित करते हैं और जो मंदिरों में स्थापित होते हैं गणपति वो सालों साल तक वहां प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित बने रहते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, धन का लाभ हो सकता है। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में गणपति मंत्र का जप करिएगा जितना ज्यादा कर सकें। ओम गं गणपतये नमः का, ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूरवा अर्पित करने के बाद जाइएगा,
काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, करियर बढ़िया रहेगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है, बुधवार की द्वादशी बड़ी शुभ मानी जाती है। आज शुभ और मंगल कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भगवान विष्णु को अगर आप तुलसी दल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, चार मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में किया ढेर। 8 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे दो पुजारी समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले सन के आरोपी का एनकाउंटर। वारदात के बाद आरोपी ने अपने 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कैद कर लिया था। सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू शुरू किया। सन के आरोपी ने अपने 10 साल के बेटे को भी गोली मारी, गोली की आवाज सुनकर पुलिस की फोर्स एंट्री की गई। आरोप है कि बाजार से घर पहुंचे आरोपी अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगना शुरू किया, इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और पत्नी से भी उसकी बहस हुई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई डिमोलिशन की कार्रवाई, मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर बुलडोजर चला। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इसी रोड पर की जा चुकी है तोड़फोड़, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना से इलाके में सनसनी फैली। वारदात के बाद आरोपी फरार है, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश जारी है। जमुई छेड़छाड़ मामले में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 19 सितंबर की इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5, जिसमें 3 नाबालिग हैं। जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा पॉस्को एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन।

जमुई छेड़छाड़ मामले में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 19 सितंबर की इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5, जिसमें 3 नाबालिग हैं। जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा पॉस्को एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन। मुठभेड़ में घायल आरोपी का जमुई सदर अस्पताल में इलाज जारी। अधिकारियों ने लोगों से नाबालिग से जुड़े वीडियो को शेयर न करने की अपील की। गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया। एससीएसटी एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना। नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर, एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा। प्रधानमंत्री करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली राहत, 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में 6 आरोपियों को राहत नहीं मिली, अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की। 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बैंक यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद रहेगा। 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। योगी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को लैपटॉप भी बांटेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल का बड़ा दावा, यूपी में 35 विधानसभा सीटों पर मांगा गठबंधन में हिस्सा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बड़ा बयान, कहा 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहता हूं। कालकाजी में नाबालिग से हुए हैवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल के मुकुंदपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी का आरोप है कि उसके कई कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बुरी तरह मारपीट और बदसलूकी की गई, जबकि बीजेपी ने आरोपों को झूठा बताया। टीएमसी ने यह भी कहा कि महिला कार्यकर्ताओं जिनमें युवा नेता उपासना चौधरी भी शामिल हैं, उन पर अंडे फेंके गए। नशे में धुत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता ने टीएमसी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जुलूस के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पकड़कर पीटा गया। इस घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा हिंसा को राजनीति की भाषा में नहीं बनना चाहिए, डराने धमकाने को सत्ता का जरिया नहीं बनना चाहिए। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत, 2027 की तैयारियों पर मंथन, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, 2027 में बीजेपी की सरकार दोहराने का दावा, संगठन का साथ लेकर चलने का संदेश दिया। दिल्ली में खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण की पहल, 110 से ज्यादा संग्रह केंद्र शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहल का जायजा लिया। द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा समेत कई इलाकों में सुविधा, खुले में जल स्रोतों में मूर्ति छोड़ने पर रोक के साथ वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण पर जोर। ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण को पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता, सौरभ दास का विरोध, स्थानीय लोगों से बहस, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला। अमृतसर में खाद स्टोर में हथियारबंद 3 युवकों ने की तोड़फोड़, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को अंजाम दिया। अहमदाबाद में कॉलेज जा रहे 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। जालंधर में ड्रग्स मामले में 3 गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, नशीली गोलियां और 22,000 रुपए कैश बरामद किया गया। असम के धेमाजी में चलती जेसीबी में आग लगी, हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं। फाजिलका में एएफ सरपंच सुधीर कुकना पर फायरिंग हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में युवक ने दरोगा पर 18 घंटे हिरासत और 12,000 रुपए वसूली का आरोप लगाया, युवक का पत्नी से विवाद हुआ था। बिजनौर में बिजली चेकिंग करने गई टीम से मारपीट हुई, जेई को घेर कर बंधक बनाने का आरोप, सामने आया घटना का वीडियो। उधमसिंह नगर में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, कच्चा विधायक पूर्व विधायक समर्थकों में भिड़े, पुलिस ने लाठियां भाजी। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, नकदी सोना चांदी और मोबाइल फोन बरामद हुए। असम के बोकाघाट में बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ चींग मछलियां बरामद की गई, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इंदौर के नौलखा कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट टूटने से अफरा तफरी मची, 7 लोग घायल हुए। झांसी में बीए छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने 6 युवक पर यौन उत्पीड़न और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया, 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। नोएडा में गरीबों को सामान बांटने के बहाने घर में घुसी महिलाएं, 3 महीने के बच्ची को चुरा कर हुए फरार, 3 गिरफ्तार। मोगा में नशे में

तीन युवकों की लूट की कोशिश नाकाम। करीब 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति ने एक आरोपी के खेत में दबोचा। पुलिस ने हिरासत में लिया। मामले का वीडियो वायरल। जालौन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग छात्रों में खूनी संघर्ष। परिसर में तनाव बढ़ा। नोएडा में पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान। फांसी लगाने की सूचना पर तुरंत पहुंची डायल 112। पीआरवी ने जान बचाई। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। परिजनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुजफ्फरपुर में 21 साल की युवती को बहला फुसला कर ले गया। अधेड़ दुष्कर्म का आरोप लगा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामगढ़ में सीमेंट लदे ट्रक में भीषण आग लगी। चालक उपचालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। बेगूसराय में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या की गई। शव मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में युवती से छीना गया आईफोन 18 प्रो। 3 दिन पहले ही खरीदा था फोन। साबरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा। 1 श्रद्धालु की मौत, 7 गंभीर घायल। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को फूंका। प्रतापगढ़ की कोतवाली के बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल में एसी फटने से 5 दिन के नवजात की मौत। वार्ड में मची अफरातफरी। रेवाड़ी में फर्जी हरियाणा पुलिस अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए सीईओ सत्य मिश्रा ने संभाला कार्य।

0: मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए नई रणनीति भी बनाई जाएगी। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तीस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा। वनकर्मियों, मछुआरों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे बचाकर मां से मिलाया। एशियन गेम्स 2026 में भारत हॉकी टीम की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक जबरदस्त रहा है, दोनों मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने गोल किए हैं। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। दिग्गज अभिनेता आनंद नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। वहीं फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तमिल स्टार धनुष को 2 नेशनल अवार्ड मिले। तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान भी मिला। हिंदी फिल्म स्त्री तो के गाने आज की रात के लिए विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला। गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड। फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला। फिल्म मैदान के गाने जाने दो के लिए मनोज मुंतशिर को मिला बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवार्ड। दूसरी बार हासिल किया राष्ट्रीय सम्मान। एक ही समय में 37 कलाकारों के रियल टाइम मोशन कैप्चर के जरिए बनाया गया था रिकॉर्ड। इसमें एडवांस VFX 92 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल है। नागालैंड की फिल्म अंक को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री मिली है। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली यह दूसरी फिल्म है। इसके पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली। अप्रैल से शुरू होगी 3 इडियट्स के सीक्वल की शूटिंग। फिल्म ललकारा के बाद काम शुरू करेंगे आमिर खान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आना सम्मान की बात है, हम काफी प्रगति कर रहे हैं, देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने अपने UNGA संबोधन में ईरान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ईरान को आतंकवाद बढ़ावा देने वाला देश नंबर 1 बताया। ट्रंप ने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 51 सालों में ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने खून खराबे हत्याओं के जरिए ही शासन किया है। इस संबोधन के दौरान ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी, कहा वो कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से अमेरिका दौरे पर होंगे। 23-25 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की। साथ ही कहा हमारी ऊर्जा दुनिया को चला रही है। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के समारा और उफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। सर्दियों में ऊर्जा संकट और रूस के साथ जंग को लेकर बातचीत हुई। रूसी उप विदेश मंत्री को अमेरिकी वीजा न मिलने पर रूस ने कड़ा विरोध जताया। क्रेमलिन ने कहा अमेरिकी वीजा न देना अमित्रतापूर्ण कृत्य है, अमेरिका से बातचीत में उठाएंगे मुद्दा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश होने के दायित्व तोड़े। अमेरिका से तनाव के बीच न्यूयॉर्क रवाना हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरानी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बैठक अभी तय नहीं है। यूएन भाषण से पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की कड़ी निंदा की। नेतन्याहू ने ममदानी पर हमास का समर्थन और यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगाया। ग्रीनलैंड में 2 नए बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका। यूएन महासभा में समझौते के बाद बढ़ेगी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। डेनमार्क के ग्रीनलैंड के साथ मंगलवार को अमेरिका की होनी है दोनों देशों के बीच अहम डिफेंस डील। यमन के ताइस प्रांत में सऊदी अरब के एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमानों ने हूती ठिकानों पर बम बरसाए। हमले में 6 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। हूती ने कहा तनाव बढ़ने के बाद से सऊदी अरब ने 917 हवाई हमले किए। तुर्की के पश्चिमी प्रांत मैनिसा में स्कूल में गोलीबारी से हड़कंप, हमले में 11 छात्र घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने हमलावर छात्र और हथियार रखने वाले परिजनों को हिरासत में लिया। एशियन गेम्स में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतकर वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
15: यार लोन भूल गया। मैरी?
16: Suggest
15: a good bank ना।
16: Ujjivan Small Finance Bank.
15: Small Finance Bank.
16: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
10: There's nothing small about
15: us. Ujjivan, nothing small about us.
17: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है।
3: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बेटा चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
2: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।
3: पूरी लस्सी पीने के बाद पूर्वा यूं ही फेंक दिया, बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
4: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
5: तुम तो साला डील माना नहीं।
6: एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
4: हाँ भाई।
6: किसी को भी काट सकता है।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर के बाद अपने तीन बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी एनकाउंटर में ढेर। घर में पूजा से नाराज आरोपी ने की थी पत्नी और दो पंडित की हत्या, बाद में एक बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। एआईएमआईएम ने कहा ये सहारनपुर पार्ट टू है।

पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी मुलाकात। क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह के 8 बजे हैं, अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर 4 हत्या और 1 एनकाउंटर से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्यों एक शख्स ने 4 लोगों की जान ले ली, इस पर करेंगे विस्तार से बात। वहीं आजमगढ़ में 8 घंटे चले ऑपरेशन की पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। खबर दिल्ली की भी होगी, जहां पर एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर तनाव बना हुआ है। मस्जिदों पर हो रहे एक्शन को लेकर जमीयत ने आखिर क्यों एक अहम बैठक बुलाई, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। खबर दिल्ली में युवक की हत्या की भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बिहार के जमुई में हुए एनकाउंटर को लेकर अब जाति वाली सियासत की भी बात करेंगे। और एक तस्वीर F-16 लड़ाकू विमान के क्रैश की भी आगे आपको दिखाएंगे। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे खौफनाक खबर यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी, अपने बेटे और 2 पुजारियों की हत्या कर दी, फिर पुलिस ने उसे भी जवाबी कार्रवाई में मार दिया। आजमगढ़ में करीब 8 घंटे तक चले ऑपरेशन का अंत हो गया है। इस पूरे मामले में आरोपी अरविंद ने कुल 4 की हत्या की, बाद में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पत्नी को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है, लिहाजा वो पूजा पाठ करा रही थी और इसे देखकर अरविंद नाराज हो गया। उसने 4 हत्याओं को अंजाम दे दिया। आरोपी ने बंधक बनाए बेटे को भी बाद में मार दिया। पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद 2 पुजारी जो वहां पर पूजा कर रहे थे उनकी हत्या की, उसके बाद बेटे को भी मार गिराया और बेटे की मौत हो चुकी है। और इस आरोपी का भी एनकाउंटर हो चुका है। यूपी के आजमगढ़ की ये तस्वीर आप देखिए।

0: तो आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद जो दो पुजारी थे जो वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे उनकी भी हत्या कर दी, और उसके बाद अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। अब एनकाउंटर में आरोपी ढेर हो चुका है। इससे जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: चार हत्या और एक एनकाउंटर से आजमगढ़ में हड़कंप। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी और दो पुजारियों को मार डाला, फिर अपनी दो बेटियों और एक बेटे को बनाया बंधक। बंधक बनाकर आरोपी ने फायरिंग की और अपने जिगर के टुकड़े की जान ले ली। आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया चार हत्याओं का आरोपी। हत्या, बंधक और एनकाउंटर की ये खौफनाक वारदात हुई है आजमगढ़ में। शंभूपुर गांव में मंगलवार की शाम ही ऐसी वारदात हुई जिससे हर कोई सन्न है। चार हत्या और एक एनकाउंटर की वजह क्या है? क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला? क्यों दो पुजारियों की जान ले ली? बताया जा रहा है कि अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है। उसी खतरे को टालने के लिए परिवार में पूजा पाठ कराया जा रहा था। अरविंद इस पूजा के खिलाफ था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम अरविंद सिंह बाहर से अपने घर लौटा। वो अपने घर में पूजा पाठ देखकर बौखला गया, तुरंत पंडितों से आधार कार्ड मांगा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी पिस्तौल से दो पंडितों को गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अरविंद ने पत्नी की भी हत्या कर दी, फिर अपने तीन बच्चों को घर में ही बंधक बना लिया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो स्पेशल कमांडो टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। करीब 8 घंटे तक आरोपी बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इस बीच आरोपी ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तब पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड और टियर गैस का इस्तेमाल कर घर में एंट्री ली। पुलिस के अंदर दाखिल होते ही आरोपी अरविंद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरविंद सिंह भी घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल बेटे की मौत हो गई। आरोपी अरविंद की भी जान चली गई।
2: पुलिस ने उसको चेतावनी दी और हवा में फायरिंग करने के बावजूद जब उसने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
1: फिलहाल आरोपी की घायल बच्ची और उसके बड़ी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस खौफनाक हत्याकांड की जांच में जुट गई है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़ आज तक।
0: तो इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल एनकाउंटर में आरोपी ढेर हो चुका है, और इससे पहले उसने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया और पत्नी को मौत के घाट उतारा। अब आप इसे समझिए, मानसिक रूप से परेशान था आरोपी अरविंद सिंह, ऐसा माना जा रहा है। आरोपी अरविंद का BHU में पहले इलाज भी चल रहा था क्योंकि मानसिक रूप से वो परेशान था। घर वालों को अरविंद पर भूत प्रेत के जो साया है उसका शक था, और इसी को लेकर उसकी पत्नी ने ये पूजा रखी थी। और आरोपी की पत्नी ये धार्मिक अनुष्ठान करा रही थी जहां पर दो पुजारी भी मौजूद थे। धार्मिक अनुष्ठान देखकर नाराज हो गया अरविंद और आरोपी, और ऐसे में नाराज आरोपी ने दो पुजारियों की उसी वक्त हत्या कर दी, और पत्नी को आरोपी अरविंद ने उसी वक्त मार डाला, और इसके बाद अपने बेटे की भी एनकाउंटर के दौरान हत्या उसने कर दी। 3 की हत्या के बाद आरोपी ने बच्चों को बंधक बनाया हुआ था, 2 बेटियां थी और 1 बेटा। बंधक बनाए हुए बेटे को भी आरोपी ने उसी वक्त मार डाला जिसके बाद आरोपी का एनकाउंटर हो गया, और जो दोनों बच्चियां हैं वो अभी घायल बताई जा रही है। करीब 8 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। वहीं अब आप समझिए, पहले उसने पत्नी की हत्या की, 2 पुजारी की हत्या की, और उसके बाद एनकाउंटर से पहले बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। 2 बेटियां का इलाज चल रहा है, और आरोपी जो अरविंद है वो भी अब मार गिराया गया है एनकाउंटर में। संतोष शर्मा जुड़ गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, अभी पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, अपडेट दीजिएगा।
3: देखिए, इस पूरे मामले में ADG जोन खुद रात भर कैंप करते रहे, और जरा तस्वीरों से भी समझाता हूं मैं। इस समय पर ठीक आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के उस गांव और उस घर के बाहर मौजूद हूं जिस घर में ये पूरा खौफनाक मंजर हुआ। जो अरविंद था, पहले उसने करीब 7 घंटे तक अपने तीनों बच्चों को बंधक बनाए रखा, और इसी दौरान अगर देखा जाए तो उसी की गोली से उसके बेटे की मौत हो गई। और उसके बाद जब पुलिस ने जब गोली चलने की आवाज सुनी करीब 8 घंटे तक पुलिस कॉम्बिंग करती रही, एक तरीके से घेराबंदी की, उसने समझाने की कोशिश की, उनके परिजनों से बात करवाई, लेकिन अरविंद किसी भी तरीके से बच्चों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। और यही वजह थी कि जब गोली चलने की आवाज आई तो उसके बाद पुलिस को इसमें फोर्स एंट्री करनी पड़ी, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद पुलिस जब अंदर गई तो अरविंद ने अपनी जो रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उससे ताबड़तोड़ फायरिंग की और 5 से 6 राउंड गोली चली, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की और इसमें अरविंद मारा गया और उसके दोनों बच्चे, 3 बच्चों को बंधक बनाया था, उसमें से दोनों बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन जिस लड़के की उसने उसकी गोली से ही मौत हो गई उसको नहीं बचाया जा सका। आसपास अगर देखा जाए तो पूरा रात भर कॉम्बिंग चली है, आसपास पुलिस फोर्स तैनात है। ये देखिए उस गांव में उस ठीक घर के चारों तरफ पुलिस फोर्स मौजूद है और ये इस तरीके से कहा जाए कि 8 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले पत्नी की हत्या, फिर पूजा करने आए 2 पुजारियों की हत्या और उसके बाद अपने 3 बच्चों को बंधक बनाया गया और रात भर करीब 8 घंटे तक जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके बाद फिर उसने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसमें पुलिस के एनकाउंटर में वो खुद मारा गया। तो एक पूरी तरीके से मर्डर, हॉस्टेज बनाना और उसके बाद फिर एनकाउंटर,
0: खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग से एक बड़ी खबर, देर रात बुलडोजर कार्रवाई से वहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल मैक्स हॉस्पिटल रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मदीना मस्जिद और आसपास के अवैध निर्माणों को ढहाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के तहत इस रोड पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। मस्जिद पर प्रशासन ने इस एक्शन को लेकर नाराजगी जताई और तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात भी किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैक्स हॉस्पिटल रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मदीना मस्जिद और आसपास के जो अवैध निर्माण है उनको ढहाया गया है। देर रात ये कार्रवाई शुरू हुई।
1: दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर शालीमार इलाके की है। तस्वीरें देखिए, शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली सड़क पर मदीना मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर पीले पंजे का एक्शन जारी है। देर रात ये कार्यवाही सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई। वैसे सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इस रोड पर तोड़क कार्यवाही हो चुकी है।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में रात के अंधेरे में एक बार फिर से पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मदीना मस्जिद है और मदीना मस्जिद के साथ साथ जो आसपास के घर हैं वहां पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। जहां पर आपको वो 2 लाइट जलती हुई दिखाई रही है यही मदीना मस्जिद है जिस पर रात के अंधेरे में डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो आसपास के घर हैं उन पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि ये वही रोड है मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड जहां पर आज से करीब 1.5 महीने पहले भी डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। करीब 150 के आसपास जो घर हैं उनको डेमोलिश किया गया था और सड़क चौड़ीकरण के लिए ये जो डेमोलिशन है वो की जा रही है।
1: कल रात जब मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जब मस्जिद में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। जमई ने दिल्ली में मदीना मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन को सहारनपुर पार्ट 2 बताया।
5: कुछ नहीं, इसी बात का तो विरोध है कि आप कुरान निकालने की मोहनत नहीं दे रहे, आप जानेमाज निकालने की। दिस इज सहारनपुर पार्ट 2। ये सहारनपुर में जिस तरीके से DM ने किया वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है, ये राजधानी है, वाइब्रेंट यहाँ लोकतंत्र है।
1: डिमोलिशन एक्शन के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, लिहाजा सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। लेकिन जिस तरह से रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस पर दिल्ली की सियासत में हंगामा तय है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, जब देर रात ये कार्रवाई हुई है सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट तो गया, लेकिन अब सियासत इस पर बढ़ गई है। AIMIM की तरफ से इसे सहारनपुर पार्ट 2 बताया जा रहा है।
6: हाँ बिल्कुल, देखिए रात के वक्त यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सहारनपुर में कोर्ट परिसर के अंदर जो मस्जिद थी उसको गिराया गया उसी तर्ज पर यहाँ पर आधी रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर पूजा तो इस पूरे इलाके में अगर हम देखेंगे तो आप लाइन से देखिए तो जो एनक्रोच किया गया था जिन मकानों के द्वारा, उन सबको यहां पर तोड़ा गया है। पिछले मई महीने से सिविक एजेंसीज जो हैं वो यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चला रही हैं, सड़क चौड़ी करनी है। आप देखिए दूर तक वो पूरा जो इलाका है वहां पर डिमोलिशन किया जा रहा है, बॉर्डर बनाया गया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मदीना मस्जिद है, इसके ग्राउंड फ्लोर को या बाकी हिस्से को नहीं छुआ गया है। ये जो ऊपर के दो फ्लोर हैं उन दो फ्लोर को यहां पर आप देखिए, जो सेकेंड और थर्ड फ्लोर है उसको यहां पर जो उसका हिस्सा है जो उसे तोड़ा गया है। दरअसल इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया था सिविक एजेंसी की तरफ से इस मस्जिद प्रशासन को, लेकिन मस्जिद प्रशासन का यहां पर यह कहना है कि नोटिसेज इतनी जल्दी दिए गए, 15 दिन के अंदर ही 3 नोटिस एक एक करके भेज दिए गए, और उसके बाद अपील करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं सालों पुराने उसको निकाल करके सामने रखें, इतना वक्त नहीं दिया गया। मीटर नीचे अगर आप देखेंगे तो उनका कहना है कि ग्राउंड फ्लोर की ही अनुमति की बात जब रखी गई तो बताया गया कि नहीं, ये तीनों फ्लोर एक साथ बने थे, ऐसा मस्जिद प्रशासन की ओर से कहा गया, लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जा सका, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। ऊपर के दो हिस्से जो देखिए दो फ्लोर है उसके लेंटर को यहां पर तोड़ा गया।
0: नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बीती रात दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चला, और कुछ दिन पहले सहारनपुर में भी मस्जिद को गिराया गया। मस्जिदों पर हो रहे ऐसे एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने नाराजगी जताई है, और आज इसे लेकर कार्यकारिणी की आपात बैठक भी बुलाई गई है। जमीयत ने मस्जिदों पर एक्शन, संविधान का उल्लंघन के आरोपों को लेकर यह बैठक बुलाई। इसमें मौजूदा हालात और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद मंथन करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में देश भर से कार्यकारिणी के सदस्यों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल नई बस्ती की गली नंबर 16 में कुणाल ढींगरा पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया। कुणाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुरानी रंजिश के शक के कारण
7: मेरे भाई को 16 चाकू मार के मार दिया गया, 16 नंबर गली आनंद पर्वत। और जिन लड़कों के नाम आए हैं सब पुलिस वालों को बता दिए हैं, कोई अभी कार्रवाई नहीं है। बस ये लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ना किसी को उठा रहे, बस कह रहे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। धमकी मिली है कि तुझे भी मार देंगे, गालियाँ दे रहा है, हम पे रिकॉर्डिंग है, हमने वो भी भेज दी है सर को, पुलिस वालों को भेज दिया, वो भी वो सब अब वो अपने आप सुनेंगे। और मेरे भाई को तो मार दिया इन्होंने, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
0: बात कर लेते हैं बिहार के जमुई बदसलूकी मामले की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधी की कोई भी जाति होती नहीं है, और सम्राट चौधरी ने यह तक कहा है कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटने वाली। उन्होंने ये तक कहा कि जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं।
8: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: तो जमुई कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं, तीखा हमला उन्होंने बोला। तेजस्वी ने सीएम सम्राट से पूछा है कि जब एसपी के मुताबिक वारदात में 6-7 लड़के शामिल थे तो बाकी आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी, और उनकी पहचान सामने आखिर क्यों नहीं लाई गई है। हर कांड में जाति खोजने वाले बिहार के आरोपी सीएम को ज्ञात नहीं है कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती, ये तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तो उन्होंने ये कहा है कि 6-7 लड़के थे तो बाकी आरोपियों को इसलिए छोड़ दिया गया कि वो फिर से अपराध करें, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि शेष आरोपियों की पहचान उजागर करने में आखिर किसका डर आपको सता रहा है। जमुई जैसे कांड प्रतिदिन हर एक जिला में हो रहे हैं, और उन दोषियों को सजा कौन आखिर देगा, कब तक उनको सजा दी जाएगी, कोई भी मामला चर्चित होने के बाद ही पुलिस प्रतिक्रिया क्यों देती है, ये सवाल तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर उठाया। एक बड़ी खबर जमुई कांड के मुख्य आरोपी का एक नया वीडियो सामने आया है। नंदन यादव का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो साथी के साथ बाइक की पिछली सीट पर बैठकर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। ट्रैक्टर से बालू उठाव का भी उसने एक रील बनाया, जहां पर बालू खनन के दौरान शराब पार्टी का वीडियो भी नंदन यादव ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
9: लगाना और यादव को समझाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां यादव जी खड़े होते हैं, किंग ऑफ यादव जी।
0: तो जमुई के बाद अब ओडिशा के ढोंकनाल से सामने आई ये तस्वीर भी कई सवाल खड़े कर रही है, जहां पर एक महिला से छेड़खानी की शर्मनाक घटना घटी। 18 सितंबर की यह घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ओडिशा में भी चिंता बढ़ा दी है।
10: ये तस्वीरें सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून का डर कितना जरूरी है ये सवाल भी खड़ा करती है। 18 सितंबर को ढेकानाल कपिलाशा रोड पर एक युवती और उसके साथी को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया। वीडियो में युवती मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती की अपील के बावजूद उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने लोगों का ध्यान खींचा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त दोनों पर्यटक जोड़ा कपिलाशा से लौट रहा था, जहां पर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। बीच सड़क पर कुछ लोगों ने जोड़े के आचरण पर आपत्ति जताई, उसके बाद उन्हें रोक कर बहस और मारपीट की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं, आखिर सड़क पर हो या पर्यटन स्थल, क्या महिलाएं आज भी बिना डर के सुरक्षित सफर कर सकती हैं? क्या ऐसी घटनाएं महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल या निशान नहीं खड़ा करती? जवाब कानून व्यवस्था और निष्पक्ष जांच से ही मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं G20 समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं, और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस साल 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में G20 लीडर समिट होने वाली है, और ये ट्रंप नेशनल डोरेल मियामी में होना है। दरअसल इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी दिसंबर में G20 के लिए अमेरिका आएंगे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक पीएम मोदी की यात्रा का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कर लेते हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं, ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना। साथ ही ट्रंप ने सभी देशों से अपील की है कि वो ईरान को पूरी तरह से आर्थिक रूप से अलग थलग करने में अमेरिका का साथ दे।
11: The world's peril, then the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
0: अब ईरान के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, जो कि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। और ईरानी राष्ट्रपति न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची भी न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं, और अमेरिका ने उन्हें भी यूएन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी है। जहां एक तरफ पिजिश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक ही शहर में होंगे, लेकिन फिलहाल दोनों की बैठक अभी तक तय नहीं। अब खबर जर्मनी से, जहां पर अमेरिकी एयरबेस पर F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। अमेरिकी सेना ने बताया है कि पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस पेंगडाहलम का एक F-16 फाइटर जेट मंगलवार को हादसे में एक पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया। प्लेन क्रैश हो गया और पायलट का इलाज चल रहा है। सेना के मुताबिक घटना की वजह की जांच अभी तक सामने नहीं आई है वजह और ऐसे में जांच की जा रही है। जर्मनी में क्रैश हुआ है F-16 लड़ाकू विमान, जो पायलट था उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत वो काफी ज्यादा घायल बताया जा रहा है। चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। एमपी के महोबा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 16 साल का टूटा रिकॉर्ड, जिले के सभी प्रमुख बांध भरे लबाल। अमृतसर में खाद स्टोर में हथियारबंद 3 युवकों ने की तोड़फोड़, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को दिया अंजाम। अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। गुजरात के राजकोट में कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस, शख्स ने बैलगाड़ी से गर्भवती महिला को और नवजात को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मंदिर से 35 चांदी के छत्र चोरी करते महिला सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने हिरासत में। जालना में मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी से बचने की कोशिश नाकाम, कैमरे में कैद संदिग्ध चोर। मुजफ्फरनगर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से सरे राह छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के भदोही में गणेश पूजा पंडाल में करंट की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: पापा।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया।
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: Maddie, I need to open a savings account.
16: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
15: स्मॉल बैंक?
16: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
15: Okay.
16: Ujjivan, nothing small about us.
17: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
19: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद, असली स्वाद.
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
5: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
6: Nayi sarkar ke baad Bihar mein sabse bada siyasi mela.
7: 15 zile baad se prabhavit. Main to sirf ye pooch rahi hu ki ye Bihar ki niyati kyu bana di gayi hai.
8: Kya karan hai abhi bhi Bihar investment se vanchit.
9: Paisa itna kahan se leke aayenge jo ye pure project ko pura kiya ja sakta hai.
6: Samrat Chaudhary ke raj mein kaise badlega Bihar.
10: Aapne timeline de diya hai 2030 palayan rokne ke liye.
11: Itna confidence ho ke keh raha hu ki 2030 tak बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा. कितना जरूरत है
6: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का. हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.

आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर के बाद अपने तीन बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर। घर में पूजा से नाराज आरोपी ने की थी पत्नी और दो पंडित की हत्या, बाद में एक बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। AIMIM ने कहा ये सहारनपुर पार्ट टू है। जमुई में दरिंदगी मामले में सीएम सम्राट चौधरी का पहला बयान, बोले अपराधी की नहीं होती कोई जाति, मेरी पुलिस पीछे नहीं हटेगी, सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग। वक्त हो गया नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पटना के दानापुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिसकर्मी भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। वक्त बड़ी खबर पटना से, पटना के दानापुर में ये पूरा मामला सामने आया है, पुलिसकर्मी ने बहन की हत्या कर दी है, सर्विस रिवॉल्वर से उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, बहन की हत्या के बाद अपनी भी जान दे दी उस पुलिसकर्मी ने। ले आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, चार मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में किया गया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे दो पुजारी समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले सन के आरोपी का एनकाउंटर। वारदात के बाद आरोपी अपने 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कैद में था और सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। सन के आरोपी ने अपने 10 साल के बेटे को भी गोली मारी, गोली की आवाज सुनकर पुलिस फोर्स ने एंट्री की। आरोप है कि बाजार से घर पहुंचे आरोपी अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया था और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और पत्नी से भी उसकी बहस हुई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई डिमोलिशन की कार्रवाई, मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इसी रोड पर की जा चुकी है तोड़फोड़, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना से इलाके में फैली सनसनी। वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। जमुई छेड़छाड़ मामले में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 19 सितंबर की इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5, जिसमें 3 नाबालिग। जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन। मुठभेड़ में घायल आरोपी का जमुई सदर अस्पताल में इलाज जारी, अधिकारियों ने लोगों से नाबालिग से जुड़े वीडियो को शेयर न करने की अपील की। जमुई कांड पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त, बोले अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती, बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कानून को चुनौती देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बिहार में गुंडाराज कायम, सीएम के इस्तीफे की भी मांग। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में क्राइम ब्रांच की जांच जारी, क्राइम ब्रांच की टीम ने माता पिता के बयान दर्ज किए। जांच टीम अब परीक्षा हॉल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। एससी एसटी एक्ट मामले में अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण का बयान दर्ज नहीं। मृतक साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी अगर और कहा कि दुल्ला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। एससी एसटी एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना। नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर एएनटीएफ के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, पीएम करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली राहत, अब 12 अक्टूबर को सुनवाई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में 6 आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने जमानत अर्जियां खारिज की, 8 आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिनों तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत दे नतीजा। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल का बड़ा दावा, यूपी में 35 विधानसभा सीटों पर मांगा गठबंधन में हिस्सा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बड़ा बयान, कहा 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहता हूं। कालकाजी में नाबालिग से हुए हैवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से मांगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में मुकुंदपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल हुए, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। टीएमसी का आरोप है कि उसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बुरी तरह से मारपीट और बदसलूकी की गई है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला कार्यकर्ताओं जिनमें युवा नेता उपासना चौधरी भी शामिल थी पर उन पर अंडे फेंके गए और नशे में धुत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता ने टीएमसी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा बीजेपी का एक कार्यकर्ता जुलूस के पास से गुजर रहा था तभी उसे पकड़कर पीटा गया। घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा हिंसा को राजनीति की भाषा नहीं बनना चाहिए, डराने धमकाने को सत्ता का जरिया नहीं बनना चाहिए। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत, 2027 की तैयारियों पर मंथन, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद, 2027 में बीजेपी की सरकार दोहराने का दावा, संगठन को साथ लेकर चलने का दिया संदेश। दिल्ली में खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण की पहल, 110 से ज्यादा संग्रह केंद्र शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहल का जायजा लिया। द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा समेत कई इलाकों में सुविधा, खुले में या जल स्रोतों में मूर्ति छेड़ने पर
रोक के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया। ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण को पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का विरोध, स्थानीय लोगों से बहस हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मामला, वीडियो वायरल। अमृतसर में खाद स्टोर में हथियारबंद तीन युवकों ने की तोड़फोड़, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को दिया अंजाम। अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर मौत हुई, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। जालंधर में ड्रग्स मामले में तीन गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, नशीली गोलियां और 22,000 से ज्यादा कैश बरामद। असम के धेमाजी में चलती जेसीबी में लगी आग, हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। फाजिलका में आम आदमी पार्टी सरपंच सुधीर कुकना का पर फायरिंग की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में युवक ने दरोगा पर 18 घंटे हिरासत और 12,000 वसूली का आरोप लगाया, युवक का पत्नी से हुआ था विवाद। बिजनौर में बिजली चेकिंग करने गई टीम से मारपीट, जेई को घेरकर बंधक बनाने का आरोप सामने आया, घटना का वीडियो। उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, किच्चा विधायक पूर्व विधायक समर्थकों में भिड़ंत हुई, पुलिस ने भांजी लाठियां। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर पर चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, नकदी सोना चांदी और मोबाइल फोन बरामद। असम के बोकाखाट में बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां बरामद हुई, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इंदौर के नवलखा कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट टूटने की वजह से मची अफरातफरी, 7 लोग घायल। झांसी में बीए छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई, परिजनों ने 6 युवकों पर यौन उत्पीड़न और वीडियो वायरल करने की धमकी पर आरोप लगाया। नोएडा में गरीबों को सामान बांटने के बहाने घर में घुसी महिलाएं 3 महीने की बच्ची को चुराकर हुए फरार, 3 गिरफ्तार। मोगा में नशे में धुत 3 युवकों की लूट की कोशिश नाकाम रही, करीब 70 साल के बुजुर्ग दंपति ने एक आरोपी को खेत में दबोचा, पुलिस ने हिरासत में लिया, वीडियो वायरल। जालौन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग छात्रों में खूनी संघर्ष, परिसर में बढ़ा तनाव। नोएडा में पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान, फांसी लगाने की सूचना पर तुरंत पहुंची डायल 112, पीआरवी ने बचाई जान। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, परिजनों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरपुर में 21 साल की युवती को बहला फुसलाकर अधेड़ ले गया, दुष्कर्म का आरोप लगा, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में सीमेंट लदे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक उपचालक कूदकर जान बचा। बेगूसराय में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, शव मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में युवती से छीना आईफोन 18 प्रो, 3 दिन पहले ही खरीदा था फोन। सावरकांठा में पदयात्रियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा, 1 श्रद्धालु की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को फूंका। प्रतापगढ़ की कोतवाली के बाथरूम में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे। तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल में एसी फटने की वजह से 5 दिन के नवजात की मौत हुई, वार्ड में मची अफरातफरी। भिवाड़ी में फर्जी हरियाणा पुलिस अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए सीईओ सत्यम मिश्रा ने संभाला कार्यभार, श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने और सुविधाएं बेहतर रखने पर फोकस। मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी, इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तीस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा, वनकर्मियों और मछुआरों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे बचाकर मां से मिलाया। एशियन गेम्स 2026 में भारत हॉकी टीम की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक रहा है बहुत ही जबरदस्त, दोनों मैच में 8-8 खिलाड़ियों ने किए हैं गोल। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, वहीं फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड, तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, तो वहीं तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए, विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला, गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड, फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला। फिल्म मैदान के गाने जाने 2 के लिए मनोज मुंतशिर को मिला बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवार्ड, वहीं दूसरी बार हासिल किया राष्ट्रीय सम्मान।
हैदराबाद में ब्लड बैंक से जुड़े आरोपों पर अभिनेता चिरंजीवी का पलटवार, कहा खून बेचकर पैसा नहीं कमाता, अपनी मेहनत की कमाई से ब्लड बैंक चला रहा हूं। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव कपल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

नवंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात

मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

थकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।

शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर।

करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

लोग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। गणेश जी की उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
2: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.
3: बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी रही हैं, और जब वो तस्वीरें आई जमुई से जहां पर वो बच्ची हाथ जोड़ती हुई, बिलखती हुई, प्लीड करती हुई नजर आ रही है, ये जो तस्वीरें आई, उनको पहली बात किस तरह से देखते हैं और किस तरह के एक्शन आपको लगते हैं कि इसमें होने चाहिए?
4: मुझसे तो वो पूरा वीडियो देखा नहीं गया और मैं देख भी नहीं पाती इस तरह के वीडियो। मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि ये मानवता की, जितना कहें कि गिर सकता है कोई, वैसा गिरे हुए इंसान होंगे। और सबसे रोष की बात ये थी कि पुलिस ने तब वो उसको लिया कॉग्निजेंस जब लोगों ने इस पे शोर मचाना शुरू किया। क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए ये? जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए? और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ। अगर इस तरह के लॉज, और मुझे लगता है अगर हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे नहीं।
5: पूरी लस्सी पीने के बाद पूर्वा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
6: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमरा हुतियों से डील हो गया है।
7: तुम तो साला डील माना नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
6: हाँ भाई।
7: किसी को भी काट सकता है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

घर में ट्रिपल मर्डर के बाद अपने तीन बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर। घर में पूजा से नाराज आरोपी ने की थी पत्नी और दो पंडितों की हत्या, बाद में एक बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। AIMIM ने कहा ये सहारनपुर पार्ट टू है। यूपी में दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी तैयारी, कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग की दिल्ली में बैठक, लखनऊ में मायावती की राष्ट्र नेताओं की मीटिंग, रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष की पूजा। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड आर्टिकल 370 के लिए, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंत नाग।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। बिल्कुल सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में रात में अंधेरे में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर क्यों उठ सवाल, पुलिस से क्यों भिड़े AIIMM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। IIT मुंबई के प्रोफेसर दुल्ला की गिरफ्तारी पर अड़े साहिल के पिता, कहा गिरफ्तारी नहीं हुई तो IIT गेट पर धरना देंगे। फिल्मी सितारों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील, कहा सितारा वही जो रोशनी फैलाए, राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा, दिखाएंगे आपको। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के साथ, जहां पर एरोला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में कल रात एक बेहद विभत्स घटना हुई है। करीब 8 घंटे के भीतर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी के मारे जाने के बाद इस खूनी दहशत भरी रात का अंत हुआ। खूनी वारदात का मुख्य आरोपी अरविंद सिंह नाम का एक शख्स था। आरोपी की पत्नी को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है, लिहाजा वो पूजा पाठ करा रही थी। इसे देखकर वो इतना नाराज हुआ कि पहले तो उसने पत्नी और पूजा करने आए 2 पुजारियों की हत्या की, उसके बाद अपने 3 बच्चों के साथ एक कमरे में बंद हो गया। पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे तक बच्चों को रेस्क्यू कराने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी ने अपने एक बेटे को गोली मार दी और गोली की आवाज पर पुलिस एक्शन में आई और एनकाउंटर में आरोपी को ढेर कर दिया।
1: चार हत्या और एक एनकाउंटर से आजमगढ़ में हड़कंप। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी और 2 पुजारियों को मार डाला, फिर अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे को बनाया बंधक। बंधक बनाकर आरोपी ने फायरिंग की और अपने जिगर के टुकड़े की जान ले ली। आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया 4 हत्याओं का आरोपी। हत्या, बंधक और एनकाउंटर की ये खौफनाक वारदात हुई है आजमगढ़ में। शंभूपुर गांव में मंगलवार की शाम ही ऐसी वारदात हुई जिससे हर कोई सन्न है। 4 हत्या और 1 एनकाउंटर की वजह क्या है? क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला? क्यों 2 पुजारियों की जान ले ली? बताया जा रहा है कि अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है। उसी खतरे को टालने के लिए परिवार में पूजा पाठ कराया जा रहा था, अरविंद इस पूजा के खिलाफ था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम अरविंद सिंह बाहर से अपने घर लौटा। वो अपने घर में पूजा पाठ देखकर बौखला गया, तुरंत पंडितों से आधार कार्ड मांगा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी पिस्तौल से 2 पंडितों को गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अरविंद ने पत्नी की भी हत्या कर दी, फिर अपने 3 बच्चों को घर में ही बंधक बना लिया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो स्पेशल कमांडो टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। करीब 8 घंटे तक आरोपी बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इस बीच आरोपी ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तब पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड और टियर गैस का इस्तेमाल कर घर में एंट्री ली। पुलिस के अंदर दाखिल होते ही आरोपी अरविंद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरविंद सिंह भी घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल बेटे की मौत हो गई, आरोपी अरविंद की भी जान चली गई।
2: पुलिस ने उसको चेतावनी दी और हवा में फायरिंग करने के बावजूद जब उसने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
1: फिलहाल आरोपी की घायल बच्ची और उसके बड़ी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस खौफनाक हत्याकांड की जांच में जुट गई है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़ आज तक।
0: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्या वाकई इस शख्स को जो आरोपी है जो 4 की हत्या का जिम्मेदार था, इसे जिंदा पकड़ना संभव नहीं हो सका था?
3: देखिए, पुलिस के अनुसार कि करीब 7 से 8 घंटे तक जब इसने तीनों बच्चों को बंधक बना लिया, उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेरा और उसके पास जो स्पॉट की टीम थी, एसओजी की टीम थी, वो पूरी टीमों ने इस घर के चारों तरफ घेर लिया था। मैं तस्वीरों से भी समझाता हूँ, चारों तरफ घेर लिया था कि ताकि कोई बाहर निकलने की कोशिश ना करे, कोई और वारदात ना हो। लेकिन 8 घंटे तक परिवार वालों से बात कराने के बावजूद, मानव मनोबल के बावजूद, अरविंद मानने को तैयार नहीं था। और इसी बीच में अंदर से गोली चलने की आवाज आई, और जब अंदर से गोली चलने की आवाज आई तब पुलिस को अनहोनी की आशंका हुई। उसी बीच में उसने स्टेन ग्रेनेड और टीयर गैस का इस्तेमाल करके फोर्स एंट्री की। फोर्स एंट्री करते ही उसने अपने पास जो रिवॉल्वर थी, उस रिवॉल्वर से 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई, और 5-6 राउंड गोली चलाने के बाद पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसमें अरविंद की गोली लगने से मौत हो गई, अरविंद का एनकाउंटर हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में उन तीन बच्चों में जो सबसे बड़ा बेटा था शौर्य, करीब 6-7 साल का बेटा था, उसकी भी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि जब वो फोर्स एंट्री की, जो पहली गोली की चलने की आवाज आई घर के अंदर से, उसी से उसके बेटे की मौत हो गई। और उसके बाद जब वो आवाज सुनने के बाद अंदर जाती है तो वहां पर फायरिंग होती है, और उसमें एनकाउंटर में अरविंद सिंह की भी एनकाउंटर में मारा जाता है। दोनों बच्चियां, जो लड़की है 5 साल की और एक जो छोटी 6 महीने की लड़की है, उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की जो 6 महीने की है वो भी घायल है, क्योंकि जो जो 5 साल की बेटी है उसने बताया कि वो अपने 6 माह की बेटी को भी गोद में लिए था, और इसी बीच में उसके हाथ से वो लड़की छूट गई, जिससे उसको भी चोट लगी है। वो गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो बड़ी बेटी है 5 साल की है, वो भी पुलिस की निगरानी में है, इलाज चल रहा है, इलाज करवा रही है। उसको भी चूंकि 8 घंटे का एक खौफनाक उसने मंजर देखा, अपने पिता के ही द्वारा वो बंधक बनाई गई, तो एक वो भी अभी मानसिक स्थिति पे तौर पर परेशानी है, तो वो इलाज में है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले अरविंद को 8 घंटे तक पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि किसी तरीके से मान जाए, बच्चों को छोड़ दे, बच्चों की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन जब पहली गोली चलती है उसके बाद पुलिस की फोर्स एंट्री, और फोर्स एंट्री के बाद क्रॉस फायरिंग में उसका एनकाउंटर हो जाता
0: है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात दिल्ली की करेंगे। यहां पर शालीमार बाग में कल एमसीबी का बुलडोजर एक्शन हुआ है, और देर रात इसी जगह पर सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मदीना मस्जिद और आसपास के अवैध निर्माणों को ढाया गया है। इस कार्रवाई का विरोध करने AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सहारनपुर पार्ट 2 इसे बताया।

0: दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर शालीमार इलाके की है। तस्वीरें देखिए, शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली सड़क पर मदीना मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर पीले पंजे का एक्शन जारी है। देर रात ये कार्यवाही सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई। वैसे सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इस रोड पर तोड़क कार्यवाही हो चुकी है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में रात के अंधेरे में एक बार फिर से पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मदीना मस्जिद है और मदीना मस्जिद के साथ साथ जो आसपास के घर हैं वहां पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। जहां पर आपको वो दो लाइट जलती हुई दिखाई रही हैं, यही मदीना मस्जिद है जिस पर रात के अंधेरे में डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो आसपास के घर हैं उन पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि ये वही रोड है, मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड, जहां पर आज से करीब डेढ़ महीने पहले भी डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। करीब 150 के आसपास जो घर हैं उनको डेमोलिश किया गया था और सड़क चौड़ीकरण के लिए ये जो डेमोलिशन है वो की जा रही है।
0: कल रात जब मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जब मस्जिद में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया।
2: भाई हमें यहाँ से आप जाने तो दीजिए, अपने लोगों से तो मिलने दीजिए ना। नहीं, अरे लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है सर, ये बताइए मैं क्या कर रहा हूँ। अपने लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है, वो परेशान है। कहाँ बुलवा लिया।
1: देखिए यहाँ शोएब जमाई जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अंदर जाना चाहते हैं जहां पर डेमोलिशन की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उनको भी यहां पर पुलिस ने रोक दिया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल जो शोएब जमाई यहां पहुंचे उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से इस डेमोलिशन की कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया जा रहा है।
0: जमाई ने दिल्ली में मदीना मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन को सहारनपुर पार्ट 2 बताया।
2: कुछ नहीं, इसी बात का तो विरोध है कि आप कुरान निकालने की मोहनत नहीं दे रहे, आप जानेमाज़ निकालने की। दिस इज सहारनपुर पार्ट 2। ये सहारनपुर में जिस तरीके से डीएम ने किया वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है, ये राजधानी है, वाइब्रेंट यहाँ लोकतंत्र है।
0: डिमोलिशन एक्शन के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, लिहाजा सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। लेकिन जिस तरह से रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस पर दिल्ली की सियासत में हंगामा तय है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: शालीमार बाग में मस्जिद की डिमोलिशन पर फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है। ताजा स्थिति बता रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
4: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में जो कि जहांगीरपुरी से लगा हुआ इलाका है। यहां पर पिछले मई महीने से डिमोलिशन की ड्राइव चल रही है। दरअसल सड़क को चौड़ा करना, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो भी मकान आपको यहां दिखेंगे ये फ्रंट का पूरा हिस्सा आपको यहां पर टूटा हुआ नजर आएगा। दरअसल इस सड़क को चौड़ा किया जाना है, ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। बीच में आप ये देखेंगे जो ये सामने आपको इमारत नजर आएगी, दरअसल यहां पर एक मस्जिद है और जिस मस्जिद की ऊपरी दो फ्लोर को भी देखिए उसके लेंटर को भी तोड़ा गया है। दरअसल यहां पर यह बताया गया था कि मस्जिद का जो नक्शा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है और ऊपर के दो फ्लोर की मंजूरी नहीं थी जिसे बाद में बनाया गया था। इसको लेकर के सिविक एजेंसियों ने नोटिस जारी किया था लेकिन मस्जिद प्रशासन का कहना है कि 15 दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 नोटिस दिए गए, उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, कोर्ट में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करके आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया और सिविक एजेंसी ने बेहद जल्दबाजी में तीनों नोटिस जारी किया और उसके बाद पूरा फोर्स यहां पर बीती रात यहां पर पूरे इलाके में फोर्स लगाई गई और उसके बाद मस्जिद के जो ऊपरी दो फ्लोर हैं आप देखिए उनके लेंटर को यहां पर तोड़ा गया। हालांकि जो डेमोलिशन ड्राइव है अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में रोड के किनारे जो भी आगे की तरफ मकान बने हुए थे उन सबको यहां पर तोड़ा गया। आप देखिए दूर तक इसी तरीके के निशान है लेकिन जब मस्जिद के हिस्से को तोड़ना था तो उसके पहले इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है वो जहांगीरपुरी के भी बेहद करीब है, संवेदनशील इलाका है। ऐसे में इस कार्रवाई के पहले आप देखिए RPF CRP की यहां पर पूरी तैनाती की गई, इस पूरे रोड के ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो लोगों की मूवमेंट थी, जो आम लोग हैं वो कहीं पर एक साथ इकट्ठे ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया, लोगों को जुटने नहीं दिया गया। और इसके अलावा जो इलाके के लोग थे उनको ये पहले ही बता दिया गया था कि एक सरकारी कार्रवाई है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, इस वजह से यहां पर आके कोई हंगामा न करे। बहरहाल स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे इलाके की बढ़ाई गई है। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: वहीं बीती रात दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चला है। कुछ दिन पहले सहारनपुर में मस्जिद को गिराया गया था। मस्जिदों पर हो रहे ऐसे एक्शन को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने नाराजगी जता दी है और आज इसे लेकर कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई है। जमीयत ने मस्जिदों पर एक्शन और संविधान का उल्लंघन के आरोप को लेकर यह बैठक बुलाई है। इसमें मौजूदा हालात और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर जमीयत उलेमा हिंद मंथन करेगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में देश भर के कार्यकारिणी के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। और अब बात उड़ीसा से। बिहार के जमुई के बाद अब उड़ीसा के ढेंकानाल से ये तस्वीरें आई हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं, जहां पर एक महिला से छेड़खानी की शर्मनाक घटना हुई है। बीच सड़क पर एक महिला के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट की नौबत आखिरकार क्यों आई, ये सवाल उठ रहा है। 18 सितंबर की ये घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उड़ीसा में भी चिंता बढ़ा दी।
5: युवती गिड़गिड़ा रही है, भाई प्लीज, भाई प्लीज, लेकिन इंसान की वेश में इन दरिंदों को कोई रहम नहीं आ रहा है। ये विचलित कर देने वाला डरावना वीडियो उड़ीसा के ढेंकनाल और कपिलास को जोड़ने वाली सड़क का है। पीड़ित युवती अपने एक दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी, तभी उसे रोककर कुछ लोग उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। युवती की लगातार गुहार के बावजूद आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी। वारदात 18 सितंबर की है, लेकिन पुलिस को तब पता चला जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ढेंकनाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों ने कपल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसी के बाद स्थानीय लोगों और कपल के बीच तीखी बहस हुई। बाद में जब युवक युवती कपिलाश के मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे तो स्थानीय लोगों ने दोनों को घेर लिया। उड़ीसा की ये वारदात बिहार के जमुई में हुई वारदात से एक दिन पहले हुई। जमुई में 19 सितंबर को अपने दोस्त के साथ जा रही एक नाबालिग लड़की को रोककर इसी तरह छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। उड़ीसा की ये तस्वीर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे के बीच आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? अजय कुमार नाथ, ढेंकनाल आज तक।
3: और अब बात जमुई बदसलूकी मामले की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला बयान सामने आया है। दरअसल सीएम ने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उन्होंने अपराधी तत्वों को चेतावनी भी दी है कि पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो पुलिस जवाब देगी।
6: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
5: अपराधी का न जात देखेंगे न पात, पुलिस को अपराध चैलेंज करेगा तो मिलेगा पूरा जवाब। जमुई कांड पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की चुप्पी टूटने से पहले बिहार पुलिस नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर कर अपना जवाब दे चुकी थी।
0: पुलिस का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए चलता ये जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव है, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोपी नंदन के पैर में गोली लगी थी। नंदन यादव के साथ वारदात में एक और आरोपी हरे राम यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्यवाही में हरे राम यादव का पैर टूट गया।
7: अभी तक कल 3 व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे, आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
8: और लोग आरोपी है इसमें या फिर अज्ञात में छापेमारी?
7: अभी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे और पूछताछ अभी की जाएगी।
0: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच मुख्य आरोपी नंदन यादव के कई रील वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो खुद को दबंग अंदाज में पेश करता दिख रहा है। इस वीडियो को देखिए। बाइक की पिछली सीट पर मूछ पर ताव देता ये शख्स नंदन यादव है। नंदन यादव रेत खनन से भी जुड़ा था, वो बालू उठवाने का काम करता था, जिसका वीडियो रील भी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। बताया जाता है कि बालू खनन के दौरान नंदन यादव शराब पार्टी करता था, जिसका रील भी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया।
9: नंदन यादव, उसके पैर में गोली लगी है और ये वो है, तुमको शर्म नहीं है ये सब करते हुए?
10: भैया लोगो आ रहा है, प्लीज प्लीज
0: प्लीज। जमुई की वारदात से पूरे देश में आक्रोश है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमुई में प्रदर्शन कर उस आक्रोश को आवाज देने का काम किया। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस आक्रोश का ही नतीजा है कि जमुई विधिक संघ ने सभी अधिवक्ताओं से आरोपी के मामले में पैरवी नहीं करने की अपील की है।
11: मैं चाहता हूं कि मैं पूरे अनुसंधान को मदद करूं, पूरे ट्रायल को मदद करूं। मैंने इसके लिए जिलाधिकारी जमुई, SP जमुई और विधिवत कल जाके मैं DJ साहब से भी मिलूंगा। मैं अभियोजन को मदद करूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसे कुकृत करने वाले अभियुक्तों का बचाव करने नहीं जा रहा।
0: जमुई की वारदात बेहद डराने वाली है। जब भी ये वीडियो नजर आता है, संवेदना को पूरी तरह झकझोर देती है। आखिर ऐसी शर्मनाक वारदात का सिलसिला कब थमेगा? कब सुरक्षित होंगी बेटियां? जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ शशिभूषण, पटना आज तक।
3: शशिभूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशिभूषण, आखिरकार CM को यह कहना क्यों पड़ा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है? क्या इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया था कि आपने बाकी आरोपियों की पहचान छुपाई है, सिर्फ 2 आरोपी जो यादव हैं उनकी पहचान आप बता रहे हैं?
12: बिल्कुल, ये संभव है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरह से निशाना साध रहे थे और जिस तरह से हमला बोल रहे थे सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल कर रहे थे नेहा, एक तरह से मुख्यमंत्री ने उसी का जवाब भी दिया। लेकिन यहीं रुकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे हम चलते हैं। आपको याद होगा भरत तिवारी एनकाउंटर कांड, जिस कांड को लेकर के सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिसको फेक एनकाउंटर भी कहा गया। बाद में जो जांच आयोग है वो भी उसके लिए बनाना पड़ा सरकार को। उस पूरे मामले में भी सम्राट चौधरी की सरकार के ऊपर जो सवाल उठे थे उसमें एक सवर्णों ने गोलबंदी की थी, खासतौर पर भरत तिवारी जिस ब्राह्मण वर्ग से आते थे उस वर्ग की घेरेबंदी थी। तो एक मौका था सम्राट चौधरी के लिए जिसमें उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की इस पूरे जमुई कांड को लेकर के। लेकिन हाँ, सरकार के लिए राहत की बात या फिर सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं ये हो सकती है कि 48 घंटे के अंदर जो तमाम आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। 2 मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव, जिनका हाफ एनकाउंटर हुआ, जिनका इलाज इस वक्त जमुई के सदर अस्पताल में चल रहा है, उनको जैसे ही छुट्टी मिलती है अस्पताल से, पुलिस जो है वो आगे प्रे करेगी कैसे उनको रिमांड पे लिया जाए और कैसे इस पूरे मामले पर पूछताछ करके ये पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी कि क्या वाकई जो घटना घटी 19 सितंबर की शाम 2 नाबालिग लड़के और लड़की के साथ, उस पूरे मामले की कोई प्लानिंग की गई थी या फिर महज ये एक घटनाक्रम था जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो गए और ये 2 मुख्य आरोपी जो हैं वो भी इकट्ठा थे वहाँ पे। तो ये पुलिस के लिए एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन पुलिस जो जमुई की है या जो SIT बिहार पुलिस ने बनाई, उसने एक बड़ी सफलता पाई, जैसा कल दोपहर ही हमने देखा कि हाफ एनकाउंटर नंदन यादव का हुआ नेहा, और उसके साथ साथ हरेराम यादव जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है उसी मुठभेड़ के दौरान। जी
3: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो क्या देश का कोई ऐसा हिस्सा बचा है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिहार और उड़ीसा की घटना आपने देखी ली है, अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें मॉर्निंग वॉक से अपने घर लौट रही एक महिला का पीछा करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। यह घटना पास ही के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
13: सोशल मीडिया पे एक वीडियो प्रसारित हो रही थी, जिसका संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया। उस वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और टीमें लगा दी गई है उसकी पहचान हेतु। पहचान कर शीघ्र ही व्यक्ति की गिरफ्तारी कर आगे अधिक कार्रवाई की जाएगी।
3: और अब बात आईआईटी बॉम्बे में छात्र खुदकुशी मामले की करेंगे। इसमें छात्र साहिल वाकोडे के पिता रविंद्र वाकोडे ने धमकी दी है कि अगर प्रोफेसर डुल्ला और आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आईआईटी बॉम्बे के गेट पर धरना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल की मौत के बारे में परिवार को समय पर जानकारी ही नहीं दी गई। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे पर अहम सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया है। साहिल के पिता की पुलिस को यह चेतावनी है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वो आईआईटी मुंबई के गेट के बाहर धरना देंगे। आईआईटी बॉम्बे गेट पर धरना देने की चेतावनी साहिल के पिता द्वारा की गई है।
14: तपास में उन्होंने उनको अरेस्ट करने को होना, यही मेरी मांग है। अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष के डरे और डुल्ला ना श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए। बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी? वो खुलेआम घूम रहे, जब आप बोल रहे हैं एक तरफ उनकी चीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ आप माफी मांग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये सीसीटीवी फुटेज की चौकसी होने को होना
15: सर, आपने क्राइम ब्रांच को, सर आपने क्राइम ब्रांच को लेटर लिखा है?
14: बताया था ऊपर आरोप हो रहा करके उन्होंने बताया था। हो ये 13 तारीख को इसमें सब लिखा वाला है, इसमें सब लिखा वाला है। यही सब देख लीजिए सर।
15: आपसे क्या बातचीत हुई थी साहिल की आखिरी बार? क्या क्या चीजें उसे?
14: मैंने क्राइम ब्रांच को सब लेके जवाब दिया है, उन्होंने त्वरित जल्द से जल्द कार्रवाई चालू करने को होना, यही मेरी गुजारिश है। ओ ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो, मेरे से बोला उसने।
15: किसने बोला
14: प्रोफेसर? ओ प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो
16: डीन
14: है ना वो आका, उसने उसको नहीं नहीं वैसे कुछ स्पेशल सरकारी के वकील की मांग की है हमने, वकील साहब बोलेंगे उसके लिए। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है? सुसाइड नहीं, उसकी हत्या करो की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
3: दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, किस आधार पर पिता हत्या और टॉर्चर का आरोप लगा रहे हैं? क्या इसके भी कोई साक्ष्य मौजूद है उनके पास?
17: जी देखिए, जब से ये मामला उजागर हुआ है तब से साहिल के परिवार द्वारा ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था कैंपस के अंदर, उसे हरासमेंट की जा रही थी। और पिछले 3 महीनों से साहिल इसकी शिकायत कर रहा था और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास ऐसे कई सबूत हैं, कई तथ्य हैं जहां पर साहिल को हरास किया जा रहा है, उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये सिद्ध होते हैं। हालांकि कल भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मुंबई पुलिस को और मुंबई क्राइम ब्रांच को यही बताया कि साहिल द्वारा शिकायत की गई थी कि उसे हरास किया गया है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब इसकी पूरी तरीके से जांच करेगी कि जो आरोप परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितने तथ्य हैं। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो साहिल का लैपटॉप और उसके मोबाइल थे उनको सीज कर लिया है, अब उनकी गहन जांच कर रही है जिसके आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ेगी। हालांकि साहिल के परिवार और उनके पिता रविंद्र वाकोड़े का कहना है कि जो डीन है केदारे हैं उन्होंने साहिल की सुसाइड को छुपाने की कोशिश की, परिवार वालों को काफी देरी से बताया और साथ ही जो आईआईटी कैंपस है, जो आईआईटी फैकल्टी है, उन पर सबूत छुपाने और मिसगाइड करने के भी आरोप परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जो क्राइम ब्रांच को स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ अगर कोई सबूत परिवार द्वारा दिए गए हैं तो वो क्या है और क्राइम ब्रांच उन सबूतों के आधार पर उनकी जांच कहां पहुंचती है।
3: ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात फिल्मी सितारों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपील की। कल ही गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्मी सितारों से हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करने की अपील की है।
16: जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरे नहीं।
3: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

सनसनीखेज वारदात से दिल्ली यूपी का आजमगढ़ कमांडो ऑपरेशन में पत्नी बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर, चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर, एआईएमआईएम ने कहा यह सहारनपुर पार्ट टू है। यूपी में दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी तैयारी, कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग की दिल्ली में बैठक, लखनऊ में मायावती की राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग, रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष की पूजा अर्चना। दिसंबर में अमेरिका जा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। कार्तिक आर्यन को मिला नेशनल फिल्म पुरस्कार, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, मनोज मुंतशिर बने सर्वश्रेष्ठ गीतकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए अनंतनाग।

अमृतसर के खाद स्टोर में हथियारबंद तीन युवकों ने की तोड़फोड़, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को दिया अंजाम। अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। सुरेंद्रनगर में मंदिर से चांदी के 35 छात्र महिला ने किए चोरी, सीसीटीवी में आरोपी महिला कैद। असम के धेमाजी में चलती जेसीबी में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जालना में वाइस शॉप पर लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध चोर कैद हुआ। बिजनौर में बिजली चेकिंग करने गई टीम से मारपीट, जेई को घेर कर बंधक बनाने का आरोप, सामने आया घटना का वीडियो। उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, किच्छा विधायक, पूर्व विधायक, समर्थकों से भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, नकदी, सोना चांदी और मोबाइल फोन बरामद। हैदराबाद के थाने में वकील और पुलिस के बीच भिड़ंत, बेल को लेकर हुआ विवाद। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी भर्ती की पुरानी नियमावली की मांग पर बवाल, छात्रों और पुलिस में झड़प। एमपी के सागर में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी मनीष लोधी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, किया गिरफ्तार। मोतिहारी में एक पुलिसकर्मी पर बहन को सर्विस पिस्टल से गोली मारने का आरोप, बाद में पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली। किनारे के उदयपुर में शख्स को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, 9 टुकड़ों में मिला शव, पत्नी बेटा लापता। गौंडा में पुलिस मुठभेड़ में गौकृषि के आरोपी के पैर में लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। जलंधर में ड्रग्स मामले में 3 गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, नशीली गोलियां, 22,000 कैश बरामद। फजिलका में आप सरपंच पर फायरिंग, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में युवक ने दरोगा पर 18 घंटे हिरासत और 12,000 वसूली का आरोप लगाया, युवक का पत्नी से हुआ था विवाद। झांसी में बीए छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, 6 युवकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप, वीडियो वायरल करने की धमकी का लगाया आरोप, 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। करनाल में मजार को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा, स्थानीय लोगों ने खुद ही तोड़ दिया ढांचा। असम के बोकाखाट में बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां बरामद, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा में पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान, फांसी लगाने की सूचना पर तुरंत पहुंची डायल 112, पीआरवी से बचाई जान। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चल रहा है बुलडोजर, परिजनों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरपुर में 21 साल की युवती को बेलापस लाकर ले गया अधेड़, दुष्कर्म का लगा आरोप। रामगढ़ में सीमेंट लदे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक उपचालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया। आगजनी की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे 2 पुजारी समेत 4 लोग की हत्या करने वाले सन के आरोपी का एनकाउंटर। वारदात के बाद आरोपी ने अपने 3 बच्चों के साथ घर में अपने को कैद किया, सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सन के आरोपी ने अपने 10 साल के बेटे को मारी गोली, गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने फोर्स्ड एंट्री की। आरोपी के बाजार से घर पहुंचे आरोपी अरविंद सिंह से पंडितों के आधार कार्ड मांगना शुरू किया, इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, पत्नी से भी उसकी बहस हुई। दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच डिमोलिशन ड्राइव, मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इस रोड पर की जा चुकी है तोड़फोड़, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना से इलाके में सनसनी। वारदात के बाद से आरोपी फरार, पुलिस टीम मौके पर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश जारी। जमुई छेड़छाड़ मामले में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 19 सितंबर को इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5। जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्शन। मुठभेड़ में घायल आरोपी का जमुई सदर अस्पताल में इलाज जारी, अधिकारियों ने लोगों से नाबालिग से जुड़े वीडियो को शेयर न करने की अपील की। जमुई कांड पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त, बोले अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कानून को चुनौती देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, बिहार में गुंडा राज कायम है, सीएम के इस्तीफे की मांग की। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। आईटी बॉम्बे सुसाइड केस, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को बॉम्बे आईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेजा, मैनेजमेंट 10 मेंबर के पैनल का गठन किया, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगा पैनल। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन किया है।
मृतक साहिल के पिता ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी, अगर दुल्ला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठेंगे। SC ST Act की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप। सीएम योगी आज लखनऊ में भारत टैक्सी योजना का शुभारंभ करेंगे। कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल की भी लॉन्चिंग की जाएगी। बीजेपी के पश्चिमी यूपी में संगठन के भीतर उठे सवाल, पूर्व पदाधिकारियों ने संगठन में सिफारिशी चेहरों को तवज्जो दिए जाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जारी। कांग्रेस प्रवक्ता असीम वकार का SP सांसद इकरा हसन पर पलटवार, कहा वो भूल गई है कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो सांसद नहीं बन सकती। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल का बड़ा दावा, यूपी में 35 विधानसभा सीटों पर मांगा गठबंधन में हिस्सा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बड़ा बयान, कहा 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहता। कालका झील में नाबालिग से हुए हैवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुकुंदपुर में ATM से बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। TMC का आरोप है कि इसके कई कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बदसलूकी की गई, बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया। TMC ने आरोप लगाया कि महिला कार्यकर्ताओं जिनमें युवा नेता उपासना चौधरी शामिल थी, उन पर अंडे फेंके गए, नशे में धुत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता ने TMC के आरोपों को झूठ बताया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जुलूस के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पकड़कर पीटा गया। घटना को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कहा हिंसा को राजनीति की भाषा नहीं बनना चाहिए। नक्सल के बाद नशा मुक्त अभियान में जुटे होम मिनिस्टर, ANTF के तीसरे सम्मेलन में कहा 2029 तक खत्म कर देंगे नशे का कारोबार। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, PM करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं मिली राहत, अब 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में 6 आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने जमानत अर्जियां खारिज की, 8 आरोपी गिरफ्तार। बैंक यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, 28 सितंबर से 3 दिन तक काम बंद, 5 दिन की बैंकिंग पेंशन में सुधार की मांग पर सरकार से बातचीत बेनतीजा। VHU मंदिर में नए CEO सत्यम मिश्रा ने संभाला कार्यभार, श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने और सुविधाएं बेहतर करने पर फोकस। मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी, इसमें NDRF SDRF पुलिस जिला प्रशासन और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तीस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा, वन कर्मियों और मछुआरों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया। एशियन गेम 2026 में भारत हॉकी टीम को बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक रहा है जबरदस्त, दोनों मैचेस में 8-8 खिलाड़ियों ने किए हैं गोल। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड, तमिल फिल्म रायन को मिला तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार, वहीं फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान। हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए विजय गांगुली को 72वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड्स, फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। फिल्म मैदान के गाने जाने 2 के लिए मनोज बिंदेश्वर को मिला बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवार्ड, दूसरी बार हासिल किया राष्ट्रीय सम्मान। हैदराबाद में ब्लड बैंक से जुड़े आरोपों पर अभिनेता चिरंजीवी का पलटवार, का खून बेचकर पैसा नहीं कमाता, अपनी मेहनत की कमाई से ब्लड बैंक चला रहा हूं। ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली दूसरी फिल्म, से पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली थी। अप्रैल से शुरू होगी 3 इडियट्स की सीक्वल शूटिंग, फिल्म ललकारा के बाद काम शुरू करेंगे आमिर खान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया, कहा संयुक्त राष्ट्र में आना सम्मान की बात। ट्रंप ने अपने UNGA संबोधन में ईरान पर तीखा हमला बोला, उन्होंने ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला नंबर 1 देश बताया। ट्रंप ने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 51 सालों से ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने खून खराबे और हत्याओं के जरिए शासन किया।
संबोधन के दौरान ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी, बोले कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज अमेरिका दौरा, 23 से 25 सितंबर के बीच अमेरिका में रहेंगे जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात कही। रूस और यूक्रेन में आरपार की जंग जारी, यूक्रेन ने रूस की समारा और उफा ऑयल रिफाइनरी पर किया हमला। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात, सर्दियों में ऊर्जा संकट और रूस के साथ जंग को लेकर चर्चा। रूसी उप विदेश मंत्री को अमेरिकी वीजा न मिलने पर रूस ने जताया कड़ा विरोध, क्रेमलिन ने कहा अमेरिकी वीजा न देना अमित्रतापूर्ण कृत्य है। अमेरिका तनाव के बीच न्यूयॉर्क रवाना हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेंगे हिस्सा। यूएन में भाषण से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को कड़ी निंदा की, नेतन्याहू ने ममदानी पर हमास का समर्थन और यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगाया। ग्रीनलैंड में दो नए बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका, यूएन महासभा में समझौते के बाद बढ़ेगी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। यमन में ताइज प्रांत में सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमानों ने हूती ठिकानों पर बरसाए बम, 6 की मौत 8 घायल। तुर्की के पश्चिमी प्रांत मनीसा में स्कूल में गोलीबारी से हड़कंप, हमले में 11 छात्र घायल, 2 की हालत गंभीर। और बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना। साथ ही ट्रंप ने सभी देशों से अपील की कि वो ईरान को पूरी तरह से आर्थिक रूप से अलग थलग करने में अमेरिका

0: of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: और इस बीच बड़ी खबर ईरान के राष्ट्रपति की, जो आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज संबोधित करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं। अमेरिका ने उन्हें भी यूएन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी है। जहां एक तरफ पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक ही शहर में होंगे, लेकिन फिलहाल दोनों की बैठक तय नहीं। नौ बज गए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: Oh, abhi to theek hua tu. Oh, abhi jo the charge hua yaar. Oh, bank kiska hai? Tata AIG hai. To bharosa hai. Yaar loan bhool gaya. Mary, Suggest a good bank na. Ujjivan Small Finance Bank. Small? Working capital loan, home loan, loan against property, micromortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan. There's nothing small about it. Ujjivan, nothing small about us.
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
14: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. Beautiful.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। पहली बात पुलिस जांच। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RBI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। तीन दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था। साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र की खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC ST एक्ट लगाने का है। साहिल के रिश्तेदारों से लेकर दलित राजनीति करने वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बड़े कैंपस में दलित ही क्यों मर रहे हैं, जबकि कैंपस के छात्र कहते हैं कि जातीय भेदभाव के आरोप गलत है।
6: मैं चाहते कि अभी तक जितने बच्चे मरे वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बच्चे मरे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ में क्यों हो रहा है, ये जातिगत पड़ताड़ना नहीं तो क्या होता है।
7: बहुत ही अनफॉर्चुनेट, लाइक हमारा एक साथी, हमारा छोटा भाई चला गया, पर जो प्रोटेस्ट प्रोफेसर के अगेंस्ट हो रहा है वो इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
5: जाहिर तौर पर साहिल की खुदकुशी ने दो बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें एक है कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 IIT और 15 नए IIT मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असमय मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। IIT खड़गपुर में 29, IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 21, IIT दिल्ली में 17, IIT बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि IITs, IIMs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक SC ST OBC स्टूडेंट थे। IIT बॉम्बे के अंदर ही सुसाइड करने वाले छात्र दर्शन के पिता कहते हैं कि कैंपस में भेदभाव तो होता है। हालांकि कैंपस में खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो कहती है कि IITs में ग्रेड रैंक प्लेसमेंट सफलता की गारंटी हो गए हैं। वाइब चेक कल्चर में कमजोर स्टूडेंट आइसोलेट हो रहे हैं। क्लासरूम में SC ST OBC स्टूडेंट 60% हैं, लेकिन 56% फैकल्टी अगड़ी जाति के, 7.57% SC और 1.91% ST फैकल्टी हैं। देश के 65% उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। 23 IIT सहित 31 केंद्रीय संस्थानों में स्टूडेंट के तनाव की समय रहते स्क्रीनिंग की सक्रिय व्यवस्था नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट में 75% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 24 साल से पहले शुरू हो जाती है। नतीजा गलाकाट कॉम्पिटिशन के दौर में खुद को पिछड़ता देखकर या माता पिता परिवार समाज के दबाव के कारण स्टूडेंट खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश से मुंबई आज तक।
8: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है अपनी आंखों।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: खूनी रात और सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में देर रात एमसीडी का बड़ा एक्शन। सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद और घरों पर चला बुलडोजर। एआईएमआईएम ने कहा ये सहारनपुर पार्ट टू है। यूपी में दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी तैयारी। कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग की दिल्ली में बैठक। लखनऊ में मायावती की राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग। रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष की पूजा। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। बॉलीवुड सुपरस्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील। कहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन न करें लोकप्रिय कलाकार। स्टार वही जो रोशनी फैलाए अंधेरा नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। अभी जमुई कांड की चीख दबी भी नहीं थी कि ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें उड़ीसा से भी आ रही हैं। आखिर समाज को हो क्या गया है? बात हम चांद की करते हैं और इस धरती पर महिलाएं खुलकर नहीं चल पा रही हैं। आज सुबह में इस दहलाने वाली वारदातों की पड़ताल तो करेंगे ही, साथ ही बात होगी यूपी के आजमगढ़ की, जहां एक घर में बीती रात मर्डर किडनैपिंग से एनकाउंटर तक हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई है। हम इस डराने वाली वारदात की तह तक जाएंगे, बताएंगे कि मामला कहीं तंत्र मंत्र का तो नहीं था। बात होगी जमुई की हैवानियत पर, जाति की, सियासत की, और ले चलेंगे उस चिंतन शिविर में जहां 2 दिन तक मोदी के मंत्री अलग अलग ग्रुप बनाकर विकसित भारत पर चर्चा करेंगे। तो इस सब पर बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आजमगढ़ की खौफनाक वारदात से, जहां गोलियां भले ही थम गई हों लेकिन सवाल अब भी कई है। शंभूपुर गांव में आखिर वो कौन सा तनाव था जो एक घर की चार दीवारी के भीतर देखते ही देखते मौत का तांडव बन गया? सबसे पहले पत्नी और 2 पुजारियों की हत्या की गई, फिर 3 मासूमों को लेकर आरोपी कमरे में बंद हो गया और करीब 8 घंटे तक पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्चों की जान आखिर कैसे बचाई जाए। पुलिस लगातार आरोपी को समझाती रही, सरेंडर के लिए बातचीत होती रही, लेकिन हालात तब अचानक बिगड़ गए जब कमरे के अंदर से गोली चली। आरोपी ने अपनी ही बेटे को गोली मार दी। इसके बाद कमांडो टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। स्टन ग्रेनेड और टियर गैस के इस्तेमाल के बाद टीम कमरे के अंदर दाखिल हुई और जवाबी फायरिंग में आरोपी यानी कि अरविंद घायल हुआ। बाद में उसकी मौत हो गई। घायल बेटे ने भी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तो आजमगढ़ कांड में अंधविश्वास और भूत प्रेत एंगल की भी अब एंट्री हो गई है। परिजनों के मुताबिक परिवार में कई साल पुराने तनाव और एक पुराने हत्याकांड की छाया थी। इसके बाद घर में पूजा पाठ कराया जा रहा था। सवाल ये भी है कि एक परिवार के भीतर ऐसा क्या चल रहा था जिसने पूजा के बीच शुरू हुए विवाद को 5 जिंदगियां खत्म होने तक पहुंचा दिया।
1: चार हत्या और एक एनकाउंटर से आजमगढ़ में हड़कंप। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी और 2 पुजारियों को मार डाला, फिर अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे को बनाया बंधक। बंधक बनाकर आरोपी ने फायरिंग की और अपने जिगर के टुकड़े की जान ले ली। आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया 4 हत्याओं का आरोपी। हत्या, बंधक और एनकाउंटर की ये खौफनाक वारदात हुई है आजमगढ़ में। शंभूपुर गांव में मंगलवार की शाम ही ऐसी वारदात हुई जिससे हर कोई सन्न है। 4 हत्या और 1 एनकाउंटर की वजह क्या है? क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला? क्यों 2 पुजारियों की जान ले ली? बताया जा रहा है कि अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है। उसी खतरे को टालने के लिए परिवार में पूजा पाठ कराया जा रहा था। अरविंद इस पूजा के खिलाफ था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम अरविंद सिंह बाहर से अपने घर लौटा। वो अपने घर में पूजा पाठ देख कर बौखला गया। तुरंत पंडितों से आधार कार्ड मांगा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी पिस्तौल से 2 पंडितों को गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अरविंद ने पत्नी की भी हत्या कर दी, फिर अपने 3 बच्चों को घर में ही बंधक बना लिया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो स्पेशल कमांडो टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। करीब 8 घंटे तक आरोपी बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इस बीच आरोपी ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तब पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड और टियर गैस का इस्तेमाल कर घर में एंट्री ली। पुलिस के अंदर दाखिल होते ही आरोपी अरविंद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरविंद सिंह भी घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल बेटे की मौत हो गई। आरोपी अरविंद की भी जान चली गई।
2: पुलिस ने उसको चेतावनी दी और हवा में फायरिंग करने के बावजूद जब उसने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित।
1: फिलहाल आरोपी की घायल बच्ची और उसके बड़ी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस खौफनाक हत्याकांड की जांच में जुट गई है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़, आज तक।
0: और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का, जो इस वक्त आजमगढ़ में ही मौजूद है। संतोष, वारदात तो अजीब है ही, लेकिन इसके आसपास की परिस्थितियां भी बहुत अजीब है। परिवार में पहले भी हत्या हो चुकी थी भाई की, इसके साथ ही परिवार में लाइसेंसी पिस्तौल भी थी। आखिर ये सब क्यों इस परिवार में हो रहा था, अगर ये आम परिवार था?
3: अंजलि, मैं तस्वीरों से दिखाता हूं उस गांव में जहां पर 5 लोगों की जान चली गई, हत्या कर दी गई। गांव में पुलिस का साया है। मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूं। ये गांव शंभूपुर का ही दूसरा इलाका है जहां पर पुरोहित अरविंद पाठक का परिवार रहता है। अरविंद पाठक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीढ़ियों से परिवार अरविंद सिंह, जिसने गोली मारी, उनके परिवार की पुरोहिती करते आए हैं और परिवार में सुख शांति पूजा पाठ के लिए कर रहे थे। इसी बीच में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बात अगर करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अरविंद ने जिस तरीके से पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर पूजा पाठ कराने आए महेंद्र पाठक, उनके जो मौसेरे भाई वो पूजा कराने आए थे, उनको गोली मार दी, और जिसके बाद फिर उसने अपने 3 बच्चों को बंधक बनाया। 3 बच्चों को बंधक बनाने के बाद अपने बड़े बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घर के अंदर से जब गोली चलने की आवाज आई तो पुलिस ने फोर्स एंट्री की और एनकाउंटर में अरविंद भी मारा गया। 5 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में डर, खौफ और एक तरीके से मातम है। मातम उस परिवार में भी जहां कोई नहीं बचा है,
0: और
3: मातम इस परिवार में भी जहां से पीढ़ियों से लोग उस परिवार की सुख शांति के लिए पूजा पाठ करते
0: हैं। जी संतोष, मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात एक और झकझोरने वाली खबर की। जमुई की हैवानियत वाली तस्वीरें अभी समाज को कोस ही रहा है, और ऐसा तस्वीर, एक और जो ऐसी तस्वीर है, वो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी सामने आ गई है। वहां भी कुछ हैवान वहशी बन गए हैं। नेनकनाल में 3 दरिंदों ने एक महिला के साथ छेड़खानी और बदसलूकी की। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बिहार में जमुई की दरिंदगी पर एक्शन को लेकर जाति एंगल भी अब सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने जाति विशेष की पहचान बताकर एक्शन का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी पुलिस को जब कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस पीछे नहीं हटेगी।
4: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं सच, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है, और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: तो कल ही तेजस्वी यादव ने जाति विशेष की पहचान बताकर एक्शन पर सवाल किया था। उन्होंने ऐसी वारदात पर पुलिस ही नहीं, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। आइए आपको बता देते क्या कहा उन्होंने। हर कांड में जाति खोजने वाले बिहार के जाति विशेषज्ञ सह 7 हत्याओं के आरोपी सीएम को ज्ञात नहीं है कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी बताएं कि जब जमुई के एसपी ने आधिकारिक रूप से कहा कि लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले 6-7 लड़के थे, तो बाकी आरोपियों की को इसलिए छोड़ दिया गया कि वो फिर अपराध करें। ये सवाल पूछा उन्होंने, कहा शेष आरोपियों की पहचान उजागर करने में किसका डर है। साथ ही उन्होंने पूछा कि जमुई जैसे कांड प्रतिदिन हर एक जिले में हो रहे हैं, उन दोषियों को सजा कौन देगा? कोई मामला चर्चित होने के बाद ही क्या पुलिस प्रतिक्रिया करती है?
5: पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है, चाहे दिन हो रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो और या अस्पताल हो। आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
0: हमारे सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शशि, मामला तो महिला से बदसुलूकी का था, एक लड़की के ऊपर अपराध का था, तो फिर जाति इसमें कैसे घुस गई है?
6: देखिए, बिहार में राजनीति हो या अपराध हो, जाति की चर्चा जरूर होती है अंजलि, और यही वजह है कि जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहस छिड़ी, जो घटना हुई जमुई में और उसके बाद सरकार के गुड गवर्नेंस या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर के दावे किए जाते हैं उसको लेकर के विरोधियों ने घेरना शुरू किया, तो मामला अब धीरे धीरे यहां तक जा पहुंचा है। भले ही जमुई कांड के जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, हाफ एनकाउंटर उनका हुआ, जो तमाम आरोपियों तक पहुंचने के पुलिस दावे कर रही है, उसके बीच तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जो जमुई के एसपी हैं वो पहले 6-7 अपराधियों के या आरोपियों के शामिल होने की बात कर रहे थे, तो केवल 5 तक ही मामला क्यों सीमित रह गया? क्या दूसरे लोग जो हैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहती है पुलिस? इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने घेरेबंदी की है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने भी कल अपनी तरफ से एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और उनकी सरकार इसे देख करके काम नहीं करती है। मतलब एक तरफ वार है तो दूसरी तरफ से पलटवार भी है। हाँ, सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति यह है अंजलि कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरे अन्य जो नाबालिग आरोपी हैं वो भी पुलिस की हिरासत में हैं, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी कि कैसे ये पूरा मामला हुआ।
0: जी बिल्कुल, और मामला यही रहना चाहिए, फोकस यही रहना चाहिए कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन बात यहां पर हम महिला सुरक्षा की करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि सियासतदान इस पर भी एक साथ नहीं है।
7: यह छुटपुट घटना है, आपके घर के बच्ची के साथ ऐसा हो तो आप कहेंगे इसको छुटपुट घटना है। यह मानसिकता बताता है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, क्या कोई कानून है? अरे आप थाने में जाइए तो पहले आपका धर्म पूछते हैं, मजहब पूछते हैं, पार्टी पूछते हैं, रेप तो साइड में चला जाता है, एक्यूज तो साइड में चला जाता है। जिस तरह की सिचुएशन है, मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल जंगल राज है, और उसका महत्वपूर्ण कारण है कि जब आप नेता चुनते हैं आप तो नेता ही आधे से ज्यादा ऐसा चुनते हैं जिनका ना कोई करेक्टर है ना चरित्र है, वो किस टाइप के इंसान है आप उनको देखते ही नहीं है।
8: विरोधी जो भी सवाल पूछ रहे हैं मुझे पता है कि वो इस घटना को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कार्रवाई से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनको कार्रवाई से मतलब होती तो बिहार सरकार के पुलिस की आज तारीफ कर रहे होते, क्योंकि 48 घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जितने आरोपी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया है। मगर उनकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो सुशासन की सरकार को मानना पड़ेगा। ऐसे में अपराधी जो विपक्षी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने के हर मौके को तलाशेंगे। फिलहाल आज के दिन जरूरत यह है कि किस तरह से हम इन अपराधियों पर सही मुकदमे, कठोर धाराएं लगा करके कानून के तहत इन्हें कठोर सजा दिलवाने का काम करें। इनके जो भी टिप्पणियां की गई हैं, जो इनके स्टेटमेंट्स आए हैं, उन पर जवाब हम लोग बाद में देंगे।
0: उधर बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने तो मॉरल पुलिसिंग की बात की तो सियासी घमासान शुरू हो गया।
9: Social elements are exactly what they are, unfortunately, and they live in this society. So just, I don't know where they get this power to think that they are moral. And moral policing can be one, on one hand, it can be done in a more decent and an elegant fashion. But the way that they mishandled, mistreated the boy and the girl together is absolutely not... It's not tolerable.
10: आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? रोपोगे बबूल, खाओगे खजूर? गोबर पर जितना घी डालोगे महक गोबर की ही आएगी। और ऐसे बयान देने वाले, बेटी किसी जात का हो, किसी धर्म और मजहब का हो, यदि बेटी के बारे में कोई इस तरह का प्रयोग करता है उसकी सदस्यता जानी चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए।
0: और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के शालीमार गांव में कल एमसीडी का बुलडोजर एक्शन हुआ है। देर रात सड़क को चौड़ी करने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मदीना मस्जिद और आसपास के अवैध निर्माणों को ढाया गया। इस कार्रवाई का विरोध करने एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने इसे सहारन पार्ट टू तक बता दिया।

0: दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की यह तस्वीर शालीमार इलाके की है। तस्वीरें देखिए, शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली सड़क पर मदीना मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर पीले पंजे का एक्शन जारी है। देर रात ये कार्यवाही सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई। वैसे सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इस रोड पर तोड़क कार्यवाही हो चुकी है।
1: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में रात के अंधेरे में एक बार फिर से पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मदीना मस्जिद है और मदीना मस्जिद के साथ साथ जो आसपास के घर हैं वहां पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। जहां पर आपको वो दो लाइट जलती हुई दिखाई रही है, यही मदीना मस्जिद है जिस पर रात के अंधेरे में डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो आसपास के घर हैं उन पर भी डेमोलिशन किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि ये वही रोड है, मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड, जहां पर आज से करीब डेढ़ महीने पहले भी डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। करीब 150 के आसपास जो घर हैं उनको डेमोलिश किया गया था और सड़क चौड़ीकरण के लिए ये जो डेमोलिशन है वो की जा रही है।
0: कल रात जब मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जब मस्जिद में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया।
2: भाई हमें यहाँ से आप जाने तो दीजिए, अपने लोगों से तो मिलने दीजिए ना। नहीं, अरे लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है सर, ये बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है? वो परेशान है, कहाँ बुलवा लिया।
1: देखिए यहाँ शोएब जमाई जो की AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अंदर जाना चाहते हैं जहां पर डेमोलिशन की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उनको भी यहां पर पुलिस ने रोक दिया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल जो शोएब जमाई यहां पहुंचे उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से इस डेमोलिशन की कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया जा रहा है।
0: जमाई ने दिल्ली में मदीना मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन को सहारनपुर पार्ट 2 बताया।
2: कुछ नहीं, इसी बात का तो विरोध है कि आप कुरान निकालने की मोहनत नहीं दे रहे, आप जानेमाज़ निकालने की। दिस इज सहारनपुर पार्ट 2। ये सहारनपुर में जिस तरीके से डीएम ने किया वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है, ये राजधानी है, वाइब्रेंट यहाँ लोकतंत्र है।
0: डिमोलिशन एक्शन के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे, लिहाजा सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। लेकिन जिस तरह से रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस पर दिल्ली की सियासत में हंगामा तय है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: मस्जिद के डेमोलिशन पर फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है, ताजा स्थिति बता रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
4: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में, जो कि जहांगीरपुरी से लगा हुआ इलाका है। यहां पर पिछले मई महीने से डिमोलिशन की ड्राइव चल रही है। दरअसल सड़क को चौड़ा करना, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो भी मकान आपको यहां दिखेंगे ये फ्रंट का पूरा हिस्सा आपको यहां पर टूटा हुआ नजर आएगा। दरअसल इस सड़क को चौड़ा किया जाना है, ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। बीच में आप ये देखेंगे जो ये सामने आपको इमारत नजर आएगी, दरअसल यहां पर एक मस्जिद है और जिस मस्जिद की ऊपरी दो फ्लोर को भी देखिए, उसके लेंटर को भी तोड़ा गया है। दरअसल यहां पर यह बताया गया था कि मस्जिद का जो पूरे जो नक्शा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है और ऊपर के दो फ्लोर की मंजूरी नहीं थी, जिसे बाद में बनाया गया था। इसको लेकर के सिविक एजेंसियों ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद प्रशासन का कहना है कि 15 दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 नोटिस दिए गए, उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, कोर्ट में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करके आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया और सिविक एजेंसी ने बेहद जल्दबाजी में तीनों नोटिस जारी किए और उसके बाद पूरा फोर्स यहां पर बीती रात यहां पर पूरे इलाके में फोर्स लगाई गई और उसके बाद मस्जिद के जो ऊपरी दो फ्लोर हैं आप देखिए उनके लेंटर को यहां पर तोड़ा गया। हालांकि जो डेमोलिशन ड्राइव है अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में रोड के किनारे जो भी आगे की तरफ मकान बने हुए थे उन सबको यहां पर तोड़ा गया। आप देखिए दूर तक इसी तरीके के निशान है, लेकिन जब मस्जिद के हिस्से को तोड़ना था तो उसके पहले इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई।
3: और अब खबरें सरकार और सियासत की। आज से दिल्ली में सरकार का 2 दिन का बड़ा चिंतन मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 और 24 सितंबर को चिंतन बैठक होगी और इस बैठक का मंच होगा सेवा तीर्थ, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थित है। इस बैठक में पूरा केंद्रीय मंत्री परिषद शामिल रहेगा, यानी सरकार के सभी मंत्री एक मंच पर होंगे और फोकस होगा विकसित भारत एक्ट 2047। इसके लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे की रणनीति पर चिंतन होगा। दरअसल सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मंत्रियों की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में अब तक सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी, नीतियों के अमल की स्थिति पर भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस बैठक की अहमियत को थोड़ा समझाएं।
5: देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है वो 2047 में भारत को जो है वो विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए ये जो है दो दिन का चिंतन शिविर जो है वो रखा है सभी मंत्रियों का, जिसमें सभी विभागों के सेक्रेटरी भी रहेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मंत्री रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, किसमें क्या कौन सीनियर मंत्री जो है उन ग्रुपों को लीड करने वाले हैं, और वहां समीक्षा की जाएगी कि विकास कार्य कहाँ पर रुके हुए हैं और कितने हुए हैं, क्या फीडबैक है किस योजना का, कौन सी नई योजना बनाई जा सकती है, कौन सी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर सरकार को और आगे किस तरीके के इनिशिएटिव लेने हैं, क्या किस तरीके से जो भारत की अर्थव्यवस्था को जो है और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार के कदम होंगे। ये दो दिन का जो चिंतन शिविर है इसके अंदर यही मंथन रहने वाला
3: है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी में 2027 की चुनावी बिसात अब साफ तौर पर गर्म होती हुई दिख रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर विपक्षी दलों तक आज कई मोर्चों पर सियासी हलचल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ और गोरखपुर में आज उन कार्यक्रम है। लखनऊ में भारत टैक्सी लॉन्च है और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की भी शुरुआत होनी है। किसानों के लिए 6 लाख रुपए तक के कर्ज और समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है। गोरखपुर में महिला आश्रय गृह के उद्घाटन के साथ कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: आगे आगे।
9: अरे उधर।
8: करेक्ट करेक्ट।
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट फुटी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।
13: Maddie, I need to open a savings account.
14: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
13: स्मॉल बैंक?
14: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
13: Okay.
14: Ujjivan, nothing small about us.
15: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
17: इन एसोसिएशन विद
18: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

खूनी रात और सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। आईआईटी सुसाइड केस में डीन पद से हटाए जाने के बाद अब छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर डुल्ला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। पीड़ित पिता बोले, गिरफ्तारी हो वरना धरना दूंगा। यूपी में दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी तैयारी। कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग की दिल्ली में है बैठक। लखनऊ में मायावती की राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग। रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष की पूजा। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। बॉलीवुड सुपरस्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील। कहा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन न करें। लोकप्रिय कलाकार स्टार वही जो रोशनी फैलाए अंधेरा नहीं।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं आईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकुड़े के खुदकुशी के मामले की, जिसके बाद से मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और साहिल की खुदकुशी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ साहिल के पिता और उनकी माता ने न्याय की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच तेज कर दी है। इसके अलावा आईटी बॉम्बे ने भी इस मामले में 10 मेंबर का पैनल बनाकर एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। तो इस केस को लेकर आईटी बॉम्बे ने एक्शन लेते हुए प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को अब छुट्टी पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आ रही है। आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने इस मामले की जांच के लिए एक 10 मेंबर का पैनल भी बनाया है, जो एक हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपेगा। वहीं इससे पहले आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को प्रशासनिक मामले में डीन के पद से हटा दिया गया था और अब उन्हें छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी, जो कि इस वक्त आईटी बॉम्बे के बाहर ही मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ये बताएं कि जो कार्रवाई की गई, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो पैरेलल जांच इस वक्त चल रही है, उसमें शामिल होंगे प्रोफेसर दुल्ला? चलिए हम दीपेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक और बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी हुई है वो बता दे। इस केस को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो ये कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को समन भी भेज दिया है। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला से आज क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है। इससे पहले कल क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता और उनकी माता के बयान भी रिकॉर्ड किए थे। तो आपको बता दें कि इस मामले की जांच अलग अलग स्तर पर चल रही है। एक तरफ कॉलेज की तरफ से अपना पैनल बनाया गया है जो अपनी जांच रिपोर्ट इस मामले में सौंपेगा। दूसरी तरफ यहां पुलिस की क्राइम ब्रांच की भी जांच चल रही है, जिसने अब प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को समन भेजा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। आरोप बहुत संगीन लगाए गए हैं माता पिता की तरफ से, जिन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया है पुलिस के साथ, और ऐसे में पुलिस पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जांच गहन करे। और इसी वजह से क्राइम ब्रांच ने अब प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को समन भेजा है, उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें जाहिर तौर पर किसी तरह के अगर आपराधिक मामले हैं तो उन पर जांच की जाएगी। आईटी जैसे संस्थान के एक ब्राइट स्टूडेंट की दुखद मौत की वजहों पर चर्चा हो रही है। दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो इतने प्रतिष्ठित कैंपस में सुसाइड और स्टूडेंट्स पर बढ़ रहे दबाव की चर्चा है, और दूसरी दलित उत्पीड़न की भी चर्चा है। तीन दिनों से शोर शराबा इसलिए ज्यादा है क्योंकि राजनीतिक दलों को इसमें दलित उत्पीड़न का भी एंगल दिखता है, और मुंबई पुलिस ने फैकल्टी प्रोफेसर दुल्ला पर SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि फैकल्टी फोरम प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में खड़ा है।
1: साहिल की खुदकुशी को लेकर सवालों में आईटी बॉम्बे, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच तेज की। आईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडी की खुदकुशी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। आईटी बॉम्बे ने साहिल के सुसाइड की जांच को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए 10 मेंबर का पैनल बनाया और पूरे मामले की जांच करने को कहा, साथ ही एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही। जहां एक तरफ आईटी बॉम्बे एक्शन में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को पूछताछ के लिए समन किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोडे के माता पिता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, साथ ही आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में भी जांच तेज की। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली है, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर दुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के बाद प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। साहिल की खुदकुशी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 IIT और 15 नए IIT मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असमय मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। IIT खड़गपुर में 29, IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 21, IIT दिल्ली में 17, IIT बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि IIT IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक SC ST OBC स्टूडेंट थे। जहां एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच साहिल सुसाइड मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ साहिल के माता पिता ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी।
2: जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके और जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण दुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है सबसे।
1: साहिल की मां ने खुदकुशी को लेकर IIT बॉम्बे पर सवाल खड़े करते हुए न्याय की मांग की।
3: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। मैं आपको सभी से यही गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय दीजिए। उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं?
1: तो साफ है कि साहिल की खुदकुशी के बाद IIT जैसे जाने माने संस्थानों पर सवाल उठने लगे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: आइए अब सीधा रुक करते हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी का, जो IIT बॉम्बे के पास ही मौजूद है। दीपेश, जो प्रोफेसर है जिन पे आरोप लग रहे हैं प्रोफेसर दुल्ला, उन्हें छुट्टी पर अब भेज दिया गया है, क्या कोशिश है प्रशासन की तरफ से वहां पर IIT के इसके जरिए?
4: अंजलि, बिल्कुल, देखिए लगातार जो छात्रों का एक वर्ग था वो मांग कर रहा था कि प्रोफेसर दुल्ला पर सख्त कार्रवाई की जाए। जब ये पता चला था कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनको सिर्फ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी थी उनसे रिलीव किया गया ताकि इंक्वायरी हो सके पूरी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। लेकिन अब प्रोफेसर दुल्ला को जो है वो छुट्टी पर भेज दिया गया है और एक 10 सदस्य कमेटी की स्थापना की गई है जो आने वाले 7 दिनों के भीतर एक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। IIT पवई फैकल्टी द्वारा एक खुद की कमेटी बनाई गई है। दूसरी एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच कर ही रहा है, लेकिन क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, अपने लेवल पे और अपने स्तर पर जांच करने की कोशिश जो है वो IIT पवई द्वारा की जा रही है और इसीलिए 10 सदस्यों की कमेटी की स्थापना की गई है जो आने वाले 7 दिनों में अपनी फाइंडिंग्स और अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी, जिसके आधार पर यह भी पता लगाया जा सकेगा कि क्या हुआ था। कमेटी उन छात्रों से भी पूछताछ करेगी, उन छात्रों से भी बात करेगी, प्रोफेसर दुल्ला से बात करेगी, साथ ही जो अन्य लोग थे मौजूद या जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात करेगी और उन्हीं के आधार पर अपनी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग जो है वो देने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। अंजलि
0: चिदपेश, जो क्राइम ब्रांच की जांच है वो किस तरफ बढ़ रही है?
4: अंजलि, बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस से इस जांच को जो है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया गया था ताकि इस पूरे मामले की और गंभीरता से और डिटेल में जांच हो सके, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले तो जो कैंपस के CCTV थे उनको अपने कब्जे में लिया ताकि वो टाइमलाइन एस्टेब्लिश कर सके, उनको पता चल सके कि उस दिन साहिल के साथ हुआ क्या था, किससे मिला था, क्या बातें हुई थी और क्या पूरा घटनाक्रम था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अब जो है वो कल साहिल के पिता का बयान रिकॉर्ड किया, जिन्होंने कई आरोप लगाए कॉलेज फैकल्टी पर, पवई IIT फैकल्टी पर डिस्क्रिमिनेशन हो और साथ ही कास्ट बायस जो ताने हैं उनके आरोप हैं, वो कई तरह के आरोप साहिल के परिवार द्वारा लगाए गए। कल अपने स्टेटमेंट में उन्होंने यही बात दोहराई और साथ ही पिछले 3 महीनों से साहिल को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था, साहिल को हैरास किया जा रहा था, ये भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। अब इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ेगी। जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो साहिल के परिवार द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर दुल्ला इसमें मुख्य व्यक्ति हैं, उन पर मुख्य आरोप लगाया गया है। साहिल के परिवार द्वारा उनको समन्स इश्यू कर दिया गया है। अब जल्दी ही उनसे भी पूछताछ होगी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ेगी। जो उस दिन प्रत्यक्षदर्शी थे कॉलेज में कैंप एग्जामिनेशन हॉल में, जो अन्य छात्र थे, उनसे भी क्राइम ब्रांच जो है पूछताछ करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी। इसी दरमियान क्राइम ब्रांच ने साहिल का मोबाइल, उसके लैपटॉप को जब्त कर लिया है। अब उसकी भी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है कि इस लैपटॉप में क्या था। जो आरोप कॉलेज फैकल्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि चैट जीपीटी में प्रश्न पत्रिका डाली थी, इसकी भी जांच क्राइम ब्रांच करेगी। अंजलि
0: जी, शुक्रिया दीपेश इस पूरी जानकारी के लिए। उधर आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र के आत्महत्या की इस दर्दनाक घटना ने पूरे आईआईटी नेटवर्क को झकझोर कर दिया है। देश के सभी 23 आईआईटी संस्थानों के पूर्व छात्रों के सबसे बड़े संगठन पैन आईआईटी एल्युमिनाई इंडिया यानी कि पीआईएआई ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। संगठन ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए कठिन समय में पूरे आईआईटी बॉम्बे परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है। संगठन ने कहा है कि इस दुखद स्थिति में मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत है। परिसरों को किसी भी तरह की गंदी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए ताकि देश दुनिया में इन संस्थानों की साख और प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए।
2: कपास में उन्होंने उनको अरेस्ट करने को होना, यही मेरी मांग है। अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष के दरे और डुल्ला, ना
5: डुल्ला,
2: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए। बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको, जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, वो खुलेआम घूम रहे।

0: पैसे होने को होना।
1: सर आपने आपने क्राइम ब्रांच को सर आपने क्राइम ब्रांच को लेटर लिखा है,
0: बताया था ऊपर आरोप हो रहा करके उन्होंने बताया था। हो ये 13 तारीख को इसमें सब निकलवाना है, इसमें सब निकलवाना है। यही सब देख लीजिए सर।
1: आपसे क्या बातचीत हुई थी साहिल की आखिरी बार, क्या क्या चीजें उसे?
0: मैंने क्राइम ब्रांच को सब लेके जवाब दिया है, उन्होंने त्वरित जल्द से जल्द कार्रवाई चालू करने को होना, यही मेरी गुजारिश है।
2: चलिए आपको इस पूरे मामले पे कुछ और बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं कि आखिर जो बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है या ये जातिगत मुद्दे हैं उनका क्या प्रेशर रहता है, इस पर पूरी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 5 साल में 23 IIT में 45 आत्महत्या हुई है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। चलिए इसमें अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि OBC की 12, उधर आप SC की 9 और ST की 7 आप देख सकते हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि गरीब बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उसकी 1। इससे पता चलता है कि किस तरह का प्रेशर इन छात्रों पर रहता है। लोकसभा में ये आंकड़े पेश किए गए थे, उससे ये खुलासा हुआ है। जनरल कैटेगरी की भी 16 छात्रों की खुदकुशी का मामला है, तो पढ़ाई का भी प्रेशर कम नहीं होता है यहाँ पे। IIT बॉम्बे में जो छात्र उसने आत्महत्या की है, ये एक दर्दनाक घटना रही है और इसने पूरे IIT नेटवर्क को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि जो एल्युमनाई नेटवर्क है उसकी तरफ से अब बयान आया है, 23 IIT संस्थानों के पूर्व छात्रों में सबसे बड़े संगठन पैन IIT एल्युमनाई इंडिया ने इस घटना पर गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने संगठन के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए कठिन समय में पूरे IIT बॉम्बे परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है। संगठन ने कहा है कि दुखद स्थिति में मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत है और उन्होंने कहा है कि परिसरों को भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति से बचाया जाना चाहिए ताकि देश और दुनिया में ये जो संस्थान है इनकी साख और प्रतिष्ठा पर किसी तरह की आंच न आए। और अब रुक करते हैं जोधपुर का, जहां जोधपुर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने आत्महत्या की, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर के रहने वाले राज नरेश यादव ने ड्यूटी के दौरान इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली है। एम्स ने में आत्महत्या की जानकारी मिलने पर फौरन पुलिस को सूचना हालांकि दे दी थी। वासनी थाने से पुलिस मौके पर भी पहुंची, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचित कर दिया है।
3: एनेस्थीसिया विभाग में OT में ड्यूटी पर थे, सुबह ड्यूटी पे आए थे, जो करीब 1 बजे के आसपास अपने ड्यूटी रूम से निकल के और रेस्ट रूम की तरफ गए थे। काफी देर नहीं लौटने पर साथियों को चिंता हुई और उन्होंने फोन किया, लेकिन फोन पिक नहीं किया। उन्होंने आसपास पता किया, रेस्ट रूम में जाकर देखा तो बाथरूम अंदर से लॉक था। खटखटाने और आवाज देने पर जब लॉक नहीं खुला तो उन्होंने बाथरूम को तोड़ा, दरवाजे को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो ये डॉक्टर साहब राज नरेश यादव हैं, वो अचेत अवस्था में थे, जिनको तुरंत OT में ले जाकर उनको CPR देके और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौके को हम पुलिस को जैसे इतला मिली है, मौके को प्रिजर्व कर लिया गया है और इंटैक्ट रख दिया गया है, परिजनों को सूचित किया है, उनके आने पर आगामी कार्रवाई होगी, अभी उनका शव मोर्चरी में रखवाया गया है।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक,
9: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एच करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस, प्रिविलेज RD, देयर इज नथिंग स्मॉल।

0: Okay.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
6: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
7: Nayi sarkar ke baad Bihar mein sabse bada siyasi mela.
8: 15 zile baad se prabhavit. Main to sirf ye pooch rahi hu ki ye Bihar ki niyati kyu bana di gayi hai?
9: Kya karan hai abhi bhi Bihar investment se vanchit?
10: Paisa itna kahan se leke aayenge jo ye pure project ko pura kiya ja sakta hai?
7: Samrat Chaudhary ke raj mein kaise badlega Bihar?
11: Aapne timeline de diya hai 2030 palayan rokne ke liye.
12: Itna confidence ho ke keh raha hu ki 2030 tak बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कह सकते।
7: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
1: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.

0: बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी रही हैं, और जब वो तस्वीरें आई जमुई से जहां पर वो बच्ची हाथ जोड़ती हुई बिलखती हुई प्लीड करती हुई नजर आ रही है, ये जो तस्वीरें आई उनको पहली बार किस तरह से देखते हैं और किस तरह के एक्शन आपको लगते हैं कि इसमें होने चाहिए?
1: मुझसे तो वो पूरा वीडियो देखा नहीं गया और मैं देख भी नहीं पाती इस तरह के वीडियो। मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि ये मानवता की जितना कहें कि गिर सकता है कोई, वैसा गिरे हुए इंसान होंगे। और सबसे रोष की बात ये थी कि पुलिस ने तब वो उसको लिया कॉग्निजेंस जब लोगों ने इस पे शोर मचाना शुरू किया, क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए ये? जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए? और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ। अगर इस तरह के लॉज, और मुझे लगता है अगर हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे नहीं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कमांडो ऑपरेशन में पति पत्नी और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर, चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक।
1: आईआईटी सुसाइड केस में डीन पद से हटाए जाने के बाद अब छुट्टी पर भेजे गए आरोपी प्रोफेसर डुला, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया, पीड़ित पिता बोले गिरफ्तारी हो वरना धरना दूंगा।
0: यूपी में दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी तैयारी, कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग की दिल्ली में बैठक, लखनऊ में मायावती की राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग, रविदास मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष की पूजा।
1: दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज।
0: बॉलीवुड सुपरस्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील, का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन ना करें लोकप्रिय कलाकार, स्टार वही जो रोशनी फैलाए अंधेरा नहीं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।

0: आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, चार मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में किया ढेर। 8 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे 2 पुजारी समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले सनकी आरोपी का एनकाउंटर। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कैद कर लिया था। सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया। सनकी आरोपी ने अपने 10 साल के बेटे को भी मारी गोली। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने फोर्स एंट्री की। आरोप है कि बाजार से घर पहुंचे आरोपी अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और पत्नी से भी उसकी बहस हुई। आजमगढ़ में खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अरविंद सिंह के बचपन के दोस्त आशुतोष सिंह ने आज तक से बातचीत में कई खुलासे किए। दोस्त ने बताया कि 2018 में बड़े भाई की मौत के बाद से ही आरोपी को पूजा पाठ से चिढ़ हो गई थी। घर में आने वाले से हत्या का डर लगा रहता था। भाई की हत्या के बाद से आशुतोष दोस्तों से, गांव वालों से मिलना बंद कर चुका था और अकेले ही अपने बेटे और बेटी को साथ लेकर आता जाता था। पूजा पाठ करने आए पुरोहितों ने ही भूत प्रेत की बात कही थी, जिसकी वजह से घर वालों ने महामृत्युंजय का जाप करना शुरू किया था। आरोपी अरविंद ने अपने बड़े भाई सुनील सिंह की ही विरासत में मिली रिवॉल्वर से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता संगीत सोम का निशाना, बोले कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई सीट को लेकर नहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर है। संगीत सोम ने अखिलेश और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, उन्होंने सनातनियों पर गोली चलवाई थी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला, कहा तुष्टिकरण के चैंपियन बनने के लिए गाली गलौज की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग हो रही है। सहारनपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचकर खाया सादा खाना, रविदास मंदिर में पूजा अर्चना, फिर परिवार के साथ किया भोजन। लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक, मायावती पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगी। ईशान आनंद को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना। दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई डिमोलिशन कार्रवाई, मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इसी रोड पर तोड़फोड़ हो चुकी है, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, घटना से इलाके में फैली सनसनी। वारदात के बाद से आरोपी फरार, पुलिस टीम मौके पर, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जमुई छेड़छाड़ मामले में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 19 सितंबर को इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5, जिसमें 3 नाबालिग।
0: जमुई में छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट, 32 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्शन। मुठभेड़ में घायल आरोपियों का जमुई सदर अस्पताल में इलाज जारी, अधिकारियों ने लोगों से नाबालिग से जुड़े वीडियो को शेयर न करने की अपील की। जमुई कांड पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सख्त, बोले अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कानून को चुनौती देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और बिहार में गुंडा राज कायम, सीएम के इस्तीफे की भी मांग। नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। आईटी बॉम्बे सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को बॉम्बे आईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेजा, मैनेजमेंट ने 10 मेंबर के पैनल का भी गठन किया। 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगा यह पैनल। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन भी किया। मृतक साहिल के पिता ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी, बोले अगर दुल्ला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। एससी एसटी एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना।
1: आज गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी, राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप। सीएम योगी आज लखनऊ में भारत टैक्सी योजना का शुभारंभ करेंगे, कृषक समृद्धि योजना के लिए ई पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। बीजेपी के पश्चिमी यूपी में संगठन के भीतर से उठे सवाल, पूर्व पदाधिकारियों ने संगठन में सिफारिशी चेहरों को तवज्जो दिए जाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जारी। इमरान मसूद के बयान का यूपी कांग्रेस प्रभारी ने किया समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता असीम बकार का एसपी सांसद इकरा हसन पर पलटवार, कहा वो भूल गई हैं कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो सांसद नहीं बन सकती थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल का बड़ा दावा, यूपी में 35 विधानसभा सीटों पर मांगा गठबंधन में हिस्सा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बड़ा बयान, कहा 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, मैं किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहता हूं। कालकाजी में नाबालिग से हुए वारदात पर महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट।
0: पश्चिम बंगाल के मुकुंदपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। टीएमसी का आरोप है कि उसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बुरी तरह मारपीट और बदसलूकी की गई, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला कार्यकर्ताओं जिनमें युवा नेता उपासना चौधरी भी शामिल थी, उन पर अंडे फेंके गए और नशे में धुत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की। बीजेपी प्रवक्ता ने टीएमसी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जुलूस के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पकड़कर पीट दिया गया। घटना को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा हिंसा को राजनीति की भाषा नहीं बनना चाहिए, डराने धमकाने को सत्ता का जरिया नहीं बनना चाहिए। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी भर्ती की पुरानी नियमावली की मांग पर बवाल, छात्रों और पुलिस में झड़प। एमपी के सागर में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी मनीष लोधी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, किया गिरफ्तार। मोतिहारी में एक पुलिसकर्मी पर बहन को सर्विस पिस्टल से गोली मारने का आरोप, बाद में पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मारी। कर्नाटक के उडुपी में शख्स को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, शव के 9 टुकड़े मिले, पत्नी बेटा लापता। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आरोपी के पैर पर लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार।
1: अमृतसर में खास तौर में हथियारबंद 3 युवकों ने की तोड़फोड़, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को दिया अंजाम। अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। सुरेंद्रनगर में मंदिर से चांदी के 35 छात्र महिला ने किए गायब, सीसीटीवी में आरोपी महिला कैद। असम के धेमाजी में चलती जेसीबी में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जालना की मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई संदिग्ध चोर की तस्वीर। बिजनौर बिजली चेकिंग करने गई टीम से मारपीट, जेई को घेर कर बंधक बनाने का आरोप, सामने आया घटना का वीडियो। उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, किच्छा विधायक पूर्व विधायक समर्थकों से भिड़त। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, नकदी सोना चांदी और मोबाइल फोन बरामद। हैदराबाद में थाने में वकील और पुलिस के बीच भिड़ंत, बेल को लेकर हुआ विवाद।
0: जालंधर में ड्रग्स मामले में 3 गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, नशीली गोलियां और 22,000 रुपए का कैश बरामद। फाजिलका में आम आदमी पार्टी सरपंच पर फायरिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजनौर में युवक ने दरोगा पर 18 घंटे हिरासत और 12,000 रुपए की वसूली का आरोप लगाया, युवक का पत्नी से हुआ था विवाद। झांसी में बीए छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने 6 युवकों पर यौन उत्पीड़न और वीडियो वायरल करने की धमकी का लगाया आरोप, 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। करनाल में मजार को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा, स्थानीय लोगों ने खुद ही तोड़ दिया ढांचा। असम में बोकाखाट में बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ चिंग मछलियां बरामद, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा में पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान, फांसी लगाने की सूचना पर तुरंत पहुंची डायल 112 पीआरवी ने बचाई जान। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, परिजनों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरपुर में 21 साल की युवती को बहला फुसलाकर ले गया अधेड़, दुष्कर्म का लगा आरोप, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में सीमेंट लदे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक और उपचालक कूद कर बचा गए अपनी जान।
1: राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झुल्ली ग्यारस का पर्व। उत्तराखंड के लांगजाउन में से अजीत डोभाल गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर का किया दौरा। दौरे के दौरान डोभाल ने रेजिमेंटल गीत बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो गाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणि भी रहे मौजूद। NSA ने अग्निवीरों को बढ़ाया मनोबल, बोले पूरा विश्वास है हमारे अग्निवीर अपनी वीरता त्याग और पराक्रम से गढ़वाल राइफल्स का नाम ऊंचा करेंगे। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। फिल्म मैदान के गाने जाने दो के लिए मनोज मंतेश्वर को मिला बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवार्ड, दूसरी बार हासिल किया ये अवार्ड। हैदराबाद में ब्लड बैंक से जुड़े आरोपों पर अभिनेता चिरंजीवी का पलटवार का, खून बेचकर पैसा नहीं कमाता, अपनी मेहनत की कमाई से ब्लड बैंक चलाता रहा हूं। ऑस्कर अवार्ड से भारत के एक और गर्व का पल, नागालैंड की फिल्म अंग को 2027 के ऑस्कर अवार्ड की इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री। इस साल भारत की ओर से ऑस्कर जाने वाली दूसरी फिल्म है, इसके पहले मराठी फिल्म गोंधल को भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली थी। अप्रैल से शुरू होगी 3 इडियट्स की सीक्वल की शूटिंग, फिल्म ललकारा के बाद काम शुरू करेंगे आमिर खान।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया, कहा संयुक्त राष्ट्र में आना सम्मान की बात है, हम काफी प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने अपने UNGA संबोधन में ईरान पर तीखा हमला भी बोला, उन्होंने ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला नंबर वन देश बताया। ट्रंप ने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 51 सालों में ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने खून खराबे और हत्याओं के जरिए ही शासन किया है। संबोधन के दौरान ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी, बोले वे कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज से अमेरिका दौरा, 23 से 25 सितंबर के बीच अमेरिका में रहेंगे शी जिनपिंग। ईरान के साथ समझौते को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा नवंबर में मध्यावधि चुनाव के बाद अमेरिका ईरान के साथ कर सकता है समझौता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीनियर मिलिट्री सलाहकार ने कहा है कि जो स्ट्रेट है हॉर्मुज स्ट्रेट, उसमें पहले जैसा नहीं हो पाएगा सामान्य स्थिति, सऊदी और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष को बताया इसकी वजह। कतर के प्रधानमंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में की मुलाकात, क्षेत्रीय तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता मजबूत करने पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को वॉशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, दोनों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर तनाव के बीच होगी यह अहम बैठक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ रिश्तों की मजबूती का दिया संदेश, न्यूयॉर्क में ट्रंप और सनाए ताकियाची की एक अहम बैठक। यूएन महासभा से अलग ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की मुलाकात, ब्रिटेन ने यूक्रेन को पूरी तरह समर्थन की बात कही। यूएन में बर्नहम ने गाजा में हिंसा और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को लेकर दी चेतावनी, कहा इससे दो राष्ट्र समाधान को बड़ा खतरा। न्यूयॉर्क में कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को दी बड़ी मदद, पत्रकारों से बात करते हुए 10 करोड़ कनाडा के डॉलर की सहायता का ऐलान किया। यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र पर उठाए सवाल, कहा शांति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी से में यूएन रहा है नाकाम। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए मेक्सिको दे दी चेतावनी।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एसआर को लेकर ईसी में मतभेद है, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। पीटीआई के हवाले से खबर आई है, दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई है। बड़ी बात यह है, 14 बार आपत्ति जताई गई मतभेद की खबरों पर, अब चुनाव आयोग की सफाई आ गई है।
1: बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मतभेद और असहमति खबरें आ रही है चुनाव आयोग के अपने ही अंदर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है अलग अलग राज्यों में उसे लेकर के, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि एक स्वाभाविक बात है कि लोगों के बीच में मतभेद हो। हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, मतभेद होना, असहमति होना, ये स्वाभाविक है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर एसआईआर को लेकर खुद चुनाव आयोग के बीच में इस तरह की असहमति है तो देश भर में इस प्रक्रिया को कैसे चलाया जाएगा?
2: उनका यह कहना है साफ साफ कि जब तीन दिमाग लगते हैं तो तीन दिमाग स्वाभाविक रूप से किसी मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं और उस पर सहमति बनती है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि आयोग इसीलिए बना है कि एक आदमी की ना चले, उसमें दो तीन दिमाग लगे, दो तीन तरह की सोच हो जिस पर विचार किया जाए। इनका यह कहना है कि अभी तक एक दो ही ऐसे मुद्दे आए जिन पर दो दो लोगों की राय एक साथ है और एक आदमी की राय अल्पसंख्यक में है। तो उनका यह कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों चुनाव आयुक्त जब किसी एक राय पर सुदृढ़ हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी राय प्रस्ताव पर अपने विचार वापस भी लेने पड़े, और कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि जो भी निर्णय होता है वो निर्णय पूरी बहुमत के निर्णय के हिसाब से होता है। और साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि जो 14 असहमति की बात की जा रही है, किसी मुद्दे पर कोई चुनाव आयुक्त असहमत रहे, किसी मुद्दे पर कोई चुनाव आयुक्त असहमत रहे, यानी दो लोगों की सहमति एक साथ हमेशा रही है जिस पर निर्णय लिए गए हैं। अब ये तो जांच का विषय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर निर्णय भी आने वाला है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार ने जिस तरह से कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए, तो इस पर सरकार का अपना कानून अलग आया है जिसमें चीफ जस्टिस को साइड कर दिया गया था और प्रधानमंत्री के नियुक्त किए हुए मंत्री को रखा गया है। तो इसमें एक तो ये निर्णय भी आएगा और साथ ही ये भी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि असहमति अल्पसंख्यक होने के बावजूद किसी निर्णय को लागू किया गया हो। तो ऐसे में बहुसंख्यक
0: मैं दो बातों में स्पष्टीकरण चाहती हूँ। क्या हम ये मानेंगे जो 14 आपत्तियां जताई गई हैं, जो 14 बार मतभेद हुआ, ये ज्ञानेश कुमार अपने एंड पर सारे डिसीजंस ले रहे थे इस वजह से हुआ, और एकाधिकार था उनका डिसीजंस लेने पर, इसी वजह से ये मतभेद सामने आ रहे थे?
2: ये मतभेद जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव पर तीनों आयुक्त अपने अपने विचार रखते हैं। तो इनका ये कहना है कि कई बार ऐसा हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ किसी एक आयुक्त के विचार मेल खा रहे हैं, उनमें से ऐसा
0: ठीक है। आपके फॉर्मर सीसी ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़ गए। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या मतभेद होना, आपत्तियां होना, ये इसी में स्वाभाविक प्रक्रिया है जैसा कि कहा जा रहा है?
3: ये तो देखिए, कहीं भी हो मतभेद होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के दौरान वो मतभेद एक दूसरे को समझ के, समझा के आयरन आउट कर दिए जाते हैं और उस तरह से सर्वसम्मति से फैसले जनरली होते रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने में 14 बार दो इलेक्शन कमीशन विरोध करते रहे लेकिन फैसले होते गए, जबकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो किसी भी इलेक्शन कमीशनर इंक्लूडिंग सीईसी, उनको कोई पावर नहीं है बिना ईसी मीटिंग के। इलेक्शन कमीशन तीनों लोग बैठें, मीटिंग करें और उसमें फैसले लें, वही शक्तिशाली है। किसी इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है
1: जी। तो रावत साहब, ऐसे में एसआईआर जैसी प्रक्रिया जो कि देश भर में चल रही है, जिसके पीछे बार बार इलेक्शन कमीशन खड़ा नजर आया, जो कोर्ट तक पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होती रही है, उस पर किसी तरह की क्या शंका आती है या कोई उस पर शैडो पड़ती है?
3: बिल्कुल पड़ती है। अगर तरफा एक व्यक्ति ने फैसले लिए हैं वो इलीगल हैं, क्योंकि वो तो टेनेबल ही नहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन बैठ के तीनों लोग मिलके फैसला ना करें तो किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि एसआईआर करे या दूसरी चीजें उसमें फैसले ले।
1: लेकिन जितने दिन तक ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है वहां इलेक्शन कमीशन लगातार ये स्टैंड दिखाता रहा कि ये पूरी प्रक्रिया लीगल है, तो ऐसे में क्या अंदर ही आयुक्तों की आप कह रहे हैं कि बात को दबाया गया है?
3: नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुक्त कह रहे हैं कि 10 महीने में 14 बार उन्होंने इसमें विरोध किया, वो कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उन्होंने अगर पहली बार विरोध करने पर कुछ नहीं किया तो उन्हें तुरंत पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए था कि ऐसा गलत हो रहा है।
0: तो रावत साहब, अब ये बात पब्लिक डोमेन में क्यों आ रही है कि 14 बार मतभेद हुआ? क्या ये और भी इशारा करता है कि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है? किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार है डिसीजंस लेने में, डिसीजन मेकिंग में, खास तौर पर अगर SIR की हम बात कर रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार का यहाँ पर रेफरेंस बहुत जरूरी है।
3: ये तो जांच का मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम लोग जो अखबार में पढ़ा है उसके आधार पर ही बात कर रहे हैं, हम लोग प्रिवी तो है नहीं इन सब घटनाक्रम के। तो जो संधु साहब ने और विजय विवेक जोशी ने कहा है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ SIR प्रक्रिया है, अब उसको अपने को अनुमान ही लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ है।
0: ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो बेहद चिंता की बात है, लेकिन अब इसको लेकर के जाहिर तौर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग में मतभेद की इन खबरों को लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। कपिल सिब्बल ने ज्ञानेश कुमार को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तुरंत सस्पेंड करने की मांग कर दी है। कपिल सिब्बल का कहना है कि SIR प्रक्रिया तुरंत रद्द होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में इस तरह के सवाल SIR प्रक्रिया को लेकर खड़े होना बेहद चिंताजनक है।

0: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith. All the work of the commission, or all the work of finalizing the voters list should be stopped. Supreme Court also think about resorting to the extraordinary powers of holding fresh elections in the context of the fact that all these elections have been held not under the control of the commission, but under the control of Ganesh Kumar.
1: फैसला की प्रक्रिया तुरंत रद्द की जाए, ये कपिल सिब्बल का कहना है। आपको एक बार ये भी बता दें कि रिपोर्ट में आरोप आपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ईसीआई नेट से जुड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें वोटर रिलेटेड कई एप्लीकेशंस और सिस्टम्स को एक साथ लाया गया है। इसमें गोवा का भी उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 97 लोगों के मामले में स्थानीय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स देखकर उन्हें एलिजिबल माना, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनकी एलिजिबिलिटी दर्ज करने में दिक्कत आई क्योंकि सिस्टम सेंट्रली कंट्रोल्ड था। दो कमिश्नर्स ने इस तरह के सेंट्रलाइजेशन पर सवाल उठाए हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी साथ उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि एसआर में एलिजिबल वोटर्स को डिटेन करने और डाउटफुल इनएलिजिबल एंट्रीज को हटाने की प्रक्रिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस वेरिफिकेशन का सवाल सीधे वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी और इंडिविजुअल वोटर्स के राइट से जुड़ता है।
2: सवाल लगातार उठते रहे एसआईआर को लेकर। बंगाल में जब ये मामला चल रहा था तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उससे पहले बिहार के दौरान भी ये सब हुआ है। ऐसे में सवाल जो विपक्षी पार्टियां उठाती रही वो ये कि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं जल्दबाजी में तो नहीं हो रही और तकनीक के साथ अब इस तरह का तालमेल ना हो पाना, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
1: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये जो गोवा का उदाहरण दिया गया है इसके डिटेल्स बताएं, इसके संदर्भ में क्या कहा गया?
3: देखिए नेहा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो बात हमने कई महीनों से कई बार दोहराया वो बात आज स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर गड़बड़ी चल रही थी। और इसके साथ साथ वो ये भी सवाल उठा रहे थे कि दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति नामों को डिलीट कर रहा है, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। हमारे साथ संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के चीफ हैं। संजय जी, आप लोग लगातार जिन सवालों को उठा रहे थे तो आपको लगता है कि विंडिकेट हुए हैं?
4: देखिए, अब ये कहना गलत होगा कि सिर्फ हम उठा रहे थे। अब तो पूरे देश ने ये जान लिया कि चुनाव आयुक्त जो साथ में उनके काम करते हैं ज्ञानेश कुमार जी के साथ, वो दो चुनाव आयुक्त खुद वही मुद्दे उठा रहे थे जो हम लोग उठा रहे थे। और पूरे देश का जो चुनाव हुआ है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, वो बेईमानी से जीता गया है।
2: तो चलिए अब बढ़ते हैं,
1: ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायबिटीज जूस।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: यार लोन भूल गया मैडी।
9: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
10: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
11: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
12: There's nothing small about it.
13: जीवन, nothing small about us.
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
6: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
7: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: चुनाव आयोग में मतभेद की मीडिया रिपोर्ट से उठा सियासी भूचाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों के बीच 10 महीने में 14 बार असहमति की खबरें। आयोग की सफाई, सर्वसम्मति से हुए फैसले।
1: दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। पोर्ट समिट की भी तैयारियां तेज।

0: प्रबंधक। आईआईटी सुसाइड केस में डीन पद से हटाए जाने के बाद अब छुट्टी पर भेजे गए आरोपी प्रोफेसर डुल्ला, क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। पीड़ित पिता बोले, गिरफ्तारी हो वरना धरना दूंगा।
1: बॉलीवुड सुपरस्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील, कहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन ना करें लोकप्रिय कलाकार, स्टार वही जो रोशनी फैलाए अंधेरा नहीं।

0: तो बड़ी खबर ईसी से जुड़ी हुई, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही है। उसी को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों को लेकर विपक्ष अब तीखा प्रहार कर रहा है। एसआर को लेकर ईसी में मतभेद है। दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई है और एसआर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी अब यही कह रही है कि ईसी में मतभेद रहा है, यानी कि सर्वसम्मति से सभी फैसले नहीं लिए गए। दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई, लेकिन ये आपत्ति दरअसल दर्ज नहीं हुई।
1: और हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह की खबरें आई हैं मीडिया में, वो तमाम सवाल खड़े कर रही है, और ये सवाल सिर्फ मीडिया नहीं खड़े कर रहा है। अब जो कुछ देर पहले हमने ओपी रावत साहब से बात की, जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके, वो कहते हैं, उनके शब्द हैं ये कि एसआईआर इसका मतलब गैर कानूनी, इलीगल है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये
2: यहाँ सवाल बड़ा है और इसका जवाब भी बड़ा होगा, क्योंकि तीन आयुक्तों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के सूत्र कह रहे हैं, तीन आयुक्तों की नियुक्ति इसीलिए होती है कि मतभेद हो तो बहुमत से फैसला हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठें होती हैं या कोर्ट्स की खंडपीठें होती हैं, जिसमें हमेशा इवन नंबर में जजेज नहीं होते हैं, ईव नंबर में जजेज होते हैं, ताकि कोई मतभेद हो तो बहुमत से फैसला लिया जा सके, और यही ऐसा होता है। तो मतभेद होना, विचार में विरोध होना, ये कोई नई बात या अस्वाभाविक बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर ऐसा प्रमाण मिलता है कि बहुमत के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अल्पमत का फैसला सिर्फ इसलिए लागू किया गया कि वो वरिष्ठ अधिकारी के विचार थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है। जब रावत साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस समय भी उनके सामने भी उन्होंने ये कहा कि मतभेद होने स्वाभाविक है, मतभेद होते हैं। लेकिन जहां तक गोवा की बात है, जहां अन्य राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया की बात है या एसआईआर की प्रक्रिया की बात है, उसमें अगर कोई फैसला इस तरह का सिद्ध हो जाए जांच से, इसमें अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच इनिशिएट कौन करता है। क्या चुनाव आयोग आंतरिक जांच इनिशिएट करता है, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होता है, या क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है तो ऐसे में केवल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है और जांच कर सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो कौन लेकर जाते हैं, और फिर इस मामले में प्रमाण और क्या मिलते हैं, क्योंकि मामला गोपनीय दस्तावेजों का है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट गोपनीय फाइलें अपने पास मंगाए, जैसे ईसी की, आपको याद होगा कि जब ईसी की नियुक्ति की बात हो रही थी, उस समय अरुण जैन जी की जो नियुक्ति थी उसकी फाइलें मंगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय फाइलें मंगाई, उसका अध्ययन किया और उस पर फिर अपना निर्णय दिया। तो ये एक बहुत, ये अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खुलना, वो भानुमति का पिटारा तो खुल चुका, अब इस पिटारे में से क्या क्या चीजें निकलती हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिखा देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और उसके अनुसार किस तरह से अब तक गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले आपको दिखा देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है। एक दिन में चार चार बार आपत्तियां जताई गई, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि विचारों में मतभेद और असहमति स्वाभाविक है। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आपत्तियों के बारे में मुख्य चुनाव आयोग को भी बताया गया, लेकिन चुनाव आयोग में निर्णय यूनानिमस था। फिर सारी आपत्तियां ऑन रिकॉर्ड दर्ज कराई गई, जिस पर चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुमत के निर्णय को कभी दरकिनार नहीं किया गया। फिर यह कहा जा रहा है कि बिना जानकारी के आदेश जारी करने का आरोप है, लेकिन असहमति होने पर कई मुद्दों पर निर्णय नहीं हो सका। दो चुनाव आयुक्तों ने बार बार आपत्ति जताई, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्र नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है।
1: तो सवाल ये उठते हैं कि 10 महीने में 14 बार आपत्तियां दर्ज की गई, लेकिन चुनाव आयोग यही दावा कर रहा है कि जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो बहुमत से ही हुए हैं। एक दिन में बार बार, जैसे कि हमने आपको बताया, आपत्तियां जताई गई, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि बहुमत से ही निर्णय हुए हैं।
0: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संजय, दो आयुक्तों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और ये आपत्तियां दरअसल ये इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि यूनानिमस तरीके से डिसीजन नहीं लिया गया। ये बात अब इतने दिन बाद क्यों उजागर हो रही है, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो किस तरीके से इंटरनल इंक्वायरी का आदेश भी आ सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया रह सकती है?
1: तो आपको बता दें कि हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से अपने सहयोगी से जुड़ने की, लेकिन इस पर सियासत जाहिर तौर पर अब शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया पर और सीधा उनका हमला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ. क्या कहते हैं वो, आइए सुन लीजिए.
3: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith. All the work of the commission, or all the work of finalizing the voters list should be stopped. Supreme Court also think about resorting to the extraordinary powers of holding fresh elections in the context of the fact that all these elections have been held not under the control of the commission, but under the control of Ganesh Kumar.
1: तो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है. और आपको बता दें कि क्या क्या हुआ है इस पूरे मुद्दे पे. 28 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने मंजूरी के बिना ये कहा जा रहा है कि सवाल जो उठाए, जो जो 14 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. दो अलग आयुक्त, चुनाव आयुक्त, जिन्होंने अपनी 14 बार विरोध जताया और नोटिंग दी, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं.
0: 16 अप्रैल को विरोध दर्ज कराया गया, उसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को ये विरोध दर्ज कराया गया. संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं. संजय, अगर ये मामला कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट, जाहिर तौर पर कौन ये मामला ले जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में आता है तो किस तरीके से इंटरनल इंक्वायरी का भी ऑर्डर आ सकता है, और अगर ये प्रक्रिया होती है तो कैसे होगी?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि निर्वाचन आयोग इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मतभेद हुए हैं. मतभेद होते रहे हैं, शुरू से ही होते रहे हैं जब से ये 3 सदस्यीय आयोग बना है. लेकिन मतभेदों का मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें, उनका ये कहना है कि मतभेदों का मतलब ये कतई नहीं है कि एक ही आदमी की चल रही है, और ये डिसेंट भी हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग डिसेंट हुए. बहुत कम ऐसा मौका आया है जब दोनों आयुक्त एक तरफ रहे हों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ अकेले पड़ गए हों, और उसके बावजूद उन्होंने, उनका ये कहना है कि जब जब जब ऐसे मौके आए हैं, बिल्कुल इक्का दुक्का ऐसे आए हैं जिसमें दोनों आयुक्त एक साथ हो गए हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले पड़ गए हैं, तो उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में भी डाला है, तो ताकि बाद में जब कभी आम सहमति बनेगी तब उस पर देखा जाएगा. लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर जाता है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और इसे इम्कान बन रहे हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग पर विश्वास की बात है, भरोसे की बात है. इस पर एक जनहित याचिका जरूर जाएगी और अगले 1-2 दिन में ही वो याचिका दाखिल होगी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वो गोपनीय फाइलें मंगाकर अपने पास देखे. अगर कोई ऐसी चीजें जिसमें आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, आम नागरिकों के अधिकारों का एक तो सूचना का अधिकार है, दूसरा ये कि देश में क्या हो रहा है, चूंकि इस पूरी SIR प्रक्रिया से आम नागरिक जुड़ा हुआ है
1: जी.
2: आम नागरिक वोट करते हैं और उस पर सरकारें बनती और गिरती हैं, तो ऐसे में उनको नियामक करने वाली संस्था अगर सवालों के घेरे में आती है तो कोई तो ऐसा होगा. कहते हैं कि बाबा सबको डांटे, बाबा को कौन डांटे? यहाँ बाबा को डांटने वाले का भी इंतजाम लोकतंत्र में किया गया है कि कोई एक सुपर बाबा नहीं होगा.
1: पर संजय, यहाँ पे बात एक बहुत अहम ये भी है कि ये बात सिर्फ मतभेद की नहीं है. अगर हम नोटिंग्स को देखें, जो आपत्तियां जताई हैं, वैसे बता दें हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन संजय सवाल ये है कि यहाँ दो चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था और उनके नाम से आदेश जारी किए गए, जो वेबसाइट का आदेश जारी किया उन्हें पता ही नहीं था, मीटिंग से पहले एजेंडा शेयर नहीं होता था, तो ये बात सिर्फ महज असहमति की नहीं है?
2: बिल्कुल, और इस पर एक गहन जांच होनी चाहिए कि जो चुनाव आयोग कह रहे हैं उसका आधार क्या है, और जो निर्वाचन आयोग का आदेश है उसका आधार क्या है. उसमें कहीं भी है तो जनता के साथ एक धोखा है, और उस धोखे की जांच होनी चाहिए, चीजें सामने आनी चाहिए. तो उसमें मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है, चूंकि सरकार हाथ डाल नहीं सकती है, स्वायत्त संस्था है, इसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, तो लोग उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हैं.
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास. मौसमी, जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष के हाथ लग गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष ईसी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाते रहा है. SI की प्रक्रिया को लेकर कितना बवाल हुआ था ये हम सबने देखा है. ये कहा गया था कि वो एक स्वायत्त एजेंसी नहीं है, यहां तक कहा गया कि ये गवर्नमेंट के इशारों पर चलती है, तमाम सवाल उठे थे. और अब इस तरह का मुद्दा जब सामने आया है तो इसे आगे लेकर जाएगा विपक्ष, और एक बड़े तरीके से.
4: नेहा, विपक्ष के मुद्दे से ज्यादा ये भी बहुत जरूरी है कि जनता का जो विश्वास है, और जिस तरीके से, यानी कि जो चुनाव विपक्ष कह रहा है कि ईसी जो है वो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक संशय आ जाता है। जिस तरीके से ये बेहद गंभीर विषय है कि इसी में कोई भी फैसले होते हैं उसमें से एक में से दो की सहमति, एक में तीन की सहमति से पास हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला बन जाता है। और लगातार अब विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी यही तो कह रहे थे, यही बात जो राहुल गांधी कह रहे थे उन्होंने 6-8 महीने पहले ही बोली, तब कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अपने आप में 14 बारी एक डिसेंट देना मसलों पर एक तरीके की एक बहुत ही गंभीर सियासी रूप से ये बात खड़ी करता है। और आप देखिए कि अभी अभिषेक मनु सिंह भी उतरे हैं मैदान में, 1 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी आप बहुत जल्द देखेंगे इस पूरे मसले पर, ना सिर्फ चुनाव सीईसी को घेरेंगे बल्कि सरकार को भी घेरेंगे। अब सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की सहमति नहीं थी, इसमें और बारीकियां सामने आती हैं। संजय बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है सियासी रूप से, और वो तब जब 5 राज्य के चुनाव आने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और सही बात आपने कही, ये वक्त बहुत अहम है, चुनाव आने वाले, तैयारियां चल रही थी, एसआईआर का रिवीजन चल रहा था कई राज्यों में। तो ऐसे में ये बताइए संजय कि चुनाव आयोग में अगर इस तरह की अनियमितताएं हैं और उंगली सीधा चुनाव आयुक्त, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन पर उठ रही है, तो फिर कार्रवाई की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है?
2: में सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइम बम गिरा है उस टाइम बम की टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों में एसआईआर के आखिरी चरण में है और कई 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, इसके अलावा 2027 में और भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आपका जो सवाल जो था, पिन पिन पॉइंट सवाल था, वो सवाल ये था कि कमान किसके हाथ में होती है। कमान तो नो डाउट कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चूंकि वो सीईसी होते हैं तो उनके हाथ में होती है, लेकिन आयोग का ये कहना है कि अब इस कहने की भी जांच होगी कि सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, सर्वसम्मत निर्णय लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर मतभेद है तो उनका सम्मान करते हुए बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, जैसा आमतौर से कोर्ट्स में, खंडपीठों में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि उन्हें अंधेरे में रखकर इन इन मामलों पर निर्णय लिया गया, तो ये आप सच है, जाहिर है कि ये बहुत गहन जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अब शांत नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र के एक अंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं तो दूसरा अंग सक्रिय हो जाता है, और वो अंग सक्रिय होता है जो उसका इलाज कर सकता है, उपचार कर सकता है। तो अभी ऐसा लगता है कि केवल पता तो और भी अंगों को लग गया है, लेकिन उपचार करने में सक्षम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट लग रहा है। या तो अपने आप सेल्फ हीलिंग कर ले इलेक्शन कमीशन, और या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट को चीरा लगाने की जरूरत पड़े।
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। मौसमी, मुझे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है जिसमें राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेजेंटेशन के साथ अनियमितताएं समझाई थी, बताया था कि कैसे लगातार इसी में गड़बड़ियां हो रही हैं। अब तो ये वो मौका है जिसे कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाना चाहेगी और ये कहेगी यही तो हम कह रहे थे। टाइमिंग जिस पर संजय शर्मा कह रहे हैं कि जबरदस्त।
4: बिल्कुल, देखिए नेहा, अगर इलेक्शन कमीशन की

0: हो जाता है। और ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से, एक नहीं उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर, उसके बाद हरियाणा पर, और लगातार वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते रहे। तुरंत चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन से टाइम टू टाइम जवाब आता रहा। एक सियासी रूप से चुनाव आयोग ने इंगेज किया, नोटिस भेजा राहुल गांधी को और बोला कि आप हाजिर होइए। चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रहा है। तो अपने आप में देखिए, पॉलिटिकल बॉम्ब तो ये है, ना सिर्फ चुनाव आयोग पर, लेकिन कहीं ना कहीं सुई सरकार की तरफ भी इशारा करती है। सरकार को भी इतने घसीटेंगे राहुल गांधी और कहेंगे कि ये देखिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि कभी सरकारें बदले और उसकी पूरी तैयारी हो रही है। तो इस तरीके के गंभीर आरोप राहुल गांधी लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब तक सवाल उठते आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर कई बार उंगली भी उठती थी, लेकिन कभी अंदर से ऐसा कुछ नहीं आता था जिससे सवाल उठाए जाए। इस बार संजय, शायद जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, आप कुछ कहना भी चाह रहे, कहिए।
2: अंदर से सवाल पहले भी उठते रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा अशोक लवासा का मामला,
1: जी
2: और इससे पहले भी कई लोगों ने दबी जबान से बात कही। अशोक लवासा ने, जब वो चुनाव आयोग थे, उस समय उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही और ये बताया कि मनमानी चल रही है आयोग में, अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं और उनके डिसेंट को ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने वो डिसेंट मीडिया में लीक भी करवा दिए थे और उसके बाद उन्हें वहां से विदा भी होना पड़ा था, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये अलग बात है, ये अलग बात है कि एक दूसरे चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये तमाम चीजें, और अचानक इस्तीफा दिया, इस्तीफे की कोई वजह भी नहीं बताई गई। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार मतभेद सामने आए हैं, मतभेद डिसेंट नोट पहले भी सामने आते रहे हैं, लीक होते रहे हैं, सामने आते रहे, लेकिन दो चुनाव आयुक्तों का एक ही नाव पर सवार होना और ये कहना कि उन्हें अंधेरे में रखा गया,
1: जी
2: उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। अब ये जांच का विषय है, क्या दोनों चुनाव आयुक्त एक विषय पर सहमत थे या दोनों चुनाव आयुक्त अलग अलग विषयों पर असहमत रहते हुए उन्हें अलग अलग समय में अलग अलग प्रस्तावों की जानकारी नहीं दी गई, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर दो को एक साथ एक ही प्रस्ताव पर एक ही समय में अंधेरे में रखते हुए निर्णय लिए गए तो ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अलग अलग प्रस्तावों पर दोनों को अलग अलग समय अंधेरे में रखते हुए बात की गई हो, या उनका डिसेंट नोट शामिल किया गया, या उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कैसे किए, या सिर्फ दो आयुक्तों के हस्ताक्षर पर ही वो चल गया, तो ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हस्ताक्षर से भी प्रस्ताव पास हो गया और वो सारी चीजें अमल में आ गई। तो ये वाकई बहुत सारे सवाल हैं जो जिन पर आयोग खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। कई बार गोपनीयता की भी स्थिति आती है कि आप वो दस्तावेज गोपनीय रखें या उसको कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं, और कई बार आयोग को खुद ही लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये कहाँ कहाँ गलतियां कहाँ हुई हैं, कमजोर कड़ियां कहाँ हैं, उनका निदान आवश्यक है, और उसमें
1: ठीक
2: मुझे
1: है,
2: लगता है बहुत सारी चीजें सामने आएंगी तो कई सारी चीजों का ऑपरेशन
3: ठीक है,
2: हो
3: अभी
2: सकता है।
3: डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा लपक लिया है। इसी मतभेद की खबरों पर अखिलेश यादव अब बोल रहे हैं, और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में अगर ऐसा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी कर रही है इस पर।
0: तो देखिए, अखिलेश यादव का पोस्ट आ गया और एक्स पे उन्होंने ये पूरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से 14 बार 10 महीने में डिसेंट नोट दिए गए हैं, अग्रीमेंट नहीं हुई है, उसको लेके मुद्दा बना रही है समाजवादी पार्टी। वहीं कांग्रेस एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और अपने आप में देखिए ये इलेक्शन कमीशन संजय कवर किए हैं, मैं भी कुछ इलेक्शन कमीशन
1: जी
0: कवर की हूँ। सारी जो प्रक्रिया
1: जी
0: होती है
1: जी मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, माँ ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। कितना गहरा उस परिवार का दुख होगा। पुलिस को जांच करने दे, जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है।

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माना नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई।
2: किसी को भी काट सकता है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: EU सोच बदलो और बैंक भी।
6: IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आयामों पर खबर चल रही है, जिसमें पहली है सुसाइड की पुलिस जांच, दूसरी है कैंपस में विद्यार्थियों की चिंताएं और तीसरी है सियासत। पहली बात पुलिस जांच। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। एक दिन पहले विरोधी दलों के छात्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, अब RBI के कार्यकर्ता प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पहले जिस तरह खुदकुशी केस में प्रोफेसर डुल्ला पर SC/ST एक्ट लगे, उसके खिलाफ सड़क पर रैलियां निकली। इस बीच बयानों की बाढ़ आ गई। IIT दिल्ली से लेकर IIT मद्रास तक ने प्रोफेसर डुल्ला पर कार्रवाई का विरोध किया, फैकल्टी फोरम ने विरोध किया, सुधींद्र कुलकर्णी ने विरोध किया, विद्यार्थियों ने न विरोध किया न समर्थन। तीन दिनों से कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था की ओर से बयान जारी हुआ कि विद्यार्थी संस्थान में नकल का समर्थन नहीं करते, संस्थान में सार्थक ठोस सुधार की मांग पर कायम है। जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को डीन पद से हटाना जरूरी था। साहिल की मौत पर राजनीति नहीं की जाए, विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान और सुधार हो। मगर सवाल नकल से रोकने पर छात्र के खुदकुशी करने के बाद प्रोफेसर पर SC/ST एक्ट लगाने का है। साहिल के रिश्तेदारों से लेकर दलित राजनीति करने वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बड़े कैंपस में दलित ही क्यों मर रहे हैं, जबकि कैंपस के छात्र कहते हैं कि जातीय भेदभाव के आरोप गलत है।
7: मैं चाहते कि अभी तक जितने बच्चे मरे वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बच्चे मरे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ में क्यों हो रहा है, ये जातिगत पड़ताड़ना नहीं तो क्या होता है?
8: बहुत ही अनफॉर्चुनेट, लाइक हमारा एक साथी, हमारा छोटा भाई चला गया, पर जो प्रोटेस्ट प्रोफेसर के अगेंस्ट हो रहा है वो इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल की अगर आप चीटिंग करो तो पकड़े जाओगे। दोस्त जो मेरे छोटे भाई ने क्या बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जो डुल्ला सर के साथ हो रहा है कि आप कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो कम्प्लीटली बेसलेस है। IIT में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऑफ कोर्स ना मेरे साथ ना मेरे किसी दोस्त के साथ ना मेरे किसी जूनियर के साथ, मैं जानता हूं कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है।
6: जाहिर तौर पर साहिल की खुदकुशी ने दो बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें एक है कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 IIT और 15 नए IIT मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असमय मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। IIT खड़गपुर में 29, IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 21, IIT दिल्ली में 17, IIT बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि IITs IIMs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक SC/ST OBC स्टूडेंट थे। IIT बॉम्बे के अंदर ही सुसाइड करने वाले छात्र दर्शन के पिता कहते हैं कि कैंपस में भेदभाव तो होता है। हालांकि कैंपस में खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो कहती है कि IITs में ग्रेड रैंक प्लेसमेंट सफलता की गारंटी हो गए हैं। वाइब चेक कल्चर में कमजोर स्टूडेंट आइसोलेट हो रहे हैं। क्लासरूम में एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट 60% हैं, लेकिन 56% फैकल्टी अगड़ी जाति के, 7.57% एससी और 1.91% एसटी फैकल्टी हैं। देश के 65% उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। 23 IIT सहित 31 केंद्रीय संस्थानों में स्टूडेंट के तनाव की समय रहते स्क्रीनिंग की सक्रिय व्यवस्था नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट में 75% मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 24 साल से पहले शुरू हो जाती है। नतीजा, गलाकाट कमीशन के दौर में खुद को पिछड़ता देखकर या माता पिता, परिवार, समाज के दबाव के कारण स्टूडेंट खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश से मुंबई आज तक।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एसआईआर पर चुनाव आयोग में मतभेद की मीडिया रिपोर्ट से उठा सियासी भूचाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों के बीच 10 महीने में 14 बार असहमति की खबरें। आयोग की सफाई, सर्वसम्मति से हुए फैसले। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। खूनी रात और सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी, बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। आईआईटी सुसाइड केस में डीन पद से हटाए जाने के बाद अब छुट्टी पर भेजे गए आरोपित प्रोफेसर दुल्ला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। पीड़ित पिता बोले, गिरफ्तारी हो वरना धरना दूंगा। बॉलीवुड सुपरस्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक अपील। का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों का विज्ञापन ना करें लोकप्रिय कलाकार। स्टार वही जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की खबरें अब सामने आ रही हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर को लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई, असहमति रही। मतभेद की खबरों पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी है। अब चुनाव आयोग का यह कहना है कि मतभेद और असहमति स्वाभाविक बात है। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। चुनाव आयोग की सफाई आई है मतभेद की खबरों पर। वो कह रहे हैं कि मतभेद और असहमति स्वाभाविक है, होता रहता है, लेकिन जितने भी फैसले लिए गए हैं इन शुरुआती मतभेदों के बावजूद वो सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। लेकिन देखिए, यह भी बात चल रही है कि कब कब कैसे कैसे वो बातें सामने आई जहां पर असहमति बनी, मतभेद आए या फिर असहमति बनी, अपनी अपनी बात रही। तो ये देखिए, 10 महीने में 14 बार, 28 अक्टूबर को सुखबीर सिंह संधू क्या कहते हैं, इसी की मंजूरी के बिना ईसीआई के नाम से चिट्ठी आदेश दिया गया। ये 28 अक्टूबर 2025 की बात है। 16 अप्रैल 2026 सुखबीर सिंह संधू नए आईटी मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। 16 अक्टूबर 2026 की बात है। ये सुखबीर सिंह संधू एक चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई, चुनाव आयोग की मंजूरी इसमें नहीं ली गई है। ये 16 अप्रैल की बैठक में जो बातें सामने आई हैं। वहीं विवेक जोशी जो एक और चुनाव आयुक्त, वो कहते हैं एक साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं होते थे, मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे और आयोग की मंजूरी के बिना विदेश अधिकारी भेजे गए। आयोग की मंजूरी नहीं ली गई और अधिकारियों को विदेश भेज दिया गया। 16 अप्रैल की बैठक थी, उसके बाद 24 अप्रैल को होती है। 24 अप्रैल को विवेक जोशी की तरफ से आयोग की मंजूरी के बिना कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं हो सकती। आयोग की जानकारी यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं हो सकती। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव ना हो, और 19 मई को इसको संधू ने भी माना था। 16 मई 2026 की, अब 29 मई को आप देखिए, इलेक्ट्रल रोल डेटाबेस के केंद्रीकरण को लेकर चेताया गया था। यहां पर विवेक जोशी की बात यहां पर की जा रही है, विवेक जोशी को जो आप यहां पर देख रहे हैं। वहीं 13 जुलाई को संधू ने भी इस बात को माना। ये 29 मई 2026 की बात की जा रही है। तो ये कई बार ऐसी बातें आई सामने जहां पर असहमति थी, हालांकि कहा जा रहा है स्वाभाविक होता है। आयोग की जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ, ये भी बैठक में बात सामने आई। कैबिनेट सचिव से विवेक जोशी की तरफ से कहा गया, काम के बंटवारे का जो रोस्टर होता है कि किसकी जिम्मेदारी किस काम की है वो जारी है, और अगर ऐसा नहीं होता अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 10 महीने में 14 विरोध नोट। अब विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने आयोग में कामों के नए बंटवारे का विरोध भी किया है, यह बात सामने आई है। वहीं आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल में अपील के फैसला किसने लिया, ये भी सवाल पूछा गया सुखबीर सिंह संधू की तरफ से। फॉर्म 16 में बदलाव अनाधिकृत गैर कानूनी है, सुखबीर सिंह संधू, चुनाव आयुक्त उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही फील्ड अधिकारी आयोग के नेट सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते, डीजीआईटी को रोकने का अधिकार नहीं है, यह भी असहमति यहां पर जताई गई। अब ये तमाम पहलू सामने आए हैं। हमारी सहयोगी अंजना उनका शब्द इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अंजना, 10 महीने में 14 बार जो विरोध नोट वो सभी हमने यहां पर बताए, अब ये सारी असहमति वाले बिंदुओं को देखकर क्या कहा जा सकता है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात हिमांशु है कि आज ये समझना होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दो पक्ष हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बातों को आप ध्यान से देखें तो तीन बातें स्पष्ट हैं। वो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हो रहा था, यानी केंद्रीकरण हो रहा था और फैसले ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से लिए जा रहे थे। अब देखिए, चुनाव आयोग का दूसरा पक्ष जो है, जिसमें चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि जो दो चुनाव आयुक्त हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है, सुखबीर संधू साहब हैं और विवेक जोशी, इनकी राय अलग हो सकती है, इनकी इंडिविजुअल राय अलग हो सकती है, चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी जो राय थी लिखित या मौखिक वो चुनाव आयोग का फैसला था, ये उनकी निजी राय थी। जब भी कोई फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है, चाहे वो कोई भी फैसला, वो लिख रहे हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है चुनाव आयोग की तरफ से, ऑल डिसीजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एसआईआर, यानी एसआईआर को मिलाते हुए, वो सभी यूनानिमसली यानी एक साथ ली गई है, और दोनों ही चुनाव आयुक्तों का और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तीनों के सहमति से एसआईआर के साथ साथ अन्य फैसले लिए गए हैं। अब जो आरोप है जो आप एक एक करके बता रहे थे कि चाहे वो संधू साहब हो या फिर वो जोशी साहब हो, विवेक जोशी, इन लोगों ने किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा अपना मुखर होकर विरोध किया है? तो सबसे पहली एक बात समझनी पड़ेगी हमारे दर्शकों को कि लगभग 40 अलग अलग पोर्टल्स, बहुत सारी वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की थी, उन सबको एक जगह पर करके ईसीआई नेट बनाया गया। अब इनका आरोप था कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो स्टेट ऑफिसर्स फैसले ले रहे थे उनको धीरे धीरे अलग किया जा रहा था, और दिल्ली से नाम के जो डिलीशन और एडिशन है उसको तय किया जा रहा था। अब इन आरोपों को भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से खारिज करता है। उसका कहना है कि जो भी ये फैसले, जो कानून इसके लिए बनाया गया है, तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है ना, जो बीएलओ होते हैं, जो बूथ स्तर पर काम करते हैं, वही तय कर रहे थे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 है, जिन ईआरओ को वो ये ताकत देता है और ये उनके लिए मैंडेटेड है कि वही नाम जोड़ेंगे घटाएंगे, वही ये काम कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात अगर आप देखिए तो जितना भी ये जो ऑफिसर्स के टास्क को लेकर बात कही जा रही है ना कि भाई आप उनका आप रोल निकालिए कि भाई ये अफसर है, इसका ये मैंडेट है, इसका ये काम है, तो उसमें भी आरोप लगा कि जब दो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को बदला गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बदले गए, तो ऐसे में जो नए लोग लाए जा रहे थे उनके काम के जरिए केंद्रीकरण और भी चुनाव आयोग की ताकतों का, पावर्स का किया जा रहा था। उसको भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से डिनाई करता है। उसका कहना है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सभी सर्वसम्मति से लिए गए हैं, राय सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली यूनानिमसली, यानी सारे फैसले और चुनाव आयोग का एसआईआर का फैसला हो, जितने भी फैसले हो वो सब यूनानिमसली, यानी दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों, यानी संधू साहब, विवेक जोशी और ज्ञानेश कुमार, तीनों की सहमति से लिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इस वक्त तूफान की तरह है चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि जाहिर तौर पर हिमांशु विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष उठाता रहा है।
0: बिल्कुल, ईसीआई में असहमति का खेल या ऑल इज वेल, ये सब सवाल जानना चाहते हैं इसका जवाब। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, ईसीआई की तरफ से भी कहा गया है कि ये स्वाभाविक है, असहमति होना, ये सारी चीजें स्वाभाविक है, लेकिन जितने भी फैसले लिए गए हैं ये तो सर्वसम्मति से लिए गए हैं, हस्ताक्षर हैं बकायदा दोनों के, इस पर क्या, इसको कैसे देखा जाए?
2: इसमें ये कहना कि भाई हमें जानकारी नहीं थी, हमें अंधेरे में रखते हुए फैसले लिए गए हैं, तो इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या, चूंकि अभी तक ये गोपनीय दस्तावेज है, इस पर अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा है अपनी आंखों से कि तीनों आयुक्तों के दस्तखत हैं या सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अलग अलग प्रस्तावों पर अलग अलग इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के दस्तखत हैं। तो आयोग का यह कहना है कि ऐसा कोई विरले ही कभी ऐसा हुआ होगा जब दो इलेक्शन कमिश्नर प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं। ऐसे में एकाध बार ऐसा हुआ है तो उस समय प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ये जानकारी तो नहीं मिल रही है कि प्रस्ताव आखिर क्या थे, कितने बड़े थे, कितने गंभीर थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जैसे पांच प्रस्ताव हैं, दो प्रस्ताव पर एक इलेक्शन कमीशन चीफ के साथ है और दूसरे प्रस्ताव पर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर चीफ के साथ है, तो ऐसे में बहुमत तो हो जाता है। तो अब ये देखना, ये जांच का विषय है कि क्या इतने ये प्रस्ताव के, अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि डिसेंट नोट दिए, अलग अलग प्रस्तावों पर अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंट नोट अलग अलग समय पर दिए, लेकिन क्या एक ही कोई कॉमन प्रस्ताव है जिस पर दोनों इलेक्शन कमिश्नर डिसेंट कर रहे हैं और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी चला रहे हैं, ये जांच का विषय है।
0: अभी अभी बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी वक्त के साथ, बने रहिए हमारे साथ। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत सस्पेंड करने की मांग है, होना चाहिए उनको सस्पेंड। कपिल सिब्बल का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया तुरंत रद्द होनी चाहिए। मौसमी भी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई, लेकिन पहले सुनवा देते हैं आपको कि कपिल सिब्बल की तरफ से क्या मांग की गई है।
3: दिस मैन शुड बी सस्पेंडेड, दिस ज्ञानेश कुमार शुड बी सस्पेंडेड फोर्थविथ। ऑल द वर्क ऑफ द कमीशन और ऑल द वर्क ऑफ चेंजिंग फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट शुड बी स्टॉप्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो थिंक अबाउट resorting to the extraordinary powers of holding fresh elections in the context of the fact that all these elections have been held not under the control of the commission but under the control of Ganesh Kumar.
4: चुनाव आयोग को चला कौन रहा है? अगर दो चुनाव आयुक्त निरंतर और लगातार अपनी आपत्तियां दर्ज करते रहे हैं और उनकी आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद या कथाकथित आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद चुनाव आयोग SIR को क्रियान्वित करता रहा है, तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर चुनाव आयोग को चला कौन रहा है? क्यों चुनाव आयोग के जो नियम हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि हर फैसला अगर या तो सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए और अगर सर्वसम्मति से नहीं लिया जा सकता तो वो मेजॉरिटी से लिया जाना चाहिए. अब जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो खबर एक अखबार में छपी है, अगर वो सही है और दो चुनाव आयुक्त लगातार आपत्तियाँ दर्ज करते रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि चुनाव आयोग के जितने फैसले हैं, खासकर जो SIR से संबंधित हैं, वो तो पूरी तरह से गैर कानूनी हैं, गैर संवैधानिक हैं।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट IIT बॉम्बे से. साहिल सुसाइड केस को लेकर IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर सूर्य नारायण बुल्ला को छुट्टी पर दी. IIT बॉम्बे मैनेजमेंट ने इस मामले की जांच के लिए 10 मेंबर का पैनल बना लिया है जो एक हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट देगा. वहीं से पहले IIT बॉम्बे प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को प्रशासनिक मामले में डीन के पद से हटा दिया है.
5: साहिल वाघमोड़े आत्महत्या मामले में अब बॉम्बे IIT ने एक 10 सदस्यीय पैनल की स्थापना की है. ये पैनल इस पूरे मामले की जांच करेगा और एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. तब तक के लिए IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर दुल्ला को छुट्टी पर भेज दिया है. छात्रों द्वारा मांग की गई थी कि प्रोफेसर दुल्ला पर कठोर कार्रवाई की जाए. आज प्रोफेसर दुल्ला को छुट्टी पर भेजने के बाद इस कमेटी की स्थापना हुई और मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ ये कमेटी भी जांच करेगी कि आखिर में उस दिन हुआ क्या था और क्या इन पीछे की वजह है.
0: और 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट दिल्ली से. दिल्ली का शालीमार बाग में कल MCD का बुलडोजर एक्शन हुआ. पूरी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा.
6: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में जो कि जहांगीरपुरी से लगा हुआ इलाका है. यहां पर पिछले मई महीने से डिमोलिशन की ड्राइव चल रही है. दरअसल सड़क को चौड़ा करना, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो भी मकान आपको यहां दिखेंगे ये फ्रंट का पूरा हिस्सा आपको यहां पर टूटा हुआ नजर आएगा. दरअसल इस सड़क को चौड़ा किया जाना है, ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है. बीच में आप ये देखेंगे जो ये सामने आपको इमारत नजर आएगी, दरअसल यहां पर एक मस्जिद है और जिस मस्जिद की ऊपरी दो फ्लोर को भी देखिए उसके लेंटर को भी तोड़ा गया है. दरअसल यहां पर यह बताया गया था कि मस्जिद का जो नक्शा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है और ऊपर के दो फ्लोर की मंजूरी नहीं थी जिसे बाद में बनाया गया था. इसको लेकर के सिविक एजेंसियों ने नोटिस जारी किया था लेकिन मस्जिद प्रशासन का कहना है कि 15 दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 नोटिस दिए गए, उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया. जो इलाके के लोग थे उनको ये पहले ही बता दिया गया था कि एक सरकारी कार्रवाई है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, इस वजह से यहां पर आके कोई हंगामा ना करे. बहरहाल स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे इलाके की बढ़ाई गई है.
0: देखिए सड़क चौड़ीकरण चल रहा था और ऐसे में ये जो कई निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ. जब बुलडोजर एक्शन चल रहा था इस कार्रवाई का विरोध करने AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने इसे सहारनपुर पार्ट 2 बताया है.
7: क्या आप कुरान निकालने की मोहनत नहीं दे रहे हैं? आप जानेमाज निकालने की, दिस इज सहारनपुर पार्ट 2. ये सहारनपुर में जिस तरीके से DM ने किया वही कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा. दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है, ये राजधानी है, वाइब्रेंट यहाँ लोकतंत्र है.
0: तो मौजूदा पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने नाराजगी जताई और उसे आज इसे लेकर एक कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई है. जमीयत उलेमाए हिंद ने मस्जिदों पर एक्शन और संविधान का उल्लंघन के आरोपों को लेकर ये बैठक बुलाई. इसमें मौजूदा हालात, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद मंथन करेगा.
8: एक तरफ यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के माहौल बन रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के मसलों को लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक दिल्ली में शुरू हुई है और महत्वपूर्ण बैठक आपातकाल में इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जमीयत को यह लग रहा है कि जिस तरह से उनके समाज के खिलाफ अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर के वो नाराज हैं। अब जमीयत का आरोप यह है कि दरअसल सहारनपुर से लेकर के दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो मस्जिदें हैं या मदरसों हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसी के साथ साथ यूसीसी का जो मुद्दा है उसे वो कह रहे हैं कि हमारे शरीयत में या हमारे धर्म के खिलाफ जो इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई, मस्जिदों के खिलाफ हो रही कार्रवाई और खासकर यूसीसी जैसे उन नियमों को लेकर के जिसको वो विवादास्पद मानते हैं उनको लेकर के यहां दिल्ली में जमीयत अपनी बैठक कर रही है। तो मौलाना मसूद असद मदनी जो है उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें कई सारे प्रस्ताव पारित होंगे। इन प्रस्ताव को लेकर यह भी देखना होगा कि उसमें उत्तर प्रदेश कितना बड़ा मसला है। जब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में चुनाव है उसके साथ 5 और राज्यों में चुनाव है, हालिया के जो ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी और राजनीतिक विषय बन सकते हैं और जिसमें खासकर सीधे सीधे मुस्लिम समाज पर इसका सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है, उसको लेकर के जमीयत की यहां बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने हैं।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो जमुई कांड की है और इस मामले में जाति पर महाभारत अब छिड़ गया है।
9: जमुई की घटना में शामिल आरोपियों की जाति को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर केवल एक ही आरोपी की जाति क्यों बताई जा रही, बाकी आरोपियों की पहचान क्यों नहीं उजागर की जा रही। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। यह पूरा मामला नंदन यादव जो मुख्य आरोपी रहा जमुई कांड का उसको लेकर देखा जा रहा है।
0: यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज है और आज इस जुबानी जंग में बीजेपी के संगीत सोम भी कूद गए। संगीत सोम कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई सीट को लेकर नहीं है, प्रधानमंत्री पद को लेकर है।
10: लड़ाई समाजवादी पार्टी की है ही नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोगों से को डराने के लिए अखिलेश यादव जी कहलवा रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं कि राहुल गांधी देश में फेल हो चुके हैं और वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं। मैं इन दोनों को समझाना चाहता हूं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, कि आप लड़ो मत। अभी अगले 5 साल, उसके अगले 5 साल अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं कि वो अभी बहुत समय तक देश पर राज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 25 साल कम से कम अभी देश पर राज करेगी। अखिलेश यादव जी राहुल गांधी को डिच करके वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्हें खत्म करना चाहते हैं।
11: कांग्रेस के भीतर से जो आवाज अब तक इमरान मसूद उठा रहे थे उसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नहीं बल्कि सिर्फ इमरान मसूद की पर्सनल खुंदक मान रही थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सचमुच ये चाहती है कि जल्द से जल्द कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समझौते की मेज पर बैठें और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। राजेंद्र पाल गौतम जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने इमरान मसूद का साथ देते हुए कहा है कि आखिर उन्होंने गलत क्या कहा है, क्यों नहीं अभी बंटवारा होना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंटवारा हो। तो साफ है कि इमरान मसूद खुद से नहीं बोल रहे थे, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी की वो सोच थी जिसे वो लगातार रख रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान एक तरीके से है क्योंकि सपा ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। तो गठबंधन इस वक्त अगर देखें तो निश्चित तौर पर इस घमासान से जूझ रहा है, दोनों आमने सामने हैं। उधर संगीत सोम ने बड़ा दावा किया है कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के गठबंधन की नहीं है, ये तो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे की लड़ाई है।
0: उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है लेकिन चुनावी गहमागहमी अभी से जारी है। पश्चिमी यूपी के 2 दिन के दौरे पर गए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल सहारनपुर में थे और वहां उनका दलित कनेक्ट दिखा। उन्होंने वहां रविदास मंदिर में भी पूजा की और दलित कार्यकर्ता अजब सिंह के घर पहुंचकर खाना खाया।
12: 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय शेष हो लेकिन बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक तरफ संत रविदास के मंदिर में माथा टेक कर एक सियासी संदेश देना चाहती है तो वहीं दलितों के साथ एक कार्यकर्ता के घर जमीन पर बैठकर भोजन करने के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक संदेश देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर फतेह करना है तो उस ताले की चाबी दलित वोट बैंक में है और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। एक तरफ सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए है जिसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त से ढूंढ रही है, खासकर 24 के चुनाव के बाद से। ऐसे में नितिन नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा, जहां सहारनपुर और मेरठ के कार्यकर्ताओं से लेकर सांसदों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, युवा सम्मेलन यानी जेंजी, और साथ ही साथ दलित आउटरीच करने का ये प्लान, बीजेपी को क्या समाजवादी पार्टी की पीडीए की तोड़ के रूप में देखा जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए बीजेपी पर हावी पड़ेगा। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर फतेह हासिल करनी है तो दलित वोट बैंक के जरिए ही जाना होगा। अब देखना यह है कि बीजेपी आगे होती है या एसपी।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात केंद्रीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर की। 2047 में विकसित भारत पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आज से 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य अब तक की प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ भविष्य की योजनाएं बनाना है। 23 और 24 सितंबर को 2 दौर की चर्चाओं के बाद आने वाले दिनों में इसके अगले दौर भी आयोजित किए जाएंगे।
13: भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए मोदी सरकार का 2 दिन का चिंतन शिविर है। इसमें मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य मंत्री और सभी विभागों के सचिव शामिल होंगे। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की गति को किस तरीके से आगे लेके जाना है और साथ ही साथ 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने इसके लिए क्या कड़े कदम उठाने हैं, इसको लेकर कई तरीके की प्रेजेंटेशन होगी और 8 से 10 मंत्रियों के जो समूह बनाए गए हैं और अलग अलग विभागों की समीक्षा की जाएगी कामकाज की और जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर ग्राउंड पे क्या फीडबैक है, 2047 में इन सबको किस तरीके से जोड़कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इसको लेकर 2 दिन का ये मंथन दिल्ली के अंदर सेवा तीरथ में होगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मानसू मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: आगे आगे।
19: अरे उधर
18: उधर।
19: करेक्ट करेक्ट।
20: मिल गया, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक?
9: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
8: Okay.
9: Ujjivan, nothing small about us.
10: Oof, ye diabetes ki wajah se pairon mein jhanjhanaahat ho rahi hai,
11: isiliye dawaiyon ke saath lijiye kapiva diabetes juice, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
4: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
5: Nayi sarkar ke baad Bihar mein sabse bada siyasi mela.
6: 15 zile baad se prabhavit. Main to sirf ye pooch rahi hu ki ye Bihar ki niyati kyun bana di gayi hai?
7: Kya karan hai abhi bhi Bihar investment se vanchit?
8: Paisa itna kahan se leke aayenge jo ye project ko pura kiya ja sakta hai?
5: Samrat Chaudhary ke raj mein kaise badlega Bihar?
9: Aapne timeline de diya hai 2030 palayan rokne ke liye.
10: Itna confidence ho ke keh raha hu ki 2030 tak बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूर था
5: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
11: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
12: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है, और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।
13: नवाज भाई, क्या घटना हुई थी?
14: एक से दो महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

चुनाव आयोग में मतभेद की मीडिया रिपोर्ट से एसआईआर पर उठे सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों के बीच 10 महीने में 14 बार असहमति की खबरें। आयोग की सफाई, सर्वसम्मति से हुए फैसले। चुनाव आयोग पर पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के निशाने पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कहा यह खबर लोकतंत्र के लिए घातक। उद्धव की पार्टी बोली, एजेंट की तरह कर रहे हैं काम। दिल्ली के कालकाजी रेप केस पर एक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, डीडीए और एमसीडी कमिश्नर की बैठक बुलाई। पार्क के एंट्री एग्जिट गेट पर नहीं थे कैमरे और लाइट्स। खूनी रात और सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी, बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। एशियन गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा। वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। देश भर में बधाइयों का तांता।

0: तो यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये चुनाव आयोग को लेकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच अलग अलग राय की खबर को लेकर अखिलेश यादव ने भी बड़े सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्त ने 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अखिलेश ने सवाल उठाया है कि स्वतंत्र निकाय के सदस्य भी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश ने इसे संवैधानिक अपराध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग भी की है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुमार, यूपी चुनाव से ठीक पहले ही विवाद, वैसे एसआईआर शुरू से विवादों में रहा है, ऐसे में यह खुलासा और उस पर अखिलेश यादव की मांग क्या लगता है? क्या यूपी चुनाव में फिर से एसआईआर संविधान और लोकतंत्र को खतरा बड़ा मुद्दा बनता वो दिख रहा है?
1: बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सवाल उठाए हैं और बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कुछ बातें जो लिखी हैं कि सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है, तो इस तरह की बात अखिलेश यादव ने लिखी है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव का एक रुख रहा है, हमेशा इसकी कहीं ना कहीं वो मुखालफत करते नजर आए हैं, चाहे वो बंगाल का मामला रहा हो या फिर जिस वक्त उत्तर प्रदेश का रहा हो। इनफैक्ट इस वक्त भी दोबारा से पुनरीक्षण के बाद भी उत्तर प्रदेश में चली है, फिर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। फॉर्म 6 फॉर्म 7 को लेकर के भी वो लगातार सवाल उठाए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें आई हैं उसके बाद से अब ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी मिला है, वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों इसे बड़े तौर पर उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये मुद्दा बड़ा होता है तो ये बीजेपी के लिए कम से कम जवाब देना इस पर मुश्किल होगा। हालांकि ये सवाल तो उन्होंने संवैधानिक संस्था पर उठाया है, लेकिन अब बीजेपी के लिए को भी इस पर जवाब देना पड़ सकता है,
0: जवाब देना पड़ सकता है, बीजेपी को जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि चौतरफा घेराव हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर वो बता दें, चुनाव आयोग वाली खबर को लेकर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, आरएसएस और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा।
2: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
0: मौसमी से हमारी सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौसमी, अब राहुल गांधी का भी बयान आ गया, इस खबर को लेकर आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच सकता है, क्योंकि तमाम बड़े वकीलों ने भी इसे लेकर बयान देना शुरू कर दिया, कपिल सिब्बल भी आ गए थे सामने।
3: बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल हो या कुछ ही मिनटों में अभिषेक मनु सिंघवी भी प्रेस वार्ता करेंगे हिमांशु, लेकिन राहुल गांधी की बड़ी चेतावनी आई है और ये चेतावनी राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर ये करता है, सोचता है कि देश को धोखा देके वो बच जाएगा तो बचेगा नहीं। और कई बार ये बात सामने आई है कि चुनाव मुख्य चुनाव आयोग को खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि जस्टिस विल बी सर्व, तो ये एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी द्वारा कि ये जो हो रहा है ये देश की जनता के खिलाफ अपराध है और इसका इसका इंसाफ, इसका इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अपने आप में आप देखिए कि ये पूरी रिपोर्ट के चलते कितना बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। एक तरफ सियासत तो हो ही रही है मानसू, सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला शायद जल्द से जल्द आ सकता है।
0: बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला सामने आ सकता है, ऐसे बयान सामने आ भी रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, चौतरफा घेराव हो रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मामले में?
4: देखिए मानसो, चुनाव आयोग का ये साफ कहना है कि जब कहीं भी डिस्कशन होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, ये हो सकता है कि मतभेद हो, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी बात से मैं सहमत ना हूँ या मेरी बात से आप सहमत ना हो, तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अगर आप सारे दस्तावेज देखें तो जो फाइनल डिसीजन है, डिस्कशन के तौर की बात अगर की जाए तो वो अलग है, लेकिन कहीं।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत, इन दिनों आपसी नाराजगी, सहयोगियों में खींचतान और तोल मोल के दौर से गुजर रही है, जिसमें हर दल और गठबंधन की अलग अलग कहानी। पहले बात बीजेपी की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरा प्रदेश नेतृत्व दो दिनों तक पश्चिमी यूपी के मेरठ सहारनपुर के दौरे पर था। अब इस दौरान युवा संवाद से लेकर शक्ति केंद्रों की संगठनात्मक बैठक तो हुई, लेकिन इन तमाम बैठकों का हासिल क्या रहा, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
5: दो दिनों के पश्चिमी यूपी दौरे पर जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे तो चुनावी सीजन के सियासत मंथन में बहुत कुछ निकला। चाहे वो मेरठ के निजी कॉलेज में युवा संवाद के जरिए जेएनजी आउटरीच हो या शक्ति केंद्र सम्मेलन में बूथों की ताकत बढ़ाने की चर्चा, रविदास मंदिर दर्शन करके दलित आउटरीच का प्रोग्राम हो या कार्यकर्ताओं संघ मंथन में पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी यूपी से तरह तरह के तजुर्बे लेकर लौटे हैं। दलित वोट पर ज्यादा जोर, ओजपुर के रविदास मंदिर में नितिन नवीन बड़ी सादगी से पहुंचते हैं। संत रविदास के चरणों में फूल माला अर्पित कर दीप जलाकर बाहर निकले। नितिन नवीन से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक के गले में नीलांग वस्त्र दमक रहा था।
6: वही भगवान रविदास के किसी स्थल पे चले जाएंगे तो दलित और वंचित तबका ये मान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उनके उत्थान के बारे में सोच रही है। उनका जीवन दर्शन ये है, उनकी उपलब्धियां ये है योगी आदित्यनाथ की, कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लोगों का वजीफा रोक दिया समाज कल्याण से, तो वो जो कार्य किए हैं उसको भी दलित वर्ग देखेगा।
5: मंदिर में संत रविदास के दर्शन से लेकर श्री रविदास मंदिर समिति के अध्यक्ष अजब सिंह के घर पर दोपहर के भोजन तक के कार्यक्रम का असली मकसद इलाके में बीजेपी के साथ दलित जनाधार का विस्तार ही था।
7: मेरे से यही बात हुई कि आप संगठन में जुड़िए, कोई पद लीजिए और आगे बढ़ाइए अपने मोमेंट।
5: दरअसल सहारनपुर जैसे इलाके में बीजेपी की कोशिश बीएसपी से इंडिया गठबंधन की ओर सरकते दलित जनाधार को अपने पाले में लाने की है, क्योंकि सहारनपुर जिले में 22% से ज्यादा आबादी है। 2022 में बीएसपी को कुल दलित वोट का 50% से 55% हिस्सा मिला था। बीजेपी को 28-30% और समाजवादी पार्टी को 15-18% दलित वोट मिले थे, लेकिन 2024 में बीएसपी का जनाधार तेजी से खिसका और लोकसभा सीट पर कांग्रेस एसपी गठबंधन को 44.57%, बीजेपी को 39.32% और बीएसपी को सिर्फ 14.67% ही दलित वोट मिले थे।
8: एक तरफ सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए है, जिसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त से ढूंढ रही है, खासकर 24 के चुनाव के बाद से। ऐसे में नितिन नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा, दलित आउटरीच करने का ये प्लान, बीजेपी को क्या समाजवादी पार्टी की पीडीए की तोड़ के रूप में देखा जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए बीजेपी पर हावी पड़ेगा? कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर फतह हासिल करनी है तो दलित वोट बैंक के जरिए ही जाना होगा। अब देखना यह है कि बीजेपी आगे होती है या एसपी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: नितिन नवीन ने यूं तो दो दिनों के पश्चिमी यूपी के दौरे से संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक उसके असर को लेकर काफी गहनता से मंथन किया, लेकिन इसी मंथन में पार्टी के सामने एक चुनौती भी दिखी। वो चुनौती है पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की।
5: मेरठ से लेकर सहारनपुर तक जहां भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे, वहां उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जगह जगह स्वागत सत्कार के साथ नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर 2027 का समर जीतने की उम्मीदें बांधी। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होने लगी तो 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले पुराने कार्यकर्ताओं की शिकायतों का अंबार लग गया। मामला बाहरी और नए कार्यकर्ताओं को पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा तरजीह देने का था।
9: बाहरी बनामा मूल कैडर की समस्याएं कहीं ना कहीं सामने देखने को मिली है। कई कार्यकर्ताओं ने इस बात को नितिन नवीन के सामने रखा है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार हैं। अब ऐसे में बाहरी बनामा मूल के इस मंत्र को नितिन नवीन ने हटाकर जीत का मंत्र दिया है और कहा है कि सभी कुछ भूल के 2027 की तैयारी करनी है।
5: पार्टी के अंदर अध्यक्ष के संग चुनावी मंथन को लेकर नेता कार्यकर्ता उत्साह की बात करते हैं। लेकिन ये भी बताते हैं कि इस दौरे में नितिन नवीन ने पुराने कार्यकर्ताओं की बातें भी गौर से सुनी है।
10: उन्होंने यहाँ आकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया है, उनकी वजह से हम लोगों में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने पुराने और नए सब कार्यकर्ताओं से वार्ता की।
5: पता चला कि प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला महामंत्रियों के साथ उस बैठक में मौजूदा सांसद और विधायकों के साथ भी बूथ स्तर तक तैयारी की समीक्षा की गई और करीब आधे घंटे चली बैठक के बाद दूसरे राउंड में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई थी।
11: कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज हर जगह जब कार्यकर्ता के साथ जनता भी सड़कों पर नजर आई तो स्पष्ट दिखा कि किस प्रकार से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी और हमारे सांसद विधायकों के प्रति कितना, किस प्रकार से सभी लोग मिलकर आगे आए हैं।
5: दरअसल 2027 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने यूपी में जो सेना सजाई है उसमें नौजवानों को ज्यादा तरजीह दी। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैनाती ही पार्टी के रुख का साफ संकेत देती है। इसी चरण में यूपी में भी प्रदेश पदाधिकारियों के चयन में युवा नेतृत्व ज्यादा दिख रहा है, जिससे पुराने कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पश्चिमी यूपी की सियासत में जब एक तरफ बीजेपी दलित आउटरीच तेज कर रही है तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी के जाटा वोटों की बुनियादी पर परसों तक दलित सियासत का परचम लहराने वाली मायावती अपनी पार्टी के घरेलू मसलों से ही नहीं उबर पा रही। चुनाव से एन पहले बड़े भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर चुकी मायावती ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। ये बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन के मामले और उम्मीदवारों के चयन से लेकर तेजी से बदल रहे राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए बुलाई गई। लेकिन बहुत से मुद्दों पर चर्चा के बीच ईशान आनंद को पार्टी के अंदर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी को लेकर भी बात हुई। खासकर ईशान आनंद ने जब मायावती के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और मायावती ने उन्हें अपने करीब खड़ा किया तो पार्टी के अंदर संदेश गया कि आकाश के एग्जिट के बाद अब एक बार फिर ईशान की मजबूत एंट्री पार्टी में हो चुकी है।
12: बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती आज एक अहम बैठक में, जिनके साथ आप देखिए कि ईशान आनंद नजर आ रहे हैं, आनंद कुमार नजर आ रहे हैं, वही दो चेहरे और जिनको जिम्मेदारी बहुजन समाज की चीफ मायावती ने दी थी, आज उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ पर ईशान आनंद जो कि मजबूती से खड़े हुए हैं और आज जिस तरीके से ये पार्टी की बैठक बुलाई गई है उसमें पहले भी देखा गया है कि आकाश आनंद को आउट किया गया और इसके साथ आनंद कुमार की बेटी को आउट किया गया, लेकिन ईशान आनंद को अब सामने साथ रखा गया है और आनंद कुमार साथ में खड़े हुए लेफ्ट और राइट नजर आएंगे आपको तस्वीरों में, दिखाता है कि किस तरीके से पहले सेक्टर प्रभारी बनाया था और आज 2027 के चुनाव की इस पटकथा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के सामने ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है 2027 के चुनाव के लिए कि ये देखिए किस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद लिया है मायावती का और ईशान आनंद ने, और ईशान आनंद के जो पीछे आप कह सकते हैं कि कंधे पे हाथ रखकर उनको आशीर्वाद भी दिया है मायावती ने। बहुजन समाज पार्टी की चीफ ईशान आनंद के कंधे पर हाथ रख के उनको पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी जो पटकथा है उसको लिखने के

0: बेटी, लेकिन ईशान आनंद आज आशीर्वाद पाकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2027 में रहेंगे। लखनऊ से कामो पर्सन औरफ के साथ आशीर्वाद तो आज तक।
1: यूपी में एक सियासत राज्यसभा चुनाव के गणित को लेकर भी चल रही है, जिसमें एक तरफ 10 सीटों पर बीजेपी एसपी के बीच टक्कर है, तो दूसरी ओर पहली बार विधानसभा से संसद तक बीएसपी का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। विधानसभा में नंबर्स के हिसाब से बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी का 2 सीट जीतना तय है, लेकिन 10वीं सीट को लेकर गुणा गणित जारी है। आंकड़े ऐसे हैं कि 403 सीटों में 397 विधायक मौजूद हैं। दरअसल एक सीट पर जीत के लिए 37.9 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोट चाहिए। अखिलेश यादव के पास 2 सीटों के लिए जरूरी वोट से 21 वोट ज्यादा बच रहे हैं। ऐसे में तीसरी सीट पर कब्जे के लिए समाजवादी पार्टी को 16 से 17 वोट चाहिए होंगे। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में तनातनी लगातार बढ़ रही है। राहुल अखिलेश तो खामोश हैं, लेकिन उनके नेताओं के बीच बयान युद्ध चल रहा है। पहले इमरान मसूद आते हैं और इकरा हसन, जुबानी जंग होती है, तो अब दूसरे नेता भी इस लड़ाई में उतर आए हैं।
2: गठबंधन पर पहली बार अखिलेश की जुबान खुली तो कांग्रेस के लिए दिलासे के शब्द निकले। अखिलेश ने साफ साफ कहा कि गठबंधन पूर्व की तरह ही होगा, यानी कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी इतने भर से दूर नहीं हुई। दिलासा देते हुए अखिलेश पर कांग्रेस हमले कर रही है और समाजवादी पार्टी उसका जवाब दे रही है।
3: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल कर लें, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है।
4: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी।
1: आइए आपको सीधे लिए चलते अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
5: वोट पर विश्वास करते हो, चाहे वो कानून हो, संविधान हो, नियम हो, या किसी तरह की कोई हक और सम्मान की भी बात हो, तो इन्हें कोई परवाह नहीं है सरकार के लोगों को। इधर कई बार हम लोग बैठे हैं यहां पर, और जिसमें बातचीत के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाने का काम किया। पहले मैं अयोध्या की बात करना चाहता हूं। प्रभु श्री राम और अयोध्या नगरी के विकास में समाजवादी पार्टी या हम सब कभी भी रोड़ा नहीं बन सकते, और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, और जब मौका समाजवादियों को मिलेगा करके भी दिखाएंगे कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने। मुझे याद है, और कई साथियों ने इधर भी सुना होगा, कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती थी कि दुनिया में जो और धर्मों के धर्म स्थल हैं उनसे बेहतर अयोध्या बनाएंगे, अयोध्या नगरी का विकास करेंगे। यहां तक कहते थे कि वेटिकन सिटी से सुंदर बनाएंगे। आपने कई नेताओं के उनके भाषण सुने होंगे, जिन भाषणों में उन्होंने कहा कि दुनिया के जो और धार्मिक स्थल हैं, शहर हैं, उनसे बेहतर अयोध्या का निर्माण करेंगे। लेकिन इधर जो देखने को मिला है, बड़े पैमाने पर गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं भेदभाव का व्यवहार है। एक समय ऐसा आया था जब एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सरयू में खड़े होकर के, और उन्होंने कसम उठाई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यूपी में सीएम योगी ने प्रदेश के 4 शहरों में भारत टैक्सी सेवा की लॉन्चिंग की है। आज से यूपी के चार

0: शहरों यानी गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज से भारत टैक्सी सेवा शुरू हो चुकी है। सहकारिता मंत्रालय की पहल से शुरू की गई भारत टैक्सी सेवा अब टीयर 2-3 शहरों में भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार इसे युवाओं में रोजगार का व्यापक जरिया मान रही है।
1: 2017 के पहले टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर की बात तो छोड़िए, अगर कोई अपना भैंसा गाड़ी से भी जा रहा है ना, थोड़ी देर के लिए चाय के लिए या कहीं यूरिनल के लिए वह उतरा, इतने देर में वो पीछे का काठ का ही वो बोगी बची रह जाती थी, भैंसा गायब हो जाता था, भैंसा गायब हो जाता था। आपने टैक्सी कहीं खड़ी की तो पता लगा कि टायर ही गायब हो गए। यही था यूपी, ये यूपी की एक्चुअल स्थिति थी।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी रही हैं, और जब वो तस्वीरें आई जमुई से जहां पर वो बच्ची हाथ जोड़ती हुई बिलखती हुई प्लीड करती हुई नजर आ रही है, ये जो तस्वीरें आई उनको पहली बात किस तरह से देखते हैं और किस तरह के एक्शन आपको लगते हैं कि इसमें होने चाहिए?
1: मुझसे तो वो पूरा वीडियो देखा नहीं गया और मैं देख भी नहीं पाती इस तरह के वीडियो। मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि ये मानवता की जितना कहें कि गिर सकता है कोई, वैसा गिरे हुए इंसान होंगे। और सबसे रोष की बात ये थी कि पुलिस ने तब वो उसको लिया कॉग्निजेंस जब लोगों ने इस पे शोर मचाना शुरू किया, क्यों नहीं तुरंत अरेस्ट हुए ये? जैसे ही कंप्लेंट हुई थी वैसे ही क्यों नहीं अरेस्ट हुए? और फिर हम एलिबाई दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है या कुछ है। हमें तुरंत ऐसी चीजों पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहूंगी ऐसे व्यक्तियों को जो माइनर कहते हैं, माइनर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, और आपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखे होंगे पूरे भारत भर में जहां माइनर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बूढ़ी औरत का रेप हो, छोटी बच्ची का रेप हो, ऐसे माइनर्स को एडल्ट की तरह ट्राई तो करना ही चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि शरीयत लॉस अपनाने चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ऐसे हाथों से छुआ और इतनी गलत तरीके से छुआ। अगर इस तरह के लॉज, और मुझे लगता है अगर हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे नहीं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माना नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई।
2: किसी को भी काट सकता है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनाव आयोग में मतभेद की मीडिया रिपोर्ट से एसआर पर उठे सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त के बीच 10 महीने में 14-12 सहमति की खबरें। आयोग की सफाई, सर्वसम्मति से हुए फैसले। चुनाव आयोग पर पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल गांधी बोले, ये राजद्रोह और संविधान पर हमला है। समाजवादी पार्टी के निशाने पर आए ज्ञानेश कुमार। उद्धव की पार्टी बोली, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। दिल्ली कालकाजी रेप मामले पर एक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, डीडीए और एमसीडी कमिश्नर की बुलाई बैठक। पार्क के एंट्री एग्जिट पर नई टेक कैमरे और लाइट्स। संसदीय वारदात से दहला आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी, बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। एशियन गेम्स, भारत की मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा। वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में जीता सिल्वर मेडल। देश भर से बधाइयों का तांता।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एसआर को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब आयोग के सूत्रों ने सफाई दी है। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुद्दों पर किसी आयोग की राय मुख्य प्रस्ताव से अलग राय दिखी तो किसी प्रस्ताव पर किसी दूसरे आयुक्त की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआर को लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज की। दोनों ने कुछ कदमों को बिना उनकी जानकारी के उठाए जाने पर सवाल उठाए। आयोग के सूत्रों ने सिस्टम में केंद्रीय हस्तक्षेप से इनकार किया, कहा पूरे देश के लिए एक सिस्टम, सभी ईआरओ की ही डेटा फीड करते। चुनाव आयुक्तों को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स पर विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल। राहुल गांधी ने कहा वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध, इंसाफ जरूर होगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्यसभा में पहले से लंबित प्रस्ताव को अब सामने लाना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग। अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज और एसआर को लेकर उठाए सवाल। सिब्बल ने आरोप लगाया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में बदलाव और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताई थी। एसआर को रोकने और चुनाव आयोग के कामकाज की जांच की मांग। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मतलब सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग। आप नेता सौरभ भारद्वाज और शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, सीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कालका जी में नाबालिग से हुए रेप मामले में दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। कालका जी इलाके में रेप की घटना पर लेडी श्रीराम कॉलेज के छात्रों में नाराजगी का रोजाना होती है छेड़छाड़, थाना पास होने के बावजूद पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिल्ली में छात्रों का ऐलान, कालकाजी गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में छात्र निकालेंगे एकजुटता मार्च। कालकाजी इलाके में 17 साल की लड़की के साथ रेप की घटना पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर शामिल। दिल्ली महिला सुरक्षा का नया प्लान, बनेगी पिंक फोर्स, संवेदनशील इलाकों में होगी पेट्रोलिंग। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी में 4 शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत। भारत टैक्सी की शुरुआत में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर सवाल उठाया, कहा सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क ये पता ही नहीं लगता था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने युवाओं से भारत टैक्सी को अपनाने का आह्वान किया, कहा अपनी गाड़ी अपना ड्राइवर और कमाई भी अपने घर में रहे। एसपी सरकार प्रशांत साथवे पाठक ने दफ्तरों की व्यवस्था पर टिप्पणी की, बोले पिछली सरकारों के दौरान सहकारिता विभाग लूट का अड्डा था। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बोला हमला, तुष्टिकरण के चैंपियन बनने के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग हो रही है। आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे 2 पुजारी समेत 4 लोग की हत्या करने वाले सनकी आरोपी का एनकाउंटर। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कैद कर लिया था। सूचना मिलते एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। सन के आरोपी ने फिर 10 साल के बेटे को मारी गोली, गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने फोर्स्ड एंट्री की। आरोपी है कि बाजार से घर पहुंचे आरोपी अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगना शुरू किया, इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पत्नी से उनकी बहस हो गई। आजमगढ़ में खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अरविंद सिंह के बचपन के दोस्त आशुतोष सिंह ने आज तक से बातचीत में कई खुलासे किए। दोस्त बताया कि 2018 में बड़े भाई की मौत के बाद से आरोपी को पूजा पाठ से चिढ़ हो गई थी, घर में आने वाले से हत्या का डर लगा रहता। भाई की हत्या के बाद से आशुतोष दोस्तों से गांव वालों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, अकेले अपने बेटे बेटी को साथ लेकर आता जाता था। पूजा पाठ करने आए पुरोहितों ने भूत प्रेत की बात कही, जिसकी वजह से घर वालों ने महामृत्युंजय का जाप किया। आरोपी अरविंद ने अपने बड़े भाई सुनील सिंह की विरासत मिली रिवॉल्वर से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता संगीत सोम का निशाना, बोले कांग्रेस समाजवादी की लड़ाई सीट को लेकर नहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर है। संगीत सोम ने अखिलेश और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोला, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, उन्होंने सनातनियों पर गोली चलवाई थी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बोला हमला, कहा तुष्टिकरण के चैंपियन बनने के लिए गाली गलौज की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग हो रही है। सहारनपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचकर खाना खाया, सादा खाना परोसा गया, मंदिर में पूजा की, फिर परिवार के साथ किया भोजन। लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक, मायावती पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगी। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच डिमोलिशन ड्राइव, मस्जिद और आसपास के इलाकों पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इसी रोड पर की जा चुकी है तोड़फोड़, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना से इलाके में फैली सनसनी। वारदात के बाद से आरोपी फरार, पुलिस टीम मौके पर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश तेज। जमुई छेड़छाड़ मामले में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 19 सितंबर की इस घटना के सिलसिले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 5, जिसमें 3 नाबालिग। जमुई में नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, आरोपी को कड़ी सजा की मांग। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को बॉम्बे आईआईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेजा, मैनेजमेंट ने 10 मेंबर के पैनल का गठन किया। एक हफ्ते में रिपोर्ट देगा पैनल, प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। मृतक साहिल के पिता के धरने पर बैठने की चेतावनी दी, बोले अगर दुल्ला और केदारी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। SC ST एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना है। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झुल्ली ग्यारस का पर्व। उत्तराखंड के लैंसडाउन में से अजीत डोभाल, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर का किया दौरा। दौरे के दौरान डोभाल ने रेजिमेंटल गीत बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो भी गाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्यम रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी बोले आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कवर होगा। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज। और सीधे आपके लिए चलेंगे अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
1: तो उस चौथे स्तंभ के दर्जे का आप निर्वाह, उस धर्म का निर्वाह किस प्रकार कर सकते हैं, करना चाहिए, क्या अपेक्षा है? दोस्तों, पहला बिंदु, बहुत वर्ष पहले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ईसी एक बहुमत की संस्था है। आपको याद होगा माननीय सेशन साहब के समय ये कानूनी प्रश्न उठा कि सीईसी सर्वोपरि है, चुनाव आयोग के जो ईसी हैं वो बराबर का हक नहीं रखते, अधिकार क्षेत्र, हक या संवैधानिक दर्जा। और इसको स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जिसको मैं भी पढ़ूंगा 2-3 मिनट बाद, कि सभी सीईसी बराबर हैं, सभी ईसीज बराबर हैं, सीईसी ईसीज के ऊपर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। आज का जो खुलासा हुआ है आप लोगों के द्वारा, उससे हमको मालूम पड़ता है कि माननीय सीईसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया, उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया, उन्होंने अपने खुद के ईसीज को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है। तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका यह बहुत घिनौना एक उदाहरण है, और विशेष रूप से घिनौना है एक संवैधानिक संस्था के लिए। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण उतनी ही होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं एक स्पेशल स्टेटस रखती हैं। उच्चतम न्यायालय ने, मैंने नहीं, आज 30 साल या लगभग 30 साल पहले यह कहा था, और जिनको इसमें शक सुबह हो, और मैं चाहूंगा कि माननीय सीसी भी पढ़ लें इसको अगर वो भूल गए हो या कभी पढ़ा ही नहीं हो, पैरा 20 में कहा था दैट चुनाव आयोग के जितने भी ईसीज हैं, कोट अनकोट, दे मस्ट हैव ए से इन डिसीजन मेकिंग, 30 साल पहले। और फिर कहा उसके बाद, इफ द सीईसी, कोट कर रहा हूं मैं, ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस पार्टी के शब्द नहीं है, If the CEC is considered to be a superior in the sense that his word is final, he would render the ECs non-functional or ornamental. Ornamental. 14 बार इन लोगों ने जिनको सीईसी ऑर्नामेंटल मानते हैं, डमी मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं, उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधू साहब ने, मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं, जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, उसमें मैं भी आऊंगा, लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधू साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधू साहब ने, दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। मई में उससे पहले उन्होंने विरोध किया कि अपना खुद का चुनाव आयोग का ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, खुद का, संस्था का, खुद स्वयं अपने खुद के चुनाव आयोग के आईटी डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेस नहीं दिया जाएगा। यानी आप जिसका काम है आपकी कंपनी में काम करना, जो अधिकार क्षेत्र है आपका, आपको आपकी कंपनी की ही आईटी डिपार्टमेंट अपने ही काम के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में एक्सेस नहीं देता है। ये उन्होंने मई में लिखा। सबसे बोलने वाली चुप्पी, एलोक्वेंट साइलेंस। फिर अगस्त में संधू साहब ने लिखा कि ये तो कमाल है भैया, 20-23 लाख लोगों ने 38 लाख में से, पश्चिम बंगाल के विषय में 20-22 लाख लोगों ने, जिनका नाम हटा दिया गया था, उन्होंने अपील की। लेकिन जो आंकड़ा आप नहीं जानते हैं, 16 लाख अपील चुनाव आयोग ने की। चुनाव आयोग ने अपील की उस अफसर के ऑर्डर के विरुद्ध कि आपने इन लोगों को जोड़ा क्यों। तो संधू साहब ने लिख के पूछा, यह भी अगस्त में, कि साहब आपने किसकी अनुमति से, चुनाव आयोग ने अपील की, चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए ना, चुनाव आयोग सिर्फ आप हैं क्या। फिर वापस चुप्पी। ये कैसा हाईजैक है, ये कैसा एक व्यक्ति विशेष हाईजैक है, ये कैसी तानाशाही है दो बुलडोजरों की। क्या ये बाकी ईसीज डमीज हैं, जैसा कि लवासा साहब ने लिखा था लिखित रूप से तब, और आशा और विश्वास करते हैं कि लवासा साहब वाला जो एक वक्त दुर्दशा की गई थी वो वापस नहीं होती है। उन्होंने लिखा था कि क्या हम क्लोन्स हैं, मेरे शब्द नहीं है, क्या ये पदासीन लोग व्यर्थ हैं, कि क्या ये सुंदरता बनाने के लिए एक ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है। किस धर्म का निर्वाह कर रहा है सीईसी, प्रशासन का कौन सा धर्म है, राजनीति का कौन सा धर्म है, आप कार्यपालिका से निकले, कार्यपालिका का कौन सा धर्म है। आपको तो एक सेकंड भी इस पद में आगे चलने का, नैतिक, कानूनी, किसी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं बचता। यह है पहला बिंदु। बल्कि मजाक की बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग देश भर में बात करता है वन मैन वन वुमन वन वोट, करता है कि नहीं। चुनाव आयोग ने खुद ने अपने आप को एक ऐसी संस्था बना दी है जहां नो वन वोट नो वन वैल्यू, तीन लोगों की बराबरी वोट नहीं है। इन चार महत्वपूर्ण मुद्दों में जिसमें आने वाला हूं मैं, उसमें एक व्यक्ति का एकल वोट है, वन मैन वन वोट नहीं है। उच्चतम न्यायालय का 95 का निर्णय डस्टबिन में पड़ा है, लिखित विरोध का जवाब नहीं है, संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। दूसरा इसका पहलू है, जो कि बड़ा संक्षिप्त दो लाइन का पहलू है, पारदर्शिता। हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हम बड़ा औपचारिक रूप से मांग करते हैं कि जितने भी ये डिसेंट नोट्स हैं, जितने भी ये लिखित विरोध हैं, आप समक्ष रखिए देश के। ये नहीं बोली हमको कि आरटीआई में अप्लाई करो, क्योंकि हम जानते हैं आरटीआई में क्या करेंगे आप। निश्चित रूप से निरस्त करेंगे, फिर कहेंगे अपील करो, फिर कहेंगे अपील करो। आपका जवाबदेही बनती है देश के संवैधानिक संस्था के रूप से कि सामने रखिए। तीसरा बिंदु, ये क्या मुद्दे थे जिनके विषय में ये चुनाव आयोग के वरिष्ठ मेंबरान दोनों संधु जी और जोशी जी कई सारे बहुत महत्वपूर्ण पदों से आए हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर इनका दर्जा रहा है, उन्होंने किसके बारे में लिखा? मैं चार बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं जो भयानक है। फॉर्म सिक्स में बड़ा सरल करने वाला हूं, अखबार पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें लाइन में जाना पड़ता है, और मैं वापस बधाई दूंगा कि शोध के साथ लिखा गया है, लेकिन मैं उस शोध को सरल करना चाहता हूं आपके सामने। फॉर्म सिक्स वैसा फॉर्म है जो पहली बार आप 18 साल 1 दिन के हुए, आज आपका उम्र 18 साल 2 दिन हुई, ये व्यक्ति या ये महिला जाके अर्जी देती है कि मुझे वोटर बनना है पहली बार, तो पहली बार इसमें प्रश्न आता है, आप बन नहीं सकते, आप उसमें ऑनलाइन नहीं कर सकते, प्रश्न आता है कि हाँ हम बनाएंगे, आप पहले ऑनलाइन भरेंगे, लेकिन ऑनलाइन भरने से पहले बताइए कि क्या आपके मां बाप या आपके दादा दादी पिछले एसआईआर में थे कि नहीं। चलिए ये मान लिया, ये कहां है फॉर्म सिक्स में? नहीं है। आपने बदला फॉर्म सिक्स? हां। किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीईसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधु साहब और जोशी साहब ने, कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है, ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए, आज मेरे परिवार में 2 लोग 18 के हो जाते हैं, इनके परिवार में 4 लोग 18 के होते हैं अगले साल, इनके परिवार में 4 लोग 18 के होते हैं बाद में, यानी हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे, उनकी नागरिकता नहीं देखी जाएगी, उनकी उम्र नहीं देखी जाएगी, उनकी रहाइश रेजिडेंस नहीं देखी जाएगी, उनका आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके बाप दादा और पिता और माता आपके उस एसआईआर में, वो पुराने एसआईआर में थे कि नहीं। अब इसका एक और तीसरा दुष्प्रभाव देखिए, ये सर्वमान्य है कि 13 करोड़ लोग, 13 करोड़ ज्यादातर यूरोपियन देशों की आबादी से ज्यादा होता है, छोटे मोटे देश नहीं बड़े बड़े देश भी, 13 करोड़ लोगों को आपने स्ट्राइक ऑफ कर दिया एक पेन लगा के, एक कंप्यूटर क्लिक से इस देश में ऑलरेडी, अभी तो चल रही है बात, मैं अभी आंकड़े दूंगा, मेरे काबिल मित्र जयराम जी ने आपको आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े दूंगा वापस, भयानक है वो, लेकिन 13 करोड़ हट गए हैं। अब आप ये सोचिए कि 13 करोड़ जो हट गए हैं उनमें से 13 करोड़ के सब बच्चे 18 के होते हैं एक साल बाद, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 13 करोड़ में से 1 करोड़ के होते हैं, 5 करोड़ के होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, 18 साल के होते हैं, आपने उनको निरस्त कर दिया है, तो उनकी अगली पीढ़ी और उस अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी कभी मेंबर बनी नहीं सकती, यद्यपि उनकी रिहाइश यहां है, आधार कार्ड यहां है, रहते यहां है, सब कुछ काम काज यहां करते हैं। ये भयानक नहीं लगता आपको? आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने नहीं, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो समझते हैं कि संविधान भी वो है, चुनाव आयोग भी वो एकल है, देश भी वो है, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की बाहर से सुनते हैं, एक दो की भी नहीं, इस देश की हमने इस हालत पे ले आए, इस कगार पे ले आए हैं इसको। चौथा बिंदु, ये इन्होंने उठाया प्रश्न, ये जो ईआरओ को कानून द्वारा, चुनाव आयोग के कानून द्वारा इंचार्ज बनाया गया है वोटर लिस्ट का, ईआरओ कौन होता है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, जो एक एसडीएम या सरकारी अफसर होता है, क्यों? जिससे एक व्यक्ति का, एग्जैक्टली इसी उद्देश्य से कि एक व्यक्ति का हमारे अखिल भारतीय वोटर लिस्ट में संपूर्ण एकल अधिकार क्षेत्र न हो। मैं कितना भी बड़ा हूं, प्रधानमंत्री हूं, आप गृहमंत्री हैं, आप सीईसी हैं, आप राष्ट्रपति हैं, किसी एक का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा वोटर लिस्ट पे, इसलिए उसका विकेंद्रीकरण किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया, हर डिस्ट्रिक्ट या हर सेगमेंट बनाया, डिफाइन किया, उसका इंचार्ज वोटर लिस्ट का एक ईआरओ होता है, और वो बदलाव वोटर लिस्ट में सिर्फ वो कर सकता है। अब जो दूसरा प्रश्न माननीय संधु जी और जोशी जी ने पूछा, कि लिखित रूप से मेरे को तो भयानक लगता है सुन के, हजारों ईआरओ ने कंप्लेंट की है कि हम अपनी ईआरओ अपने चुनाव आयोग की अपने पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसका नाम है ईआरओ नेट पोर्टल। क्यों? क्योंकि एक माननीय महिला को आदेश मिला है, निश्चित रूप से आदेश ही रहा होगा, जो आईटी डिपार्टमेंट की हेड है चुनाव आयोग में, कि ईआरओ को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाए। ये अगस्त में चिट्ठी लिखी, कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहा कि सबको दिया जाए, जवाब चुप्पी। रूल्स रेगुलेशन में कोई बदलाव नहीं है, ये माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त का तानाशाही का एक दूसरा या तीसरा उदाहरण है। इसका आप इसका दुष्प्रभाव सोचिए, लाखों ईआरओ अंततो गत्वा बदलाव अगर इंक्लूड करते हैं इस महिला को या इस व्यक्ति को, खुद नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसको रुकावट है। ये लिखित है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा, यानी मेरा पांचवा बिंदु, जो तीसरा उन्होंने विरोध किया लिखित रूप से, जो मैंने आपको बोला 38 लाख जो हुए केसेस पश्चिम बंगाल में, उसमें से 22-23 लाख अपील में गए, जो लाजमी है, और उनकी 90% सफलता रेट रही है, यानी 10 में से 9 लोगों की अपील अलाउ हुई है। लेकिन साथ साथ 16 लाख अपील चुनाव आयोग करता है, जहां पर बहुत जबरदस्त कोई गलती है, जहां 2+2=4 लिखा है, मैं मान सकता हूं, वो भी निर्णय चुनाव आयोग को करना है। हम बार बार आयोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए कोई कागज होता है, अनुमति होती है, ऑर्डर होता है, कोलिजियलिटी एंड कलेक्टिविटी होती है, सामूहिकता होती है, कहां है? लिख के दिया उन्होंने कि हमसे पूछा, किससे पूछा चुनाव आयोग ने, 16 लाख अपील करी है। अरे भाई, वहां पर जो अपेलेट बॉडियां बनाई है उच्चतम न्यायालय ने, वो वैसे ही मर रही हैं, पीठ टूट रही है उनकी अपील डिसाइड कर करके, उसमें से 16 लाख अपील आपकी नहीं है जो आप निरस्त हुए हो, 16 लाख अपील चुनाव आयोग की है। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। हां, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस खुलासा पत्रकारिता के बाद आएगा कोई ना कोई घुमा फिरा का, कोई ना कोई एक बकवास सा जवाब आएगा, जो हमको कई बार मिल चुका है, जब हम पीडीएफ मांगते हैं, जब हम वोट चोरी की बात करते हैं, वैसा ही जवाब आएगा। एक और बिंदु, चौथा बिंदु, जो व्यापकता और विशालता है इन सब चीजों की, उसको जानना आवश्यक है। ये एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, चुनाव आयोग की, और उसमें एक बिंदु की, चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन इसकी व्यापकता विशालता इसकी घुनौनेपन को दिखाती है। पहला, चुनाव हमको जीतना है, ये सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का एक निर्णय है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जीतना जीतना जीतना है। अब इसके उदाहरण देखिए, जहां हम जीत भी गए हैं, जीत गए हैं, वहां भी विपक्ष का नामोनिशान नहीं होना चाहिए। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, विश्व भर में एक उदाहरण है, विश्व भर में, प्लैनेट अर्थ में, पश्चिम बंगाल की असेंबली एक ऐसी असेंबली है गणतंत्र में जो सत्तारूढ़ पक्ष का औपचारिक रूप से समर्थन करती है। अगर आपने किसी और देश में ये सुना हो या बच्चों को कहानियां सुनाई हो इसके बारे में, तो मुझे बताइएगा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। औपचारिक रूप से औपचारिक विपक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का समर्थन वहां जीते हुए चुनाव। कैसे आया वो समर्थन हम जानते हैं, त्रिपुरा से आया।
2: Well, they are saying that they would require some support for their, they have a 7-day feast, and they were showing me they have other problems like in the house, some repairing and things, so of course we'll help them.
3: Yes. Already these people are saying about a road and
2: yes, they also said, they also said that they would like to have a bridge here, and that they are having a series actually all across the constituency, the Manrega, the VBG Ramji workers, they are having a major problem because they have to upload their details of doing the work twice a day. In these areas there is no signal, there is no tower, sometimes the portal is not functioning, it's very difficult, they don't even have smartphones, so it's a very, very difficult process for them to upload their photograph twice a day and to go through that whole complicated process of the portal. So I have taken it up already. I wrote to the ministry. I also spoke to one of the ministers when we were having a discussion about another tuberculosis program. They requested a note. I've given a note. But basically, in remote areas and tribal areas and areas which are not fully covered by mobile services, actually that system is not working. So that portal system needs to be changed or altered to be able to accommodate, because these are the people who need that job most. You know, they are the people who need the MNREGA work, the VBG Tamji work. So I think it's designed to help them, but because of this technical thing now, they're having great difficulties using it. So I'm going to take it up, and I hope when I go back, maybe I'll try to get a meeting with the people who have actually under whom the portal sits, and explain to them that these are the problems.
3: This is one of the major marginalized areas in Kerala. They are facing a lot of issues like the attacks from the wild animals.
2: Yes,
3: how do you think, what kind of help they need?
2: See, the human-animal conflict is a very complicated issue because there are many, many factors due to which it is happening. We have been discussing, and I think there is also going to be a meeting this week itself on the topic where experts and everybody will come together and we'll discuss what is the best way to help resolve the problem. I think the answer actually will lie in community efforts along with government and in all the stakeholders having a...
1: Hallelujah, Bindu. I'm talking about the numbers. These are not our numbers. These are the prakashit, aupcharik, sarkari numbers. In sab ke alawa, 5.43 crore voters ko notice diya gaya hai, अतिरिक्त एडिशनल दस्तावेज सप्लाई करो हमें. ये नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है, यानी 5.43 13 करोड़ से ऊपर संदिग्ध हैं. संदिग्ध हैं, कारण बताओ नोटिस में चल रहे हैं. इसके स्टेट वाइज
2: हाईलाइटेड मल्टीपल इश्यूज एंड नाउ यू आर सीइंग दैट इट इज कमिंग आउट इन द न्यूज मीडिया एज वेल दैट इलेक्शन कमिश्नर्स देमसेल्व्स हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द इश्यूज टू Ganesh Kumar ji. So I think this is an extremely serious issue for our democracy. Because if there are no elections, then where is democracy? And if the elections are unfair and they are being rigged in any manner, and the election commission is assisting in that, and if the election commissioner himself is not only aware of it, but he is allowing it to happen, then it is a very, very serious assault on democracy. It is treachery with the nation. It is an act of treason. And whoever is doing it has to be taken to task. There should be proper procedure and it should be properly investigated. And investigated not by people who are not going to have a fair investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know, we are the largest democracy in the world. And we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues. We are all working tirelessly to strengthen our democracy. And here is the election commission that is doing all it can to weaken it. If that is actually the case, and if what is come in the news media are actual facts, and if what we have suspected for a very long time, which Rahul Gandhi ji has been highlighting again and again with the manipulation of voters' lists, the deletion of lakhs and lakhs of voters, the manipulations that have taken place in states like Maharashtra, Haryana, we have seen again and again, then absolutely this is something extremely serious. And those people who are responsible for it, they have to be taken to task. They have to be held responsible.
0: Please. इसी में मतभेद की खबरों पर प्रियंका गांधी का बयान आ चुका है. प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर लोकतंत्र के लिए ईसी को एक बड़ा खतरा बताया है. प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र की एक मजबूत नींव के तौर पर ईसी होना चाहिए, और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने और उसमें जिस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं तो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है, इसी की वर्किंग्स और प्रोसीडिंग्स और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। ईसी में मतभेद जिसकी खबर सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। तो अब प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, इसकी निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलग अलग राज्यों के चुनाव को लेकर, यह कहा था कि ईसी की जो एसआर की प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। और अब देखिए हमारी खास पेशकश शूट आउट एट आजमगढ़।

अब आपको एक ऐसी वारदात दिखाएंगे जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यूपी के आजमगढ़ में ऐसी वारदात हुई जिसमें चार की हत्या हो गई, फिर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी मारा गया। इस संगीन वारदात के पीछे एक परिवार की खुशियां छिन गई। बच गई हैं तो आरोपी की दो मासूम बेटियां और उसकी बुजुर्ग मां। आरोपी ने अपनी पत्नी को मार डाला, अपने इकलौते बेटे को मार डाला और घर में पूजा कर रहे तीन में से दो पुजारियों को भी मौत के घाट उतार दिया। आजमगढ़ में आरोपी करीब 8 घंटे तक अपने बच्चों को ही बंधक बनाए रखा और उसके एनकाउंटर के साथ ही इस गुनाह का अंत हुआ। आजमगढ़ में मंगलवार की शाम ऐसी वारदात हुई, इसका अंत भी बेहद दुखद रहा। एक शख्स ने 4 हत्याएं की, बच्चों को घंटों तक बंधक बनाए रखा। स्थिति ऐसी विकट हो गई कि पुलिस को इस संकट को खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। स्पेशल कमांडो लगाने पड़े, भारी संख्या में यूपी पुलिस की टीम मोर्चे पर डटी रही। सवाल यही कि आखिर आरोपी ने अपनी पत्नी, बेटे और दो पुजारियों को क्यों मार डाला। इस पर देखिए रिपोर्ट।

0: छह गोलियां, चार मर्डर और एक एनकाउंटर। 8 घंटे तक बंधक संकट, घर के अंदर खूनी खेल। इस चार दीवारी के अंदर वो खौफनाक वारदात हुई है जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। इस घर में एक शख्स ने चार चार खून कर दिए। यहां 8 घंटे तक ऐसा संकट चलता रहा जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो गया। यह खौफनाक वारदात हुई है आजमगढ़ के अहरोला थाने के शंभुपुर गांव में। वहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर 2 पुजारियों को मार डाला, उसके बाद अपने 1 बेटे और 2 बेटियों को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर आरोपी ने की फायरिंग और अपने जिगर के टुकड़े के लिए जान। इस पूरे मामले का अंजाम बेहद खौफनाक हुआ है। आखिरकार जवाबी कार्रवाई में 4 हत्याओं का आरोपी अरविंद सिंह पुलिस की गोली से ढेर हो गया। इस हत्याकांड और एनकाउंटर के पीछे 2 अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के मुताबिक जानकारी दी है कि आरोपी अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है, उसी के लिए परिवार में पूजा पाठ कराया जा रहा था, जिसे लेकर अरविंद नाराज था। गुस्से में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
1: ये जो परिजन और गांव वालों का बताना है कि ये इस चीज से नाराज था और परिजनों को आशंका थी कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उसके लिए अनुष्ठान आवश्यक है और ये इस चीज से नाराज था, इसको इस चीज पर आपत्ति थी। आज 4th दिन था, कल इसका समापन होना था, उसी में नाराज होकर इसने घटना को अंजाम।
0: दूसरी थ्योरी ये है कि 2018 में आरोपी अरविंद सिंह के बड़े भाई की हत्या हुई थी, तब से उसका पूजा पाठ से विश्वास उठ गया था, जबकि उसकी पत्नी घर में महामृत्युंजय जाप करा रही थी। आज उसका समापन होना था, लेकिन 22 सितंबर की शाम घर में पूजा पाठ को देखकर आरोपी अरविंद बौखला गया। उसने तुरंत पुजारियों से आधार कार्ड दिखाने को कहा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वो पुजारियों का अपमान ना करे। इसी बात से अरविंद के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तुरंत पत्नी को वही गोली मार दी, फिर 3 में से 2 पुजारियों को भी मार डाला।
2: अब ये खून पड़ा हुआ है अंदर, आप देखेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम इस घर के अंदर का ही है। महामृत्युंजय का जाप चल रहा था, 3 दिनों तक लगातार पूजा पाठ हुआ, फिर कल करीब 5:30 बजे की बात बताया जा रहा है कि अचानक से तैश में आकर अरविंद ने उन पुजारियों से उनका आधार कार्ड पूछा। उसके बाद जब पत्नी ने विरोध किया कि जो ब्राह्मण पूजा कराने आए उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो पहले उसने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद दोनों ब्राह्मणों को गोली मार दी, जो पुरोहित आए थे उन दोनों पुरोहितों को गोली मारी, फिर उसके बाद अपने 3 बच्चों को बंधक बनाकर करीब 8 घंटे तक पुलिस को छकाया।
3: और इसको देखने से भी नहीं लगता था कि कभी मिसयूज करेगा।
2: क्या ऐसी बात हो गई कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया?
3: अब उसके दिमाग में जो भी चला हो अरविंद के,
2: पूजा बस एक
3: पूजा से मना कर रहा था और बोल रहा था आधार कार्ड दिखाइए आप हमको, नहीं तो आप मेरा कत्ल करने आए हैं।
2: अच्छा,
3: हाँ, पंडित जी लोगों से ही बोला। अब पंडित जी लोकल थे हमारे बगल के, तो उनको लगा कि रोज हमको देखता जानता है, हमारे ऊपर गोली थोड़ी चलाएगा। लेकिन अब उसके मन में था कि ये इनसे हमको खतरा है तो गोली चलाएगा।
0: 3 हत्याओं के बाद आरोपी अरविंद ने अपने 3 बच्चों को बंधक बना लिया, उन्हें ढाल बना लिया। इसी दौरान उसकी फायरिंग में उसके 8 साल के मासूम बेटे की भी जान चली गई। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़ आज तक।
4: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे आजमगढ़ से। संतोष, आरोपी ने जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं उसके मन में कई तरह की आशंकाएं चल रही थी। पुरानी पृष्ठभूमि को भी अगर देखें तो क्या वो मेंटली पूरी तरीके से सही था या फिर उसी दिन किसी घटना से उसे इतना गुस्सा आ गया कि पूरी वारदात हो?
2: देखिये, बड़े भाई की हत्या जो सुनील सिंह की 12 अक्टूबर 2018 को हत्या हुई, उसके बाद से ही वो एकाकी अकेले रहने लगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और एक तरीके से उसको पूजा पाठ से विश्वास उठ गया। वजह कि सुनील सिंह की जब हत्या हुई तो वो एक मंदिर में पूजा हो रही थी, वहां पर गए थे, उसी समय घात लगाकर उनकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद से उसका पूजा पाठ से मन उठ गया और चिड़चिड़ा भी हो गया था। पुजारियों से पूछा गया, जो पुरोहित है जिनकी हत्या हुई वो कई पीढ़ियों से इनके घर की पुरोहिती करते आए हैं, उनसे पूछा गया तो कहा गया कि बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए इनके लिए भी महामृत्युंजय का जाप करवा दो, और महामृत्युंजय का जाप 3 दिन से चल रहा था। सोमवार को भी अरविंद ने इसी तरीके से विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, तो घर वालों ने ही पुलिस की 112 को बुला लिया, किसी तरीके से मामला रफा दफा हुआ। और जब मंगलवार को दोबारा से अरविंद बाजार से होकर के आया तो उसने दरवाजे के अंदर घुसते ही आंगन में पत्नी को देखा, पत्नी और दोनों पुरोहितों से पूछा। एक दूसरी जो शक और आशंका इस बात की है कि अरविंद को इस बात का शक रहता था कि जो भी अनजान व्यक्ति उसके घर में आएगा वो उसके लिए हत्यारा हो सकता है, उसके लिए घातक हो सकता है, उसकी जान ले सकता है। यही वजह थी कि जो पुरोहित कई पीढ़ियों से उसके घरों में पूजा करा रहे थे, पारिवारिक रिश्ते थे, उनसे घर में घुसते ही आधार कार्ड मांग लिया कि आधार कार्ड दिखाओ। और उसके बाद जब वो अपशब्द करने लगा तो पत्नी ने विरोध किया कि पुरोहितों का अपमान मत करो। तो पहले उसने पत्नी को गोली मारी और तीन पुरोहितों में दो पुरोहितों की जान ले ली। जो तीसरा पुरोहित था वो किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला और उसी आवेश में उसने अपने तीनों बच्चों को उसने अपने कमरे में बंद कर लिया, बंधक बना लिया। और इसके बाद करीब 8 घंटे तक वो बंधक बनाए रहा। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, किसी तरीके से उसको समझा बुझा करके अरविंद की माँ को भी लाया गया, उसकी बहन को भी लाया गया, परिवार वालों को बुलाया गया।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। संगीन वारदात के बाद करीब 8 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, इस दौरान पुलिस और स्पेशल कमांडोस लगातार वहीं डटे रहे। पुलिस लगातार आरोपी को समझाती रही, बंधक बनाए गए बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन उस 8 घंटे में क्या कुछ हुआ उस पूरे ऑपरेशन पर देखिए ये रिपोर्ट।
5: एक दिन पहले की बात है, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तभी आरोपी अरविंद की इस घर में एंट्री होती है। फिर यहाँ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं। आरोपी की बुजुर्ग माँ की डबडबाई आंखें काफी कुछ बयां कर रही हैं। अब ना इनका इकलौता बेटा बचा है जिसने सभी को गोली मार दी और फिर एनकाउंटर में मारा गया, न घर का इकलौता वारिस बचा, न ही इनकी बहू बची।
6: बाबू पूजा होते है, कौनो झगड़ा रगड़ा परमिशन से थोड़ी कर रही हूँ, पूजा होते है, महामृत्युंजय जाप होते है। वह 3 दिन तो भर, चौथे दिन पता नहीं कहा जैसे बहुत झगड़ा कहा पूजा ना होके पंडित लोगों ने आधार कार्ड दम तो पंडित स्वा की कहा हमने आधार कार्ड दा तो कहना बाबू हम नाचन स्वा कहना तो उन्होंने आधार कार्ड दा, आधार कार्ड दा कहना अच्छा आधार कार्ड मिले तो ले लाठी निकलना मारे के उन्हें डंडा
2: पंडित जी लोगों
6: ने। हाँ अच्छा, डंडा निकला रिवाल्वर खोसले रहे, रिवाल्वर हर में है खोसे उनका मेहरारू गेल धरे के पंडित लोगन के अपमान ना करे कि नहीं मैं जब मारे उन्होंने अपमान ना करके तले मार दे मेहरारू के गिर गई।
5: इनके बेटे अरविंद के सिर पर जो खून सवार था उसमें सब खत्म हो गया, बची है सिर्फ 2 मासूम बेटियां, 1 5 साल की और दूसरी 6 महीने की मासूम। साथ ही बचे हैं इस खूनी कांड के निशान।
2: साड़ी में भी खून लगा, खून कैसे लगा है? बचावे में
6: बचावे में
2: बहुरिया के। हाँ
6: बहुरिया तो अचानक गिर गए, जैसे बहुरिया से पकड़ा गए उन्हें तले मार तो गिर गए। हाँ। बोले पंडित के जात हमने मारा तो हम गए पकड़ा, पंडित हमारे हरिया हो गई ना जातना मार से इसे कहीं पकड़ नहीं।
5: अरविंद मंगलवार की शाम बाजार से लौटा था, तभी उसने पत्नी और 2 पुजारियों की हत्या कर दी। उसके बाद अपने 3 बच्चों को घर के कमरे में बंधक बना लिया। अब तक पुलिस को इस संगीन वारदात की खबर लग चुकी थी, बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे, घेराबंदी की जा चुकी थी। आरोपी ने घर के अंदर की लाइट बंद कर दी थी, कमरे में वो बच्चों को बंधक बनाए हुए था, उसके पास लोडेड लाइसेंसी पिस्तौल थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए पुलिस वाले आरोपी से बातचीत में जुटे थे, लेकिन अरविंद कतई सुनने को तैयार नहीं था।
7: पुलिस अधिकारियों से बात कराई और हर बार उसका यही जवाब था कि नहीं मैं बच्चों को साथ में है और यही मेरे शील्ड है और इस पर कोई समझौता नहीं
8: हुआ नहीं है
7: और सुबह देखेंगे, अब आप लोग वापस जाइए। तो एक लिमिट के बाद 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे और फिर हम लोगों ने ये किया कि कम से कम हम लोग घेराबंदी वगैरह करके रखते हैं, कोई बाहर को भागने की कोशिश करें।
5: गंभीर स्थिति को देखते हुए मौके पर स्पेशल कमांडो को बुलाना पड़ा, फिर पुलिस ने घर के दरवाजे को डोर बस्टर से उड़ाया, आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की।
7: तैयारी हमारी चली रही थी, उस बीच में अंदर से एक फायर की आवाज आई, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अंदर तीन बच्चे थे और एक फायर का मतलब था कि कितनी भी घटनाएं हो सकती थी। तुरंत स्टन ग्रेनेड और टियर गैस ग्रेनेड का यूज करके और दरवाजा तोड़कर डोर बस्टर से दरवाजा तोड़ा गया, तख्त से तोड़ा गया और एसएसपी साहब, एसओजी इंचार्ज और एक कांस्टेबल एसओजी का है प्रदीप, तीन लोग अंदर गए और अंदर जाते ही उसने लगातार 4-5 फायर किए और टोटल उसकी 6 राउंड की वो थी रिवॉल्वर थी, उसने सारे खाली कर दिए। पुलिस की तरफ से 3-4 राउंड फायर करना पड़ा। उसके बेटे को ऑलरेडी गोली लगी हुई थी, जब अंदर गए तो देखा ऑलरेडी वो घायल था।
5: अरविंद की फायरिंग में उसका 8 साल का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो तुरंत बच्चे को बाहर निकाला। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल अरविंद को भी बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी अरविंद की दो मासूम बेटियां बाल बाल बची हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़ आज तक।
4: आखिर कैसे कोई शख्स ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दे सकता है? 4 हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हर कोई हैरान है कि आरोपी अरविंद इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है। चारों हत्या की तमाम थ्योरी के बीच परिजन और ग्रामीण बता रहे कि वो निजी मामलों को लेकर काफी परेशान था।

0: अरविंद ने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने दो पुरोहितों महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा की भी हत्या कर दी। साथ ही अरविंद सिंह ने अपने बेटे को भी मार डाला। जानकारी के मुताबिक कई पीढ़ियों से महेंद्र पाठक अरविंद सिंह के परिवार के पुरोहित थे। 3 दिनों से वे अपने मौसेरे भाई अरविंद मिश्रा और अरविंद मिश्रा के बेटे आयुष के साथ पूजा पाठ में जुटे थे, लेकिन अरविंद सिंह की फायरिंग में महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई। हत्या, बंधक और एनकाउंटर की इस खौफनाक वारदात को सुनकर हर कोई हैरान है। सवाल है कि 4 हत्या और 1 एनकाउंटर की वजह क्या है? क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला? क्यों 2 पुरोहितों की जान ले ली?
1: अरविंद बिल्कुल जो है हम लोगों से, अपने फैमिली वालों से, जो बहुत खास लोग थे उनसे सबसे दूरी बनाते चले गए और ये पूजा पाठ का विरोध करना शुरू कर दिए। जब घर में, तो उस दिन जब पुलिस आई तो समझा बुझा के गई, 100 नंबर आई थी, हम लोग को सुनने में आया, जो हम लोग आए नहीं क्योंकि असलाह लेके घूमते थे भाई, किसी के ऊपर कब वार कर दें, क्या इनका भरोसा।
2: अच्छा, इतना आपका तो दोस्त, इतना भरोसा, मतलब ये शॉर्ट टेम्पर्ड?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मेंटली डिस्टर्ब थे, 100% डिस्टर्ब थे जी, लेकिन डिस्टर्ब के बाद भी अपने

0: उसकी परेशानी की वजह थी। 2015 में उसकी पत्नी ने पड़ोस के दो लोगों को रेप के मामले में केस दर्ज कराया था और दूसरा मामला था बड़े भाई सुनील सिंह की 2018 में हत्या। बड़े भाई सुनील की हत्या के बाद से अरविंद हमेशा तनाव में रहने लगा। तभी से वो तमाम धार्मिक अनुष्ठान से दूर रहने लगा। पूजा पाठ से उसका भरोसा उठ गया था। बीते सोमवार को घर पर जारी पूजा को रोकवाने के लिए उसने पुलिस भी बुलाई थी। अपने बड़े भाई की हत्या के बाद अरविंद ने उनके लाइसेंसी पिस्तौल को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया था। उसी पिस्तौल से उसने 4 हत्याओं को अंजाम दिया।
1: पुलिस ने उसको चेतावनी दी और हवा में फायरिंग करने के बावजूद जब उसने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई जिसमें आरोपी घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई।
0: पड़ोसी बताते हैं कि अरविंद को हमेशा उसकी हत्या का डर सताता रहता था, लिहाजा उसने दोस्तों और गांव वालों से मिलना तक बंद कर दिया था। हालत ऐसी हो गई थी कि वो नशे का भी आदि हो गया था। अब आजमगढ़ का ये परिवार उजड़ चुका है। पुलिस इस वारदात के वजह की सच्चाई जानने के लिए जांच में जुट गई है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़ आज तक।
2: और वहीं आजमगढ़ में आरोपी अरविंद के दोस्त बता रहे हैं कि आखिर उसने क्यों इतना खौफनाक कदम उठाया। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने उनसे बातचीत की।
3: क्या रहा ये घटनाक्रम, इनके भाई की हत्या कब हुई थी और ये अरविंद का कल क्या ऐसे घटनाक्रम हुआ?
4: जैसे देखिए, अरविंद के जो बड़े भाई सुनील सिंह थे गुड्डू, 2018 में उनकी डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था पूजा के दौरान। तो ये पूजा 12 अक्टूबर 2018 को, तो ये पूजा से थोड़ा इनको होता ना चिड़ टाइप हो गई थी
3: भाई की हत्या के बाद।
4: जी जी, क्योंकि पूजा के दौरान ही मर्डर हुआ था। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जब स्थिति सामान्य हुई मर्डर के बाद, तो लाइसेंस इनको प्रशासन द्वारा मिला। फिर इसके बाद इनके मन में क्या चलना शुरू हो गया कि ये लोगों से मिलना जुलना बात करना बंद कर दिए और ये थोड़ा भांग वगैरह का सेवन करते थे। मानसिक रूप से धीरे धीरे ये विक्षिप्त होते गए और अपने लड़कों को लेके साथ घूमना, जो इनका लड़का मरा है, लड़का और लड़की दोनों को ये साथ लेके मार्केट जाते थे, मार्केट से आते थे, अपने पास ही रखते थे। और जो घटनाक्रम उस दिन हुआ कल वाला, तो उसमें इन्होंने पंडित जी लोगों से मना किया था कि आप लोग पूजा करने मेरे यहाँ मत आइएगा। तो उसमें पंडित जी जब लोग, ये इनकी माँ और जो फैमिली वाले पंडित जी के यहाँ लोग गए, तो पंडित जी बताए कि इनके बड़े भाई का इनके ऊपर कुछ है ऊपर का, तो उसको ये लोग शांत करवाने के लिए पूजा करवा रहे थे। तो ये पंडित जी को मना किए थे कि मेरे घर मत आइएगा।
2: जिन दो पुरोहितों को आरोपी ने मार डाला उनमें से एक थे अरविंद पाठक, जिनका परिवार कई पीढ़ियों से पूजा करवाता आ रहा है। अब अरविंद पाठक की हत्या के बाद परिजनों में गम और गुस्सा है। उनके बड़े भाई से बात किया संवाददाता संतोष शर्मा ने।
3: ये कब से पूजा पाठ हो रहा था इनके घर में, और आप लोग उनके पुरोहित हैं?
5: हाँ, पुरोहित हैं। इसके ही नहीं, उसके आजा बाबा के हम लोग पुरोहित हैं, मैंने पुराना संबंध हम लोगों का है। अच्छा। तो यह इसकी तबीयत कुछ खराब थी, तो ये हुआ कि इसके लिए महामृत्युंजय कुछ करा दिया जाए। तो उसकी पत्नी और उसकी माँ ने यह ब्यौरा रखा अपना, तो पूजा चालू हो गई। तो पूजा चालू होने के साथ इसको यह पूजा अच्छी नहीं लग रही थी। पत्नी से और अपने माता से कहता था कि पूजा मत कराओ, लेकिन अब माँ जो चाहती है कि हमारा लड़का ठीक रहे, पत्नी भी यही चाहेगी। इस स्थिति में पूजा हुई उसकी। कल का चौथा दिन था। इसके बीच में भी कुछ एकाध बार जो है ब्राह्मणों से वह तकझक किया, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस भी आ गई थी
6: सोमवार को।
5: लेकिन कल की ऐसी स्थिति हुई कि पूजा का पाठ करके सभी लोग जा रहे थे, तो वह कहा कि आधार कार्ड हमको दीजिए आप लोग। आधार कार्ड एक बहाना बनाया, जबकि हमारा उसका संबंध यहाँ से 500 मीटर की दूरी है घर पर, और उसके बहुत पुराने पुरोहित हम हैं, आधार कार्ड की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन एक बहाना बना करके यह झगड़ा मैंने पैदा किया। और इसके बाद जो है वह गोली निकाल लिया, उसके पास पहले से ही 6 राउंड या 7 राउंड की जो है पिस्टल थी वो अपना भर करके सबसे पहले फायर किया। तो इसके बाद जो है उसकी पत्नी जो है एक ब्राह्मण के सामने जाकर के खड़ी हो गई, तो पहली गोली तो उसकी पत्नी को लग गया, वह तुरंत वहीं गिरी और सर पर लगी थी, मर गई। और इसके बाद जो है ये हमारे

0: मौसी का लड़का अखिलेश जो था, दूसरी गोली उसको दो गोली मारे सिर पर, वो भी तुरंत वही मर गया।
1: रुके यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: यार लोन भूल गया मैरी।
12: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
13: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
12: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
13: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
14: There's nothing small about it.
15: Ujjivan, nothing small about us.
16: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: GK Maxx.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: GK Maxx बेस्ट पुट्टी.
7: JK वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट.
7: JK Maxx.
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
7: JK Maxx Paints.
5: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक आरोप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनाव आयोग में मध्यस्थ की मीडिया रिपोर्ट से एसआईआर पर उठे सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों के बीच 10 महीने में 14 बार असहमति की खबरें। आयोग की सफाई, सर्वसम्मति से हुए फैसले। चुनाव आयोग के फैसले आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, कहा तानाशाही ने आयोग को हाईजैक किया। राहुल बोले ये राजद्रोह का मामला। अखिलेश ने बताया संविधान पर हमला।

0: बीएसपी में फिर हुआ बड़ा बदलाव। भतीजे ईशान आनंद को मायावती ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। पांव छू कर दिया बुआ का आशीर्वाद। आकाश आनंद की जगह संभालेंगे पार्टी की कमान। खूनी रात और सनसनीखेज वारदात से दहला यूपी का आजमगढ़। कमांडो ऑपरेशन में पत्नी बेटे और दो पंडितों के कातिल का सीधा एनकाउंटर। चार मर्डर करने वाले ने अपने ही बच्चों को बनाया था बंधक। एशियन गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा। वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। देश भर से बधाइयों का तांता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं न्यूज रूम लाइव में। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज न्यूज रूम लाइव में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ खबरें सामने आई हैं और वो खबरें ऐसी हैं कि 10 महीने में करीबन 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। एसआईआर को लेकर मतभेद की खबरों ने सियासी भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर आयोग के काम को संविधान के खिलाफ बताया, देश के खिलाफ बताया। प्रियंका गांधी ने आयोग के फैसले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इसी में मतभेद की खबरों को लेकर विपक्ष की तरफ से वार किया जा रहा है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। राहुल गांधी का भी बयान आ गया, अखिलेश यादव का भी आ गया, अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आयोग का काम संविधान और देश के खिलाफ है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। तो 10 महीने में 14 बार आपत्तियां दर्ज यहां पर कराई गई है अब सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की तरफ से। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब जो आपत्तियां हैं वो एसआईआर को लेकर भी हैं, फॉर्म 6 को लेकर भी हैं, नाम शामिल करने नाम काटने को लेकर भी हैं। ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिनको विपक्ष अब पकड़ चुका है और विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: It is a very, very serious assault on democracy.
3: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
1: क्या चुनाव आयोग में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त में बन नहीं रही? क्या एसआईआर पर अपनी चला रहे हैं ज्ञानेश कुमार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अलग अलग फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में चार बड़े मुद्दों का जिक्र है। पहला, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में बदलाव। दूसरा, वोटर डेटाबेस और उसके डिजिटल एक्सेस के केंद्रीकरण को लेकर चिंता। तीसरा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े कुछ मामलों में अपील की प्रक्रिया। और चौथा, गोवा में ऐसे मतदाताओं का मामला जिन्हें स्थानीय स्तर पर पात्र पाए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतों के कारण रोल में शामिल करने में समस्या आई। सबसे ज्यादा चर्चा फॉर्म 6 को लेकर है। यही वो फॉर्म है जिसके जरिए नया मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़े पुराने चुनावी रिकॉर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। दावा है कि दोनों आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके लिए नियमों में बदलाव जरूरी है। यहीं से सवाल उठा कि क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर फॉर्म 6 में इस तरह का बदलाव कर सकता है या इसके लिए नियमों में औपचारिक संशोधन जरूरी है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ बता दिया।
4: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
1: वहीं अखिलेश यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आयोग के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया।
3: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith. All the work of the commission, or all the work of finalizing the voters list should be stopped. Supreme Court also think about resorting to the extraordinary powers of holding fresh elections in the context of the fact that all these elections have been held not under the control of the commission, but under the control of Ganesh Kumar.
1: चुनाव आयोग के सूत्रों ने आंतरिक मतभेद की बात को फैसलों में असहमति के बराबर मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी संस्था में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन राय अलग होने का मतलब ये नहीं कि अंतिम फैसला अलग हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR समेत सभी फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के बाद सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि कई मौके पर शुरुआती मतभेद के बाद तीनों आयुक्तों के बीच सहमति बनी और सुधार के कदम उठाए गए।
5: आयोग का यह कहना है कि अब इस कहने की भी जांच होगी कि सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, सर्वसम्मत निर्णय लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर मतभेद है तो उनका सम्मान करते हुए बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, जैसा आमतौर से कोर्ट्स में खंडपीठों में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि उन्हें अंधेरे में रखकर इन इन मामलों पर निर्णय लिया गया, तो ये आप सच है, जाहिर है कि ये बहुत गहन जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में शांत नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र के एक अंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं तो दूसरा अंग सक्रिय हो जाता है।
1: सबसे अहम सवाल कि क्या चुनाव आयोग में CEC अकेले फैसला कर सकते हैं? कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2023 के कानून की धारा 18 में कहा गया है कि आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाए। अगर किसी मामले पर राय अलग हो तो फैसला बहुमत के आधार पर होता है।
6: ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने में 14 बार 2 इलेक्शन कमीशन विरोध करते रहे लेकिन फैसले होते गए, जबकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूडिंग CEC उनको कोई पावर नहीं है बिना EC मीटिंग के। इलेक्शन कमीशन तीनों लोग बैठें, मीटिंग करें और उसमें फैसले लें, वही शक्तिशाली है।
1: तो क्या चुनाव आयुक्तों में मुख्य ज्ञानेश कुमार बड़े फैसले खुद ले रहे हैं, बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की अनदेखी कर रहे हैं? भले ही चुनाव आयोग विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के नोट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन मान रही हो, लेकिन शब्दों के चयन तो इससे आगे जाते हैं, कई सवाल उठाते हैं। संजय शर्मा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रक्रिया होती है विचार विमर्श होता है, ये बातचीत का एक हिस्सा होता है और बहुत स्पष्ट कहा है कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। इसी एक संवैधानिक संस्था नियमों से चलती है, आयुक्तों के सुझाव चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, ये बहुत स्पष्ट कहा है। किसी भी संस्था में अलग अलग विचार और ऑब्जर्वेशन बातचीत का एक अहम हिस्सा है और आखिरी फैसला लेने से पहले फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। सिर्फ 3 कमिश्नर ही नहीं बल्कि कमीशन का हर अधिकारी चुनाव सिस्टम को बेहतर बनाने की कमीशन को अपने सुझाव के लिए देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। ये जानकारी अब एक प्रेस नोट के जरिए चुनाव आयोग का बयान सामने आया है जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ECI एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के आर्टिकल 324 कानूनी नियमों स्थापित और संस्थागत परंपराओं के तहत काम करती है। भारत का इलेक्शन कमीशन अपनी संवैधानिक कामों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका को पहचानता है। ये चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और बयान जारी करते हुए इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है कि कमीशन ने हाल ही में बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के बड़े चुनावों को सफलतापूर्वक करवाया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, क्या अहम बातें इसमें कही गई हैं?
7: हिमांशु, जो अहम बात कही गई है उसका एक ही, जिससे आवाज दो हम एक हैं, यानी हम एक हैं और निर्वाचन आयोग जो भी फैसले लेता है वो सर्वसम्मति से फैसले लेता है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। ये सूत्रों का भी कहना है कि मतभेद हो सकते हैं, मतभेद पर बातचीत होती है और उसके बाद एक बीच का रास्ता, सर्वमान्य रास्ता निकाला जाता है ताकि उसमें चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, सर्वसम्मत निर्णय लिया जा सके। और अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय सुनाया जा रहा है जिस पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चीफ जस्टिस को शामिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसमें चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है और बाकी प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त एक और मंत्री वहां पर उसमें कमेटी में रहते हैं, तो ऐसे में और नेता विपक्ष रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ऐसे में आज ये निर्णय हो जाएगा कि वो रेफरेंस जिसे ये कहा गया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला सुनाने जा रहा है।
0: और देखिए एसआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे संजय, बहुत स्पष्ट ये कहा गया है कि एसआईआर में जो सुधार की बात है वो पिछले एक साल से ये चल रहा था और कमीशन के हर एक जो फैसले लिए गए हैं वो सर्वसम्मति से लिए गए हैं और ये एक साल से चला आ रहा था।
7: इसमें हिमांशु पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर डिसेंट नोट किन क्या आए हैं, डिसेंट नोट पर क्या किया गया, चर्चा क्या हुई। तो इसमें सूत्रों का तो कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि दो आयुक्तों को कुछ पता ही नहीं था। अब इसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग आयुक्तों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलहाल जो प्रेस नोट जारी किया गया है, साझा बयान जारी किया गया है, उसे लेकर तो यही कहा जा रहा है कि अब जो कहते हैं कि पैबंद लगाना, क्योंकि अब जो चीजें फटनी थी वो फट चुकी हैं, कपड़े फट चुके हैं, लेकिन अब उसमें जगह जगह पैबंद लगाए जा रहे हैं ताकि इसे ये लोगों को ये संदेश दिया जाए कि चुनाव आयोग एक है और फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह की चीजें आती रहती हैं जिससे लोगों का ध्यान तो बढ़ता ही है और भरोसे में कहीं ना कहीं कमी आती है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या उम्मीद की जा रही है कि क्या।
0: यही संजय मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपका अनुभव क्या कहता है कि प्रेस नोट जारी करके अगर ईसीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि जो फैसले लिए गए सर्वसम्मति से लिए गए, एक सहमत करते हुए लिए गए, तो क्या यहाँ पर अब विपक्ष का जो विरोध था या निशाना था वो बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा इस प्रेस नोट के बाद, या और एग्रेसिव होगा विपक्ष?
7: मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का जो अभियान है वो समाप्त होगा, क्योंकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, एक या कई याचिकाएं आएंगी जिसमें एक निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर।
0: संजय जी मैं रोकता हूं, अंजना जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुकी हैं। अंजना जी
8: बिल्कुल, हिमांशु देखिए जो बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं कि मतभेद होना किसी भी संस्थान में स्वाभाविक है
0: जी।
8: तो ये पहले से चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़ी बातें कही जा रही थी उसमें मुख्य बिंदु अगर आप इस पूरे जो हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं, एक प्रेस नोट जारी किया गया है, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि थोड़ा इधर आ जाते हैं, एक बात तो बिल्कुल तय है कि एक बहुत बड़ा तूफान है और मुख्य चुनाव आयुक्त हो, पूरा चुनाव आयोग है, उसको लेकर ये गंभीर सवाल खड़े होने के बीच में अगर आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है और बाकायदा इसमें हस्ताक्षर भी हैं डेप्यूटी डायरेक्टर पी पवन के, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो बड़ी बातें हैं, सबसे बड़ी बात जो है कि डिफरिंग व्यूज यानी मतभेद होना और अलग अलग ऑब्जर्वेशन होना बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है किसी भी मंत्रणा का, किसी भी डेलिबरेशन का, किसी भी संस्थान में, तो ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, क्योंकि स्पेसिफिकली ईसीआई नेट को लेकर कहा गया था कि ईसीआई नेट का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, आप उसका पूरा जो पावर्स है वो दिल्ली में कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफिसर्स डिलीट और ऐड करते थे लोगों को, वोटर्स को, उसको लेकर आपत्ति जताई थी संधु साहब ने और जोशी जी ने, दोनों जो चुनाव आयुक्त है, इन सब पर भी उन्होंने स्पेसिफिकली जवाब दिया और कहा द कमीशन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी, और ईसीआई नेट कैसे बनाया, जो हमारे दर्शक को बता दें, पहले लगभग 40-50 पोर्टल थे इलेक्शन कमीशन के, अलग अलग उनके वो थे, उन सबको कंबाइन करके एक ईसीआई नेट बनाया गया, अब यहीं से सब कुछ पूरा आप समझ लीजिए डिजिटल बैकबोन है ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो ईसीआई नेट जो है वो स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर करता है और वो इसलिए है कि कोई भी अनऑथराइज्ड टैम्परिंग ना हो, यानी उससे कोई भी छेड़छाड़ ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, यानी कोई भी उसमें हेरफेर ना हो, और आईटी सिक्योरिटी चेक्स एंड ऑडिट कंट्रोल्स आर स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंटेड अक्रॉस नेशनल डेटाबेसेस, यानी ये सारा कुछ सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी डेटाबेस है उसके साथ कहीं पर कोई छेड़छाड़ ना हो, कहीं पर उसका मैनिपुलेशन, क्योंकि आरोप क्या लग रहा है कि भाई आप अपने हाथ में ले रहे थे, स्टेट ऑफिसर्स को जो अधिकार थे वो भी यहाँ पे लाया जा रहा था, जो डीजी है एसीआई नेट की, सीधा उनका नाम भी मीडिया रिपोर्ट्स में डाला गया है कि उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे थे उनके कामकाज के डायरेक्टिव से ऐसा लग रहा था कि वो सारा का सारा जो पावर है ना वो सेंट्रलाइज हो रहा है, उसका केंद्रीयकरण हो रहा है और उसके खिलाफ ये दोनों चुनाव आयुक्त थे। तो उस पर उन्होंने पूरी दी। और एक उसमें कि जो स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज है, क्योंकि देखिए ये कानून के तहत है और उस कानून के तहत जो स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज है उसमें ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इसी के साथ जो DEOs हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो फंक्शन करते हैं, स्टेट्यूटरी पावर उनके पास है और वही रजिस्ट्रेशन और डिलीशन जो है वो कानून के तहत करते हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बातें हैं। और इसी के साथ साथ अंत में जो दो लाइनें हैं उससे आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल ना होकर भी वो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि भाई चुनाव आयोग जो है, भारत का जो चुनाव आयोग है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह से कमिटेड है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारा, जो संवैधानिक हमारा कर्तव्य है
0: लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, हम
8: जो संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि विपक्ष इसको सीधा संवैधानिक जो संविधान का हनन बता रहा है, तो वो कह रहे हैं कि संवैधानिक जो हमारा ड्यूटी है उसको हम पूरी इंटेग्रिटी और अपने वाइटल रोल को समझते हुए लोकतंत्र में उसको निभा रहे हैं।
0: ECI कह रहा है कि मतलब हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की अपनी जो हमारी भूमिका है उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और SIR को लेकर भी इसमें बहुत स्पष्ट ये कहा गया है कि हमने 40 नए सुधार किए और SIR को लेकर भी ऐसा नहीं है कि एक साल पूरा उसमें बताया गया कि सभी फैसले पिछले एक साल से पूरे कमीशन के एकमत लिए गए फैसलों का नतीजा है। मतलब ये कहने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं और हमने आपसी विचार विमर्श के बाद ये सारे फैसले लिए और ये अच्छी बात है।
8: जोड़ना चाह रही हूँ फॉर्म 6 को लेकर ये कहा गया कि क्या दोनों चुनाव आयुक्तों का उस पर मतभेद था और उस पर सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की ही सहमति थी। तो ये जो पूरा SIR की प्रक्रिया है उसी में फॉर्म 6 भी शामिल है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए है और उसमें उनका कहना है कि SIR की प्रक्रिया का जो फाइनल ऑर्डर निकला है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों का भी हस्ताक्षर मौजूद है। तो सर्वसम्मति वाली जो बात है वो फॉर्म 6 को भी लेकर स्पेसिफाई की।
0: संजय शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, ये कहा गया, ये ECI की तरफ से जैसे भी अंजना जी भी बता रही थी कि आखिर की जो दो लाइनों में उन्होंने कहा है कि हम अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि लोकतंत्र को कैसे आगे ले जाना है और विपक्ष की तरफ से भी इसी पर ही सवाल उठाए गए थे, तो अब इसको कैसे देखा जाए?
7: इसको जैसा कि मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी कि इलेक्शन कमीशन ने अब जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं जो प्रसिद्ध गाना है, वैसा ही कुछ है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में उच्च पदस्थ सूत्र हैं, उनका यह कहना है कि मतभेद स्वाभाविक है। उन्होंने सुबह ये बताया था मतभेद होना स्वाभाविक है हर किसी संस्था में, क्योंकि हमारे दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि हर जगह गणना एक ही आएगी, हर जगह अलग अलग आती है। लेकिन ये कहना कि डिसेंट नोट आते हैं, डिसेंट नोट पर बात होती है और उस बातचीत के बाद फिर बीच का एक रास्ता अख्तियार किया जाता है कि न तुम्हारी ना हमारी, बीच का एक रास्ता जिसमें कि कुछ क्लॉज पे अगर दो आयुक्तों का आपत्ति है तो उस क्लॉज को फिलहाल रहने दिया जाता है, दूसरे क्लॉज पे बात होती है और उसे फाइनल किया जाता है। आयोग का कहना है कि जो डिसेंट की बात हो रही है, एसेंट की भी बात होनी चाहिए कि कितने ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर तीनों की एक राय रही है और उसे हम चुनाव सुधार कर पाए हैं, चुनाव आयोग के कार्यकलाप में सुधार कर पा रहे हैं, लोगों के वोटर के लिए जो आसानी होनी चाहिए उसकी आसानी के लिए हमने इतने काम किए हैं, इतने सारे एप्स और पोर्टल्स थे सबको एक एक ECI नेट पर लाया गया। तो उनका कहना है कि ये तमाम चीजें हैं जो इस दोनों पहलुओं को एक साथ रख के देखना चाहिए, क्योंकि एक अगर तराजू है तो उसके दोनों पलड़ों पर चीजें रखी जानी चाहिए, एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ जवाब। तो फिलहाल आयोग ने एक साझा बयान तो जारी किया है, लेकिन जो सवाल है हिमांशु वो अभी तक अनसुलझे हैं कि आखिर वो कौन
0: नहीं, यही है? यही जो सवाल अनसुलझे हैं, मैं संजय जी यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने देखा है कि विपक्ष किस तरह से यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद राहुल गांधी आए, प्रियंका आई, अखिलेश यादव आए, हर किसी का बयान सामने आ गया, हर किसी ने लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्तीफे की भी मांग कर दी, कपिल सिब्बल भी यहाँ पर आ गए हैं। अब कितनी भी पारदर्शिता की बात अगर चुनाव आयोग यहाँ पर कह ले, लेकिन जो मतभेद की खबरें आई 14 पॉइंट्स पर, ये क्या पटाक्षेप इसका हो सकता है? या फिर अभी चूंकि चुनाव भी है आगे, 27 भी है, 29 भी है, सारी तैयारियां हैं और वहां पर ऐसा मुद्दा विपक्ष को छोड़ेगा?
7: इस पर पटाक्षेप का तो अंत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा उन गोपनीय दस्तावेजों के खुलासे से हो सकता है जो गोपनीयता कानून के तहत प्रतिबंधित हैं, वो आम जनता में नहीं आते हैं। तो इसका खुलासा कौन करेगा? इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो गोपनीय फाइल मंगाए, खुद देखे, संतुष्ट हो और उसके बाद ऐसा निर्णय दे जिससे कि आम जनता को भी लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने देख लिया, इसका मतलब सब ने देख लिया, कोर्ट संतुष्ट है, इसका मतलब सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए। जैसे अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त थे, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए, निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना रहा है। अभी बस अंदर बाहर में खड़ा हूं, अंदर वो निर्णय सुनाया जा रहा है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय फाइलें अपने पास मंगाई थी और ये जानने के लिए कि प्रक्रिया कुछ है या नहीं, कोई नियम कायदे हैं या नहीं, या मनमाना चल रहा है। तो ऐसे में जब इतने बड़े सवाल उठ गए हैं, इतने गंभीर सवाल उठे हैं, तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले या फिर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आए, जनहित याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये करे। क्योंकि अच्छा, ये सीधे सीधे आम जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, मताधिकार से, जो कि लोकतंत्र का बिल्कुल आधार है, मजबूत आधार है, उससे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दो दिन में आपको सुनने को मिले कि याचिका दाखिल कर दी गई।
0: अच्छा संजय जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ बहुत सरल शब्दों में, देखिए बहुत सारे लोग हैं, दर्शक हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि अभी वो कौन सी आपत्तियां थी जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, विपक्ष ने चौतरफा मोर्चा यहां पर खोल दिया, तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी हमारी पारदर्शिता है। अगर आम इंसान समझना चाहे कि अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे?
7: इस मामले में जो आपत्तियां तो इसको लेकर हैं कि बहुत सारे कई ऐसे मामले हुए जिसमें निर्वाचन आयोग का आदेश आया लेकिन दो आयुक्तों को समय समय पर वो अंधेरे में रहे, उनको पता नहीं था, उनको मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं। कुछ लोगों की नियुक्तियों को लेकर आयोग के दोनों आयुक्त अंधेरे में रहे, उनको पता नहीं चला और उनसे मशवरा लिया भी गया या नहीं लिया गया।
0: अच्छा मैं आपको रोकता हूँ इस दौरान, जो बात यहाँ पर की जा रही है चुनाव आयुक्तों के सीईसी की नियुक्ति पर, दो जजों की बेंच की अलग राय है जिसका इंतजार अभी कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे संजय जी, उसको लेकर यह बड़ी खबर, नियुक्ति का मामला संविधान बेंच को भेजा गया है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब इस मामले में जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे, सीईसी की नियुक्ति पर दो जजों की बेंच की राय अलग है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि अभी संजय शर्मा भी बता रहे थे इस बारे में कि वो इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब इसमें ये खबर आ रही है। अब संजय हमारे साथ में जुड़े हुए, संजय जी दो जजों की बेंच की अलग राय इसमें, और क्या जानकारी आपके पास?
7: जी हाँ, ये वैसा ही मामला है जैसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में आयुक्तों के बीच मतभेद है, तो यहाँ भी दोनों जजों के बीच मतभेद है और दोनों जजों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है। एक का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति में शामिल करना चाहिए था। दूसरे जज ने अपनी राय दी है कि संसद सर्वोच्च है, संसद ने जो कानून बनाया है वो कानून अपने आप में सर्वोच्च है, वही कानून रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम संसद के बनाए कानूनों की व्याख्या करना है, उनकी समीक्षा करना है और उसमें अपनी राय नहीं देना, क्योंकि उसमें कानूनी राय देना है कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चीज सही है नहीं। तो अब इस मामले को, चूंकि दोनों जजों के बीच मतभेद है, अब इस मामले को बड़े जज यानी अब पांच जजों की संविधान पीठ है इस मामले की सुनवाई करेगी, बड़ी पीठ को रेफर कर दिया गया है, तो यानी अब पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले को सुनेगी और वो तय करेगी उसमें 3-2-4-1-5 सर्वसम्मति जैसे भी निर्णय होगा वैसे वो निर्णय हो जाएगा और वो सर्वमान्य होगा।
0: संजय जी आपने इतने अच्छे शब्दों में समझाया जिसमें आपने कहा कि उधर भी मतभेद, अब इधर भी मतभेद, अब इन मतभेदों का अंत कब तक होगा, तो उसके लिए बड़ी बेंच का ही यहाँ पर इंतजार करना होगा और ये मामला भी और कितना खिंचता हुआ आपको दिख रहा है।
7: ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में, तो जब संविधान पीठ बनेगी, पीठ बनने के बाद तो जल्दी हो जाता है मामला, क्योंकि संविधान पीठ बनने के बाद पांच जजेज होते हैं, तो पांच अलग अलग अदालतों के से अलग अलग कोर्ट से संबंधित होते हैं, तो पांच कोर्ट को बहुत दिन तक हॉल्ट करके नहीं रखा जा सकता। हाँ। इसलिए 2-3-5 दिनों में आमतौर से मामले की गंभीरता के हिसाब से इसमें फैसला सुनवाई पूरी हो जाती है।
0: जिसका इंतजार किया जा रहा था वो फैसला तो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर दोनों जजों की अलग राय यहाँ पर सामने आ रही है। अब आगे बड़ी पीठ पर ये पूरा मामला जाएगा, यानी शो कंटिन्यूज। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज का।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: मैडी, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDF, there's nothing small about them.
6: Okay.
7: Ujjivan, nothing small about us.
8: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
6: आगे आगे,
10: अरे उधर
6: उधर, करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: इन एसोसिएशन विद
14: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
17: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
18: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
19: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
16: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
20: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
21: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
16: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
22: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर, एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
23: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है। और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।

मतभेद की खबरों पर चुनाव आयोग का लिखित बयान, कहा असहमति टिप्पणियां और सुझाव चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा, एसआईआर पर सर्वसम्मति से हुए सारे फैसले, मीडिया रिपोर्ट में आई मतभेद की खबरें। चुनाव आयोग के फैसले आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण, कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, कहा तानाशाही ने आयोग को हाईजैक किया, राहुल बोले राजद्रोह का मामला, अखिलेश ने बताया संविधान पर हमला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दो जजों की बेंच की भी अलग अलग राय, संविधान बेंच को भेजा गया नियुक्ति का मामला, पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है फैसला। बीएसपी में फिर हुआ बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान आनंद को मायावती ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, पांव छू कर लिया बुआ का आशीर्वाद, प्रकाश आनंद की जगह संभालेंगे पार्टी की कमान। और एशियन गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा, वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल, देश भर से बधाइयों का तांता।

0: और देखिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दूं, और जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है बिहार से। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर बिहार से, 1799 दरोगा बहाली परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे। 2 पालियों में हुई थी लिखित परीक्षा, अब उसको रद्द करने का फैसला लिया गया है। बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने मुख्य लिखित परीक्षा रद्द की। 27 मई 2026 को 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित हुई थी, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। शशि भूषण हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, क्या वजह बताई जा रही है कि 27 मई 2026 को जो 2 पालियों में भर्ती परीक्षा हुई उसको रद्द कर दिया गया?
1: देखिए हिमांशु, लगातार जो छात्र हैं वो डिमांड कर रहे थे कि जो लिखित परीक्षा हुई दरोगा बहाली की बिहार में 1799 पदों के लिए, उस लिखित परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां हुई। कई जगह सीक्वेंस में जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए, कई ऐसे केंद्र रहे जहां से अभ्यर्थियों का चयन जो है वो संदिग्ध रहा। तो इसको लेकर के कई छात्रों की डिमांड थी। बजाप्ता गर्दनी बाग जो पटना का इलाका है जहां प्रोटेस्ट होता है, वहां पर भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे। और सरकार जो है एक बार फिर से उसने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का। अभ्यर्थी लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे, और जो अभी का अपडेट है उसके मुताबिक जो आयोग है अवर सेवा पुलिस बहाली आयोग, उसमें ये निर्णय लिया है कि 27 मई को जो परीक्षा आयोजित की गई थी लिखित परीक्षा, मतलब मेंस की जो परीक्षा थी 2 अलग अलग पालियों में, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये उन अभ्यर्थियों की डिमांड के लिए एक बड़ी बड़ी राहत है। पीटी परीक्षा को नहीं रद्द किया गया, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी दरोगा बहाली 1799 पदों के लिए, वो परीक्षा बहाल रहेगी। जो पीटी में अभ्यर्थी सफल रहे, वो जिन्होंने एग्जाम दिया मेंस की परीक्षा में, लिखित रिटन एग्जामिनेशन में, वो परीक्षा रद्द की गई है, तो वहां एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा। हिमांशु जी,
0: तो ऐसे में जो छात्रों की मांग थी, उस छात्रों की मांग के चलते ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब इसमें आगे क्या, मतलब आगे इसमें क्या सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी भी थी, अब उनकी कुछ और मांगे जिनको लेकर अब आगे सरकार की तरफ से कदम उठाया जा सकता हो? शशि,
1: देखिए अभी तो बहुत संक्षिप्त सा एक प्रेस नोट जारी किया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने, जिसमें कहा गया है कि 27 मई को जो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई लिखित परीक्षा मेंस की, उसको निरस्त किया गया है, मतलब उसको रद्द किया गया है। आगे आयोग खुद इस बारे में जानकारी देगा कि आगे इसमें क्या,
0: चलिए मतलब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद वो तस्वीरें स्पष्ट होंगी सरकार की तरफ से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कालका जी में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था उस मामले की, और इस मामले में जब उस जगह पर गए जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों की तरफ से, तो वहां पोल खुल गई। वहां सिर्फ पार्कों की ही सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली की ही सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अब जिस डीडीए पार्क में वारदात हुई वहां एंट्री एग्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और तो छोड़िए लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी कि जगह जगह आप देख सकते अंधेरा छाया हुआ था। शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा हो जाता है। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर जाकर क्राइम सीन का जायजा लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर के साथ अब इस मामले में बैठक भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के वीसी से बैठक हुई इस पूरे मामले में। मामला बेहद गंभीर, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए के वाइस चेयरमैन से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के सभी पार्कों का एक हफ्ते के अंदर व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में जितने भी पार्क हैं उनका सुरक्षा ऑडिट हो, पर्याप्त लाइटिंग हो, सुरक्षा, नियमित गश्त और साफ सफाई पर खास जोर दिया गया, ऐसा स्पष्ट किया गया। तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय राजधानी में एक पार्क में एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है, बदमाश आते हैं और बंदूक की नोक पर गैंगरेप करते हैं, और बाद में अब अधिकारी वहां जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश, और देखा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। कौन आ रहा है, कौन ना जा रहा है, ना एग्जिट पॉइंट पर, ना एंट्री पॉइंट पर, कहीं पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। लेकिन अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो सब अब एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब जाग गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, डिटेल रिपोर्ट।
2: कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी के बाद उठे सवाल, डीडीए पार्क में सुरक्षा के नाम पर केवल अंधेरा। रेप कांड को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई बैठक। दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद अब आस्था कुंज पार्क की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डीडीए पार्क की एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है और पर्याप्त लाइटिंग भी नहीं है। शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा हो जाता है।
3: सीसीटीवी कैमरे नहीं है, एंट्री एग्जिट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, एंट्री एग्जिट पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो ऐसे में पार्क की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे थे। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से सुबह दिल्ली पुलिस की ईआरवी यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आई, आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस पार्कों के अंदर यहां पर टहलते हुए नजर आए।
2: पार्क में गैंगरेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
3: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पर आपको नजर आएंगे बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
2: गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस कमिश्नर ने भी मौके पर जाकर क्राइम सीन का जायजा लिया और कई खामियों को भी पाया था। देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी के कमिश्नर की बैठक बुलाई है। जहां एक तरफ गैंगरेप के बाद पार्क की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, वहीं मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया और पुलिस की धौंस दिखाकर दोनों को धमकाया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया।
4: इन्होंने एग्जैक्टली पुलिस वाला नहीं बताया बट लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल की कि हम पुलिस से हैं और हम जानते हैं कि तुम लोग ये इस टाइप गलत काम कर रहे हो, यहाँ पे छोटे बच्चे हो और तुम्हारे खिलाफ पुलिस एक्शन हो सकती है, हम पुलिस में लोगों को जानते भी हैं, इस तरीके से उन्होंने बातें की है। तो हाँ ये कह सकते हैं कि जो है अपने आप को पुलिस वाला बताया और पुलिस वाला बन के जो है इस तरीके का कार्रवाई करने की कोशिश की।
2: वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने आसिफ नाम के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया और बाकी दो और आरोपियों को भी धर लिया था।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में जहां पर एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है। इस वक्त ठीक स्पॉट पे हम मौजूद हैं और आप देखिए सामने बाइक भी पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी आसिफ जिसको लगातार पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी वो अमर कॉलोनी इलाके में डीएम ऑफिस की तरफ से जो ये लेन गई है इस तरफ से आगे अमर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस लगातार इसको ट्रैक कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी थी। पुलिस का कहना है कि आसिफ जैसे ही दिखा पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए रुकने के लिए कहा लेकिन वो पुलिस टीम पर गोली चलाता हुआ यहां से भागने की कोशिश किया लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की और आसिफ को एक गोली लगती है जिसके बाद वो बाइक समेत यहां पर गिर जाता है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
2: इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र सुसाइड मामले में अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिता न्याय की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए क्योंकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है, जांच हो रही है और इसके साथ ही अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। साहिल की खुदकुशी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साहिल के माता पिता ने न्याय की मांग की, वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच तेज कर दी। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे ने भी इस मामले में 10 मेंबर का पैनल बना दिया है जो एक हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगा। तो साहिल सुसाइड केस में आईआईटी बॉम्बे का बड़ा एक्शन, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को छुट्टी पर भेज दिया, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए इस मामले में लगातार जांच जारी है। अब मुंबई पुलिस की तरफ से भी इस मामले में बयान आ गया है, क्योंकि इतनी बयानबाजी सामने आ रही है, तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। और मुंबई पुलिस कह रही है कि इस मामले में पवई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इस मामले की जांच का जिम्मा ACP रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है और DCP डिटेक्शन 1 क्राइम ब्रांच की ओर से इसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी ईमानदारी निष्पक्षता से की जा रही है और इसमें सभी संभावित पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। तो देखिए आईआईटी जैसे संस्थान में एक छात्र का मामला सामने आता है, सुसाइड का मामला सामने आता है, प्रोफेसर पर एक्शन होता है, बहुत से छात्र सामने आ जाते हैं, अलग अलग फैकल्टीज सामने आ जाती हैं, कोई प्रोफेसर के साथ की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि प्रोफेसर पर और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ी है, एक्शन क्या लिया जा रहा है, ये डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: साहिल की खुदकुशी को लेकर सवालों में आईटी बॉम्बे, प्रोफेसर सूरी नारायण दुल्ला पर कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच तेज की। आईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडी की खुदकुशी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। प्रोफेसर सूरी नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। आईटी बॉम्बे ने साहिल के सुसाइड की जांच को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए 10 मेंबर का पैनल बनाया और पूरे मामले की जांच करने को कहा, साथ ही एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही। जहां एक तरफ आईटी बॉम्बे एक्शन में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को पूछताछ के लिए समन किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोडे के माता पिता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, साथ ही आईटी बॉम्बे के कैंपस में भी जांच तेज की। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की CCTV तस्वीरें ली है, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के बाद प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। साहिल की खुदकुशी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कैंपस में बढ़ती खुदकुशी और दूसरा है दलित उत्पीड़न। देश के IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों में बढ़ती खुदकुशी का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि टॉप 5 IIT और 15 नए IIT मिलाकर जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच 171 स्टूडेंट्स की असमय मौत हुई, जिसमें 140 सुसाइड थे। IIT खड़गपुर में 29, IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 21, IIT दिल्ली में 17, IIT बॉम्बे में 14 बच्चों ने जान दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि IITs, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड करने वाले 55% से अधिक SC ST OBC स्टूडेंट थे। जहां एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच साहिल सुसाइड मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ साहिल के माता पिता ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साहिल के
0: और देखिए इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से प्रभारी नियुक्त कर लिए गए हैं। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो उनको छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, मध्य प्रदेश का बिप्लब देव को बनाया गया है, महाराष्ट्र का बैजयंत पांडा को प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी राज्य प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है, राज्य प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। स्मृति ईरानी को हरियाणा छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ऐलान कर दिया गया है राज्य प्रभारियों का, अब ये क्यों खास है, कैसे देखते हैं इसे?
6: देखिए, क्योंकि संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और हर राज्य में संगठनात्मक दृष्टि से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव जो अन्य वरिष्ठ नेता होते हैं उनको राज्यों का प्रभारी बनाया जाता है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हैं, और स्मृति ईरानी को जो है छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बैजयंत पांडा है, उनको जो है महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया, उनके साथ साथ जो है वो अमित मालवीय को प्रभारी बनाया गया है। उसके साथ अगर आप देखें सुनील बंसल, वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उनको वहां का प्रभारी दिया गया है। उसके साथ साथ राम माधव, जो संघ से एक बार फिर से जिनकी वापसी हुई है, उनको तमिलनाडु के साथ साथ उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया, यानी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो है उनको उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है। और एक अच्छे अगर कहें कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखा जाए तो राम माधव, जब जब उनको जिम्मेदारी मिली है उन्होंने इस चीज को साबित भी किया है, और इससे पहले ही विनोद तावड़े को जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो तमाम जो लोग हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई
0: हैं। जिम्मेदारियां तो दी गई हैं, ये नाम तो सामने आ ही गए हैं, लेकिन हिमांशु ये कहा जाता है कि जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पीछे का पूरा गुणागणित जोड़ा जाता है, बीजेपी की तरफ से बहुत तैयारी यहाँ पर की जाती है, तो इसके पीछे की रणनीति क्या समझ पा रहे हैं आप?
6: देखिए बिल्कुल, रणनीतिक जो होती है, जो वहाँ की राजनीतिक सामाजिक स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए प्रभारियों को बनाया जाता है। हरीश द्विवेदी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हरीश द्विवेदी बिहार के अंदर पहले सह प्रभारी रह चुके हैं, उनको प्रभार दिया गया है। अगर आप देखें

0: सोच समझकर संगठनात्मक जिम्मेदारियां जो है वो राज्यवार दी गई है, और यही कारण है कि सरकार की ये कोशिश, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिन राज्यों में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उसके साथ साथ गोवा और मणिपुर, वहां पर भी अगर आप देखें तो सोच समझकर जो है वो जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से दी गई हैं। पंजाब के अंदर सतीश पूनिया को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी के तौर पर पहले से ही काम कर रहे थे, तो हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर लगते हैं, और इसीलिए सतीश पूनिया को जो है वहां पर बनाया गया, और वो एक जाट नेता भी है, और वहां पंजाब में जिस तरीके से जट सिख की एक राजनीति रहती है उसमें सतीश पूनिया फिट बैठते हैं संगठनात्मक दृष्टि से, इसीलिए जो है उनको वहां की जिम्मेदारी।
1: अच्छा, एक बात और बताइए, जहां तक अभी आपने बताया बहुत बारीकी से आप बता रहे हो, और मैं भी इसमें कुछ देख रहा हूं कि कुछ प्रभारी ऐसे जिनको दो जिम्मेदारी दी गई, स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, हरीश द्विवेदी का जिक्र आपने किया, बिहार, कर्नाटक, डॉक्टर सतीश पूनिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राम माधव, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तो कुछ ऐसे हैं जिन पर ज्यादा भरोसा जताया गया, दो दो राज्य का प्रभारी बनाया गया, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं?
0: देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पार्टी के जो महासचिव हैं उनको ज्यादातर जो है दो राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पार्टी के जो महासचिव होते हैं उनका कद एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी में नंबर टू के स्थान पर होता है संगठनात्मक दृष्टि से। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री या पूर्व के जो अध्यक्ष हैं वो उनसे पद में मतलब बड़े जरूर है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में महासचिव का पद जो है वो एक बड़ा पद होता है, और इसलिए जितने महासचिव हैं ज्यादातर उनको जो है दो दो राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, और उनके साथ सह प्रभारियों को भी जो है वो नियुक्त किया गया है।
1: अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है क्योंकि पूरा प्रभार होता है, फैसले लेना बहुत अहमियत यहाँ पर हो जाती है कि क्या फैसले लिए जाएं जिससे उस राज्य में सफलता मिले, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: और अब खबर जोधपुर से, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर एम्स के राज नरेश यादव ने सुसाइड कर लिया और इस खबर से सनसनी फैल गई। और यह बताया जा रहा है अलवर के रहने वाले राज नरेश यादव ने ड्यूटी के दौरान खुदकुशी कर ली इंजेक्शन लगा के। एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में प्रथम वर्ष के वो रेजिडेंट डॉक्टर थे, ओटी में उनकी ड्यूटी लगी थी, इसी दौरान उन्होंने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव ओटी कॉम्प्लेक्स के ब्रेक रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधू साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो गणेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10

0: महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। कि जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, जो अधिकारी है जिसको अख्तियार है वो है ईआरओ, ईआरओ तय कर सकता है और उसको एक्सेस मिलना चाहिए इस सॉफ्टवेयर का कि किसको डिलीट करना है और किसको ऐड करना है। अब हुआ क्या कि ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया, ईआरओ को एक्सेस दिया ही नहीं गया। और इसमें दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने विरोध किया, संधू साहब ने और जोशी साहब ने, कि आप क्या कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया, कानून के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के खिलाफ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी सेल है जिसमें कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है गणेश कुमार के अधीन, वो तय करेगा कि कौन डिलीट होगा और कौन ऐड होगा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: जो जमुई में जो घटना हुई, जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो बच्चियां जो हैं, जो महिलाएं जो हैं, जो युवती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो है। दोषियों को जितनी कड़ी से भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है। चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो।
1: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women. And I think that there's no point talking about big schemes and programs if we can't even ensure the safety of women on our streets. So it's really something that all of us need to think about. Wherever there are state governments, and especially central government, they need to think about how they are going to ensure that women feel safe.
2: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया, बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
3: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
4: तुम तो साला डील माने नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
3: हाँ भाई।
4: किसी को भी काट सकता है।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मतभेद की खबरों पर चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट, असहमति, टिप्पणियां और सुझाव को बताया चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा। एसआईआर पर सर्वसम्मति से फैसले, मीडिया रिपोर्ट्स में आई मतभेद की खबरें। चुनाव आयोग के फैसले आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण, कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, कहा तानाशाही ने आयोग को हाईजैक किया, राहुल बोले ये राजद्रोह का मामला, अखिलेश ने बताया संविधान पर हमला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दो जजों की बेंच की भी अलग अलग राय, संविधान बेंच को भेजा गया नियुक्ति का मामला, पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है फैसला। बीएसपी में फिर हुआ बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान आनंद को मायावती ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, पांव छू कर लिया बुआ का आशीर्वाद, आकाश आनंद की जगह संभालेंगे पार्टी की कमान। और एशियन गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा, वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल, देश भर से बधाइयों का तांता।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी राज्य प्रभारियों का ऐलान किया गया है। जिम्मेदारियां दी गई हैं स्मृति ईरानी को। दो राज्यों का प्रभारी बनाया गया है जिसमें हरियाणा भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ये जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार की जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है संजय भाटिया को, प्रभारी बनाया गया है। और इसके साथ ही तेलंगाना बंगाल के इंचार्ज सुनील बंसल बनाए गए हैं। तो ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। और एक बार फिर आपको बता दें, जो नाम सामने आया उसके तहत डॉक्टर सतीश पुनिया जम्मू कश्मीर पंजाब के प्रभारी, राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के प्रभारी, सुनील बंसल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी, अनिल एंटोनी नागालैंड और गोवा के सह प्रभारी, बिहार से आने वाले राजेंद्र सिंह को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश का प्रभारी विप्लव देव को बनाया गया है। महाराष्ट्र का प्रभारी गजंत पांडा को बनाया गया है और पश्चिम बंगाल सुनील बंसल को प्रभारी बनाया गया। बिहार का प्रभारी हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब आयोग के सूत्रों ने सफाई दी। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुद्दों पर किसी आयुक्त की राय मुख्य प्रस्ताव से अलग राय दिखी तो किसी प्रस्ताव पर किसी दूसरे आयुक्त की। चुनाव आयोग का बयान, ईसीएस संवैधानिक संस्था है, नियमों से चलती है, आयुक्तों के सुझाव चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। आयुक्तों में मतभेद को लेकर चुनाव आयोग की सफाई, अलग अलग टिप्पणियां सामान्य बात है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर को लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई। दोनों ने कुछ कदमों को बिना उनकी जानकारी के उठाए जाने वाले पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते, जिम्मेदार लोगों से पूछताछ जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, भारत के लोगों से लोकतंत्र छीनने का षड्यंत्र करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग को हाईजैक करने का आरोप लगाया। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की, कहा सीईसी ने देश को भ्रमित किया। एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया, कई बार उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्यसभा में पहले से लंबित प्रस्ताव को अब सामने लाना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समेत विपक्ष कई नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने आरोप लगाया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में बदलाव और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताई थी, एसआईआर को रोकने और चुनाव आयोग के कामकाज की जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मतलब सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कालकाजी में नाबालिग से हुए हवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, पुलिस से रिपोर्ट मांगी। कालकाजी इलाके में रेप की घटना पर लेडी श्रीराम कॉलेज के छात्रों में नाराजगी, कहा रोजाना होती है छेड़छाड़, थाना पास होने के बावजूद भी पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिल्ली में छात्रों का ऐलान, कालकाजी गैंगरेप पीड़ित के समर्थन में छात्र निकालेंगे एकजुटता मार्च। कालकाजी इलाके में 17 साल की लड़की के साथ रेप की घटना पर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर शामिल।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी के 4 शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत हुई। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में टैक्सी की शुरुआत। भारत टैक्सी की शुरुआत पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं लगता था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने युवाओं से भारत टैक्सी को अपनाने का आह्वान किया, कहा अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर और कमाई भी अपने घर में रहेगी। एसपी सरकार पर निशाना साधते हुए पाठक ने दफ्तरों की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की, बोले पिछली सरकारों के दौरान सहकारिता विभाग लूट का अड्डा था। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बोला हमला, तुष्टीकरण के चैंपियन बनने के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग हो रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता संगीत सोमकर निशाना, बोले कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई सीट को लेकर नहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर है। संगीत सोम ने अखिलेश और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोलते हुए कहा अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, उन्होंने सनातनियों पर गोली चलवाई थी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला, कहा तुष्टीकरण के चैंपियन बनने के लिए ये गाली गलौज की भाषा एक दूसरे के लिए प्रयोग हो रही है। सहारनपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचकर खाना खाया, रविदास मंदिर में पूजा की, फिर परिवार के साथ भोजन किया। मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया, पांव छूकर लिया बुआ का आशीर्वाद, लखनऊ की बैठक में लिया फैसला। आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 8 घंटे की मेहनत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे 2 पुजारी समेत 4 लोगों की हत्या करने वाला सनकी आरोपित का एनकाउंटर। आजमगढ़ में खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले अरविंद सिंह के बचपन के दोस्त आशुतोष सिंह ने आज तक से बातचीत में कई खुलासे किए। पूजा पाठ करने आए पुरोहितों ने भूत प्रेत की बात कही थी, जिसकी वजह से घर वालों ने महामृत्युंजय का जाप करना शुरू किया था। आरोपी अरविंद ने अपने बड़े भाई सुनील सिंह की ही विरासत में मिली रिवॉल्वर से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई डिमोलिशन की कार्रवाई, मस्जिद और आसपास के कुछ घरों पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के तहत पहले भी इसी रोड पर की जा चुकी है तोड़फोड़, फिलहाल बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, घटना इलाके में सनसनी। वारदात के बाद आरोपित फरार, पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार में 1799 दरोगा पदों की भर्ती परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों की मांग के बाद फैसला। जमुई में नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, आरोपित को कड़ी सजा की मांग की। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को बॉम्बे आईआईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेजा, मैनेजमेंट ने 10 मेंबर के पैनल का गठन किया। मृतक साहिल के पिता ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी, बोले अगर दुल्ला और केदार को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। एससीएसटी एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कोर्ट ने दूसरी जातियों के खिलाफ उल्टे भेदभाव की दलील को नहीं माना। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झुलनी 11 का पर्व। उत्तराखंड के लैंसडाउन में एनएसए अजीत डोभाल गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान डोभाल ने रेजिमेंटल गीत बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो गाया भी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी बोले आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कवर। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की तैयारियां तेज। प्रयागराज में टीडीटी पीजीटी भर्ती की पुरानी नियमावली की मांग पर बवाल, छात्र और पुलिस में झड़प। मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी मनीष लोधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर दिया। मोतिहारी के एक पुलिसकर्मी पर बहन को सर्विस पिस्टल से गोली मारने का आरोप, बाद में पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मारी। कर्नाटक के उडुपी में शख्स को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, शव के 9 टुकड़े मिले, पत्नी बेटा लापता। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आरोपी के पैर में लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए।
गढ़वा में भोजपुरी गाने पर रील्स बनाने को लेकर दो बहुएं आपस में भिड़ गईं, जमकर मारपीट हुई। झारखंड के पलामू में कर्मा पूजा विसर्जन के दौरान 6 बच्चों के डूबने से मौत, इलाके में हड़कंप मच गया। पटना के पुलिसकर्मी का नाले में मिला शव, रात भर नाले में पड़ा रहा शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। असम के बोका घाट में बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां बरामद हुई, 5 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के बीकानेर में युद्ध अभ्यास 2026 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर की दमदार एंट्री, भारत अमेरिका की संयुक्त तैयारी। अमृतसर में खाद स्टोर में हथियारबंद 3 युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, नकदी और लैपटॉप लूटने की नाकाम कोशिश के बाद वारदात को अंजाम। अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। सुरेंद्रनगर में मंदिर से चांदी के 35 छत्र महिला ने चुराए, सीसीटीवी में आरोपित महिला कैद हो गई। असम के धेमाजी में चलती जेसीबी में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वायरल हुआ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जालना में मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध चोर कैद। बिजनौर में बिजली चेकिंग करने गई टीम को मारपीट हुई, जेई को घेर कर बंधक बनाने का आरोप, सामने आया वीडियो। उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, किच्चा विधायक पूर्व विधायक समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। भोपाल में ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, नकदी सोना चांदी और मोबाइल फोन बरामद हुआ। हैदराबाद में थाने में वकील और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत, बेल को लेकर विवाद। जालंधर में ड्रग्स मामले में 3 गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, नशीली गोलियां और 22,000 कैश बरामद। फाजिलका में आम आदमी पार्टी सरपंच पर फायरिंग हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजनौर में युवक ने दरोगा पर 18 घंटे हिरासत में और 12,000 रुपए वसूली का आरोप लगाया, युवक का पत्नी से हुआ था विवाद। करनाल में मदार को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा, स्थानीय लोगों ने खुद ही तोड़ दिया ढांचा। हैदराबाद में ब्लड बैंक से जुड़े आरोपों पर अभिनेता चिरंजीवी का पलटवार, का खून बेचकर पैसा नहीं कमाता, अपनी मेहनत की कमाई से ब्लड बैंक चला रहा हूं। एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, पहला मेडल है ये एशियन गेम्स में। इस जीत के साथ चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा, 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी के सिल्वर मेडल जीतने के बाद से दूसरा मेडल। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस से भी भारत के लिए खुशखबरी, पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत ने महिला इसकी टीम इवेंट में भी जीता ब्रॉन्ज मेडल, रजिया डिल्लो, माहेश्वरी चौहान और परिनाज तिकड़ी ने किया 331 का स्कोर। भारत के पुरुष की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, नारुका इंडिविजुअल फाइनल में अनंतजीत सिंह, नारुका मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की जीत। ईरान के साथ समझौते को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा नवंबर में मध्यावधि चुनाव के बाद अमेरिका ईरान के साथ कर सकता है समझौता। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मिलिट्री सलाहकार ने कहा है कि जल्द अमरुबंध पहले जैसा नहीं हो पाएगा, सामान्य सऊदी और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष को बताया वजह। कतर के पीएम और ईरान के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की, क्षेत्रीय तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता मजबूत करने पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुरुवार को वाशिंगटन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, दोनों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर तनाव के बीच होगी अहम बैठक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप ने जापान के साथ रिश्तों की मजबूती का संदेश दिया, न्यूयॉर्क में ट्रंप और सुनाए तकाइची की अहम बैठक हुई। यूएन महासभा से अलग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की राष्ट्रपति से की मुलाकात, ब्रिटेन ने यूक्रेन को पूरी तरह समर्थन की कही बात। यूएन में बर्नहम ने गाजा में हिंसा और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को लेकर चेतावनी दी, कहा इससे दूराष्ट्र समाधान को बड़ा खतरा। न्यूयॉर्क में कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को दी बड़ी मदद, पत्रकारों से बात करते हुए 10 करोड़ कनाडाई डॉलर की सहायता का ऐलान। यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र पर उठाए सवाल, कहा शांति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी में यूएन रहा है नाका। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए मैक्सिको को चेतावनी दी। फिर लौटा लकी अली का दौर, फिल्म दृश्यम 3 के गाने को दी आवाज, रिलीज हुआ मुस्कुरा दो गाने का टीजर। फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी, लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही फिल्म अगले साल हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। एक्टर वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज हुआ, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर रिलीज, कॉलेज स्टूडेंट्स पर आधारित है। राजस्थानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म धूड़ का मोशन पिक्चर जारी हुआ, 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

बात आजमगढ़ की, जहां ऐसी वारदात हुई जिसमें चार लोगों की हत्या कर दी गई। फिर आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपित भी मारा गया और इस संगीन वारदात के पीछे एक परिवार की खुशियां छिन गई। बच गई है तो आरोपी की दो मासूम बेटियां और उसकी बुजुर्ग मां। आरोपी ने अपनी पत्नी को मार डाला, अपने इकलौते बेटे को मार डाला और घर में पूजा करा रहे तीन में से दो पुजारियों को भी मौत की घाट उतार दिया। आजमगढ़ में आरोपित करीबन 8 घंटे तक अपने बच्चों को बंधक बनाकर रखा और उसके एनकाउंटर के साथ ही इस गुनाह का अंत हो सका।

0: छह गोलियां, चार मर्डर और एक एनकाउंटर। 8 घंटे तक बंधक संकट, घर के अंदर खूनी खेल। इस चार दीवारी के अंदर वो खौफनाक वारदात हुई है जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। इस घर में एक शख्स ने चार चार खून कर दिए। यहां 8 घंटे तक ऐसा संकट चलता रहा जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो गया। यह खौफनाक वारदात हुई है आजमगढ़ के अहरोला थाने के शंभुपुर गांव में। वहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर 2 पुजारियों को मार डाला, उसके बाद अपने एक बेटे और 2 बेटियों को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर आरोपी ने की फायरिंग और अपने जिगर के टुकड़े के लिए जान। इस पूरे मामले का अंजाम बेहद खौफनाक हुआ है। आखिरकार जवाबी कार्रवाई में 4 हत्याओं का आरोपी अरविंद सिंह पुलिस की गोली से ढेर हो गया। इस हत्याकांड और एनकाउंटर के पीछे 2 अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के मुताबिक जानकारी दी है कि आरोपी अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है, उसी के लिए परिवार में पूजा पाठ कराया जा रहा था, जिसे लेकर अरविंद नाराज था। गुस्से में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
1: ये जो परिजन और गांव वालों का बताना है कि ये इस चीज से नाराज था और परिजनों को आशंका थी कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उसके लिए अनुष्ठान आवश्यक है और ये इस चीज से नाराज था, इसको इस चीज पर आपत्ति थी। आज 4th दिन था, कल इसका समापन होना था, उसी में नाराज होकर इसने घटना को अंजाम।
0: दूसरी थ्योरी ये है कि 2018 में आरोपी अरविंद सिंह के बड़े भाई की हत्या हुई थी, तब से उसका पूजा पाठ से विश्वास उठ गया था, जबकि उसकी पत्नी घर में महामृत्युंजय जाप करा रही थी। आज उसका समापन होना था, लेकिन 22 सितंबर की शाम घर में पूजा पाठ को देखकर आरोपी अरविंद बौखला गया। उसने तुरंत पुजारियों से आधार कार्ड दिखाने को कहा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वो पुजारियों का अपमान ना करे। इसी बात से अरविंद के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तुरंत पत्नी को वहीं गोली मार दी, फिर 3 में से 2 पुजारियों को भी मार डाला।
2: अब ये खून पड़ा हुआ है अंदर, आप देखेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम इस घर के अंदर का ही है। महामृत्युंजय का जाप चल रहा था, 3 दिनों तक लगातार पूजा पाठ हुआ, फिर कल करीब 5:30 बजे की बात बताया जा रहा है कि अचानक से तैश में आकर अरविंद ने उन पुजारियों से उनका आधार कार्ड पूछा। उसके बाद जब पत्नी ने विरोध किया कि जो ब्राह्मण पूजा कराने आए उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो पहले उसने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद दोनों ब्राह्मणों को गोली मार दी, जो पुरोहित आए थे उन दोनों पुरोहितों को गोली मारी, फिर उसके बाद अपने 3 बच्चों को बंधक बनाकर करीब 8 घंटे तक पुलिस को छकाया।
3: और इसको देखने से भी नहीं लगता था कि कभी मिसयूज करेगा।
2: क्या ऐसी बात हो गई कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया?
3: अब उसके दिमाग में जो भी चला हो अरविंद के,
2: पूजा
3: से मना कर रहा था और बोल रहा था आधार कार्ड दिखाइए आप हमको, नहीं तो आप
4: रुकेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: यार लोन भूल गया मैरी।
16: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
17: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
16: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
17: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
18: There's nothing small about it.
16: Ujjivan, nothing small about us.
19: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: ये सितारों के सम्मान की तस्वीर है। 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सिनेमा जगत की हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए दिया गया, जो कि अपने पति और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ पहुंची थी। बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370 को दिया गया। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को समारोह में मौजूद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर धनुष को डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन की फिल्म कैप्टन मिलर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन पहली बार केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किया जा रहा है। अब हर साल अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दिल्ली से बाहर सेरेमनी कराने को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य देश के सभी बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कुल 45 पुरस्कार दिए गए। इनमें 26 फीचर फिल्म, 16 नॉन फीचर फिल्म, 2 सिनेमा पर लेखन और 1 दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल है। आज तक ब्यूरो।

0: राजधानी दिल्ली में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ और एक बच्ची का बाजार में यौन शोषण हुआ, उसके बाद देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है। सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी में नाबालिग से दरिंदगी हुई, एक लड़की वहशत का शिकार बनी। दिल्ली के कालकाजी इलाके के इसी पार्क में आसिफ समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया। इस वारदात के एक मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं बाकी दो और आरोपी भी धरे गए। यहीं पर आसिफ नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यहां पर आरोपी की बाइक गिरी हुई दिख रही है, पास ही आरोपी की पिस्टल पड़ी है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया है कि सोमवार शाम को वो अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पास के आस्था कुंज पार्क गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आरोपी पार्क के अंधेरे में घात लगाए बैठे हैं। इस मामले में भले ही सभी तीनों आरोपी पकड़े गए हों, लेकिन इस वारदात ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली के सदर बाजार में हो रहे इस प्रदर्शन को देखिए, जो 11 साल की एक मासूम बच्ची के यौन शोषण के खिलाफ है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं खबरें असरदार। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सीधे आपको बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे।
1: बेस मेडिसिन के रूप में उसकी पहचान हुआ। आज फूड सप्लीमेंट के तौर पर आयुर्वेद को लोग उपयोग में लाते। हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस मेडिसिन का दर्जा आयुर्वेद की औषधियों को दिलवाया है। उसके सारे प्रमाण ये जो बाई तरफ आप देख रहे हैं, ये 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर है, 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल है, और हमने ये साक्ष्य आधारित आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा आज ये दो पुस्तकें सारे मीडिया को दे रहे हैं। और आपके लिए ये सारी पुस्तकें लेकर के हरिद्वार से हम आए हैं आज, और आज इनका विधिवत रूप से हम उद्घाटन भी कर दे रहे हैं। वैसे उन्होंने पेपर में लपेट के रखा हुआ था, उसको भी खोल लो। उसको क्यों चुनरिया उड़ा करके रखी हुई है, आप पकड़ो साहब ये। और मैं इसलिए आपको इस बात को कहना चाहता हूँ, जो लोग बकवास करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ, लॉ एंड फैक्ट्स, और ये साक्ष्य आधारित आयुर्वेद, और इसके सारे के सारे रिसर्च पेपर आप सबको उपलब्ध करा रहे हैं। डंके की चोट पर आपको ये कह रहे हैं कि लीवर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया जा सकता है, लीवर फेलियर को, किडनी फेलियर को। एक बात आपको ये कहना चाहता हूं, हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है, करोड़ों लोगों को लंग ट्रांसप्लांट से बचाया है, हमने करोड़ों लोगों को पेसमेकर से बचाया है, हार्ट के बाईपास से बचाया है, एंजियोप्लास्टी से बचाया है, करोड़ों लोगों के घुटने चेंज होने से बचाए हैं, डीजनरेट वे कार्टिलेज को हमने रीजुविनेट करके दिखाया है। हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करते हैं। मैं मीडिया के सामने आह्वान करता हूं, खुलेआम चुनौती पूर्वक WHO को और पूरे वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम को, भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री को और सारे दुनिया के डॉक्टर्स को कहता हूं, जिसको भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, 7 दिन हमारे पास में आ जाएं, फ्री में रुकवाने की व्यवस्था करेंगे, जो उसमें लागत भी लगती है वो भी नहीं लेंगे। आकर के देखो अपनी आंखों से, हम 25, 50, 100, 150 यूनिट इंसुलिन 7 दिन में बंद करते हैं, इंसुलिन बंद करते हैं, मेटफॉर्मिन आदि दवाई बंद करते हैं, और बीपी के लिए क्या टैलमा आदि सारी सिंथेटिक दवाइयां बंद करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद करते हैं, थायराइड की दवाई बंद करते हैं, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, एंटीबायोटिक्स, सबकी हमने ऐसी की तैसी कर रखी है। और किस आधार पर? विज्ञान के आधार पर। हमको ढोंगाड़ा पर पाकर विश्वास नहीं फैलाते, शनि केतु राहु भूत प्रेत चढ़ाते उतारते नहीं हम किसी के ऊपर। हम भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम में भी शक्ति है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी, राम कृपा नाशय सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, और तो नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवान की भक्ति में शक्ति है। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हर नाम ओखत मुख देव, काटे जम के फंदा। लेकिन भक्ति के साथ हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं।
0: तो बाबा रामदेव को सुन रहे थे आप। बात अब चुनाव आयोग की करेंगे, जिसके भीतर SIR को लेकर कथित मतभेद पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट ने आज सियासी तापमान दरअसल बढ़ा दिया है। दावा यही है कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 मौकों पर आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन आपत्तियों का संबंध वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, फॉर्म 6 में बदलाव और चुनावी डेटा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बयान में यह कहा है कि अलग अलग राय और टिप्पणियां किसी भी संस्था में फैसले की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन फैसले सहमति से होते हैं और हुए भी हैं।
2: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
3: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
4: क्या चुनाव आयोग में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त में बन नहीं रही? क्या SIR पर अपनी चला रहे हैं ज्ञानेश कुमार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अलग अलग फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में 4 बड़े मुद्दों का जिक्र है। पहला, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में बदलाव। दूसरा वोटर डेटाबेस और उसके डिजिटल एक्सेस के केंद्रीकरण को लेकर चिंता, तीसरा पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े कुछ मामलों में अपील की प्रक्रिया, और चौथा गोवा में ऐसे मतदाताओं का मामला जिन्हें स्थानीय स्तर पर पात्र पाए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतों के कारण रोल में शामिल करने में समस्या आई। सबसे ज्यादा चर्चा फॉर्म 6 को लेकर है। यही वो फॉर्म है जिसके जरिए नया मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़े पुराने चुनावी रिकॉर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। दावा है कि दोनों आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके लिए नियमों में बदलाव जरूरी है। यहीं से सवाल उठा कि क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर फॉर्म 6 में इस तरह का बदलाव कर सकता है या इसके लिए नियमों में औपचारिक संशोधन जरूरी है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ बता दिया।
5: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
4: वहीं अखिलेश यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आयोग के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया।
3: This man should be suspended. This Ganesh Kumar should be suspended forthwith. All the work of the commission, or all the work of finalizing the voters list should be stopped. Supreme Court also think about resorting to the extraordinary powers of holding fresh elections in the context of the fact that all these elections have been held not under the control of the commission, but under the control of Ganesh Kumar.
4: चुनाव आयोग के सूत्रों ने आंतरिक मतभेद की बात को फैसलों में असहमति के बराबर मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी संस्था में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन राय अलग होने का मतलब ये नहीं कि अंतिम फैसला अलग हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर समेत सभी फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के बाद सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि कई मौके पर शुरुआती मतभेद के बाद तीनों आयुक्तों के बीच सहमति बनी और सुधार के कदम उठाए गए।
6: आयोग का ये कहना है कि अब इस कहने की भी जांच होगी कि सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, सर्वसम्मत निर्णय लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर मतभेद है तो उनका सम्मान करते हुए बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, जैसा आमतौर से कोर्ट्स में खंडपीठों में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि उन्हें अंधेरे में रखकर इन इन मामलों पर निर्णय लिया गया, तो ये आप सच है, जाहिर है कि ये बहुत गहन जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में शांत नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र के एक अंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं तो दूसरा अंग सक्रिय हो जाता है।
4: सबसे अहम सवाल कि क्या चुनाव आयोग में सीईसी अकेले फैसला कर सकते हैं? कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2023 के कानून की धारा 18 में कहा गया है कि आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाए। अगर किसी मामले पर राय अलग हो तो फैसला बहुमत के आधार पर होता है।
7: ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने में 14 बार 2 इलेक्शन कमीशन विरोध करते रहे लेकिन फैसले होते गए, जबकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूडिंग सीईसी, उनको कोई पावर नहीं है बिना ईसी मीटिंग के। इलेक्शन कमीशन तीनों लोग बैठें, मीटिंग करें और उसमें फैसले लें, वही शक्तिशाली है।
4: तो क्या चुनाव आयुक्तों में मुख्य ज्ञानेश कुमार बड़े फैसले खुद ले रहे हैं, बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की अनदेखी कर रहे हैं? भले ही चुनाव आयोग विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के नोट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन मान रही हो, लेकिन शब्दों के चयन तो इससे आगे जाते हैं, कई सवाल उठाते हैं। संजय शर्मा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 महीने में 14 बार चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने सवाल उठाए। इनमें फॉर्म 6 में बदलाव से लेकर अधिकारियों के विदेश भेजने तक के मुद्दे शामिल हैं।
2: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी।
3: दिस गणेश कुमार शुड बी सस्पेंडेड फॉरथविथ।
8: नो वन वोट नो वन वैल्यू।
9: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
8: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
9: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रख कर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही।
6: तो मतभेद होना, विचार में विरोध होना, ये कोई नई बात या अस्वाभाविक बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर ऐसा प्रमाण मिलता है कि बहुमत के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अल्पमत का फैसला सिर्फ इसलिए लागू किया गया कि वो वरिष्ठ अधिकारी के विचार थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है।
9: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। एक साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ।
10: माननीय CEC ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया। उन्होंने अपने खुद के ECs को हाईजैक कर दिया।
9: जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: वही चुनाव आयुक्तों में मतभेद को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया।
11: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाव पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।
2: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड हूएवर इज doing it has to be taken to task. There should be proper procedure and it should be properly investigated. And investigated not by people who are not going to have a fair investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know, we are the largest democracy in the world. And we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues.
10: चुनाव आयोग देश भर में बात करता है, वन मैन वन वुमन वन वोट करता है कि नहीं। चुनाव आयोग ने खुद ने अपने आप को एक ऐसी संस्था बना दी है जहां नो वन वोट नो वन वैल्यू, तीन लोगों की बराबरी वोट नहीं है। इन चार महत्वपूर्ण मुद्दों में जिसमें आने वाला हूं मैं, उसमें एक व्यक्ति का एकल वोट है, वन मैन वन वोट नहीं है। उच्चतम न्यायालय का 95 का निर्णय डस्टबिन में पड़ा है, लिखित विरोध का जवाब नहीं है, संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। दूसरा इसका पहलू है जो कि बड़ा संक्षिप्त दो लाइन का पहलू है, पारदर्शिता। हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हम बड़ा औपचारिक रूप से मांग करते हैं कि जितने भी ये डिसेंट नोट्स हैं, जितने भी ये लिखित विरोध हैं, आप समक्ष रखिए देश के। ये नहीं बोली हमको कि आरटीए में अप्लाई करो।
12: तो इमरान मसूद साहब से ही पूछ लेते हैं, जिस तरीके से अभी अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को रिजाइन कर देना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, आप क्या कैसे देख रहे हैं इमरान साहब ये यूपी में प्ले आउट होते हुए और ज्ञानेश कुमार
13: के? देखिए, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो महाभियोग चलना चाहिए, उसके उन्होंने जो कुछ किया है वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। अब ये बेनकाब हो गए हैं, इन्होंने
12: नोटिस आया
13: 100% इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाकर के कार्रवाई होनी चाहिए।
12: आप ही लोग लाएंगे ना, विपक्षी दल?
13: हम लोग करेंगे, पार्टी में बात करेंगे।
12: अच्छा, दूसरा जो SIR का पूरी प्रक्रिया है उसको लेके जितने करोड़ वोटर कटे हैं उसको लेकर भी तमाम डिसेंट नोट्स इलेक्शन कमिश्नर द्वारा दिए गए थे, आपको लगता है कि ये एक तरीके से जो राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है उनकी इनकी बात सही हो रही है?
13: देखिए, जो राहुल जी कहते हैं और जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन वो बात सामने आ जाती है। इलेक्शन कमिश्नर की सच्चाई सामने आ गई, डिलीशन के अंदर जो कुछ इन्होंने किया, Form 7 लगा करके उत्तर प्रदेश में 4,65,520 वोटों का डिलीशन किया। मैंने भी उसके अंदर इंटरव्यून एप्लीकेशन लगाई थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने इतने वोटों का डिलीशन किया है, तो आपने Form 7 के मान करके इतने वोटों का डिलीशन कर दिया, क्या आपने Form 14 कितने लोगों को नोटिस इश्यू किया? फॉर्म 14 के नोटिस के बिना डिलीशन हो नहीं सकता, इन्होंने फॉर्म 14 का इस्तेमाल ही नहीं किया। और अगर ये फॉर्म 7 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो झूठी है, तो फिर इन झूठे लोगों के खिलाफ Section 31 के अंदर, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, वो भी नहीं कराई।
8: और दोषी जी ने ये शिकायत की है कि 10 महीने में उसने 14 बार ऑब्जेक्शन लिए है लेकिन उसको नजरअंदाज किया था, खास करके Form 6 में जो बदलाव है, SIR में और मुद्दे हैं, ये सब गैरकानूनी है, ये नहीं होना चाहिए, कानून उनको परमिशन नहीं दे रहा है, फिर भी ज्ञानेश कुमार रुक कर रहा है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक ये शिकायत की, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई आक्षेप, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। उसका मतलब साफ है, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए हैं, मैं बीजेपी नहीं जीत रहा।
14: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपना है, सोर्सेज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं, तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजा।

0: जनता का। लेकिन क्या अल्पसंख्यक क्या बहुसंख्यक, हम एक विंग है, हम एक डिपार्टमेंट है, तो हम अपनी रणनीतिक तैयारियां तो करते ही हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की भयंकर बयार है और उस बयार को भाजपा समझ रही है। और भाजपा के अंदर जो सरफुटौल है, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की सरफुटौल है, उस सरफुटौल पर स्टोरी करिए, असली स्टोरी आपको वहां मिलेगी।
1: और इसी के इस मुद्दे पर इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं, बात की मेरे सहयोगी मौसमी सिंह ने। और इस बीच बात करेंगे यूपी में सीट बंटवारे को लेकर, इंडिया गठबंधन में तनातनी लगातार बढ़ रही है, राहुल अखिलेश खामोश हैं, तो वहीं उनके नेताओं के बीच बयान युद्ध चल रहा है। पहले इमरान मसूद, फिर इकरा हसन में जुबानी जंग चली, अब दूसरे नेता भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। इस जुबानी जंग को दबाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दोनों दल यूं जता रहे हैं जैसे उनके बिना दूसरे का काम ही नहीं चल सकता है, लेकिन यह सब उस वक्त हो रहा है जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई।
2: गठबंधन पर पहली बार अखिलेश की जुबान खुली तो कांग्रेस के लिए दिलासे के शब्द निकले। अखिलेश ने साफ साफ कहा कि गठबंधन पूर्व की तरह ही होगा, यानी कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी इतने भर से दूर नहीं हुई। दिलासा देते हुए अखिलेश पर कांग्रेस हमले कर रही है और समाजवादी पार्टी उसका जवाब दे रही है।
3: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है।
4: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है,
5: कम्युनिकेशन सेल के, और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पायल मेहता को भी श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि पायल जी के जाने के बाद ये मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सामने हमेशा पायल जी बैठी रहती थी, तो मुझे भी आज उनकी बहुत याद आ रही है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गंभीर विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जानते हैं किस प्रकार से 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, किस प्रकार विपक्षी पार्टी एक के बाद एक धराशायी होते गए हैं, और धराशायी को युद्ध के मैदान में नहीं, लोकतांत्रिक मैदान में जनता के न चुने जाने के कारण इन पार्टियों का वजूद खतरे में आया। उसके बाद किस प्रकार से खास करके कांग्रेस पार्टी ने देखा कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो सबसे बड़ा औजार जो हमारे हाथ में है वो औजार है टू किल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। मैं यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठा हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वह प्रेस नोट भी मैं लेके आया हूं जो ईसीआई ने जारी किया है, मैंने भी उसे पढ़ा है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आप सिचुएशन देखिए, अगर तीनों इलेक्शन कमिश्नर आपस में, मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं ताकि गांव में बैठी मेरी दादी मां भी समझ सके, अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है, और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है, और ये तीनों जी हां करते रहते हैं, ये तीनों जो हैं गोदी वाले हैं, आपको तो गोदी मीडिया बोलते हैं, ये तीनों भी गोदी वाले हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब ये तीनों के बीच में 14 पत्राचार हुआ है, दीज आर ऑफिशियल डेलिबरेशंस बिटवीन थ्री इलेक्शन कमिश्नर्स, व्हाट वी गैदर फ्रॉम मीडिया। कोई भारतीय जनता पार्टी जाके चिट्ठी नहीं पढ़ती है, मीडिया

0: में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए वह लोकतंत्र है? आई वुड से दैट टुडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फॉलन इनटू द ट्रैप वेयर दे सेड दैट द इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस गवर्नमेंट वॉज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, रैदर आई वुड से दैट दिस इज प्योर डेमोक्रेसी। जहां पर डेलिब्रेशन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होने के बाद अंततोगत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज। कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल, दे आर in a functioning in a democratic manner and of course they are upholding the democracy of this country. लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं। अब हमारे ऊपर आक्षेप क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप है कि हम वोट चोरी करके जीत जा रहे हैं। ये बार बार वोट चोरी का जो आक्षेप लगाया गया, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं तो लेके बहुत सारे कागज आया हूं, आंकड़े तो मैं लेके आया हूं 2014 से। मैं आरंभ करता हूं बंगाल से ही, मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं क्योंकि हरियाणा के भी उदाहरण दिए गए। महाराष्ट्र के वोट चोरी के एलिगेशन के पश्चात मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किस प्रकार, किस सीट पर कितने वोट डिलीट हुए थे और उन सीटों पर किसकी जीत हुई थी, यह आंकड़े मैंने स्वयं ने रखे थे, तो मैं दोबारा वो नहीं खोलूंगा पन्ना। मगर मैं वेस्ट बंगाल का, क्योंकि बंगाल का चुनाव हाल फिलहाल का है और सभी अभी हाय तौबा मचा रहे हैं कि देख लिया बंगाल का चुनाव चोरी हो गया था, तो चलिए पिटारा खोल के देखते हैं कि जहां से सर्वाधिक डिलीशन हुआ, व्हाट इज द एडिफिस ऑन विच द एक्यूजेशन ऑफ द ऑपोजिशन स्टैंड्स, किस पर एक्यूजेशन खड़ा है? द एडिफिस इज दैट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वोटर्स from the voter list, the Bharatiya Janata Party won and the opposition lost. Now let me prove the contrary to it. आप बंगाल में जाइए, बंगाल में सबसे अधिक वोट कटी 20 विधानसभा सीटों पर। यह इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिपोर्ट बनाया है, ये उन्हीं के रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं। 20 विधानसभा सीटों की जांच की गई और सबसे ज्यादा उनमें नाम कटे। उनमें 13 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी की जीत हुई, एक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन सीटों का नाम भी पढ़ लेता हूं ताकि आप वेरीफाई कर ले कि हमने वोट चोरी की तो जीत किसी और की कैसे हुई। शमशेरगंज में 74,775 वोट डिलीट हुए, जीता टीएमसी। लालगोला 55,420 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। भगवान गोला 47,493 वोट्स डिलीट हुए, जीती टीएमसी। रघुनाथगंज 46,100 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोटियाबुर्ज 39,579 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। फरक्का 38,222 डिलीट हुए, जीता कांग्रेस। सूती 37,965 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोथाबाड़ी 37,255 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। इतने सीट्स पे टीएमसी और कांग्रेस ही हम सुन रहे हैं, सर्वाधिक वोट जहां डिलीट हुए। अब जंगीपुर 36,581 डिलीट हुए, जीती बीजेपी। रतुआ 35,573 बीजेपी। तो कुल मिलाकर के मैं 200 सीटों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 20 विधानसभा सीट जहां पे सर्वाधिक वोट डिलीट एसआईआर से हुए, वहां सर्वाधिक जीत टीएमसी की हुई। कांग्रेस भी एक सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीती है। अब एक दूसरा मुद्दा उठता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं आज एकदम बिल्कुल स्पष्ट यहां कहने वाला हूं, ये जो आक्षेप हमारे पे लगाया जाता है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके आने के पश्चात और एसआईआर के आरंभ होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और कुछ खेल कर रही है। कब वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कब हुआ? 19 फरवरी 2025। उससे पहले कितने चुनाव हुए थे और क्या स्थिति थी देश में, मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 का इलेक्शन कराया था लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन कराया था, 2024 के लोकसभा का इलेक्शन कराया था, और तीनों में नतीजे क्या थे? 2014 में बीजेपी और एनडीए 282 सीट्स पे, 2019 के लोकसभा में बीजेपी एनडीए 303 सीट पे, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी एनडीए 240 बीजेपी 240 सीट पे, एनडीए कुल मिलाकर 293 सीट्स पे। तो ये सब कुछ 19 फरवरी 2025 से पहले हुआ। 2014 में कौन कौन से चुनाव हुए, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा रहेगा, मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये बार बार हम वोट चोरी करके जीत रहे हैं और कुछ घालमेल है, यह भ्रम, यह भ्रामक अवस्था देश में तोड़ने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कुछ जो साथी घटक दल हैं, उनके झूठ के पुलिंदों को तोड़ना और गांव के लेवल तक तोड़ना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, इसलिए नहीं, ताकि देश के संविधान के ऊपर एक गरीब मां का भरोसा भी ताकतवर रूप से बना रहे। 2014 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार भी बनती है। हरियाणा में बीजेपी की मेजॉरिटी आती है, झारखंड में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनती है। 2015 में जम्मू कश्मीर में पुनः बीजेपी बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनती है। बिहार में एनडीए हारती है 2015 में। 2016 में आसाम में बीजेपी जीतती है, केरल में एनडीए हारती है, वेस्ट बंगाल में एनडीए हारती है, तमिलनाडु में एनडीए हारती है। 2017 में उत्तर प्रदेश बीजेपी जीतती है, उत्तराखंड बीजेपी जीतती है, गोवा बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, मणिपुर बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, गुजरात बीजेपी मेजॉरिटी। 2018 में त्रिपुरा बीजेपी सरकार, नागालैंड बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार, मेघालय बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार। 19 में अरुणाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, ओडिशा में बीजेपी हारती है, बीजेडी जीतती है, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस जीतती है, 2020 बिहार में एनडीए जीतती है, सरकार बनाती है। इसी प्रकार मैं पूरे 2024 तक का चुनाव नतीजा आपके सामने रख सकता हूं, जो दिखाता है कि बहुत ही स्मूथली इलेक्शन प्रोसेस 2014 से अब तक चलता आ रहा है। अब जहां तक धांधलियों का सवाल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी विश्व में कि कांग्रेस पार्टी मौजूद हो और धांधली ना हुआ हो। धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है, तो इसलिए धांधली, घोटालेबाजी, गड़बड़ियां, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इलेक्शन कमीशन, मैं अपने अंतिम हिस्से में इसको एक्सपोज करता हूं प्रेस वार्ता के। कौन कौन से ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे जो आगे चलकर या तो कांग्रेस से मंत्री बने, या तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, या कांग्रेस ज्वाइन किए? केवीके सुंदरम 1958 टू 1967 थे, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, और पद्म विभूषण दिया गया। नागेंद्र सिंह 1972 to 1973 ये इलेक्शन कमिश्नर थे, पद्म विभूषण दिया गया। आर के त्रिवेदी 1982 to 1985 पद्म विभूषण और गवर्नर का पोस्ट भी दिया गया। वी एस रमा देवी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उन्हें गवर्नर बनाया गया। टी एन सेशन 1990 to 1996 कॉन्टेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस इन 1996। और टी एन सेशन का मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर मेरे पास आर्टिकल है, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उन्होंने अपने जो को कमिश्नर्स बनाए गए थे उनके समय, उनको डोंकीज एंड रास्कल्स भी कहा था। ये हेडलाइन आर्टिकल छपा था कि दे आर डोंकीज एंड रास्कल्स, शुड नॉट बी अलाउड इन टू द इलेक्शन ऑफिस। इस पूरे विषय को लेकर पिटीशन भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि मेजोरिटी डिसीशन होना चाहिए या केवल सीईसी अकेले ही डिसीशन दे सकते हैं। तो वो टीएन सेशन कांग्रेस से 96 में चुनाव लड़ चुके थे। एमएस गिल, जिनका एक प्रकरण मैं यहां अभी बताने वाला हूं, एमएस गिल 1996 से 2001 ये कमिश्नर भी थे, सीईसी भी थे। ये राज्यसभा मेंबर बने कांग्रेस से 2004 से 16, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2009 से 11 और मिनिस्टर ऑफ एसपीआई 2011 में बने। जे एम लिंगदो जी 2001 से 2004 तक थे सीसी और वो कांग्रेस ज्वाइन किए। एन गोपालस्वामी 2006 से 2009 और उन्हें पद्म भूषण दिया गया। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? और आप देखिए, ये 2005 की बात है, 2005 सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। व्हाट अथॉरिटी डिड सोनिया हैव? ये आर्टिकल छपा है 2005 का। 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपालस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। ये प्रतिभा पाटिल जी तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा गया गोपाल स्वामी जी द्वारा, सीसी द्वारा। सुनने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें सीईसी बना दिया, मतलब हटाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सीईसी बनाया। और 2009 के लोकसभा के इलेक्शन का दायित्व कांग्रेस पार्टी ने चावला जी के ऊपर, नवीन चावला जी के ऊपर छोड़ा और 2009 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। उस समय भी राहुल गांधी पार्लियामेंट में थे, उस समय तो एक दिन उन्होंने टी शर्ट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। गोपाल स्वामी जी ने प्रतिभा पाटिल के साथ साथ 16 जनवरी 2009 में चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को भी लिखा कि आप इसी नवीन चावला जी को हटाइए बिकॉज ऑफ हिज बायसनेस टुवर्ड्स कांग्रेस। फिर भी मानी नहीं गई बात। नवीन चावला जी के ऊपर एमपी लैट फंड और लैंड अलॉटमेंट का केस हुआ, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया सीईसी के पद से। कांग्रेस रूल के समय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहां पर, वीएस संपत का केस 2012 में, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए उनका नाम वीएस संपत था। एलके आडवाणी जी ने बहुत सख्त रूप से इस पे आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है, एक कोलिजियम बनना चाहिए जिसके माध्यम से सीईसी का चयन हो, मगर इस विषय को माना नहीं गया। और आज आप देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, बड़ा बेंच उस पर निर्णय लेगा, मगर आज आपने देखा है पहली बार जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 2023 तक, जहां इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर केवल अपने विम्स एंड फैंसीज पे करते थे, आज एक कमिटी बनाई गई है जिसमें एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन भी शामिल हैं, ताकि उनकी राय भी ली जा सके एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द कमिश्नर्स आर कंसर्न्ड। न्यूज़पेपर्स पे डिस्कस कर रहे हैं तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें सोनिया गांधी जी के डिसक्वालिफिकेशन का केस जो 2009 में था उसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिसेंट लेटर दिया था। द ईसी पोस्टिंग इज द बेस्ट पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन फॉर आईएएस ऑफिसर्स इन जनरल, इट अलाउज देम एज मैक्सिमम 6 years ऑफ जॉब, ये आर्टिकल में छपा है। ईसी सोर्सेज, सोनिया स्ट्रेटजीज टू एंश्योर चावला हेड्स द पैनल ड्यूरिंग मे 2009 जनरल इलेक्शंस, ही विल कंप्लीट 65 years ऑन June 30 दैट ईयर। सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर, ये आर्टिकल एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस का है। और सोनिया गांधी जी को डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, ये दो इलेक्शन कमीशंस ने इसमें मत बनाया था कि डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मत बनाया था कि इस पे जांच होनी चाहिए। आप सोचिए वहां भी डिसेंट हुआ था मगर उस बात को छिपाने की किस प्रकार कोशिश की गई थी और नवीन चावला को आगे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। उस समय एक बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का ही यहां पे जिक्र है, मैनी इन कांग्रेस वांट नवीन एस सीईसी टू प्रीएम्प्ट बीजेपी ट्रायड। आप देखिए खुद अखबारों ने छापा है। इस प्रकार अनेक आर्टिकल बीजेपी को हराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट किस प्रकार हो सकता है, जो मैंने आपको कहा था चावलाज लू ब्रेक्स लीड टू कांग्रेस फोन कॉल्स सीईसी, ये सारे अखबार की कटिंग्स और बहुत सारे कटिंग्स मेरे पास हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं। कुल मिलाकर के आप तय करिए कि अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात को अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना ये डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन SIR बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इवन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया दैट इज द इलेक्शन कमीशन। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज SIR इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में SIR है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ SIR ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से SIR को अपहोल्ड करते हुए दिया है। अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है, इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूछे पूछे पीयू जी।

0: नहीं, ये तो चाहते ही हैं। ये सारे जो विपक्षी दल चाहते हैं कि ये घर में बैठे रहें और इनको लाके हम गद्दी दे दें या उस पर बैठ जाएं, इनको लाकर हम सत्ता दे दें और वो उस पर बैठ जाए। कोई मेहनत थोड़ी करना चाहता है। ये राहुल गांधी जी हर 10 दिन में विदेश के टूर पे जाएंगे और टूर पे आने के बाद कहीं हरियाणा की गद्दी रखी जाएगी, वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 25 दिन के लिए स्विट्जरलैंड, वहां से लौट के आएंगे तो महाराष्ट्र की गद्दी रहेगी, वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 30 दिन के लिए घूमने के लिए होनोलुलु, वहां से लौट के आएंगे तो हम हरियाणा की गद्दी, बंगाल की गद्दी रहेंगे, वो उस पर बैठ जाएंगे। ऐसे होता है क्या? अरे धूप में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उनके तप का अर्थ अलग होता है। वो धूप में तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके सीट मिलती है। उन्हें बोले तपस्या करेंगे, इस प्रकार के एलिगेशन से काम नहीं होता है।
1: पूछिए रवि जी, पूछिए।
2: राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और ईडी ने देशद्रोह किया है और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलने आपके
0: ऊपर। देखिए देशद्रोह कौन कर रहा है ये पूरी देश देख रही है। देशद्रोह क्या होता है? देशद्रोह होता है जब आप विदेशी भूमि में जाकर के अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट, अपने देश के इलेक्शन कमीशन, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सारी संस्थाओं को आप छोटा करके दिखाते हैं और आप वेस्ट मतलब पाश्चात्य देश में जाकर कहते हैं कि यू शुड इंटरवीन टू करेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, अमेरिका शुड इंटरवीन इन इंडिया, द यूरोपियन कंट्री शुड इंटरवीन इन इंडिया।
3: इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बैनर्जी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं ममता बैनर्जी, सीईसी को गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल अभी ये बता रहे थे कि किस तरह जिन 20 सीटों पर बंगाल में सबसे ज्यादा वोट कटे, सबसे ज्यादा उनमें से तृणमूल कांग्रेस सीटें जीती, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी, जहां जहां ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कराए हो वहां वहां दोबारा चुनाव हो, यह मांग कर रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहां ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कराए वहां वहां दोबारा चुनाव हो। सीईसी को गिरफ्तार करने की मांग पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो इस समय कर रही है। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस समय ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इस समय मिल गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के क्लारिफिकेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब पलटवार कर रही है, यह बता रही है कि किस तरह से इससे पहले सीईसी या ईसी बकायदा कांग्रेस पार्टी के सदस्य, सांसद या मंत्री तक रह चुके हैं।
4: देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया, एक अंग्रेजी अखबार की जो आज की स्टोरी थी उसको लेकर, उसके बाद उन्होंने बताया हाँ कई बार जो है सुझाव और डिसेंट जो होते हैं उनको उन पर होता है, लेकिन फैसला अंतिम होता है और सभी के सुझाव मांगे जाते हैं, ना सिर्फ जो है तीनों यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो जो चुनाव आयुक्त थे उनके अलावा, बल्कि चुनाव आयोग में काम करने वाले सभी अधिकारियों का जो है वो राय ली जाती है और उसपे सलाह मशवरा के बाद ही जो है वो फैसले होते हैं। लेकिन ये भी आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद जो है मोर्चा संभाला, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है MS गिल जो पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भी भेजा और यूपीए सरकार में उनको मंत्री भी बनाया। उन्होंने ये कहा कि सीईसी के साथ मिली भगत जो है वो कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है और कांग्रेस जो है अब आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब क्लेरिफिकेशन आ गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद जो है मोर्चा संभाला गया और सीधा सीधा टारगेट जो है वो कांग्रेस को किया गया है।
3: लेकिन इस समय अगर आप देखें तो पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी, सभी एक मत है ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग को लेकर, या फिर ममता बैनर्जी तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव 2027 के चुनावों से पहले और ज्यादा गर्माने वाला है।
4: देखिए बिल्कुल गरमाएगा भी, क्योंकि इससे पहले जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी बिहार के चुनाव के समय, तब से जो है सभी विपक्षी दल जो है इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, और उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये SIR की प्रक्रिया जो है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और NDA को मदद के लिए की जा रही है। और खुद राहुल गांधी ने जो है वोट यात्रा जो है वो निकाली थी बिहार के अंदर, और उसके बाद जहां जहां चुनाव हुए, चाहे बंगाल के अंदर हुए, आसाम में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, केरल में हुए हैं, SIR को लेकर जो है वो लगातार विपक्षी दल जो है चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं। हम सबको याद होगा SIR को लेकर जो है संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च जो है वो विपक्षी सांसदों के द्वारा किया गया था। उन्होंने समय मांगा था, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था
0: जी
4: कि 20 लोग जो है प्रतिनिधि मिले, और तब पूरा विपक्ष एकजुट जो है वो इस पर था। और अब भी विपक्ष जो है अलग अलग, यही सही, लेकिन चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहा है SIR को लेकर। और जिस तरीके की ये जो स्टोरी है, जो खबर है, उस पर कहीं ना कहीं अब ये साबित होता है कि विपक्ष एकजुट होकर लगातार जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो सवाल भी खड़े करेगा, और आने वाले दिनों में ये देखने को जरूर मिल सकता है कि पूरा विपक्ष एक बार फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को लेकर जाए और वहां पर जो है ये मांग करे कि CEC जो है उनको हटाया जाए, जिस तरीके की मांग जो है अभी बहरहाल ममता बनर्जी जो पूर्व
0: जी
4: मुख्यमंत्री हैं और TMC का जो एक धड़ा है उसकी अध्यक्ष भी है, उनकी तरफ से ये किया गया है
3: न
4: मांग।
3: केवल उनको हटाया जाए बल्कि ममता बनर्जी तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। ज्ञानेश कुमार की रही है मेरे साथ, मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते आए हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी EVM का मुद्दा उठाती आई है, अब इस रिपोर्ट के बाद और EC के क्लैरिफिकेशन के बाद क्या ये विपक्ष की या पूरे इंडिया गठबंधन की साझा रणनीति है ज्ञानेश कुमार को टारगेट करने की?
1: देखिए, आपने सही कहा गौरव, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। इंडिया ब्लॉक में जो लोग सहमति रखते हैं, नहीं रखते हैं राहुल गांधी से, पूरे इंडिया ब्लॉक को और बाहर की जो विपक्षी दल है उनको भी एक साथ करने का कांग्रेस के लिए। अब तीन प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चल रही है, एक तो कि महाभियोग लाया जाएगा, जयराम रमेश से लेके इमरान मसूद ने इसमें कह दिया अगला जो भी सेशन होगा CEC के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। पहले ही कम से कम 70-75 सिग्नेचर हुए थे नोटिस जो है पूरी ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को लेके, और अब आगे महाभियोग लाया जाएगा। दूसरा, राहुल गांधी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं कल, एक बहुत बड़ी, और कहा गया है जिस तरीके से पहले भी एक तरह चेतावनी दे चुके हैं CEC को कि आप सरकारी अफसर रहते हैं, नहीं होते, रिटायर भी होते हैं, जहां भी होंगे ढूंढ के आपको इसके लिए जो है जस्टिस और इंसाफ किया जाएगा, सजा आपको भुगतनी पड़ेगी लोकतंत्र को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और तीसरी लड़ाई मुझे लगता है कोर्ट में लड़ी जाएगी। अभिषेक सिंघवी को उतारा गया है कांग्रेस ने, इसमें उतारा है, और मुझे लगता है जल्द ही कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई होने वाली है।
3: हालांकि SIR के मुद्दे पर भी जब विपक्ष कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को ये कहा था कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको चलने दिया जाना चाहिए। और मौसमी, अब ये रणनीति आगे बढ़ाने के लिए, देखिए बीजेपी अब पलटवार कर रही है कांग्रेस पर, और उन्होंने कई उदाहरण दिए। TN सेशन ने अभी संबित पात्रा बीजेपी के सांसद और नेता ये कह रहे थे कि TN सेशन ने बाकी दोनों ECs को अपशब्द तक कहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। MS गिल का उदाहरण दिया, वो तो मंत्री तक बने थे CEC रहने के बाद, उन्होंने दिवंगत नवीन चावला का नाम लिया था कि नवीन चावला को इसीलिए सोनिया गांधी ने उनको CEC या EC और CEC बनवाया था। तो इस पर क्या कांग्रेस अपनी सफाई दे रही है?
1: देखिए, ये बात जो जाहिर तौर पे सियासी वार जो बीजेपी भी कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सच्चाई है। ये पहली बार नहीं है जब सरकारी अधिकारी और संस्थाओं का में रहने वाले नियुक्त लोगों को पॉलिटिकली जो है अकोमोडेट किया गया है बाद में, और चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन मामला इससे आगे बढ़ गया है इस बार गौरव, क्योंकि लगातार इसको सियासी तूल कांग्रेस देती आई है और विपक्ष देता आया है। उन्होंने इसको चुनाव चोरी से जोड़ा है, वोट चोरी से जोड़ा है, और ये कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो मोदी और शाह के G2 नेताओं के बीएस में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि ज्ञानेश गेट इसको करार दे दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि की तथ्यात्मक ज्यादा पड़ताल पर विपक्ष जाएगा। उसको पता है कि ये सियासी मुद्दा पांच विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको गरमाना है। हालांकि वो वोटों पे कितना तब्दील होता है वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र को लेके, लोकतंत्र की हत्या को लेके, संविधान को लेके राहुल गांधी पहले भी मुद्दा बना चुके हैं और कल प्रेस वार्ता उनकी काफी आक्रामक होने वाली है।
3: प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि कई चुनाव 2014 के बाद ऐसे भी हुए हैं जिसमें विपक्ष की पार्टियां जीती हैं अपनी सीटें भी और कई राज्य भी, तो ऐसे में वोट चोरी पर क्या कहा जाएगा? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। मौसमी और हिमांशु फिलहाल धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर,
8: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: Maddie, I need to open a savings account.
14: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
13: स्मॉल बैंक?
14: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
13: ओके
14: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है,
5: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित।
6: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है।
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार।
7: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 प्लान रोकने के लिए।
8: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो हैं अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
10: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है, और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।

संविधान पर हमले का आरोप। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सबसे बड़ी अदालत में दो जजों की बेंच की अलग अलग राय। चीफ जस्टिस को भेजा गया मामला। पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई।

0: मिलकर दूर किया भ्रम, मेरे नाम पर जमीन नहीं कहा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। संयुक्त राष्ट्र महासभा का महामंच इस समय कूटनीति का नहीं बल्कि सीधे सीधे महायुद्ध का मंच, या यूं कहे महायुद्ध का अखाड़ा बन चुका है। न्यूयॉर्क में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ एक जुबानी जंग नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के भूगोल और अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत इस समय जो बातचीत चल रही है वो रखती है। देखिए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर गरजते हुए ईरान को नक्शे से मिटा देने की सीधी धमकी दे डाली। लेकिन जंग के शोर के बीच पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि कतर के जरिए बैकडोर डिप्लोमेसी यानी पीछे के दरवाजे से चोरी छिपे कूटनीति जारी है। खाड़ी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि अगर ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल करने की फिर कोशिश की तो उसका तोड़ उनके पास तैयार है, और यह तोड़ है IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह वही कॉरिडोर है जिस पर नई दिल्ली में जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था तो इस IMEC कॉरिडोर पर मुहर लगी थी। अब अमेरिका खुलकर इस कॉरिडोर के समर्थन में उतर आया है ताकि ईरान की जो समुद्री नाकेबंदी है उसको हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार किया जा सके। और इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं। जी हां, अमेरिका के फ्लोरिडा मियामी में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने अमेरिका जा सकते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड सम्मेलन और ठीक उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मेजबानी में उनका कनाडा का दौरा भी मुमकिन है। पूरी दुनिया जब जंग में फंसी हुई है तब शांति, स्थिरता और व्यापार के लिए भारत की भूमिका एक बार फिर केंद्र में आ गई है। और इन सब के बीच इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में खुद के खिलाफ उठ रही आवाजों को इजराइल ने झूठ की इंडस्ट्री करार दिया है और एक विवादित एनिमेशन जारी कर दिया है, एक तरह से एक वीडियो, एक एनिमेशन। और इस एनिमेशन में यूनाइटेड नेशन में बैठे प्रतिनिधियों को रट्टू तोता, बस रटा रटाया पाठ उगल दिया, एक रट्टू तोते के रूप में दिखाया गया है जो सिर्फ ब्लेम इजराइल की रट लगा रहे हैं। अर्दोगन के भाषण पर वॉकआउट, मैक्रोन से तलखी, और अब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विरोधियों को आईना दिखाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इन तमाम खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ईरान के जबरदस्त पलटवार या जवाब पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।

0: दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे तीखा अल्टीमेटम। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीधे सीधे निशाना साधा। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो अंजाम ईरान का विनाश होगा।
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
0: ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं और सर्वोच्च ऑपरेशनल कमांड खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ट्रंप के बयान को विशुद्ध प्रोपेगेंडा करार दिया। ईरानी फौज ने हुंकार भरते हुए चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर और भी कठोर, करारा और अप्रत्याशित प्रहार करेंगे। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, ईरान ने ट्रंप की धमकियों का मजाक उड़ाने के लिए अपने एक्सप्लोजिव मीडिया के जरिए एक 8 सेकंड का लेगो एनिमेशन भी जारी किया है। इसमें झूठ बोलने वाले पिनोकियो की तरह लंबी नाक के साथ ट्रंप की जमकर खिंचाई की गई है और उन्हें लूजर करार दिया गया। लेकिन धमकियों के इस शोर के बीच न्यूयॉर्क की बंद खिड़कियों के पीछे एक और खेल चल रहा था। आमने सामने भले ही बातचीत ना हुई हो, लेकिन कतरी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मेज पर बातचीत हुई। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर की ईरानी प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक एक घंटे के लिए तय थी वो पूरे 3 घंटे तक चली। ट्रंप ने अपनी चेत परिचित शैली में दावा किया कि ईरान उनकी धमकी से डर गया है, इसलिए बातचीत के लिए तैयार हुआ।
1: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. And we're just putting the pressure on because hopefully they'll do the right thing fast before it's too late. You know, it's going to be a time when it's too late and we won't have a chance of letting them survive.
0: हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया इरना की माने तो कहानी कुछ और ही है। ईरान ने साफ किया है कि उन्होंने बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें थोपी हैं। हुर्मुज जल डब्ल्यू मध्य को खोलने के बदले ईरान ने 3 सख्त शर्तें रखी हैं। नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटे, फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति बहाल हो और तमाम मोर्चों पर युद्ध बंद किया जाए। जमीन पर तनाव का आलम यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम यानी LPWS को हाई अलर्ट पर रीलोड करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं। ट्रंप ने अपनी स्पीच में ईरान की ओर से 9/11 हमले का जश्न मनाने का जिक्र भी किया।
2: जब ईरान की बात आई तो उन्होंने कहा कि वो एक डिसीजन लेने वाले हैं, या तो ईरान को पूरी तरह से वो खत्म कर दे या फिर वेट करके एक डील करे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का ऐसा मानना है कि मिड टर्म्स के बाद जो चुनाव होने वाले नवंबर में उसके बाद शायद ईरान एक डील करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा पूरी दुनिया को कि मैं एक मैन ऑफ एक्शन हूं, मैंने हमेशा से एक्ट किया है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने 9/11 जैसे जो इसके 25वीं सालगिरह बनाई है अमेरिका ने अभी, उसको सेलिब्रेट किया था।
0: अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान जब यूएन महासभा के मंच से बोलेंगे तो एक ताकतवर और अजय ईरान की ओर से अमेरिका को क्या करारा जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो।
3: तो मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रही है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया है, इससे वैश्विक तेल और तेल के साथ साथ उर्वरक फर्टिलाइजर की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। तेल, गैस, उर्वरक, सप्लाई चेन दुनिया भर में चरमरा रही है। इन सब के बीच न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के देश जीसीसी नेताओं के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की समुद्री नाकेबंदी का तोड़ निकालते हुए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के महत्व को दोहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान जिस तरह जहाजों को निशाना बना रहा है, उस बीच दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो आर्थिक गलियारा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत भारत में होती है, मध्य पूर्व से होते हुए यह यूरोप तक पहुंच रहा है, यानी भारत से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, वहां से फिर सऊदी अरेबिया, वहां से फिर जॉर्डन, जॉर्डन से फिर इजराइल, इजराइल का हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप, और फिर यूरोप से अमेरिका। साल 2023 में जब नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भारत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस समय इन सभी महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री मौजूद थे। सभी ने हाथ मिलाया और इस पर मुहर लगी। इससे वैश्विक शांति और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार को वापस पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर भारत की भूमिका कितनी अहम हो गई है यह सामने आती है। अब खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द न केवल कनाडा बल्कि कनाडा और अमेरिका दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा कर सकते हैं। अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा का दौरा कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। खबरें इस समय कनाडा से इस बारे में आ रही हैं।
0: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कूटनीति की सबसे बड़ी बिसात बीत चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ देशों के शीर्ष नेताओं के साथ आपातकालीन बैठक की। ईरान के हमलों से त्राही त्राही कर रहे खाड़ी देशों के साथ हुई इस बैठक में ट्रंप ने ईरान की डरावनी तस्वीर दिखाई और कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहा ईरान की ओर से बंद किया गया हॉर्मुज जलडमरू मध्य। खाड़ी देशों की अपील और वैश्विक तेल बाजारों में मचे हाहाकार के बीच ट्रंप ने बड़ा दांव चला। उन्होंने कहा कि ईरान की समुद्री गुंडागर्दी और तेल ठिकानों पर हमलों का जवाब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC है।
4: Neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor and other places of the form of getting oil out, whether it's pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for decades.
0: ये वही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक सहमति बनी थी। भारत की पहल पर बने इस कॉरिडोर पर अमेरिका और खाड़ी देशों ने मोहर लगाई थी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अमेरिका का दौरा किया, तब भी ट्रंप ने इस रूट की तारीफ की थी।
4: But right now we're the leader by quite a bit. Finally we agreed to work together to help build one of the greatest trade routes in all of history. It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways, and undersea cables, many, many undersea cables. It's a big development. It's a lot of money going to be spent.
0: अब जब ईरान ने मुख्य समुद्री रास्तों को रोक रखा है, तब ट्रंप ने इस कॉरिडोर के महत्व को दोहराते हुए इसे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार की नई लाइफलाइन बताया है। वहीं इस महासंकट के बीच अब निगाहें टिकी हैं अमेरिका में होने जा रही G20 की महाबैठक पर। साल 2026 का G20 शिखर सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोराल में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जा सकते हैं।
5: हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, जो अमूमन दौरे की तारीखों के करीब किया जाता है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पीएम मोदी दिसंबर के मध्य में अमेरिका दौरे के बाद कनाडा का भी द्विपक्षीय दौरा कर सकते हैं।
6: Mr. Modi and myself last year at the G20 was to look to conclude negotiations by the G20 this year. G20 from memory is middle of December, 14th, 15th of December. I believe that India has I believe India just confirmed that the Prime Minister will be visiting Canada around that time. The precise date isn't out, but I very much look forward to hosting him.
1: 51 year menace.
5: अमेरिका में G20 से इतर क्वाड शिखर सम्मेलन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत की भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जब जब दुनिया व्यापारिक और सैन्य संकट से जूझती है, तब तक भारत की भूमिका निर्णायक हो जाती है। अब मियामी में होने वाली इस ऐतिहासिक बैठक पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो।
3: कितना बड़ा गेम चेंजर है ये आईमेक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको इसको समझाता हूं मानचित्र पर। देखिए, शुरुआत होती है भारत के मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा से ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात जाता है समुद्र के रास्ते, वहां से फिर सड़क मार्ग। आपने फारस की खाड़ी भी छोड़ दी, बाबल मंदब भी छोड़ दिया, यानी दोनों जगह आपको खतरा नहीं है। आप सुरक्षित पहुंचे यूएई, वहां से सऊदी अरेबिया होते हुए ये बिल्कुल ग्राउंड का मार्ग है, और उसके बाद आप पहुंचते जॉर्डन से आप पहुंचते इजराइल, इजराइल का वो हाइफा का पोर्ट, और हाइफा के पोर्ट से आप भूमध्य सागर होते हुए दूसरी तरफ पहुंचते हैं इटली, इटली पर आप पहुंचते हैं, वहां से आप फिर फ्रांस जर्मनी होते हुए, और फिर आप अटलांटिक कोस्ट पर पहुंचते हैं, अटलांटिक कोस्ट से अमेरिका। ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को जोड़ेगा, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस सबको दरकिनार करते हुए मजबूत एक रास्ता आ सकता है, और इस रास्ते पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।
1: और जोशी जी ने ये शिकायत की है कि 10 महीने में उसने 14 बार ऑब्जेक्शन लिए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया, खास करके फॉर्म 6 में जो बदलाव है, SIR में और मुद्दे हैं, ये सब गैरकानूनी है, ये नहीं होना चाहिए, कानून उनको परमिशन नहीं दे रहा है, फिर भी ज्ञानेश कुमार रुक कर रहा है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक ये शिकायत की, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई आक्षेप, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। उसका मतलब साफ है, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए हैं, मैं बीजेपी नहीं जीत
2: चुनाव आयोग को चला

0: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था। और जोशी जी ने ये शिकायत की है कि 10 महीने में उसने 14 बार ऑब्जेक्शन लिए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज किया था, खास करके फॉर्म 6 में जो बदलाव है, एसआर में और मुद्दे हैं, ये सब गैरकानूनी है, ये नहीं होना चाहिए, कानून उनको परमिशन नहीं दे रहा है, फिर भी ज्ञानेश कुमार रुक कर रहा है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक ये शिकायत की, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई आक्षेप, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। उसका मतलब साफ है, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए हैं, मैं बीजेपी नहीं जीत
1: रहा। चुनाव आयोग को चला कौन रहा है? अगर दो चुनाव आयुक्त निरंतर और लगातार अपनी आपत्तियां दर्ज करते रहे हैं और उनकी आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद या कथाकथित आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद चुनाव आयोग एसआईआर को क्रियान्वित करता रहा है, तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर चुनाव आयोग को चला कौन रहा है? कि वो चुनाव आयोग के जो नियम हैं वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि हर फैसला अगर या तो सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए, और अगर सर्वसम्मति से नहीं लिया जा सकता तो वो मेजॉरिटी से लिया जाना चाहिए। अब जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो खबर एक अखबार में छपी है, अगर वो सही है और दो चुनाव आयुक्त लगातार आपत्तियां दर्ज करते रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि चुनाव आयोग के जितने फैसले हैं, खासकर जो एसआईआर से संबंधित है, वो तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यहीं पर यह घटना हुई एनकाउंटर की जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर हुआ, उसमें गोली लगी नंदन यादव के पैर में और फिर आनंद फानंद उसको लेकर के पुलिस यहां पहुंची।
1: बिहार के जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे विपक्ष के निशाने पर लाखड़ा किया है। इसकी वजह सम्राट चौधरी का वो बयान है जिसे उन्होंने आज तक के मंच पर दिया।
2: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
1: आज तक के मंच पर मुख्यमंत्री ने जो दावा किया उसकी 19 तारीख को जमुई में धज्जियां उड़ गई। सारे देश ने देखा कि कैसे नंदन यादव और उसके साथियों ने एक बेटी को रात में अकेला पाकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। इसीलिए तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा कब देंगे मुख्यमंत्री साहब।
3: आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा, अगर हिम्मत है तो। अगर अपने जुबान पे कायम नहीं है तो ऐसे बड़बोले मुख्यमंत्री का कोई फायदा नहीं है।
1: जमुई की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने, उनके साथ ही नेता और मंत्री भी अपने बड़बोलेपन की वजह से सवालों में। इसमें पहला नाम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती हैं। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी किया। बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने असंवेदनशील बयान से अपने पद की गरिमा गिराई। इंडिया टुडे से बातचीत में वो कह गई कि जमुई में जो कुछ हुआ वो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग थी, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे ज्यादा सभ्य और शालीन तरीके से किया जाना चाहिए था। कि जमुई में जो कुछ भी हुआ क्या उसे मॉरल पुलिसिंग कहा जा सकता है, जबकि ये मामला छेड़छाड़ और अभद्रता का था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने इसे मॉरल पुलिसिंग से जोड़कर इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले नंदन यादव के अपराध को कम करने की कोशिश की। अब जब इन बयानों पर हंगामा मचा तो फिर सफाई दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत में महिला अपराधों पर, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेहद शर्मनाक बयान आते रहते हैं। विडंबना ये है कि ये सिलसिला नहीं थमता। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

सीसी विवाद में बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। संबित पात्रा बोले, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन के सफाई, टिप्पणियों को बताया प्रक्रिया का हिस्सा। ममता बोली, गिरफ्तार हो ज्ञानेश कुमार। तेजस्वी ने बिहार चुनाव को बताया फर्जी। एसआईआर पर 2 चुनाव आयुक्तों की 14 बार आपत्ति को लेकर विपक्ष हमलावर। राहुल ने बताया देशद्रोह। अखिलेश ने लगाया संविधान पर हमले का आरोप।

0: जजों की बेंच की अलग अलग राय, चीफ जस्टिस को भेजा गया मामला, पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। टीम नितिन नबीन के ने प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा छत्तीसगढ़, विनोद तावड़े को यूपी, सुनील बंसल को तेलंगाना बंगाल की जिम्मेदारी, अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की सबसे बड़ी खबर पर है, क्योंकि आज भारत की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी दल है जो चुनाव आयोग से जुड़े खुलासों को लेकर सरकार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नहीं बोल रहा।
1: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है।
2: लोकतंत्र खत्म, इसलिए आखिरी चुनाव होने जा रहा है यूपी का। ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद आपके वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे।
3: भाजपा ने खोला है लोकतंत्र की हत्या का कार्यालय।
4: पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए।
5: जेल में तो ज्ञानेश कुमार जाना चाहिए, जेल में तो ज्ञानेश कुमार जाना चाहिए।
6: राहुल गांधी जी हैज बीन हाइलाइटिंग अगेन एंड अगेन विद द मैनिपुलेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट।
7: तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने इम्पीचमेंट पिटीशन दिया था।
0: दरअसल खुलासे ही ऐसे हुए हैं कि देश के अंदर हो रही पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर ही बहस छिड़ गई है, और वह इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 यानी करीब 10.5 महीनों में 14 ऐसे मौके आए जब 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में किसी न किसी सदस्य ने किए जा रहे फैसले पर असहमति या नाराजगी जताई थी। दोनों चुनाव आयुक्तों ने 8-8 मौके पर अपनी असहमति जताई। ये दोनों चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह संधु और विवेक जोशी हैं। इन दोनों की असहमतियों के बावजूद भी मीडिया रिपोर्ट्स जो उसके बारे में कहा गया है, वो ये कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2025 को संधु ने कहा कि बिना मंजूरी के चुनाव आयोग के नाम से चिट्ठी और आदेश जारी किए गए। फिर 16 अप्रैल 2026 को शिकायतों का अंबार ही लगा दिया गया। संधु ने कहा कि नए आईटी मॉड्यूल और पोर्टल के बारे में मीडिया से पता चल पाया, यानी उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी। संधु ने यह भी कहा कि आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक बयान जारी किए जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि 1 साल से आयोग की बैठकें न तो एजेंडा पता चल पा रहा है, न बैठक के बाद ब्योरे मिलते हैं, यानी मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी उनको नहीं मिल पा रहे। जोशी ने यह भी कहा कि बिना आयोग की मंजूरी के अधिकारी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। फिर 24 अप्रैल 2026 को जोशी ने एक बार फिर कहा कि बिना आयोग की मंजूरी के कोई आधिकारिक बयान न दिया जाए। आगे 16 मई 2026 को भी एक बयान दिया जाता है। जोशी उस पर कहते हैं कि बिना सरकारी मंजूरी के फॉर्म 6 में बदलाव नहीं करें। फॉर्म 6 वो होता है जिससे नए मतदार मतदान सूची में अपना नाम ऐड कर सकते हैं। इसी बात पर 19 मई को संधु भी सहमत हुए। फिर 29 मई 2026 को जोशी ने कहा कि वोटर डेटाबेस के सेंट्रलाइज ना किए जाए, ऑडिट उसका जरूरी है। आगे 29 जुलाई 2026 को जोशी ने कैबिनेट सचिव को लिखा और कहा कि आयोग की जानकारी के बिना अफसरों को काम बांटे जा रहे हैं। 29 जुलाई 2026 को ही संधु ने भी कैबिनेट सचिव को यानी कैबिनेट सेक्रेटरी से वर्क रोस्टर का मुद्दा उठाया, अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की। 30 जुलाई 2026 को जोशी और संधु दोनों ने अफसरों के नए एलोकेशन ऑर्डर को खारिज कर दिया। 12 अगस्त 2026 संधु ने कहा कि सवाल उठाया कि बंगाल ट्रिब्यूनल में आयोग के नाम पर जो लाखों अपीलों की मंजूरी दी गई है वो किसने दी है। 13 अगस्त 2026 संधु ने कहा कि फॉर्म 6 में बदलाव अनधिकृत और अवैध है, इलीगल है। 14 अगस्त 2026 को संधु ने शिकायत की कि फील्ड अफसरों को ईसीआई नेट सिस्टम तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, डीजीआईटी उसे क्यों रोक रहे हैं। तो ये 14 मिसालें हैं जो मीडिया रिपोर्ट में दर्ज की गई है। जब 3 सदस्य निर्वाचन आयोग के 2 आयुक्तों ने अलग अलग मौके पर आयोग में लिए जा रहे फैसलों पर लगातार सवाल उठाए, शिकायतें की या विरोध किया, उन सभी मामलों को देखा जाए तो 3 तरह की शिकायतें लब्बोलुबाब में सामने आती है। पहली शिकायत यह कि फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर दोनों आयुक्तों का पुरजोर विरोध था। दूसरी ये कि दोनों आयुक्तों की जानकारी के बिना आयोग में कई तरह के काम हो रहे थे। और तीसरी ये कि बंगाल में बिना मंजूरी के ट्रिब्यूनल में आयोग के नाम की अपील की गई, और ऐसे लाखों अपीलें उस ट्रिब्यूनल के सामने की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये तीनों मामले संगीन है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर आम जनता यानी आप और मेरे जैसे वोटर्स की रोल पर पड़ता है और वोटर रोल का असर चुनाव प्रक्रिया में मतदान से लेकर नतीजों तक भी पड़ सकता है और इनमें भी फॉर्म 6 में बदलाव वाला मामला सीधे तौर पर वोटर से जुड़ा या नए वोटर से जुड़ा हुआ है क्योंकि इन बदलावों को दोनों आयुक्तों ने अनधिकृत और अवैध करार दिया है। फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण नियम जरा उसको भी समझ लेते हैं कि फॉर्म 6 होता क्या है। तो फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत एक वैधानिक फॉर्म है और इसमें बदलाव के लिए कानून मंत्रालय के विधायी विभाग का गैजेट नोटिफिकेशन यानी गैजेट अधिसूचना जरूरी होती है। चुनाव आयोग की आईटी विंग ने बिना अधिकृत मंजूरी के फॉर्म 6 में बदलाव कर दिए गए और दोनों चुनाव आयुक्तों के लगातार सवाल उठाने के बावजूद भी वो बदलाव नहीं रोके गए। मई के दूसरे हफ्ते में ही इस पर सवाल उठाए गए। जैसे मैं कह रहा हूं आखिर चुनाव आयोग के ईसीआई नेट ने ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 के भाग जे और के बीच में एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन सेक्शन क्यों डाल दिया, क्योंकि इस डिक्लेरेशन में नए आवेदकों से यह पूछा जा रहा था कि क्या 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम था, क्या 2003 के वोटर लिस्ट में उनके माता पिता या दादा दादी का नाम था, अगर हां तो किस विधानसभा, किस मतदान केंद्र और किस पार्ट नंबर, क्या सीरियल नंबर था। तो अब माता पिता के नाम और एपिक नंबर भी उसके साथ दे दे, ये एडिशनल 2J और KK जो कॉलम है उसमें इसको जोड़ा गया। वैसे चुनाव आयोग के ये नियम हर जगह लागू होते हैं लेकिन इसका असर बंगाल में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है क्योंकि बंगाल के भीतर पहले ही लाखों वोटर्स के नाम काट दिए गए थे और उनके बच्चे जब नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर कराने पहुंचेंगे तो वहां इस क्लॉज के कारण उनका नाम भी नहीं जुड़ पाएगा। बंगाल में ऐसे नए वोटर और जो आवेदक है उनकी तादाद आप यकीन माने 7.26 लाख बताई जा रही है। अब जब ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग में असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा था तो आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। उस प्रेस नोट में क्या लिखा गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होते हैं। दूसरा उसमें कहा गया है कि आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरीके से कानूनी रूप से मान्य होते हैं। तीसरा आयुक्तों द्वारा जो भी सुझाव सुझाए गए हैं वो चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए सुझाए गए थे और अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का वो हिस्सा होते हैं। 10 महीने में सभी फैसले पिछले 1 साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है और इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश भी शामिल थे, यानी कई सारे फैसले आम सहमति से बनाए गए, ये चुनाव आयोग कहने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग को जब पूछा गया उसने ईसीआई नेट को लेकर भी अपनी भूमिका रखी है, उनका यह कहना है कि आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसे ईसीआई नेट और अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ही काम करते हैं और भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उनके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक, अवैध या गैर कानूनी नहीं है। दोनों आयुक्तों के नाम पर जो खुलासे हुए हैं चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उनका यह कहना है कि उनका डिसेंट हो सकता है, वो असहमति हो सकती है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया का एक तरीके से हिस्सा है, उसे अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। तो सवाल यह उठता है क्या आयोग की यह जो सफाई है क्या वो संतोषजनक सफाई मान लिया जाए, और इसी मुद्दे पर हम विशेषज्ञों के साथ आज दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे खुलासे पर बीजेपी ने आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं।
8: तीनों इलेक्शन कमिश्नर आपस में, मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं ताकि गांव में बैठी मेरी दादी मां भी समझ सके, अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है और ये तीनों जी हां करते रहते हैं। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज।
0: तो बीजेपी तो कह रही है कि तो ये डेलिब्रेशन की प्रक्रिया होती है, बीजेपी बोल रही है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हुआ, एक प्रेस नोट आया हुआ है और पता नहीं उसमें दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों आयुक्त कह चुके हैं, कई बार प्रेस रिलीज निकाला गया लेकिन दोनों आयुक्तों को, यानी जोशी और संधु दोनों को, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए थे कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान भी जारी कर दिए गए थे, इसलिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने चुनाव आयोग से उनका पक्ष जानने की कोशिश की है और तीन सवाल ऐश्वर्या पालीवाल के तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए थे जिसका जवाब ये प्रेस रिलीज में नहीं दिया गया है। तो पहला सवाल हमने यह पूछा था कि चुनाव आयोग, उन तीन सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की है। तो पहला सवाल यह था कि फॉर्म नंबर 6 में जो बदलाव किए गए हैं वो कैसे किए गए, क्या उसकी कानूनी प्रक्रिया फॉलो की गई थी कि नहीं की गई थी। दूसरा सवाल यह था कि चुनाव आयुक्तों की जो चिंताएं हैं उसको दरकिनार क्यों किया गया, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे पूछे बिना कई बदलाव किए गए हैं। तीसरा सवाल यह था कि वोटर्स का डेटा सेंट्रलाइजेशन, उसके पीछे आखिरकार क्या कारण है। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, प्रेस रिलीज के अलावा ये जो तीन सवाल है, जो अनसुलझे सवाल है, उसका कोई जवाब ये प्रेस रिलीज में नहीं दिखाया गया है। जो आपने सवाल भेजे उस पर चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया आई है?
9: देखिए साहिल, अभी तक इन तीनों सवालों का कोई भी जवाब नहीं आया है और ये तीन अहम सवाल हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो पूछा गया और यही बात थी जो कि जो इलेक्शन जो ईसी से उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फॉर्म 6 के अंदर बदलाव किया गया है वो बिना अमेंडमेंट के नहीं किया जा सकता, तो आखिरकार ये बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद जो एक बड़ा सवाल उठाया गया वो ये है कि जो डेटा का सेंट्रलाइजेशन किया गया था वो सेंट्रलाइजेशन आखिरकार किसके कहने पर किया गया, और जब ये डिसेंट दे दिया गया था, जब ये कहा गया था मीटिंग्स के अंदर कि इसको देखना होगा और ये देखना होगा कि क्या लॉ के तहत इसको किया जा रहा है या नहीं, तो जब ये सब बातें हो चुकी थी उसके बावजूद आगे जाके इन सब चीजों पर अमल क्यों नहीं किया गया और उनके ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल था वो आखिरकार क्यों दिया गया। तो ये तीन सीधे सवाल थे, इन तीनों सीधे सवालों का अभी तक जवाब नहीं आया है। एक प्रेस रिलीज आई है, प्रेस नोट आया है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि एंड में यूनानिमस डिसीजन लिया गया था, तीनों एक ही पेज पर थे और एंड जो डिसीजन था उस पर तीनों के हस्ताक्षर हैं और डिस्कशंस होते रहते हैं, डिस्कशंस होने भी चाहिए, लेकिन एक टूक जवाब जो है साहिल वो अभी तक चुनाव आयोग से सामने नहीं आया है।
0: ऐश्वर्या, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि जो सवाल पूछे गए उसके मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्त यानी संधू और जोशी दोनों ने कहा है कि कई बार प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है लेकिन उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है, और इस प्रेस विज्ञप्ति पर भी जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उस पर पी पवन डिप्यूटी डायरेक्टर है, उनके हस्ताक्षर है, तीनों चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर इस पर नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए।
9: जो स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर तीनों के सिग्नेचर्स होंगे। अलग अलग सूत्रों से जो हमें पता चला है वो ये है कि यूनानिमिटी अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंदर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे, डिसेंट नोट की अगर आप बात करें कि क्या एक प्रॉपर डिसेंट नोट लिखा गया था, तो एक भी डिसेंट नोट नहीं लिखा गया था, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे देखिए, क्योंकि इलेक्शन ईसीज जो होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो ये बता सकते हैं कि हमें ये लगता है कि ये गलत है, उन्होंने उसको एस्केलेट किया, कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी ये बात पहुंचाई गई कि जिस तरीके से रोस्टर के अंदर लोग काम कर रहे थे उसमें कुछ इनको लगता था कि गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग से नहीं आया है, लेकिन ये जो जिस रूल के तहत चीजों
0: और
9: को
0: यही बड़ी दिलचस्प बात है, सवाल यही है कि बार बार ये चुनाव आयोग के तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो प्रक्रिया है, असहमति के बीच में फैसले लिए जाते हैं, ये तो प्रक्रिया है, और आमतौर पर ऐसा होता है अगर ये प्रक्रिया है तो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास दोनों चुनाव आयुक्तों को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। इस पर चर्चा करेंगे। ऐश्वर्या, अगर आपके पास जवाब आता है चुनाव आयोग से तो हमें बताइएगा, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल चुनाव आयोग के भेजे उसके लिए, क्योंकि चुनाव आयोग का जो प्रेस रिलीज है वो अधूरा इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें अपनी भूमिका रखेंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में आएंगे और नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। लेकिन सबके पास जाने से पहले अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उन्होंने भी चुनाव आयोग में काम किया हुआ है। लवासा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात कर रहे हैं इसके लिए। पहला सवाल तो मेरा यही है, आप भी जब कमीशन के भीतर थे तब आपने भी कुछ मुद्दे उठाए थे और आपकी भी अनबन हो गई थी चुनाव आयोग के भीतर, वहां से अगर हम उठा के देखे तो आज भी चीजें कम से कम वही नजर आ रही है।
10: नहीं देखिए, दोनों मसलों में कोई मुकाबला नहीं है आपस में, वो केस कोई और है, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में फैसला था जो कि क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन है कमीशन का, और उसमें जो भी एक दूसरा मत था वो अब रिकॉर्ड किया गया है, वो इलेक्शन कमीशन की रिकॉर्ड में होगा। ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
0: लेकिन सर एक स्पेसिफिक आरोप इस पे नजर आता है जो फॉर्म नंबर 6 को लेकर है, उन्होंने कहा है कि बिना कानून मंत्रालय के गैजेट नोटिफिकेशन से ये बदलाव किया गया, क्या ये संभव है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप इस तरीके से बदलाव कर देते हैं, जो फॉर्म निकालते हैं उसमें बदलाव कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो कानूनी माना जाएगा?
10: नहीं, फॉर्म 6 को चुनाव आयोग अपनी तरफ से नहीं बदल सकता, क्योंकि अभी भी अगर आप कंडक्ट वो जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन रूल्स छपे हुए हैं उनके अंदर जो फॉर्म लगा हुआ है वो अलग है और जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अलग है।
0: लेकिन मुद्दा डेटा सेंट्रलाइजेशन का भी है, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्योंकि आम तौर पर फील्ड अफसर तय करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में वोटर लिस्ट में क्या बदलाव करने हैं, करेक्ट करना है, डिलीट करना है, नए नाम जोड़ने हैं, उनका एक्सेस होता है उसके लिए, और अगर उनका एक्सेस बंद हो रहा है तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है जो सीधा आरोप इसमें लगाया गया है?
10: डेटा सेंट्रलाइजेशन जो है उसका एक अलग मकसद रहा है हमेशा, ये जितने भी इलेक्ट्रल रोल होते हैं कि एक जमाना था जब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का रोल अलग था, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपस में उनका कोई तालमेल नहीं था, अब वो धीरे धीरे सारे इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल हुआ है और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होने में कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, लेकिन ये बात सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा की नहीं है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की है कि क्या जो मैपिंग हो रही है या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के टूल के जरिए लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड ढंग से हो रहा है या वो ईआरओ अपने लेवल पर कर रहा है, ये सवाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के केस में कम से कम ये बात सामने आई थी, कई ऑफिशियल्स ने ये शिकायत की कि ये जो नोटिस दिए गए हैं ये तो सेंट्रलाइज तरीके से हमारे पास है, हमको नहीं पता, ये गलत है। और मैं आपको बताऊं कि गुड़गांव में जहां मैं रहता हूं वहां 2 सितंबर को लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिसमें उनको कहा गया है कि आप 18 अगस्त 20 अगस्त को पेश होइए, यानी कि जो 10-12 दिन पहले की तारीख गुजर चुकी है, तो ये किस किस्म का काम किया जा रहा है कि आप ये बराए नाम नोटिस दे रहे हैं और उन नोटिस से जाहिर है कि वो नोटिस सारे सेंट्रलाइज ढंग से तैयार किए गए, तो इन सब चीजों पे आपत्ति है कि क्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कानूनी दृष्टि से इंचार्ज है इलेक्टोरल रूल का उसके कंट्रोल में सारी चीजें हैं या उसके कंट्रोल से बाहर किसी ने कंट्रोल ले रखा है, ये प्रश्न है इसमें।
0: और यही बात है ना, क्योंकि दोनों आयुक्त ये कह रहे हैं कि इसका एक टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए जो नहीं किया गया आमतौर पर, लेकिन अब आयोग का जो रिलीज आया है जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ के बताया उसमें इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो डेटा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है और इसी के तहत कुछ जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या पूछताछ करके एक्सेस दिया जाता है ताकि कोई भी उसमें घुस ना सके, क्योंकि आखिरकार ये वोटर लिस्ट का डेटा है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे इसके लिए हम कर रहे हैं, ये कारण उसको दिया जा रहा है।
10: मैं कुछ और कह रहा हूं, डेटा सेंट्रलाइजेशन में भी कोई बुराई नहीं है और सिक्योरिटी ऑफ डेटा में भी कोई बुराई नहीं है, सवाल यह है कि जो कानूनी तौर से इख्तियार रखता है, जिसकी जिम्मेदारी है, डज ही हैव एक्सेस टू दैट सिस्टम और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन। अगर उसको सिस्टम में एक्सेस नहीं दिया गया है तो ये एक आपत्तिजनक बात।
0: नहीं तो फिर अभी तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये तो मामूली बात है, क्योंकि ये आमतौर पर असहमति होती रहती है, इस तरीके ये प्रक्रिया है, इसमें असहमति के जरिए ही हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर एसआईआर में निर्णय प्रक्रिया किस तरीके से होती है, और जो आयुक्तों के खुलासे इसमें नजर आ रहे हैं, उनके अलग अलग डिसेंट नोट्स हो या चिट्ठियां जो उन्होंने लिखी है, ईमेल्स लिखे हुए हैं, क्या उसको आप मामूली डिसेंट मानते हैं या असहमति के बिना फैसले लिए गए, ये इससे साबित हो रहा है?
10: नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये कहना आज की मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे कि असहमति के बावजूद फैसले हुए हैं, ये कहना कठिन है। इसके लिए और तथ्यों को सामने आना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा कि इन चिट्ठियों की क्या अहमियत थी, कब लिखी गई, क्या इनको इलेक्शन कमीशन ने ध्यान में रखा नहीं रखा, इनका कोई समाधान निकाला नहीं निकाला, ये सारी बातें ये रिकॉर्ड का विषय है और इस चीज को सिर्फ इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई कर सकता है अगर सारे तथ्य सामने रखे। सिर्फ ये कहने से कि नहीं सारे फैसले यूनैनिमस हुए हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। आप बताइए कौन सी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, उसके अंदर कौन कौन हाजिर था जिसमें ये मुद्दा डिस्कस हुआ और एग्री किया गया, या आप ये बताइए कि फाइल पे फलानी तारीख को इस चुनाव आयुक्त ने इसको एग्री किया है, फलानी तारीख को उसने एग्री किया है, तब जाके आप कन्विंस कर पाएंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये बेबुनियाद है।
0: तो सारे चुनाव आयुक्तों को साथ में बैठकर इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए, सारी भूमिका सामने रखनी चाहिए, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं?
10: नहीं, मैं तो कहता हूं चाहे वो आए या तीनों आए या प्रेस नोट इशू करे, फैक्ट्स हैव टू बी मेंशन्ड,
0: राइट,
10: विदाउट फैक्ट्स नो प्रेस कॉन्फ्रेंस इज इनफ,
0: फैक्ट्स सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या आप कानूनी चुनौतियां खड़ी होगी इससे, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा इसको माना जा रहा है, इसकी बुनियाद पर क्या कोई कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती है?
10: इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो मैं यही समझता हूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसके ऊपर पहले भी बहुत विवाद हो चुके हैं, इसमें लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, और मैं ये समझता हूं कि फिर एक बार अवसर है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का संज्ञान ले कि क्या कमीशन के अंदर भी कोई रिजर्वेशन थे इसके बारे में, और उनका क्या असर हुआ जो प्रक्रिया अपनाई गई, तो उनको मद्देनजर रख के फिर कोई फैसला करे सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि समस्याओं का थोड़ा समाधान निकल सकता है।
0: तो अब चुनाव आयोग के इस पूरे जो खुलासा हुआ है उसके बाद अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। लेकिन अशोक लवासा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस पर भूमिका रखी इसके लिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आम तौर पर कोई भी मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए जाता है तो उसे महज ये दिखाना पड़ता है कि वो एलिजिबल वोटर है, उसके पास वो जरूरी कागजात हैं, वो जो ईआरओ है वो उससे छाननी करके ये कहता है कि हाँ आप एलिजिबल वोटर हैं और आप आ सकते हैं, इतनी सिंपल प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया नजर आ रही है उसको लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अजय आलोक जी, अब तक तो सिर्फ विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा था, लेकिन आज की स्थिति में जब चुनाव आयोग के भीतर से इस पर सवाल उठने लगे हैं, यह रिपोर्ट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और यहां पर डिसेंट नोट केवल एक चर्चा के रूप में नहीं रखी गई है, उनका यह कहना है कि हमसे पूछा ही नहीं गया, गैर कानूनी तरीके से फॉर्म नंबर 6 में बदलाव किए गए और हम चुनाव आयोग को पूछ रहे हैं कि भाई यह बदलाव कैसे किए गए, अब फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे। कम से कम आज तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से साफ तौर पर तथ्य लोगों के सामने आज रखने चाहिए।
11: साहिल जी, आज के पूरे मसले के दो पहलू हैं। एक जो पहलू अभी आप लासा साहब से बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग के अंदर का पहलू, यह अविशुद्ध चुनाव आयोग की चीज है, डिसेंट नोट थे नहीं थे इसकी भी ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स का हवाला देके ये पूरा डिस्कशन सुबह से कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग का एक ऑथेंटिसिटी तब मिलती है जब चुनाव आयोग का इस पर एक प्रेस रिलीज आता है और चुनाव आयोग कहता है कि असहमति और डिसेंट हो सकता है लेकिन अंतिम निर्णय कलेक्टिव हुए। अगर ये चुनाव आयोग का एक आधिकारिक बयान आया तो ये तो टेक्निकल पहलू हटा दीजिए। इस टेक्निकल पहलू के तहत अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं पूरा देश भी ये कह रहा है कि भाई एक खाली प्रेस नोट जारी करने से रुकता है, चुनाव आयोग का के कहना चाहिए, बहरहाल ये चुनाव आयोग का निर्णय होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। अब सबसे मजेदार पहलू जो दिन भर चल रहा है, जो एक साथ हमारे विपक्ष ने ऐसे लपका जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा लग गया हो, लगे छठा ठिकट चलाने, देशद्रोह, राजद्रोह, चुनाव आयोग को गिरफ्तार करो, ये करो, इसको गिरफ्तार कर दो, ये कर दो, चुनाव दोबारा करवा दो, बिहार चुनाव करवाओ, बंगाल चुनाव कराओ, इसको कहते हैं पॉलिटिकल राजद्रोह। क्या अचानक कुछ नहीं मिल रहा है और अंधे के हाथ बटेर लग गया, बंदर के हाथ अस्तूरा लग जाए, उसी तरह कूदने लगा सारा विपक्ष। भाई हमारी क्या भूमिका है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लीडर ऑपोजिशन के साथ, एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, तीनों आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के अफसर हैं। तो कायदे से विपक्ष कहता है कि तीनों मोदी गोदी हैं, तो जब मोदी गोदी हैं और आपस ही में लड़ने लगे तो उसमें भी भूमिका हमारी हो गई। तो अजीब है साहब, आप लोग का कैलकुलेशन क्या है? एक तर्क सोचिए, अगर तीनों प्रधानमंत्री के हैं तो आपस में क्यों लड़ने लगे? नहीं लड़ना चाहिए ना, मानते
0: तो,
11: हमारी बात
0: तो आप
11: तो पहली
0: आप
11: बात
0: तो
11: इतना दिन से
0: जनता पार्टी
11: कि चुनाव आयोग हमारा है
0: की कोशिश
11: वो एब्सोल्युटली गलत साबित हो गया ना।
0: अरे अजय आलोक जी, अच्छी बात है कि आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं चुनाव आयोग
11: हमारा है।
0: नहीं नहीं ठीक है, चलिए मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मेरा सवाल आपसे अलग है।
11: संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब एक मिनट,
0: बिल्कुल है,
11: मैं आ रहा हूं आपको
0: और इसीलिए
11: एक संवैधानिक संस्था
0: अजय
11: हर एक संस्था में चुनाव आयोग के अलावा भी
0: बात इसमें रखी है।
11: साहिल मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए,
0: मुझे मुझे आपको इसी बात नहीं सर सुनिए ना, मुझे एक ही बात पर आपको काउंटर करना है क्योंकि आपने
11: एक बात तो खत्म कर
0: नहीं सुनिए तो एक लाइन आपकी एक लाइन है, आपको बोलने का ही मौका दे रहा हूं ना मैं, आप ही सवाल पूछ रहा हूं ना, बड़ी सिंपल लाइन है उस बात को लेकर। आपने कहा कि भाई चुनाव आयोग का अंदरूनी मामला है, कैसे चुनाव आयोग का अंदरूनी मामला है सर? आप चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है, चुनाव जीतने वाली राजनीतिक पार्टी है, आपको भी तो फिक्र होनी चाहिए कि फॉर्म नंबर 6 में गैरकानून तरीके से बदलाव कैसे किए जा रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं, कानून मंत्रालय की सहमति के बिना अगर चुनाव आयोग इस तरीके से फॉर्म नंबर 6 में बदलाव कर रहा है तो आपको भी तो सवाल उठाना चाहिए। यह बात तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
11: निश्चित तौर पे आप सही नहीं, बिल्कुल मान रहे हैं। और आपके सामने अभी लासा साहब ने कहा कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, आज के प्रारूप में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया फॉर्म 6 में। आप दिखा दीजिए कि फॉर्म 6 में कहां बदलाव है, नया वाला फॉर्म 6 लाके। एक न्यूज़पेपर के एक प्रेज्यूम्ड रिपोर्ट पे मान के आप चल रहे हैं कि उसमें सारी बातें कही हुई सच है। ऑफिसर्स के बीच में कितना लैटरल्स होता है कि आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। हर विभाग में कितनी अंदरूनी पॉलिटिक्स चलती है, कौन अपने इमीडिएट सीनियर से आज तक खुश हुआ है इस देश में या पूरी पृथ्वी पर, यह कभी होता है? लेकिन आदमी उसी में बैलेंस बना के चलता है क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। और उस चुनाव आयोग के प्रेस रिलीज नोट में साफ साफ लिखा गया है अंतिम निर्णय पे सब
0: मतलब संधू और जोशी,
11: मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई 10 महीने में 14 ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो ना कुछ वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मुझे कैसे पता? मैं तो एक प्रेज्यूम्ड, एक जो प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ना इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ऑथेंटिक कह रही है, सूत्रों से चल रहा है वो रिपोर्ट, ना चुनाव आयोग ने ऐसा कोई डिसेंट नोट पब्लिश किया पोर्टल पे डाला है, सार्वजनिक पोर्टल पे। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये भ्रांतियां हैं, ये भ्रामक बातें मत फैलाइए, सारे निर्णय अंतिम सहमति से होते हैं, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। मैं चुनाव आयोग के ऑफिशियल चिट्ठी पे जाऊं या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे जाऊं, मैं विवेक आप पे छोड़
0: मैं ऑफिशियल चिट्ठी पे जा रहा हूं
11: कि राजनीतिक दलों को
0: नहीं सर, छोटी मोटी आपकी बात सही है अजय आलोक जी, मैं भी चुनाव आयोग की ऑफिशियल चिट्ठी पर भरोसा करना चाह रहा हूं। और इस ऑफिशियल चिट्ठी में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। यह बहुत गंभीर आरोप इस रिपोर्ट के जरिए जोशी और संधू लगाते हैं, यह कहा गया है उस रिपोर्ट में, और इस देश की तमाम जनता को इस जानने का अधिकार है। लेकिन इस पूरे इसमें कहीं भी इस बारे में नहीं लिखा गया।
11: साहिल जी मेरे पे साहिल जी, हम मुझे ये बात पूछने के जगह जोशी और संधू जी को सामने से कोई अगर पूछे कि क्या आपने ये आरोप लगाए थे, तब तो इस बात में कोई ऑथेंटिसिटी होती है ना। इस चुनाव के जवाब को आए हुए 4 घंटे हो गए साहब, जोशी संधू साहब दोनों में से कोई नहीं आया कि ना हमने आरोप लगाया ना क्लैरिफिकेशन दिया है, और अगर चुनाव आयोग की तरफ से आया है तो हम सबको मानना पड़ेगा कि ये तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर दोनों की तीनों की सहमति से आया ये बयान है, अकेले की सहमति से नहीं हो सकता है।
0: चुनाव आयोग का अंदरूनी मामला,
11: चुनाव आयोग के कोई भी
0: कमिश्नर आज आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं,
11: अंदरूनी मामला नहीं भाई,
0: लैटरल सवाल उठा रहा है, जबरदस्ती पहले जो चुनाव हुए वो सारे रद्द किए जाए, किस आधार पर, किस आधार पर? हालांकि मेरा सवाल अभी भी कायम है, क्योंकि इस मीडिया रिपोर्ट को अभी तक चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज नहीं किया, और जो तीन मूलभूत सवाल इस पूरे मामले को लेकर है, बुनियादी सवाल है, उसके जवाब चुनाव आयोग से नहीं आए हुए हैं, जो दोबारा हमने चुनाव आयोग को पूछे हुए हैं। लेकिन सुनील राजपूत, आपकी भूमिका।
12: हमारी भूमिका तो स्पष्ट है, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया है। भैया, अगर बंदर भाजपा है तो उसके हाथ में चुनाव आयोग नाम का उस्तरा लग गया है, ये अपने आप में सच है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, आपके सामने है। सारा का सारा काम जो चुनाव आयोग कर रहा है उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि फार्म 6 में कहां पर क्या नाम डिलीशन हुआ है यार बता दीजिए, या कोई अलग चीज हुई है बगैर उसके, नहीं कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं आपसे चुनौती देता हूं कि आप क्या नाम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के खिलाफ जो है कानूनी वह प्रक्रिया कीजिए, मानहानि का मुकदमा कीजिए। क्या आपने ये कहा कि हम इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऐसा बिल्कुल न चुनाव आयोग कह रहा है न भारतीय जनता पार्टी कह रही है। सच बात यह है कि जब चुनाव आयोग ने बगैर सरकार की अनुमति,
11: क्यों कहेगी भाई बीजेपी क्यों कहेगी?
12: आलोक भाई, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और सभ्यता से आपकी बात सुन रहा था, अब काहे को आप बेवजह इतना, आपने अच्छा अपने आप को डिफेंड कर लिया, आपकी जगह कोई और होता तो पक पक कर रहा होता। तो हमारा जो मानना है,
11: भाजपा को कहे कि
12: थोड़ा भाजपा को इसलिए लपेट रहे कि भाजपा को इससे लाभ हो रहा है, भाजपा बेनिफिशियरी है, भाजपा दुनिया में इकलौती पार्टी है, भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल की इकलौती सरकार है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी सरकार है जहां जिस सरकार को उसका विपक्ष सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कहीं पर भी दुनिया में नहीं हुआ कि जो तृणमूल कांग्रेस आप लोगों ने तोड़ी, जो प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर, वो भाजपा को सहयोग कर रही है। आप बात समझ लीजिए, तो आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो हो ही हो, लेकिन आज बड़ी नंगई से जिस तरीके से चुनाव आयोग के बचाव में खड़े हुए हो, आपने तो फिर सभ्य शब्दों में रखा, लेकिन बाकी जो आपके लोग बचाव में खड़े हुए हैं उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि आज की डेट में भाजपा और चुनाव आयोग एक है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। हम बात करते हैं संविधान की, जो और जो संविधान की बातें हैं, अगर उस संविधान की बातों को आप देखा जाए तो राहुल गांधी जी का एक एक आरोप सत्य साबित हो रहा है, एक एक आरोप सत्य साबित हो रहा है। उन्होंने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो आरोप लगाए वो सारे के सारे सत्य साबित हो रहे हैं। आप बताइए कि ईआरओ जो एक गजेटेड ऑफिसर होता है उसको तो आईटी मॉड्यूल का डेटा का एक्सेस की लिमिट का नाम लिमिटेड कर दिया जा रहा है साहिल भाई, लेकिन जो संविदा पर कर्मचारी रखे हुए हैं वो सारे के सारे डेटा पर एक्सेस है उनकी, और वो सारा का सारा डेटा भरते हैं, डिलीट करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। 20,000 का एम्प्लॉई ऐसा काम करता है, और 1.5 लाख का जो सरकारी एम्प्लॉई है जिसको सरकारी नौकरी जाने का खतरा है, जो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, जो संधु साहब हो सकता है, जो जोशी जी हो सकता है, हर आदमी ज्ञानेश कुमार नहीं हो सकता, वो क्या नाम उसको आप एक्सेस डिनाई कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, हमारा भाजपा के खिलाफ के, तो ये आज तो चुनाव आयोग के खिलाफ हमारा सीधा सीधा हमला है। आप एक चीज कर दीजिए कि चुनाव आयोग ने जितने काम किए हैं वो सारे के सारे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। चुनाव आयोग का मतलब सिर्फ ज्ञानेश गुप्ता हो गए हैं चुनाव आयोग में ये जी बताइए।
0: एक सवाल मेरा यहां पर बनता है, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। हाँ। जो अजय आलोक यहां पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए आप चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं क्या? बिल्कुल उठ रहे हैं। तीन सवाल तो हम भी चुनाव आयोग को भेज चुके हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अत्यंत चिंताजनक ये पूरा विषय है, और इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि अब तक जो चुनाव हुए वो पूरी तरीके से गलत हुए? क्या आप सीधा उस कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि अब विपक्ष ये कह रहा है बिहार का चुनाव रद्द कराइए, विपक्ष ये कह रहा है बंगाल का चुनाव रद्द कराइए, विपक्ष ये कह रहा है दिल्ली का चुनाव रद्द कराइए, यानी पूरी प्रक्रिया पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात इस बात को लेकर भी हो रही है। और एक छोटा जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा कि क्या आप संधू जी को क्लीन चिट मिल जाएगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति पर भी आपने सवाल उठाए थे, उसका भी एक जवाब दे दीजिएगा।
12: हम बिल्कुल इस बात को कहते हैं कि संधू जी की नियुक्ति पर भी हमने सवाल उठाए थे और हम आज संधू जी को बधाई भी देना चाहते हैं। लोकतंत्र में असहमति के अधिकार का मतलब दुश्मनी नहीं है हमारी। संधू जी की हमने क्या नाम प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, हम उस पर कायम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ईमानदारी को भी सैल्यूट करते हैं, उनके असहमति को भी सैल्यूट करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। दूसरी बात, आपने जो चुनाव की कही साहिल भाई, तो निश्चित तौर पर 2014 के चुनाव के बाद, 2014 का चुनाव ईमानदारी से चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत लेकर के आए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन 2014 के बाद इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर, सीईसी के ऊपर, देश के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, सारी की सारी संस्थाओं पर धीरे धीरे क्लचेज जो है ऑक्टोपस के कसते चले गए। और आखिरी में इन लोगों ने 2022 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे के सारे चुनाव धांधली गर्दी का एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है, हम लोगों को दिखाई देता है, जिनकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा के चुनाव में 19 लाख वोटर और हमारा हार का परसेंटेज मात्र 0.5 या 0.8। महाराष्ट्र के चुनाव में 5 सेकंड, महाराष्ट्र के चुनाव में
0: इस बात को लेकर तो सहमति बन सकती है, कम से कम इस बात को लेकर तो सहमति बन सकती है कि जो खुलासा हुआ है, एक नंबर एक तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और तथ्यों के साथ में, जो लवासा भी कहने की कोशिश कर रहे थे, तथ्यों के साथ में रिबटल की जरूरत है। एक जेनेरिक प्रेस रिलीज देके नहीं होगा, उसमें सिर्फ किसी डेप्यूटी डायरेक्टर के हस्ताक्षर है, किसी भी तरीके से सारे चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर उसमें नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कम से कम जांच तो होनी चाहिए ना किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि भाई आखिरकार ये हुआ क्या है। सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अगर असहमति जताई गई है तो कौन से मीटिंग में जताई गई, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिए गए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अगर शिकायत गई थी तो उसका क्या हुआ, क्यों शिकायत गई थी, कम से कम इस पूरी प्रक्रिया पर, निर्णय प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कम से कम, ताकि लोगों का भरोसा रह सके।
11: साहिल जी सबसे पहली बात, आप आज तक पे हैं, आप भी, आपको भी कोई चीज अगर मिलती है तो आप भी चलाते हैं सूत्रों के माध्यम से। ये माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग आपने देखा है, वेरीफाई किया है, जो इसको आप खुलासा कह रहे हैं, मैं तो खुलासा मानता ही नहीं हूं, है माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, तो कांग्रेस पार्टी है ना चुनाव के सबसे बड़ी दुश्मन, लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, किए रहे माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग चुनाव आयोग के,
12: हर कार्रवाई करवाइए सुप्रीम कोर्ट,
11: क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, दिन भर क्यों बैठी है, अभिषेक मनु सिंघवी क्या खाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए,
12: काम कर पाए,
11: अब एक मिनट सुरेंद्र भाई आप सुनिए, अभी बहुत ही बोलना है, मैंने अभी ओपनिंग में बोला
12: डकैती को,
11: अभी इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अभी एजेपी एक है, अभी अरे भाई आप सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा सुरेंद्र भाई, तो
12: सुप्रीम कोर्ट का
0: सुनिए, सुन लीजिए ना राजपूत जी, सुन
11: रखिए, अरे थोड़ा सा ठंड रखिए ना,
0: सुन लीजिए
11: राहुल,
0: कम से कम अपने आप को दूर तो कर रहे हैं ना चुनाव आयोग से इस बार, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं वो।
11: राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, मनमोहन सिंह से उनके डिफरेंस थे, क्या
12: फिर से झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कोई ऑर्डिनेंस नहीं
11: फाड़ा, राहुल और प्रियंका में बनती नहीं है, उनकी टीम अलग अलग है, क्या सोनिया गांधी करवाती है, मतलब किसी का कहीं लैटरल में प्रॉब्लम है तो ये खुलासा हो गया, मजाक बना दिया इन लोगों ने लोकतंत्र का, चुनाव आयोग को कैसे पॉकेट में रख के घूमते थे, आज समित पात्रा जी ने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी धज्जियां उकेड़ दी, तब भी आप सुधरने का नाम नहीं है ना, तनिल की लज्जा आनी चाहिए थी लेकिन लज्जा भी नहीं आती, ओपनिंग में मैंने बोला कि आपका सारा नैरेटिव आपने खुद ही आज ध्वस्त कर दिया, जब आप चुनाव आयोग की तारीफ करने लगे, संधू जी की तारीफ करने लगे, परसों तक तो ये गोदी मीडिया थे, गोदी का चुनाव आयोग, चुनाव आयोग बिक गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया, अब क्या हुआ, अब दो चुनाव आयोग आपके हो गए, अपने नैरेटिव को खुद ध्वस्त करते हैं, भस्मासुर हैं आप लोग, जिस पे हाथ रखिएगा ना
0: किया है,
11: वही भस्म होगा,
0: हम उसी दिन के हवाले से खबर नहीं चला
11: रहे, अपने सर पे कब,
0: मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं सर, हम सूत्रों के हवाले से खबर नहीं चला रहे, इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा ये खबर छपी हुई है, नंबर एक, और जो खबर छपी हुई है सुनिए तो बात सुन लीजिए ना, उसमें स्पेसिफिक डेट्स दिए गए हैं, उन डेट्स पर क्या सवाल उठाए गए थे वो दिया गया है, फॉर्म नंबर 6 में क्या बदलाव किए गए थे वो दिया हुआ है, जो फॉर्म नंबर 6 लोग ले सकते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से, वहां जाकर देख सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा है चुनाव आयोग का कि बंगाल के भीतर 17 लाख एप्लीकेशन चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, कि एक अधिकारी के नाम पर सारे एप्लीकेशन किए गए, उसकी क्या प्रक्रिया थी, ये सवाल उठाना क्या आपको लगता है कि सूत्रों के हवाले से खबर होगी? और अगर चलिए मान लेते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, आपका तो फैक्ट चेक यूनिट काम करता है, क्यों नहीं इसका फैक्ट चेक किया जाता और कहा जाता कि ये सारी झूठी बातें हैं? और पीआईबी की मीटिंग चल रही है, उसमें अगर फैक्ट चेक होता है तो वो भी दिखा देंगे हम। चलिए, आप कह रहे थे उसमें पीआईबी का एक ईसीआई के खुलासे पर सरकारी पक्ष सामने आया है, उन्होंने अपने तरीके से कुछ खुलासा करने की कोशिश की है, हालांकि ये पीआईबी के तरफ से दिया गया है ये पूरी जानकारी। फॉर्म नंबर 6 में पहला उनका बयान है पीआईबी के तरफ से, अब अगर किया गया है तो चुनाव आयोग का अब इसका जवाब देना है। मई के एसआईआर और ऑर्डर में फॉर्म 6 की घोषणा की गई थी, डेटा केंद्रीयकरण के आरोप सही नहीं है, ये पीआईबी ने कहा है। फॉर्म नंबर 6 का जरा दिखाइएगा एक बार फिर, वो जरा ठीक से बता देते हैं। बंगाल में ईसीआई ने कोई अपील फाइल नहीं की है, ये पीआईबी का कहना है। मई के एसआईआर ऑर्डर में फॉर्म 6 की घोषणा का जिक्र किया गया है, यह भी उसमें कहा गया है। तो तीन सवालों के जवाब इस पे दिया गया है, सरकारी पक्ष के तरफ से दिए गए हैं कि एसआईआर की जो ऑर्डर थी मई महीने की, उसमें इसका जिक्र किया गया था। और भी सारे डिटेल्स इसमें आएंगे
11: ना साहिल जी,
0: लेकिन अजय आलोक जी
11: भी कह रही है कि फॉर्म 6 में कोई छेड़छाड़, फॉर्म 6 में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये पीआईबी अगर वेरीफाई कर रही है तब तो पीआईबी की बात मानी है, जिसका मतलब
0: फॉर्म में बदलाव क्यों नजर आ रहा है सर?
11: तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बदलाव क्यों नजर आ रहा है, कहां से कौन सा रोड़ा जोड़ रहे हैं, भानुमति का कुंभा बना रहे हैं इसमें, मुझे मुझे ये एब्सोल्युटली मनगढ़ंत कहानी उस पर लगा के डिस्कशन करने का नैरेटिव बनाने का कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है, ये फेल्ड और ये बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड लोगों की जमात है, कोई काम नहीं बचा इनको।
12: साहिल, पीआईबी बड़े साफ तरीके से कह रहा है कि बदलाव तो किया गया है लेकिन अवैध नहीं है, आप समझिए बात को। पीआईबी ने ये नहीं कहा बदलाव नहीं किया गया, पीआईबी ने कहा कोई अवैध बदलाव नहीं किया।
0: ठीक है, चलिए उसके और डिटेल्स आएंगे, लेकिन जरा जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी पूछ लेता हूँ, उसमें ये आप जरा बता दीजिए इस बात को कि जो नहीं सर
12: सिर्फ पास से
0: मेरा समय खत्म हो रहा है, इसके लिए जरा स्वयं प्रकाश जी से एक सवाल पूछ लूं, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास में। स्वयं प्रकाश जी जरा इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा, जो ट्रिब्यूनल के सामने जो अपील फाइल की गई है नाम डिलीट करने की, ठीक है, वो क्या चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि नहीं की गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने कुछ और कहा था, कुछ 17 लाख एप्लीकेशंस किए गए।
13: देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 मई को मैं आपके साथ जब शो में था तो मैंने गणेश कुमार जी पर पहला सवाल उठाया था कि गणेश कुमार जी ने बंगाल के चुनाव को अब भारतीय जनता पार्टी के लिए करवाया है और बिहार भी करवाया है, दिल्ली भी करवाया है, 2025 पे जब इनका अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट ही अपने आप में इंडिकल है। अगर आप एक अवैध तरीके से आप देखिए 2:1 कहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो बराबरी की बात होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर एक चयन करते हैं कि हमें गणेश कुमार जी को इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कितने सैकड़ों लोग मरे हैं 9/11 के, चक्रवर्ती और चट्टोपाध्याय के नाम पर इन्होंने लड़वा दिया, इन्होंने बंगाल के अंदर में बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया कि कैसे एक लॉर्ड कर्चन जैसे अंग्रेजों के समय में एक अफसर को छोड़ा जाता था कि जाओ और वो काम करके आओ, इन्होंने अपना काम किया। देखिए उसका एग्जाम्पल है सीईओ मनोज अग्रवाल, जो पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल थे, जो इलेक्शन कमीशन के सीईओ थे, वो आप चीफ सेक्रेटरी है और वह सरकार चला रहे हैं। ये
0: नवल शर्मा जी
13: तक तो कहा है
0: क्या आज की स्थिति में
13: खत्म कर दिया गया है
0: इस खबर के वजह से, जो खुलासा इंडियन एक्सप्रेस पे आया है उसके वजह से एक बार फिर चुनाव आयोग को अपनी साख, उनके साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
13: गिरफ्तार होना,
14: देखिए मुझे लगता है
0: नवल शर्मा
13: जी ने जो कहा है
14: साहिल जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के आज के स्पष्टीकरण के बाद स्थिति पूरी, जी जी मैं ये बता रहा हूं कि आज के स्पष्टीकरण के बाद चुनाव आयोग की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और जिस तरह आज पूरे दिन चुनाव आयोग की भूमिका पर माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाए जाते रहे, चिंता बड़ा ही चिंतनीय और विचारणीय पहलू यह है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब से SIR के देश में शुरुआत हुई पूरे विपक्ष ने SIR को एक हथियार बनाया हुआ था, सारे लोगों ने देखा, और जब बिहार में SIR चल रहा था तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आप लोग SIR के बहाने बिहार को बदनाम करना छोड़िए। तो SIR के बहाने अपनी राजनीतिक काहिलियत को छुपाने का विपक्ष का एक एजेंडा चल रहा था और आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह शब्दों की मर्यादा तोड़ी, देखिए बात कीजिएगा, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता कतई नहीं, मैं एक राजनीतिक पार्टी का बेहद ही संजीदा प्रवक्ता हूं, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की
0: भूमिका तो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको नहीं लगता कि आप चुनाव आयोग को किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, भले जो भी खुलासे होते रहे, जो भी रिपोर्ट छपते रहे, बस एक प्रेस रिलीज निकाले और क्लैरिफाई कर दे, कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं, कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।
14: साहिल जी, आप अगर देखेंगे तो SIR के समय से ही चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव आयोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहा है और सारे सवालों का जवाब देते आ रहा है और चुनाव आयोग सक्षम है, चुनाव आयोग मेरे हिसाब से सक्षम है सारे सवालों का जवाब देने के लिए और मुझे उन तकनीकी ब्यौरों में जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। हमारे लिए प्रशासनिक पारदर्शिता ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक निर्णय में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और चुनाव आयोग ने और PIB ने जिस तरह से अभी प्रेस नोट जारी किया है वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के द्वारा शुद्ध रूप से केवल राजनीति की जा रही है, बाकी जो भी तथ्य और तथ्य मामले हैं वो भविष्य में सामने आएंगे।
0: इस प्रेस रिलीज के बाद जो तीन सवाल, बेसिक सवाल, हमने भी चुनाव आयोग के पास भेजे हुए, उसके जवाब हमें मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज दो जजेस के बेंच के सामने इस बात की भी सुनवाई थी कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर क्या किया जाए, जो सरकार ने कानून बनाया है उसमें भी, हालांकि वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है, ये सिद्ध होना जरूरी नहीं है तो दिखना भी चाहिए। अब इसी बात पर नजर बनी रहेगी कि चुनाव आयोग इस पर और क्या क्लैरिफिकेशन देता है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: यार लोन भूल गया मैरी।
7: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
7: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
8: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं?

0: it is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए, चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ, आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे, आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए, सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए, जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
3: ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाए।
2: 14 बार इन लोगों ने, जिनको CEC ऑर्नामेंटल मानते हैं, डमी मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं, उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधु साहब ने, मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं, जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, उसमें मैं भी आऊंगा, लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधु साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज्ड और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधु साहब ने, दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा।
1: मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ERO को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधू साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो ज्ञानेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। कि जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, जो अधिकारी है जिसको अख्तियार है वो है ERO, ERO तय कर सकता है और उसको एक्सेस मिलना चाहिए।

चाहिए इस सॉफ्टवेयर का कि किसको डिलीट करना है और किसको ऐड करना है। अब हुआ क्या कि ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया, ईआरओ को एक्सेस दिया ही नहीं गया। और इसमें दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने विरोध किया, संधू साहब ने और जोशी साहब ने, कि आप क्या कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया, कानून के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के खिलाफ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी सेल है जिसमें कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है गणेश कुमार के अधीन, वो तय करेगा कि कौन डिलीट होगा और कौन ऐड होगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सीसी विवाद में बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। संबित पात्रा बोले, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की सफाई, टिप्पणियों को बताया प्रक्रिया का हिस्सा। ममता बोली, गिरफ्तार हो ज्ञानेश कुमार, तेजस्वी ने बिहार चुनाव को बताया फर्जी। एसआईआर पर 2 चुनाव आयुक्तों की 14 बार आपत्ति को लेकर विपक्ष हमलावर। राहुल गांधी ने बताया देशद्रोह, अखिलेश ने लगाया संविधान पर हमले का आरोप। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सबसे बड़ी अदालत में 2 जजेस की बेंच की अलग अलग राय, चीफ जस्टिस को भेजा गया मामला। पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। और टीम नितिन नवीन के नए प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़, विनोद तावड़े को यूपी, सुनील बंसल को तेलंगाना, बंगाल की जिम्मेदारी, अनिल बलूनी बने भारतीय जनता पार्टी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
1: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन।
2: जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है।
3: ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाए।
4: लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही।
5: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा घमासान छिड़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में चुनाव आयोग के कदमों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों के खिलाफ 14 लिखित आपत्तियां दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के बाद पूरे विपक्ष ने न सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला बल्कि वोट चोरी के आरोपों पर और बड़ा मोर्चा खोल दिया। ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी जैसी मांगों के साथ साथ बंगाल, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों के चुनाव जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के रहते हुए हुए हैं, उनको वो कह रहे हैं कि रद्द कीजिए और नए सिरे से चुनाव कराइए। राहुल गांधी ने इसे राजद्रोह कहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि असहमतियां स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है लेकिन सारे निर्णय सामूहिक यूनानिमसली लिए गए हैं। अब बीजेपी ने भी असहमतियों को लोकतंत्र की निशानी कहा है। साथ ही वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने से पहले से बीजेपी लगातार जीत रही है। सवाल है कि क्या चुनाव आयुक्तों की असहमतियों के आधार पर आयोग में सीईसी की मनमानी का आरोप सही ठहराया जा सकता है? क्या फॉर्म 6 में बदलाव समेत मतदाता सूची डेटाबेस के सेंट्रलाइज होने के मसलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को सिर्फ असहमति कहकर खारिज किया जा सकता है? क्या चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां हैं और सीईसी की मनमर्जियां हैं? चुनाव आयोग में दरार, यही आज हल्ला बोल का विषय हमारा चर्चा का। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कदमों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट क्या छपी? एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगाते आए विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से दोनों चुनाव आयुक्तों के मतभेद के दावों के साथ ज्ञानेश कुमार और सरकार की मिलीभगत के आरोपों पर विपक्ष ने तूफान खड़ा कर दिया। ज्ञानेश कुमार पर मनमानी करने और संविधान के उल्लंघन के आरोपों के साथ राजद्रोह का गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया।
0: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
5: जिन 14 मसलों पर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति नोट दिया है उनमें सबसे बड़ा मसला है एसआईआर प्रक्रिया के बीच नए वोटर को जोड़ने वाले फॉर्म 6 में बदलाव। 16 मई को चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने अपनी आपत्ति में कहा कि सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव नहीं होना चाहिए। 19 मई को चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति पर अपनी सहमति जताई।
6: बात करता है वन मैन वन वुमन वन वोट करता है कि नहीं? चुनाव आयोग ने खुद ने अपने आप को एक ऐसी संस्था बना दी है जहां नो वन वोट नो वन वैल्यू। उच्चतम न्यायालय का 95 का निर्णय डस्टबिन में पड़ा है, लिखित विरोध का जवाब नहीं है, संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। आपने बदला फॉर्म 6? हां, किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधू साहब और जोशी साहब ने कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है। ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका आप दुष्प्रभाव देखिए, हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे।
5: चुनाव आयोग के कदमों पर दोनों चुनाव आयुक्तों की अन्य अहम आपत्तियों में शामिल है मतदाता सूची डेटाबेस का सेंट्रलाइज्ड होना। 29 मई को विवेक जोशी ने यह आपत्ति दर्ज की और 13 जुलाई को संधू ने भी इस आपत्ति के साथ अपनी सहमति दी। 12 अगस्त को चुनाव आयुक्त संधू ने पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ अपील प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति जताई। 29 जुलाई को विवेक जोशी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में आधिकारिक कामों के बंटवारे पर जानकारी न मिलने की बात कही। 29 जुलाई को ही संधू ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में वर्क रोस्टर का मुद्दा उठाया और कार्रवाई की मांग की। 16 अप्रैल को विवेक जोशी ने आयोग की बैठकों के मिनट्स नहीं जारी किए जाने और बैठक के पहले एजेंडा नहीं मिलने पर आपत्ति दर्ज की। चुनाव आयोग के इस अंदरूनी खुलासे के बाद विपक्ष के लगभग हर एक दल ने चुनाव की निष्पक्षता पर अपने आरोपों को दोहरा दिया।
7: यदि एक फुट मोड़ल थाके आमादेर इलेक्शन फिरिए दिन जोर करे जे इलेक्शन गुलो जीते छेन आपनारा जेतेन नि बिहारे जेतेन नि मध्यप्रदेशे जेतेन नि हरियाणाते जेतेन नि বাংলায় যেতেন নি গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষা কবচ তো ইলেকশন কমিশন বসে আছে
2: কি জিসকি সবসে বড়ি মান্যতা হ্যায় হাম অর আপ সোচতে কি ও নিষ্পক্ষ হ্যায় নিষ্পক্ষ ইনস্টিটিউশন সে ই উম্মীদ করতে হ্যায় ডেমোক্রেসি কো অর স্ট্রং করেঙ্গে ডেমোক্রেসি কো অর মজবুত করেঙ্গে। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है
3: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाए।
8: प्रजातंत्र मारा जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि एक जैसे कि एक तो जैसे गैंग होती है ना जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया है। इसलिए दोनों का मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई है। अब हमारी मांग ये है कि तुरंत ज्ञानेश कुमार को जेल में डालना चाहिए।
5: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विपक्ष की इन प्रतिक्रियाओं के बाद चुनाव आयोग ने मामले पर बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अलग अलग विचार और टिप्पणियां निर्णय की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले 10 महीनों के कुछ आंतरिक नोट्स और ऑब्जर्वेशन को बताना, जबकि अप्रूवल, निर्णय, निर्देश और इनिशिएटिव को नजरअंदाज करना केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई निर्णय लिए, निर्देश दिए और 40 नए इनिशिएटिव लिए और SIR समेत कई चुनाव सुधार किए। सभी निर्णय पिछले एक साल में आयोग के सामूहिक निर्णय हैं। चुनाव आयोग के बयान के बाद बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करने में देर नहीं की।
4: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डिलिब्रेशन हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डिलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ। अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था। देवर ऑल ऑन द सेम पेज।
5: चुनाव आयोग के बहाने राजनीति की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है। अब इसमें नया चैप्टर जुड़ने के बाद लोकतंत्र के नाम पर हंगामा अब भी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो,
9: टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
5: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे कुछ देर में। आलोक शर्मा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी एनलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अन्य लोगों के बीच में जाएं, हमारे साथ इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जी जुड़ रहे हैं। 5 बार के वो राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं और इसी के साथ साथ वो कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य भी हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, एक एमिनेंट लॉयर भी हैं। बहुत स्वागत है आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी। मैं देखिए बाकी सवालों पर आऊंगी चुनाव आयोग को लेकर जो हैं और जो बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार तो मुख्य चुनाव आयुक्तों को सीधे सीधे मंत्री सांसद और ऐसे पदों पर नियुक्त कराती थी। और उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट भी दिखाते हुए कहा सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला। इस पर आपका क्या जवाब है?
9: अब आप अपना एक बार जवाब ये देख लीजिए बीजेपी का जो आपने पढ़ा। मैं एक बार के लिए एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि सब कुछ जो माननीय संबित पात्रा जी ने कहा है वो सही है। मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि स्वीकार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार मान लीजिए तर्क के आधार पर। इसी से मालूम नहीं पड़ता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है तथ्यों का। इससे आपको क्या ये मालूम नहीं पड़ता है कि जो जो मैंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक शब्द सही है? संबित पात्रा जी के पास एक सिंगल शब्द वाक्य का जवाब नहीं है। नंबर दो, क्या आपको इससे मालूम नहीं पड़ता कि जो अंग्रेजी शब्द है वॉट अबाउटरी, कुतर्क निकालना, ये तो गनीमत है कि संबित पात्रा जी ने सोनिया गांधी से शुरू किया, उन्होंने नेहरू जी से शुरू नहीं किया। आखिर नेहरू शांत उन्होंने कई गलतियां की होंगी, उनकी गलतियों का चिट्ठा पढ़ देना चाहिए था, उसके बाद इंदिरा गांधी की गलतियों का चिट्ठा पढ़ना चाहिए था। इससे 2026 में जो हो रहा है वो किसी रूप से वैध होता है। और मीडिया में नैरेटिव पूछ ले क्या किया 1960 में 70 में 80 में, उसका जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं देंगे हम कि 3 चिट्ठियां लिखी, 10 चिट्ठियां लिखी, 14 चिट्ठियां लिखी। हम जवाब चाहते हैं आपसे। ये जवाब है मेरा अंजना जी।

0: ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको प्रमोट नहीं किया गया है, उससे बड़े बड़े औहदों पे, लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इत्यादि, कोई ऐसा ईडी का अध्यक्ष नहीं है जिसका एक्सटेंशन नहीं हुआ है। जितने भी मेंबरान हैं जो आज मुख्य आयुक्त हैं, उनका क्या संबंध रहा है गुजरात में, क्या संबंध रहा है सहकारिता कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में, ये पूरा विश्व जानता है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने गलती अगर मान लीजिए की भी, तो गलती की डिग्री, उसका आयाम, उसका स्वरूप, उसकी विशालता, उसकी व्यापकता उसी देखेंगे आप। आप दो उदाहरण उठाएंगे पुराने, क्योंकि संबित पात्रा जी को और बीजेपी को सूट करते हैं वो। सच्चाई सब जानते हैं, उसकी व्यापकता सब जानते हैं, और वो उत्तर वैसे ही नहीं है, बॉटम बाउंड्री है।
1: अच्छा, अब आते हैं चुनाव आयोग के जवाब पर जो मेरे हाथ में है, जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है। वो कह रहे हैं कि ये डिसेंट तो लोकतंत्र दिखाता है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो असहमति है वो हिस्सा था, और असहमति किसी भी संस्था में हो सकता है। अल्टीमेटली जो फैसले हैं वो यूनानिमसली यानी एक साथ एक मत से लिए गए। तो इस पर आपको क्या आपत्ति है? इस पर इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको?
0: देखिए अंजना जी, ऐसा है, अगर मुख्य आयुक्त, अब ये चुनाव आयुक्त नहीं रहा, ये सिर्फ मुख्य आयुक्त बोलते हैं, ये कह रहे हैं देश को समझाने के लिए कि 10 महीने में 14 बार बड़े गंभीर असहमति बुनियादी मुद्दों पे की गई, और उसका जवाब मेरे पास ये नहीं है कभी भी कि मैंने तुरंत एक दो महीने में, दो हफ्ते में उसका जवाब दिया। मेरे पास ये जवाब नहीं है कि मैंने फॉर्म 6 में क्यों ये नया कंडीशन रखा जो फॉर्म 6 में नहीं रखा है। मेरे पास इस तरह कोई जवाब नहीं लिख के दिया कि क्या हमारे पास अधिकार क्षेत्र है चुनाव आयोग के पास कि फॉर्म 6 को बदल सकते हैं या सिर्फ सरकार बदल सकती है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि फॉर्म 6 सरकार ने कभी नहीं बदला। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि किसने अनुमति दी सामूहिक रूप से चुनाव आयोग में सबने मिलकर कि 16 लाख अपील दायर की जाए। मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि वास्तव में हमारे चुनाव आयोग के आईटी डिपार्टमेंट ने कभी भी एक्सेस मना नहीं किया ईआरओस को। ऐसा कोई भी बुनियादी तथ्यों के आधार पर जवाब नहीं आता है। इच्छा का जवाब जो ऊपर चट्टान पे बैठ के अपनी प्रजा को एक एड्रेस कर रहा है कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैंने जवाब नहीं दिया तब, जवाब का मैंने खुलासा नहीं किया देश के सामने, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरे दो सहयोगी दो कॉलीग्स ने इस्तीफा नहीं दिया, वो मैदान पे उतर के झगड़ने को तैयार नहीं हुए, इसलिए जो मैंने कहा सब यूनानिमस है, सब सही है, सब बात वैध है। ये जो तर्क है ना, इसको कुतर्क कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वॉट अबाउटरी कहते हैं, और अभी जो जवाब आया है, जो दस्तावेज आया है, उससे ही मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग सब कुछ छुपा रहा है, जवाब कुछ नहीं है, एक ऊंचाई वाला ब्लैंकेट जवाब है, तथ्यों का एक शब्द नहीं है उसको।
1: फॉर्म 6 जो दरअसल ये तय करता है अभिषेक जी कि भाई जो नए वोटर्स हैं उनके लिए फॉर्म 6 था कि वो एनरोल होंगे, उनका कहना है, उनका जवाब इस पर ये कि फॉर्म 6 SIR की ही प्रक्रिया का हिस्सा था और उसमें हस्ताक्षर सभी, मतलब दोनों आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों के थे।
0: आपने तो उतना ही आर्टिकल पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि अगस्त 13 को फॉर्म 6 के विषय में ये शब्द इस्तेमाल किए, अनऑथराइज और इलीगल है। अब उसके बाद उसका जवाब क्या लिखा, आपने किस तर्क पे क्या कारण दिए 1, 2, 3, 4 के मैंने ये जवाब दिया संधू साहब को कि ये नहीं है फॉर्म 6 इलीगल अनऑथराइज क्योंकि इसमें ये आंसर है, वो कहाँ है जवाब? ये अलग बात है कि एक बाहर का बुलडोजर है, बाहर का भय है, एक अंदर इस व्यक्ति ने पूरा हाईजैक कर लिया चुनाव आयोग को अपने आप अकेले, इससे और लोग फिर चुप हो जाते हैं बाद में। उसका मतलब ये नहीं है कि आप करेक्ट हैं या सही हैं या दूसरे लोग मान गए। हर आदमी को लवासा जैसा एक सैद्धांतिक स्टैंड लेना आसान नहीं होता है। हर आदमी को एक सीमा से आगे विरोध या असहमति प्रकट करना सक्षम नहीं होता है। इसका मतलब नहीं है कि जो वो कह रहा है वो गलत है या जो आदमी गलत काम कर रहा है वो सही है। ये परिभाषा तो सिर्फ मुख्य आयुक्त की है।
1: अब देखिए अभिषेक जी, ये जो पूरा बवाल है, अपने दर्शकों को भी बता दें कि दरअसल बहुत सारे पोर्टल्स थे, सबको जोड़कर एक ईसीआई नेट बनाया। आखिरी सवाल है आपसे, जल्दी से एक जवाब चाहेंगे। नेट बनाया, अब उस पे आरोप ये लग रहा है कि भाई वहां पर जो डीजीआईटी थी चुनाव आयोग की, उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था पूरे सिस्टम को, और जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ईआरओ डीओस, उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने ये प्रेस नोट जो जारी किया है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है इसका जवाब कि जो संवैधानिक तरीका है उसी से ईआरओ और डीईओ ही एडिशन और डिलीशन ऑफ वोटर्स कर रहे थे।
0: मई में, अगस्त में नहीं, मई में बाकी दोनों चुनाव आयोग के मेंबरान ने कहा कि हजारों सैकड़ों ईआरओ हैं जो कह रहे हैं कि आपके खुद के चुनाव आयोग के आईटी डिपार्टमेंट, उन्होंने उसके अध्यक्ष का नाम भी लिया, सीमा खन्ना, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रही है, संकीर्ण कर रही है, रोक रही है। अब उसका जवाब कहां है? इसका एक औचित्य है, इसका एक उद्देश्य है अंजना जी। जब ये पूरा आर्किटेक्चर बना था चुनाव आयोग का, तो एक प्रावधान बना था कि इसका विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन। वो इसलिए जिससे कि एक व्यक्ति विशेष या 10 व्यक्ति विशेष कहीं भी इसका कंट्रोल नहीं कर सके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्य आयुक्त हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति नहीं करता है। इसका नियंत्रण लोकल एरिया के ईआरओस करते हैं, जो कि नॉर्मली एसडीएम्स होते हैं। जब ये आपके खुद ने इस्तेमाल किया शब्द और आरोप लगाया नाम के साथ, तो उसके बाद कहां है जवाब इसका? अब ये अलग बात है कि भाई अंत में तंग आके चुप हो गए, हर व्यक्ति स्थानांतरण करना, अपने विरुद्ध केसेस करवाना नहीं चाहता है, जैसा लवासा साहब के साथ हुआ। उससे क्या वो बात सही हो जाती है क्या?
1: धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार फिर से तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस बहस के लिए जुड़ गए, उन सभी को दिखा दीजिए। गौरव भाटिया जुड़े हैं क्या हमारे साथ? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव जी, पहला प्रश्न आप ही के पास लेकर आते हैं। अब आज का जो ये विवाद है या जो ये बात सामने आई है, ये विपक्ष के किसी नेता के आरोपों के की वजह से नहीं आई है, ये इसलिए आया है क्योंकि दो चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम कर रहे थे, उनकी 14 आपत्तियां 10 महीने के अंदर जो उन्होंने की थी तरीकों पर, फॉर्म 6 को लेकर हो या अन्य आपत्तियां, वो सामने आई है। आपको नहीं लगता है कि ये एक संकट की स्थिति पैदा करता है जिसमें केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल पावर्स विद इन चुनाव आयोग हो गया था, यह आरोप लगता है?
2: नमस्कार अंजना जी, मैं अपने विद्वान कॉलीग डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुन रहा था। उन्होंने 3 बार वॉट अबाउटरी कहा हमारे प्रवक्ता संबित पात्रा जी के लिए, जिसको बटोलेबाजी कहा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी स्वयं बटोलेबाजी कर रहे हैं। जब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, सबसे पहले एक बात जरूर बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता हम नहीं हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके हवाले से कोई जानकारी ऑथेंटिक बाहर नहीं आई है। तीसरा, ये एक अखबार का एक प्रस्तुतिकरण है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रेस नोट सामने आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें क्या कहा गया है? मैं समझता हूं सबसे जो उसमें
1: प्रेस नोट में उन्होंने काउंटर क्वेश्चन है इस प्रेस नोट में, एक सेकंड, इस प्रेस नोट में उन्होंने कहीं भी डिनाई नहीं किया है, उन्होंने खुद कहा है कि मतभेद हुए, तो ये तो अपने आप में इस पूरे रिपोर्ट को सही ठहराता है। जो प्रेस नोट चुनाव आयोग ने जारी किया है वो उन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सही ठहराता है, वो डिनाई तो कर ही नहीं रहे हैं।
2: ठीक है, अब मैं उत्तर दे दूं, क्रमवार तरीके से दूंगा, थोड़ा सा आप बस संयम रखिएगा, मैं जरूर आपकी बात का भी उत्तर दूंगा। सबसे पहले, क्या ये अलोकतांत्रिक है कि अगर 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, आपसी बातचीत करें, संवाद करें, और संवाद करने के बाद किसी निष्कर्ष पे आए? तो मैं समझता हूं ये तो पारदर्शी भी है और लोकतांत्रिक भी है। दूसरी बात, इसी प्रेस नोट में लिखा है कि जो निर्णय लिया गया डेलिब्रेशंस के बाद, अंजना जी, 1 साल में सारे के सारे निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूनानिमस है, सर्वसम्मति से लिए गए हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात उसी प्रेस नोट में यह भी लिखी है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या किसी ने कोई टिप्पणी करी है, ये एक स्वस्थ परंपरा है और ये नॉर्मल पार्ट है जिससे कि निर्णय लिया जाता है, तो मैं समझता हूं ये भी गलत नहीं है। लेकिन अभी सवाल ये जरूर पूछा जाएगा, और ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बतानी चाहिए, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल के चले गए, ये बताइए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स थे, इनका अपॉइंटमेंट मोदी जी की सरकार में तो कोलेजियम कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, एक नामित मंत्री है केंद्र सरकार का और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे बनाए जाते थे। मेरे हाथ में आप ही के चैनल इंडिया टुडे की एक न्यूज रिपोर्ट है जिसमें लिखा है सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज द इलेक्शन कमिश्नर 30 मार्च 2012। अब मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री थी नहीं, किसी संवैधानिक पद पे भी नहीं थी, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट कर रही थी,
1: ये सब तो हमने रिपोर्ट में भी दिखा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल भी पूछ लिया। नहीं सर, मैं आपको टोक रही हूँ, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं, आज का जो विषय है उस पर आते हैं। ये सब हमने दिखा भी दिया मिस्टर पात्रा का पीसी और उस पर सवाल भी कर लिया। मुझे आप ये बताएं कि ये जो चार आपत्तियां हैं इन आयुक्तों की, चुनाव आयुक्तों की, सबसे पहला दिखाइए, मई 2026 में वोटर डेटा बेस का ऑडिट हो, सिर्फ अथॉरिटीज के अलावा कोई और बदलाव ना कर सके, इस पर क्या स्पेसिफिक जवाब है प्रेस नोट में। दूसरा, अगस्त 2026 को अगला दिखाइए, जिसमें पिछड़ा वाला विवेक जोशी ने कहा था और ये संधू साहब ने कहा कि राज्य अधिकारियों को ईरोनेट का पूरा एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। डीजीआईटी सीमा खन्ना के पास एक्सेस रोकने का अधिकार नहीं है, इस पर क्या स्पेसिफिक जवाब है। तीसरा, पिछले एसआईआर में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की एंट्री पूछने का बदलाव कैसे हुआ, फॉर्म 6 में बदलाव कानून बदले बिना संभव नहीं है, यह सबसे बड़ा है। और इसके बाद संधू साहब ने सीधा सीधा कहा कि यह इलीगल है, अनऑथराइज्ड है फॉर्म 6 में बदलाव, इस पर एक स्पेसिफिक जवाब अगर आप दे पाए गौरव जी।
2: बिल्कुल, देखिए अंजना जी, आपका बड़े स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आज संधू जी अच्छे हो गए, आज विवेक जोशी जी अच्छे हो गए, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे राहुल गांधी की ये एक ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चोरी करवाता है। तो अब ये इलेक्शन कमिश्नर्स अच्छे कैसे हो गए हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी स्वयं आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब आपने पूछा, पहला सवाल फॉर्म 6 था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगर आप पढ़ें तो उसमें प्रावधान है कि उसको बदला जा सकता है, और संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब फॉर्म 6 बदला गया, अंजना जी याद करिए, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया फॉर्म 6 बदला गया है, उसके बावजूद भी चुनावी प्रक्रिया पर एसआईआर पे रोक नहीं लगी। तो अगर कोई इलीगैलिटी होती, अगर कुछ गलत हुआ होता, तो सर्वोच्च न्यायालय ही रोक लगाता, पहला। दूसरा, क्या जो बात आपने कही कि फॉर्म 6 का बदलाव जो हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके नहीं हुआ है, ये बात क्या इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहीं पे लिखित में दी है, क्या ये बात सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी है कि हम लोग सहमत नहीं थे, किसी भी बॉडी का, मैं सर्वोच्च न्यायालय की भी बात करता हूं और वो सीसी और इलेक्शन कमिश्नर्स पे भी लागू होता है। मान लीजिए 3 जजेस की खंडपीठ है या इलेक्शन कमीशन, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अगर उसमें एक सहमत नहीं भी है, जो डिसीजन लिया जाएगा वो पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा, पूरे खंडपीठ का होगा, और इसीलिए सर्वसम्मति से एक साल में सारे निर्णय लिए गए हैं जिस पे अभी तक कोई आपत्ति दोनों इलेक्शन कमिश्नर जिनके हवाले से ये प्रेस नोट चल रहा है नहीं दी गई। दूसरी बात आपने जो कही, जो ईरोनेट है, तो मैं आपको बता दूं ईरोनेट का जो ये एक्सेस है, ये डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके मापदंड है, इसके रूल्स हैं, और जिसके पास जिस लेवल का एक्सेस होना चाहिए वो एक्सेस उस व्यक्ति के पास था। इस पे भी कोई नहीं कह सकता है कि किसी और व्यक्ति को जिसको ऑथराइजेशन ना हो उसको फुल एक्सेस दे दीजिए, क्योंकि डेटा की सेंसिटिविटी भी होती है और इसके साथ वो हैक भी हो सकता है। इसलिए यहां लिखा भी हुआ है जो आपने प्रेस नोट कहा है कि जो मापदंड है उनका पालन करते हुए डेटा को प्रोटेक्ट करते हुए ये एक्सेस दिया गया।
1: ठीक है, चलिए अब आलोक जी आपके पास आते हैं। इसको वॉट अबाउटरी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बात सच्चाई है। ये मैंने उनसे भी पूछा था और उन्होंने स्वीकारा भी, अभिषेक जी ने, कि भाई चुनाव आयुक्तों को तोहफे में बड़े बड़े पद देने का हमारे यहां भी उदाहरण रहा है यूपीए में। और दूसरा जो एक आर्ग्यूमेंट है दूसरी तरफ से वो ये है कि कितने चुनाव हुए हैं ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने के बाद, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। तो उसके पहले के सारे चुनाव तो माइनस ज्ञानेश कुमार कराए जा रहे थे, तब भी आप लोग उतने ही सवाल खड़े कर रहे थे चुनाव आयोग की भूमिका पर। आलोक जी
3: देखिए, मुझे लगता है कई वर्षों से हम एग्जांपल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन के डाटा के साथ ही सबको सामने रख कर रहे। आज ज्ञानेश कुमार है, इससे पहले इनके बड़े भाई राजीव कुमार थे, उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे। दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो सही जवाब देने की बजाय शायरी करते थे। क्या तमाम वो हम
1: ऑडियो फोन पे ले लीजिए, फोन पे ऑडियो लीजिए आप जहां पे हैं आलोक जी, लगता है ना सिग्नल थोड़े गड़बड़ है। ठीक है, बोलिए बोलिए, फोनों का ऑडियो ले लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए आलोक जी।
3: समझता हूँ कि चंडीगढ़ मॉडल कोई भी नहीं पूछा, चंडीगढ़ मॉडल में क्या हुआ था पूरे देश में देखा, वो अनिल मासी को
1: आलोक जी बोला है। आलोक जी मुझे फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपका आवाज बार बार कट रहा है मुझे, आई एम सॉरी। जल्दी से आशुतोष जी अपनी बात की, जल्दी से उनका फोन फिर से कनेक्ट कीजिए। आशुतोष जी आपका रिएक्शन, अब इसकी वजह से सारे चुनाव ही रद्द कर दिए जाएं?
4: नहीं देखिए अंजना जी, सवाल बहुत बड़ा है। इलेक्शन कमीशन में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके सवाल का जवाब देना इलेक्शन कमीशन जो दे उसको है। समाजवादी पार्टी एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जिस प्रकार से हम SIR के पक्ष में हैं, हम उसके विरोध में नहीं। हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट एक वोटर लिस्ट बने, लेकिन हमारा सवाल बहुत साफ है कि जो डेथ के नेम है, जो डेट हो गए हैं, डुप्लीकेट नाम है या परमानेंटली शिफ्टेड नाम हटाने चाहिए, ये बिल्कुल हटाने चाहिए। लेकिन किसी जेन्यून वोटर का नाम हटाना केवल प्रक्रिया की के में कमी बता देना, आर्बिट्ररी एक नोटिस दे देना या टेक्निकल डिस्टर्बेंसी करा के दे देना, ये कहां तक सही है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो डिफेंड कर रहे हैं उनको कुछ जवाब देने चाहिए कि कितने जेन्यून वोटर्स डिलीट या उनको नोटिस की प्रक्रिया में आए हैं आज तक। क्या कोई डाटा है आज तक? कहीं नहीं है। कितने नाम बाद में गलत पाए जाने पे रिस्टोर किए गए हैं? कोई डाटा नहीं है। जिन वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे नोटिस मिला है उनके स्पष्ट कारण क्यों नहीं आज तक बताए गए? और क्या जो डिलीशन के प्रत्येक जेन्यून वोटर को मीनिंगफुल हियरिंग के कभी ऑप्शन दिए गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर डिलीशन का बूथ वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और कैटेगरी वाइज ट्रांसपेरेंट डाटा कभी पब्लिक करेगा?
1: बिल्कुल। और जानते हैं सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी पता नहीं मुझे आप दिल्ली के वोटर हैं कहाँ के वोटर हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, आपको भी शिकायतें आ रही होंगी अपने जान पहचान के लोगों के बीच में?
5: मुझे अब तक कोई शिकायत।
1: अच्छा आपको नहीं आई है, मैं आपको बताती हूँ मेरे ऑफिस में। अरे सुनिए तो गुरु, सुनिए तो, इसी ऑफिस में मैं आपको बताती हूँ उनका हो गया है, बेटे का नहीं आ रहा है नाम, बच्चों का या बच्चों, एक केस है जिसमें पिता का हो गया है और हमारे यहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय को मुश्किल आ रही है कि भाई आपका नहीं है। अगर एक ही परिवार के लोगों में क्या प्रॉब्लम है? और पूरे मैंने पश्चिम बंगाल में ट्रैवल किया, बिहार में ट्रैवल किया, चुनाव में सारी शिकायतें यही थी, एक ही परिवार में धोखा हो रहा है, धोखा नहीं हो रहा है, मजाक थोड़ी चल रहा है।
5: डिजिटल एज में SIR हो रहा है, धीरे धीरे ये सब आदत में आ जाएगा और बहुत शुद्ध हो जाएगा।
1: किसकी आदत में? हमें आदत डालनी है कि ये तो होगा ही,
5: एक फॉर्म होगा,
1: धोखा बनेगा, धोखा नहीं बनेगा,
5: सबका बनेगा,
1: किसको आदत डालनी
5: है? जेन्युइन बनेगा। आप अच्छे से फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका वोटर आईडी बनेगा, नहीं बनेगा फिर जाइए। ये थोड़ा एक मुश्किल दौर मुझे दिखता है। अब एक सवाल है कि चुनाव आयोग में असहमतियां हैं आयुक्तों के बीच, कमिश्नर्स के बीच, और ये असहमति लोकतंत्र का बड़ा अच्छा आधार है। और कह रहे कि शायद 14 बार है 10 महीने में, बहुत कम है, 140 बार होना चाहिए। और सहमति कब से इस लोकतंत्र को खोखला करने लग गया? ये राहुल गांधी जी का दफ्तर है, ईर वीर फतेह चल रहा है कि ईर ने कहा एक लकड़ी काटो, वीर ने कहा चलो हम भी लकड़ी काटें, फतेह बोला चलो हम भी लकड़ी काटें। ये राहुल गांधी जी का ईर वीर फतेह नहीं है। अशोक गहलोत होंगे कि खड़गे होंगे, जिसको चाहे बना दिए। चावला जी होंगे कि कावला जी होंगे, जिसको चाहे 89 तक बनाते रहे हैं। तीन इलेक्शन कमीशन नहीं था पहले, एक होता था। सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर में कोई गलती है, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, मैं उसको डिफेंड करने या नहीं बैठा हूं। असहमति सहमति लोकतंत्र में होगा। अधिकारियों ने कहा है कि फॉर्म 6 नहीं बदल सकते। ये फॉर्म 6 को जानना जरूरी है कि क्या चुनाव आयोग धारा 324 जो संविधान के अनुच्छेद है उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के सेक्शन 9 से 11 तक कितना पावरफुल है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। अभिषेक मनु सिंह भी कह के चले गए बिहार में, वाट ऑफ वॉटरी क्या, मुझे अंग्रेजी का ये वर्ड आज तक समझ में नहीं आया, बकथोतरी ना करे लोकतंत्र में कोई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को शामिल कर लेना चाहिए, बिहार का एक बहुत अच्छा वर्ड है। अपने सारे चुनाव आयोग को जेब में लेकर घूमती रही कांग्रेस, उस समय असहमति सहमति दिखाई नहीं दी कभी। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव आयोग के किसी दो चुनाव आयुक्त ने असहमति दर्ज कराई है लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन क्या उन तीनों चुनाव आयुक्तों के फैसले से जितने चुनाव हुए उसको आप कहेंगे कि चलो हटा दो? असहमति तो होगा, डिस्कोर्स होगा, डिस्कशन होगा, ऐसे थोड़ी कि सुबह उठे ज्ञानी जी हाँ जी संधू जी ऐसा कर दो, हाँ जी जोशी जी ऐसा कर दो, राहुल जी का दफ्तर चल रहा है सोनिया जी का, हाँ जी खड़गे जी ऐसा कर दो। चुनाव आयोग है संविधान की धारा 324 के अंदर, उसको जो अधिकार मिला है संविधान सम्मत होगा। किसी को दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट जाने और जो कार्रवाई करना है करें, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपने जो हरकत किया है इस देश के संवैधानिक शक्तियों के प्रति शुरू से लेकर आखिर तक, आजादी के 1950 से लेकर 89 तक, क्या क्या किया? आधी आधी रात में गवर्नर उठा के फेंके हैं आपने, आधी आधी रात में सीबीआई को घेर लिया, आधी आधी रात में जिस इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है ना, रामनाथ गोयनका को आधी रात में घेर लिया सीबीआई ने, कौन था प्रधानमंत्री? आदरणीय श्री राजीव गांधी। खोलूंगा चिट्ठे ना तो दिखेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी इस देश में। मीडिया पर हमला, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला आपका इतिहास रहा है, बकथोथरी बंद करिए। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी के फॉर्म 6 का जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को धारा 300 अनुच्छेद 324 संविधान की शक्ति और इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर कौन पावरफुल है कि उसके दो शब्द को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? करा लीजिए संविधान का ओपिनियन ले लीजिए, इसमें दिक्कत क्या भाई? एक मिनट,
1: हाँ जल्दी जल्दी, पूरा
5: क्या बदल दिया है? अरे आप बताइए कि आपके परिवार में कोई था क्या ऐसा? यार में पूछ लिया, नहीं बताने मत बताइए, कुछ नहीं बदला है। अखबार उठ गया, बढ़िया से छाप करके चल दिया, हमारा बहस में कूद पड़े।
1: अरे पर
5: चुनाव आयोग की असहमतियां 10 महीने में 14 बार है, मैं मानता हूं कम है, 140 बार होनी चाहिए। असहमति हर जगह दिखाई है, एक फैसले पे पहुंचिए, चुनाव आयोग फैसले पे पहुंचा है।
1: ऑडियो डाउन कीजिए स्टूडियो का। आलोक जी,
3: अंजना जी कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें पता था बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ बचाओ में बीजेपी और अंधभक्त मैदान। अरे भाई 20 साल पहले क्या हुआ उस पर, आज जो हुआ उसके ऊपर डिस्कशन होना, बीजेपी के तमाम लोगों को इस तरह से दुर्भाग्य है कि सरकारें बनी। हम कई वर्षों से विद प्रूफ सारे के सारे
6: डाटा रखते हुए चले आए। हम अनिल मसीह को तो भूल गए होंगे, चंडीगढ़ वाला जो मैटर था, चंडीगढ़ में क्या हुआ था, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी प्रूव हुआ और उसके बावजूद अनिल मसीह के ऊपर कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं लिया। अनिल, अंजना जी आपने सवाल पूछा था कि जाने से पहले भी बीजेपी जीतती रही, जाने से पहले भी इनके बड़े भाई राजीव कुमार थे, वो भी इसी तरह से शेर व शायरी करते थे, एक सवाल का जवाब नहीं देते थे। और उनको बचाने के लिए सबसे पहली सीधी बात थी कि पहले उनको पहले चयन प्रक्रिया में बहुत बढ़िया तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया, फिर उनको पॉलिटिकल और हर तरह से क्रिमिनल इम्यूनिटी दी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, चोरी करो धड़ल्ले से करो, भाजपा के बैठे लोग हैं, डंके की चोट पर चोरी करो। आज जो प्रेस नोट आया है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहेगा कि हमने चोरी की है? क्या कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा? वो तो सफाई देगा ही ना, इसमें कौन सी नई बात है? क्या ऑडिट हुआ कि नहीं, क्या एरोनेट के ऊपर डीजीआईटी का प्रॉब्लम था कि नहीं, क्या स्पेसिफिक आंसर मिला, फॉर्म 6 अनऑथराइज्ड और इलीगल है, ये किसी भारतीय व्यक्ति ने या कांग्रेस ही ने नहीं लिखा है, पेरेंट्स के बारे में क्या हमने लिखा है, नहीं, और अपील ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 16 लाख अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की बंगाल में वोट काटने के लिए, वो किसने ऑथराइज किया था, क्या ज्ञानेश कुमार जी ने ऑथराइज किया था। दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के साथ साथ बहुत सारे कदम उठे हैं, हम फोटो आईडी वाला वोटर लिस्ट नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, ब्राजील मॉडल देखा, चंडीगढ़ मॉडल देखा, वोट चोरी एक क्राइम है, देशद्रोह है, और देशद्रोह से बचाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। ओपी रावत जी पहले आए, अशोक लवासा जी आए सामने, आज संधू जी आए और उसके बाद विवेक जोशी जी आ गए। आज फॉर्म कितना क्या हुआ किसी को नहीं पता है।
1: चुनाव आयुक्त बनाए गए थे आलोक जी, जब यही संधू जी चुनाव आयुक्त बनाए गए थे तब तो आपकी पार्टी बड़ी नाराज थी, तो जो जो डिसेंट कर दे या सरकार के खिलाफ बोल दे या सरकार के खिलाफ बात आ जाए वो सब आपके लिए अचानक से ईमानदार हो जाते हैं, है कि नहीं?
6: आपने बहुत अच्छा सवाल लिया, किसी के अपॉइंटमेंट में अगर कोई गलती थी तो उसको उठाना, उसके ऊपर कोई सवाल है तो उठाना विपक्ष का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बीजेपी वाले कुतर्क देते, आप उनके चक्कर मत आइए।
1: पर सरकार उनको फेवर कर रही थी या नहीं ये तो क्लियर हो जाए ना कि सरकार उनको फेवर कर रही थी।
7: मेरा छोटा सा सवाल है
6: भाई, सरकार से फेवर कर रही थी लेकिन जब वो लोग बने उनको भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी धांधली अंदर हो रही है। अच्छा। 10 महीने में अगर 14 बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ चीजें लिखी गई, दो लिखी लिख रहे हैं,
5: बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है,
6: स्वाभाविक है। दुर्भाग्य,
5: अरे रुक जाइए आलोक जी,
1: पूरा कर ले, आपको सिर्फ बट ले, उसके बाद गौरव जी
6: तो मेरे वोटर से माफी मांगे, क्या हुआ उसके बाद, 7 दिन का टाइम देता हूँ, ये हुआ था याद होगा ना आपको, क्या हुआ 7 दिन के बाद, इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब आया, नहीं आया। आज दुर्भाग्य ये है कि कर्नाटक का मॉडल हो, चाहे वो ब्राजील मॉडल हो, चाहे वो चंडीगढ़ मॉडल हो, हर तरह से हर राज्य में अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडी अपनाई जाती है, वोट चोरी करके सरकार बनाई जाती है, और जब कुछ भी नहीं होता तो ईवीएम से धांधली की जाती है, काउंटिंग में धांधली की जाती है, और अगर वो भी ना हो तो फिर विधायक चुरा लिए जाते हैं। ये आज हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो गया ज्ञानेश कुमार में उसको तुरंत अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, और सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो तुरंत पार्लियामेंट्री कमेटी से कहिए कि पिछले 10 साल का इलेक्शन कमीशन का जो भी डाटा है उसकी जांच हो, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, और साथ के साथ ये भी हो कि जो जो निर्णय इन लोगों ने लिए हैं उसके किस किस तरह से जो ऑफिस नोट है, फाइल नोटिंग है, अगर इस सरकार के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उसको पब्लिक कर दीजिए। जर्नलिस्ट जो है चोपड़ा, उसको बधाई देता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम कोई जर्नलिस्ट तो निकला जो कम से कम इस तरह की चीजें निकाल कर लेकर आया। दुर्भाग्य ये है सीसीटीवी को हम डिलीट कर देंगे,
5: सीसीटीवी
6: को देंगे नहीं, वोटर आईडी वाला वोटर कार्ड नहीं देंगे हम। ये पूरी तरह से बीजेपी का पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बन गया था।
1: ठीक है, और अब आलोक जी जवाब सुनिए, गारंटी ले रहा है। छोटा सा रिपोर्ट फिर मैं गौरव जी,
5: छोटा सा है। चुनाव आयोग संविधान के मुताबिक एक ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था है, जब उसकी नियुक्ति हो जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त, संविधान के अनुसार काम करता रहा होगा आजादी से लेकर अब तक। तो कांग्रेस पार्टी इस देश में जब जब सत्ता में रही है एक चू और चा कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ बोला नहीं, उसको बना लिया कभी राज्यसभा सदस्य और कभी मंत्री, कभी चुनाव का टिकट बांट दिया। इसका क्या मतलब है कि क्या उस समय जब कांग्रेस सरकार में होती है तो चुनाव आयोग सारी की सारी बातें कांग्रेस के आधार, उसके अनुसार, उसके आदेश पर करती है? तो फिर एक काम करिए आलोक जी, का बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, 10 साल इसको ले जाते हैं थोड़ा पीछे, आलोक जी ले चलते हैं 50 तक और पूरी जांच कराते हैं। एक सरकार अगर आपकी मिल गई कि आपके चुनाव आयोग आपके इशारे पे काम कर रही थी, उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए भारत में, जो पार्टी चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल सरकार में शामिल कराकर करती रही। मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूं मिस्टर आलोक शर्मा, कांग्रेस के राहुल गांधी से पूछ कर आइए, यूपीए की सरकार की भी जांच होगी। 10 साल रही है सरकार, क्या कर रहा था वो केपीएस, क्या नाम था, एमएस गिल साहब, और उसके पहले टीएन सेशन चचा जो आपके थे, जो ऑर्डर पर राजीव गांधी के इलेक्शन का डेट तय करते थे, सबकी जांच कराइए मिस्टर आलोक शर्मा, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, आपकी ये चुनौती देश स्वीकार करेगा कि कांग्रेस ने जितने चुनाव आयुक्त इस देश में बनाए, चुनाव आयोग में कैसी धांधलियां की, उसकी जांच हो और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं संविधान का प्रवक्ता हूं। अगर संवैधानिक शक्तियों पर आपने हमला हमेशा किया है, आपकी सरकार रहे चू चानी के नहीं निकलता चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार गई
1: तो
5: नहीं
1: वो क्यों चूचा करेंगे
5: ना, इसका मतलब उनका
1: सुनते हैं। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी,
5: वो
1: गए सरकार में, वो नहीं है आप 12 साल से, आप लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है,
5: लेकिन वो उनका सुनते हैं।
1: इसका मतलब सरकार है अभी बताइए।
5: नहीं, हमारे देश में एनडीए की सरकार है,
1: बताइए। पीएम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
5: चल रहे हैं 12
1: साल से, कब तक आप पुराना बताते
5: हैं। आप एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र भाई मोदी, जब वहां पर चुनाव हो रहा था गुजरात में, जेएम लिंगदो चुनाव आयोग थे, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सिर्फ एक मसला था कि 6 महीना कब, जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया तब से 6 महीना, या विधानसभा जब पूरी होगी उससे 6 महीने के अंदर गुजरात में चुनाव कराया जाए। जेएम लिंगदो तय नहीं कर पाए, डेट तो दे गए थे,
1: गौरव जी
5: सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पाया, देश के तमाम वकीलों को नोटिस जारी थी, तब जाके तय हुआ।
1: मिश्रा जी
5: पर कोई हमला करेगा हम जवाब देंगे, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है।
1: अच्छा, मैं वो चुनाव आयोग में बैठी हूं, आपके मेरा कान फट जाएगा इतना जोर से आप बोलिएगा तो,
5: माइक
1: से तो कंट्रोल डाल जाती है,
5: तैयार हो जाए आलोक जी।
1: ठीक है गौरव जी, एक सिंपल सी बात है कि 26 पे रहते हैं, सबसे पहले तो इस पर हम लोग अग्री करें। दूसरा मेरे प्रश्न का हिस्सा है कि चुनाव आयोग को लेकर वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, वोटर के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कई लोग मिलते हैं जो दिखाते हैं कि भाई देखिए हमारे परिवार में 6 लोग हैं, हम 4 का तो बन गया, इन 2 लोगों का नहीं बन रहा है। अब इन गड़बड़ियों के बीच जब ये खबर आती है कि 2 चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार डिसेंट दिया या गलत किया या कहा कि ये ठीक नहीं है, तो ये शक पैदा करता है। मतलब ये दिखाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जो विपक्ष के आरोप थे उसमें दम है। वो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई ये केंद्रीकरण हो गया था, एक आदमी सिंगल हैंडेडली, यूनानिमस का मतलब है एक आदमी, और उसी की चलती थी, मतलब उसका वचन ही है शासन, ये खेल चल रहा था।
2: अंजना जी देखिए, मैं समझता हूं जनता सब समझती है, मीडिया भी जानती है और हम भी जानते हैं, हमारी आस्था तो निर्वाचन आयोग में। वो 56 साल के अपरिपक्व बालक ही होंगे जो मूर्खों वाली बात करे। टीएन सेशन का जजमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो जो मेजॉरिटी में होंगे उनका जो निर्णय होगा वो आगे बढ़ेगा। यहां पे प्रेस नोट कहता है 1 साल में सारे निर्णय सर्वसम्मति से है, एक की डिसेंट की भी बात नहीं है। तो कौन होता है ये कहने वाला कि 2 ने जो है सहमति नहीं दी है। मैं समझता हूं ये अपने आप में गलत है। दूसरा, वोट चोरी कहा गया। अब कांग्रेस से भी कुछ सवाल पूछ ले। मैंने पहला सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी के समय में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति कोलिजियम में हो रही है, सोनिया गांधी कैसे नियुक्त कर रही थी, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। दूसरा, वोट चोरी की बात करी, ये देखिए एक तस्वीर है इंटरनेट पर दिखाई देती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वोट चोरी का इल्जाम लगा था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर। इंदिरा गांधी अपना मुंह छुपा कर जा रही हैं और उनकी सदस्यता चली गई थी।
1: ये जल्दी होती से है, एक छोटा सा रिस्पांस, टाइम खत्म हो रहा है।
2: नाराज
1: जल्दी जल्दी
2: आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर,
1: जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है।
2: आप बताइए, महाभियोग लाए हैं वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, महाभियोग लाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, महाभियोग लाए मुख्य निर्वाचन जो हमारे कमिश्नर
1: है, उनके आपका पॉइंट है सारी संस्थाओं पर प्रश्न उठाना। ठीक है आलोक जी, छोटा जवाब जवाब मुझे लेने दीजिए गौरव जी, टाइम नहीं है।
6: आज का प्रश्न कांग्रेस ने नहीं उठाया, कांग्रेस को कई सालों से प्रश्न उठा रही थी। दुर्भाग्य यह है कि आज इलेक्शन कमिश्नर सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा के एक पिट्ठू ने पूरे लोकतंत्र को हाईजेक कर लिया, बंधक बना लिया है, उसके ऊपर जवाब दीजिए। अगर इंडियन एक्सप्रेस ने गलत रिपोर्ट छापी है उसके ऊपर केस कीजिए। अगर आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, पिछले 50 साल की जांच।
1: ठीक है, यहाँ पर इस बहस को आज छोड़ते हैं। दोनों तरफ से जो चुनौतियां सामने रखी गई हैं वो आप देख ही रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आज रात 9 बजे भी रहिएगा मेरे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे क्या चुनाव आयोग में सीसी ज्ञानेश कुमार जो फैसले लेते हैं और जो आदेश देते हैं वही अंतिम आदेश होता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ईरान ट्रंप की सर्वनाश वाली धमकी का जवाब अमेरिका में घुसकर कैसे देगा, और आखिर में आपको दिखाएंगे कि शी जिनपिंग के लिए ट्रंप ने अमेरिका में रेड कार्पेट क्यों बिछाया, वो खुद रिसीव करने जाने वाले हैं शी जिनपिंग को एयरपोर्ट। देखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
10: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
12: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
11: स्मॉल बैंक,
12: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rdf, there's nothing small about them.
11: Okay.
12: Oh, jeevan, nothing small about us.
13: Sam, ek to
14: ek shram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: In association with
11: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
12: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
13: चौल में घर छोटे

0: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
9: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.
11: Santa!
12: Ek to Vishnu.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर किधर?
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: In association with
11: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
12: चौल में घर छोटे होते थे, बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
13: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने में?
12: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके, लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
14: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
6: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
7: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
8: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
5: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
10: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर।
5: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: हल्ला बोल में चुनाव आयोग के विवाद पर आप देख रहे थे हमारी ये बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब आइए देखते हैं साथ तक मारिया के साथ।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इसी पर सवाल से सियासी बवाल, बीजेपी बोली आयुक्तों के बीच चर्चा, लोकतंत्र की पहचान, बिना ज्ञानेश कुमार के भी जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बताया बड़ा मुद्दा, कहा ये देश द्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश तेजस्वी भी बिफेरे, इलेक्शन कमीशन ने दी सफाई। नितिन नवीन की टीम में नए प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़, विनोद तावड़े को यूपी, अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग का फैसला, 27 मई को 2 पालियों में आयोजित हुआ था एग्जाम। शो की शुरुआत करते हैं यूपी की सियासत के साथ, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज है। आज योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अखिलेश पर तंज किया, तो अखिलेश यादव ने बुलडोजर और अयोध्या को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए।
1: यूपी की चुनावी पिच पर बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज में भैंसा चोरी का तंज मारा और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए।
2: 2017 के पहले टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर की बात तो छोड़िए, अगर कोई अपना भैंसा गाड़ी से भी जा रहा है ना, थोड़ी देर के लिए चाय के लिए या कहीं यूरिनल के लिए वह उतरा, इतने देर में वो पीछे का काठ का ही वो बोगी बची रह जाती थी, भैंसा गायब हो जाता था।
1: जिस लॉ एंड ऑर्डर का चेहरा योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को बनाया है, उसी बुलडोजर को अयोध्या के साथ जोड़कर अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए।
3: सरकार का जो रवैया है वो मनमानी का है और हर व्यवस्था को बुलडोज करने का है, हर व्यवस्था को डिमोलिश करने का रवैया है।
1: अखिलेश यादव योगी सरकार पर उन मुद्दों को लेकर चोट कर रहे हैं जिनके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ऐसे में अयोध्या और बुलडोजर एक्शन से पीड़ित परिवारों को लेकर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए।
4: मेरा मकान चौड़ीकरण में नहीं आ रहा था, तब भी मेरा मकान ले लिया गया, रात में बुलडोजर लगा के 1:30 बजे मेरे बेटे की शादी है।
1: उधर अयोध्या में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद अनशन पर बैठ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या में विकास के नाम पर घर तोड़े गए, जबकि उन्होंने अयोध्या को भव्य बनाने का वादा किया।
3: प्रभु श्री राम और अयोध्या नगरी के विकास में समाजवादी पार्टी या हम सब कभी भी रोड़ा नहीं बन सकते।
1: उधर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने एक टीम पहुंची, जिसका वकीलों के संघ ने जोरदार विरोध किया। वकीलों की मांग है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले उन्हें उसे दिखाया जाए। आज तक ब्यूरो।
0: उधर देश में चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। मीडिया रिपोर्ट में चुनाव आयोग में आपस की अनबन की खबरों ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। विपक्ष अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, तो आयोग किसी भी तरह की गड़बड़ी को पूरी तरह से खारिज कर रहा है।
5: एसआईआर को लेकर चल रही सियासी आग में मीडिया रिपोर्ट्स के दावों ने घी का काम किया है। दावा किया है कि 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कदमों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की। 16 मई को चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने अपनी आपत्ति में कहा कि सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव नहीं होना चाहिए। 19 मई को चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति पर अपनी सहमति जताई।
6: उन्होंने अपने खुद के ईसीस को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है। तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका ये बहुत घिनौना एक उदाहरण है।
7: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डिलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डिलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ वो यूनानिमिटी के साथ हुआ।
5: ज्ञानेश कुमार पर मनमानी करने और संविधान के उल्लंघन के आरोपों के साथ अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है।
8: कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
3: लोकतंत्र खत्म, इसलिए आखिरी चुनाव होने जा रहा है यूपी का, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद आपके वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे।
9: पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाए।
5: इन दावों का असर सीधे तौर पर आम जनता यानी राज्यों के वोटर रोल पर पड़ा है और वोटर रोल का असर चुनाव प्रक्रिया में मतदान से लेकर नतीजों तक पर पड़ा है। इनमें भी फॉर्म 6 में बदलाव वाला मामला सीधे तौर पर वोटर से जुड़ा है, क्योंकि इन बदलावों को दोनों आयुक्तों ने अनधिकृत और अवैध ठहरा दिया है।
10: যদি এক ফুটা মোড়ল থাকে আমাদের ইলেকশন ফিরিয়ে দিন, জোর করে যে ইলেকশন গুলো জিতেছেন আপনারা, জেতেননি বিহারে, জেতেননি মধ্যপ্রদেশে, জেতেননি হরিয়ানাতে, জেতেননি বাংলায়, জেতেননি গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষা কবস্ত ইলেকশন কমিশন বসে আছে।
11: জেল মে তো জ্ঞানেশ কুমার জানা চাহিয়ে, জেল মে তো জ্ঞানেশ কুমার জানা চাহিয়ে।
5: अब जब ये बड़े सवाल खड़े हो रहे कि क्या चुनाव आयोग में असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा था, तो आयोग की डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि अलग अलग विचार और टिप्पणियां निर्णय की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले 10 महीनों के कुछ आंतरिक नोट्स और ऑब्जर्वेशन को बताना, जबकि अप्रूवल, निर्णय, निर्देश और इनिशिएटिव को नजरअंदाज करना केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई निर्णय लिए, निर्देश दिए और 40 नए इनिशिएटिव लिए और SIR समेत कई चुनाव सुधार किए। सभी निर्णय पिछले एक साल में आयोग के सामूहिक निर्णय हैं। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं है। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों को चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। तो क्या आयोग ने संतोषजनक सफाई दे दी है? आज तक ब्यूरो।
0: उधर बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान किया है।
5: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये है। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति रानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात दिल्ली की, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक बार फिर दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं।
1: ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
12: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर सीसीटीवी, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपसेस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड्स जो उन्होंने रखी है।
1: उधर दिल्ली गैंग रेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंग रेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
13: इस वक्त आप देखिए, हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह, जिधर भी आपकी निगाह जाएगी, ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहां पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है, और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
1: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एनसीडी कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है? आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपापोती की जाती है? आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज तक ब्यूरो।
0: उधर आईआईटी बॉम्बे में भी हंगामा जारी है, जहां सुइसाइड केस पर घमासान जारी है। छात्र और परिवार आईआईटी प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, वहीं एक पक्ष प्रोफेसर के बचाव में भी उतर आया है।
14: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडी की खुदकुशी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने साहिल के सुसाइड की जांच को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए 10 मेंबर का पैनल बनाया और पूरे मामले की जांच करने को कहा, साथ ही एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की बात कही। जहां एक तरफ आईआईटी बॉम्बे एक्शन में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को पूछताछ के लिए समन किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोडे के माता पिता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, साथ ही आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में भी जांच तेज की। खबर है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंपस में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 18 सितंबर की सीसीटीवी तस्वीरें ली हैं, जिसमें दोपहर 12:30 से 12:45 के बीच परीक्षा हॉल में साहिल की तस्वीरें दिखी हैं। प्रोफेसर डुल्ला से बातचीत के बाद साहिल करीब 1:25 पर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस में दर्ज मुकदमे के बाद प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। जहां एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच साहिल सुसाइड मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ साहिल के माता पिता ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी।
15: जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके और जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण दुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी यही विनती है सबसे।
14: साहिल की मां ने खुदकुशी को लेकर आईआईटी बॉम्बे पर सवाल खड़े करते हुए न्याय की मांग की।
16: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे है?
14: तो साफ है कि साहिल की खुदकुशी के बाद आईआईटी जैसे जाने माने संस्थानों पर सवाल उठने लगे हैं। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: अब बात बाजार की, क्या रहा शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचा सोना चांदी का भाव, आइए देखते हैं।
17: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 299 अंक चढ़कर 74,828 और निफ्टी 118 अंक की बढ़त के साथ 23,447 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे रहने से बाजार का सेंटीमेंट बेहतर हुआ। एडीबी की तरफ से भारत की FY27 GDP ग्रोथ का अनुमान 7% के जाने से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बाजार में ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली। शेयर बाजार में तेजी के बावजूद रुपया कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ।
18: अमेरिकी डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी से रुपए पर दबाव रहा। हालांकि घरेलू शेयर बाजार में तेजी ने गिरावट को सीमित किया, वहीं सर्राफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी रही और सोना 130 रुपए चढ़कर 1,52,266 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,366 रुपए की बढ़त के साथ 2,35,288 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में स्थिरता के बीच निचले स्तरों पर खरीदारी से घरेलू सर्राफा बाजार में सोने चांदी में तेजी देखने को मिली। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात गणेश उत्सव की, जिसके जश्न की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
19: सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को,
20: गले में सजी है फूलों की सुंदर माला,
19: हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को,
20: माथे पर चमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बप्पा। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में समुद्र तट पर विराजमान गणपति का ये विराट स्वरूप देखते ही बनता है। ये बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 63 फीट ऊंची इस विशाल प्रतिमा की भव्यता के सामने हर कोई ठहर जाता है। और जब आसमान से ड्रोन कैमरे की नजर पड़ती है तो बप्पा की दिव्यता, विराट स्वरूप और भी निखर कर सामने आता है। इस 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। विशाल गणपति के बाद अब सूक्ष्म गणपति की तस्वीरें भी देखिए। नासिक में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है, जहां बप्पा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है। लेकिन बप्पा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है।
0: अगली खबर यूएन से जुड़ी हुई है। यहाँ जनरल डिबेट का सिलसिला जारी है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यूएन के मंच से धमकी दी, तो आज सबकी नजरें ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान पर है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की को भी आज यूएन में बोलना है। इस बीच सबकी नजरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर है, जो कुछ ही देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं।

0: दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे तीखा अल्टीमेटम। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीधे सीधे निशाना साधा। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो अंजाम ईरान का विनाश होगा।
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
0: ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं और सर्वोच्च ऑपरेशनल कमांड खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ट्रंप के बयान को विशुद्ध प्रोपेगेंडा करार दिया। ईरानी फौज ने हुंकार भरते हुए चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर और भी कठोर, करारा और अप्रत्याशित प्रहार करेंगे। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, ईरान ने ट्रंप की धमकियों का मजाक उड़ाने के लिए अपने एक्सप्लोजिव मीडिया के जरिए एक 8 सेकंड का लेगो एनिमेशन भी जारी किया है। इसमें झूठ बोलने वाले पिनोकियो की तरह लंबी नाक के साथ ट्रंप की जमकर खिंचाई की गई है और उन्हें लूजर करार दिया गया। लेकिन धमकियों के इस शोर के बीच न्यूयॉर्क की बंद खिड़कियों के पीछे एक और खेल चल रहा था। आमने सामने भले ही बातचीत ना हुई हो, लेकिन कतरी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मेज पर बातचीत हुई। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर की ईरानी प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक 1 घंटे के लिए तय थी वो पूरे 3 घंटे तक चली। अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान जब यूएन महासभा के मंच से बोलेंगे तो एक ताकतवर और अजय ईरान की ओर से अमेरिका को क्या करारा जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात एशियन गेम्स की। भारत को एशियन गेम्स में 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग का मेडल मिला है। ये मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया है। 1998 में कर्णम मलेश्वरी ने सिल्वर जीता था। मीराबाई महिलाओं की 49 वेट कैटेगरी में 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरे स्थान पर रही। 32 साल की मीराबाई ने एशियाई खेलों में पहली बार मेडल जीता है। वे ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी हैं, जिन्होंने जीत के बाद आज तक से खास बातचीत की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये मेडल से कि हमने इतना सालों से, मतलब जब से मैंने स्पोर्ट्स को, वेटलिफ्टिंग को शुरू किया था, तब से ही बोल सकते हैं कि मुझे एशियन गेम्स में मेडल चाहिए। और हर मैंने 2014 में सबसे पहला मेरा गेम्स एशियन गेम्स था, तो इसमें तो पता नहीं चला था कि क्या करना है क्या नहीं है, और परफॉर्मेंस भी कम थे, तो ऐसे ही आते गया। तो कुछ ना कुछ एशियन गेम्स में हो रहा था, तो डाउट भी था क्या हो रही है, वो सब समझ में भी नहीं आ रहा था। पर मन में तो ऐसा था कि एशियन गेम्स का मेडल मेरा कम है, अभी मिसिंग है, क्योंकि सब है मेरा, तो ओलंपिक मेडल है, वर्ल्ड मेडल है, सब गेम्स, 3 times गेम, कॉमन गेम्स मेडल है, तो एशियन गेम्स में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो इस बार तो ऐसा लगा था कि मुझे करना है इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए और इंडिया के लिए, मुझे एक मेडल जरूर देने के लिए। तो मैंने पूरा प्रोसेस किया, बहुत मेहनत किया, गेम्स कमनवेल्थ गेम्स की तुरंत ही मैंने शुरू किया था ट्रेनिंग करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो बस बहुत खुश है कि फाइनली अभी पूरा हो गया, मेरा मेडल का लिस्ट में पूरा आ गया, तो इससे और ज्यादा खुश ही क्या हो सकता है।
2: 7 तक में वक्त है, अभी एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
5: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: मेरा रुतबा है मेरा signature. दुनिया की सोच से ऊपर. बेबाक है मेरा signature. Signature finest silver elaichi, a premium product from Dilbar Group.
5: आगे आगे.
6: अरे उधर.
5: उधर किधर?
6: Correct, correct.
7: मिल गया.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: पापा,
10: सॉरी यार, गलती हो गई है.
11: ये चोट खर्चा वर्चा.
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया.
13: टाटा AIG है तो भरोसा है.
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स.
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट.
16: जेके मैक्स.
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट. जेके मैक्स पेंट. खुशियों के रंग.
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जाम.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: ओह ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायफ्री जूस

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
5: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
6: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
7: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
8: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कूटनीति की सबसे बड़ी बिसात बीत चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ देशों के शीर्ष नेताओं के साथ आपातकालीन बैठक की। ईरान के हमलों से त्राही त्राही कर रहे खाड़ी देशों के साथ हुई इस बैठक में ट्रंप ने ईरान की डरावनी तस्वीर दिखाई और कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहा ईरान की ओर से बंद किया गया हॉर्मुज जल डब्रू मध्य। खाड़ी देशों की अपील और वैश्विक तेल बाजारों में मचे हाहाकार के बीच ट्रंप ने बड़ा दांव चला। उन्होंने कहा कि ईरान की समुद्री गुंडागर्दी और तेल ठिकानों पर हमलों का जवाब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी है। ये वही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक सहमति बनी थी। भारत की पहल पर बने इस कॉरिडोर पर अमेरिका और खाड़ी देशों ने मोहर लगाई थी। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अमेरिका का दौरा किया तब भी ट्रंप ने इस रूट की तारीफ की थी। अब जब ईरान ने मुख्य समुद्री रास्तों को रोक रखा है तब ट्रंप ने इस कॉरिडोर के महत्व को दोहराते हुए इसे वैश्विक ऊर्जा और व्यापार की नई लाइफलाइन बताया है। वहीं इस महासंकट के बीच अब निगाहें टिकी हैं अमेरिका में होने जा रही G20 की महाबैठक पर। साल 2026 का G20 शिखर सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोराल में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है जो अमूमन दौरे की तारीखों के करीब किया जाता है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पीएम मोदी दिसंबर के मध्य में अमेरिका दौरे के बाद कनाडा का भी द्विपक्षीय दौरा कर सकते हैं। 51-year menace. अमेरिका में G20 से इतर क्वाड शिखर सम्मेलन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत की भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जब जब दुनिया व्यापारिक और सैन्य संकट से जूझती है तब तक भारत की भूमिका निर्णायक हो जाती है। अब मियामी में होने वाली इस ऐतिहासिक बैठक पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: इसी पर सवाल से सियासी बवाल, बीजेपी बोली आयुक्तों के बीच चर्चा लोकतंत्र की पहचान, बिना ज्ञानेश कुमार के भी जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल ने बताया बड़ा मुद्दा, कहा ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश तेजस्वी भी बिफरे, ईसी ने दी सफाई। नितिन नवीन की टीम में नए प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़ विनोद तावड़े को यूपी, अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। बिहार में दारोगा बहाली परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग का फैसला।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। आजमगढ़ में मंगलवार की शाम ऐसी वारदात हुई जिसका अंत बेहद दुखद हुआ। एक शख्स ने अपने घर के भीतर चार हत्याएं कर दी, बच्चों को घंटों तक बंधक बनाए रखा। स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस को इस संकट को खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। स्पेशल कमांडोज लगाने पड़ी, भारी संख्या में यूपी पुलिस की टीम मोर्चे पर डटी रही और अंत में चार हत्याओं का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। क्या है ये पूरे शूट आउट एट आजमगढ़ की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: 6 गोलियां, 4 मर्डर और 1 एनकाउंटर। 8 घंटे का बंधक संकट, घर के अंदर खूनी खेल। इन दीवारों और दरवाजों के भीतर से एक ऐसी खौफनाक कहानी निकली है जो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और दहशत में भी डालती है। इन चार दीवारियों के भीतर जो खौफनाक वारदात हुई है उसका अंदेशा किसी को नहीं था। इस चार दीवारी के भीतर चंद घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है। इस घर में एक शख्स ने 4-4 खून एक साथ किए हैं। यहां 8 घंटे तक ऐसा खौफनाक मंजर रहा जिसका अंजाम मौत पर हुआ। मृत्यु ने तांडव किया है यहां पर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अहरौला थाना के शंभूपुर गांव की है। यहां एक शख्स ने पहले अपने पत्नी को गोली मारी, फिर 2 पुजारियों को मार डाला। उसके बाद अपने एक बेटे और 2 बेटियों को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर आरोपी ने फायरिंग की और फिर अपने बेटे को भी मार डाला। इस पूरे मामले का अंजाम बेहद खौफनाक हुआ। आखिरकार जवाबी कार्रवाई में 4 हत्याओं का आरोपी अरविंद सिंह पुलिस की गोली से ढेर हो गया। हत्या, बंधक और एनकाउंटर की इस खौफनाक वारदात को सुनकर हर कोई हैरान है। सवाल है कि 4 हत्या और 1 एनकाउंटर की वजह क्या है? क्यों एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला? क्यों 2 पुजारियों की जान ले ली? इस हत्याकांड और एनकाउंटर के पीछे 2 अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के मुताबिक जानकारी दी है कि आरोपी अरविंद मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस की माने तो घर वालों को शक था कि अरविंद पर भूत प्रेत का साया है। इसी बात को लेकर आरोपी अरविंद की पत्नी ने घर में पूजा हवन यज्ञ करा रही थी। 3 पंडित घर में महामृत्युंजय का जप कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था। इसी बात को लेकर अरविंद नाराज था और वो इस कदर गुस्से से पागल हुआ कि उसने पहले अपनी पत्नी, फिर 2 पंडित और अपने बेटे को मार डाला।
1: ये जो परिजन और गाँव वालों का बताना है कि ये इस चीज से नाराज था और परिजनों को आशंका थी कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उसके लिए अनुष्ठान आवश्यक है और ये इस चीज से नाराज था, इसको इस चीज पर आपत्ति थी। आज 4th दिन था, कल इसका समापन होना था, उसी में नाराज होकर इसने घटना को अंजाम दिया।
0: दूसरी थ्योरी ये है कि 2018 में आरोपी अरविंद सिंह के बड़े भाई की हत्या हुई थी, तब से उसका पूजा पाठ से विश्वास उठ गया था, जबकि उसकी पत्नी घर में महामृत्युंजय जाप करा रही थी। आज उसका समापन होना था, लेकिन 22 सितंबर की शाम घर में पूजा पाठ को देखकर आरोपी अरविंद बौखला गया। उसने तुरंत पुजारियों से आधार कार्ड दिखाने को कहा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वो पुजारियों का अपमान न करे। इसी बात से अरविंद के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तुरंत पत्नी को वहीं गोली मारी, फिर 3 में से 2 पुजारियों को भी मार डाला। पत्नी और 2 पुजारियों की हत्या के बाद आरोपी अरविंद ने अपने 3 बच्चों को बंधक बना लिया। वो उन्हीं को ढाल बनाकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार फायरिंग करने के चक्कर में अरविंद सिंह की गोली उसके 8 साल के बच्चे को भी लग गई, जिससे उसकी जान चली गई।
2: पूजा से मना कर रहा था और बोल रहा था आधार कार्ड दिखाइए आप हमको, नहीं तो आप मेरा कत्ल करने आए हैं।
3: अच्छा।
2: हाँ, पंडित जी लोगों से ही बोला। अब पंडित जी लोकल थे हमारे बगल के, तो उनको लगा कि रोज हमको देखता जानता है, हमारे ऊपर गोली थोड़ी चलाएगा। लेकिन अब उसके मन में था कि ये इनसे हमको खतरा है तो गोली चलाएगा।
3: अब ये खून पड़ा हुआ है अंदर, आप देखेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम इस घर के अंदर का ही है। महामृत्युंजय का जाप चल रहा था, 3 दिनों तक लगातार पूजा पाठ हुआ, फिर कल करीब 5:30 बजे की बात बताया जा रहा है कि अचानक से तैश में आकर अरविंद ने उन पुजारियों से उनका आधार कार्ड पूछा। उसके बाद जब पत्नी ने विरोध किया कि जो ब्राह्मण पूजा कराने आए उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो पहले उसने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद 2 ब्राह्मणों को गोली मार दी, जो पुरोहित आए थे उन 2 पुरोहितों को गोली मारी, फिर उसके बाद अपने 3 बच्चों को बंधक बनाकर करीब 8 घंटे तक पुलिस को छकाया।
4: आजमगढ़ में संगीन वारदात और उसके बाद वहां करीब 8 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान पुलिस और स्पेशल कमांडो लगातार डटे रहे। पुलिस लगातार आरोपी को समझाती रही, बंधक बनाए गए बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी रही। उस 8 घंटे में क्या क्या हुआ, उस पूरे ऑपरेशन पर देखिए ये रिपोर्ट।

0: एक दिन पहले की बात है, शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तभी आरोपी अरविंद की इस घर में एंट्री होती है और उसके घर में घुसने के बाद जो कुछ हुआ वो बेहद डरावना है। आरोपी अरविंद के बुजुर्ग माँ की डबडबाई आंखें काफी कुछ बयां कर रही हैं। अब ना इनका इकलौता बेटा बचा है जिसने सभी को गोली मार दी और फिर एनकाउंटर में मारा गया, ना घर का इकलौता वारिस बचा, ना ही इनकी बहू बची।
1: बहू पूजा होते है, कोनो झगड़ा रगड़ा परिचन से थोड़ कर रही हूँ, पूजा होते है, महामृत्युंजय जाप होते है, वह 3 दिन तो भर, चौथे दिन पता न कहे जैसे बहु झगड़े पूजा ना होके पंडित लोग ने आधार कार्ड दम तो पंडित की कहा हमने आधार कार्ड दा तो कहना रे बाबू हम ना चंद कहना तो उनके हमने आधार कार्ड दा आधार कार्ड दा कहना अच्छा आधार कार्ड मिले तो ले लाठी निकलना मारे के उन्हें डंडा
2: पंडित जी लोगों
1: ने हाँ अच्छा डंडा निकलना रिवाल खोसले रहे रिवाल हर में है खोसे उनका मेहरारू गेल धरे के पंडित लोगन के अपमान ना करे कि नहीं मजा मारे उन्होंने अपमान ना करके तले मार दहने मेहरारू के गिर गई।
0: इनके बेटे अरविंद के सिर पर जो खून सवार था उसमें सब खत्म हो गया, बची हैं सिर्फ 2 मासूम बेटियां, 1 5 साल की और दूसरी 6 महीने की, साथ ही बचे हैं इस खूनी कांड के निशान।
1: बचाव में
2: की का बचाव में बहुरिया के हाँ।
1: बहुरिया तो अचानक गिर गई, जैसे बहुरिया से पकड़ा गई उन्हें तले मार दहने तो गिर गई बोले पंडित के जात हमने मारा तो हम गए पकड़ा पंडित हमरे हरिया होगी ना जात न मार से ऐसे कहीं पकड़ ली।
0: अरविंद मंगलवार की शाम बाजार से लौटा था और घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम देखकर उसके सर पर खून सवार हो गया था, तभी उसने पत्नी और 2 पुजारियों की हत्या की, उसके बाद अपने 3 बच्चों को घर के कमरे में बंधक बनाया। अब तक पुलिस को इस संगीन वारदात की खबर लग चुकी थी, बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे, घेराबंदी की जा चुकी थी। पुलिस ने पहुंचते ही सबसे पहले अरविंद को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर करने के बजाय आरोपी ने घर के अंदर की लाइटें बंद कर दी। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अरविंद को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन पुलिस कुछ करती इसके पहले ही मालूम चला कि बचने के लिए अरविंद ने अपने ही 3 बच्चों को बंधक बनाया हुआ है, मतलब खुद को बचाने के लिए उसने अपने ही बच्चों की कनपटी पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रख दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना, इसके लिए पुलिस वाले आरोपी से बातचीत में जुटे थे, लेकिन अरविंद कतई सुनने को तैयार नहीं था, वो पुलिस की एक भी बात नहीं मान रहा था। गंभीर स्थिति को देखते हुए मौके पर स्पेशल कमांडो को बुलाना पड़ा, जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर पुलिस ने घर के दरवाजे को डोर बस्टर से उड़ाया, दरवाजा टूटा तो पुलिस ने घर के भीतर प्रवेश किया।
3: पुलिस अधिकारियों से बात कराई और हर बार उसका यही जवाब था कि नहीं, मैं बच्चों को साथ में है और यही मेरे शील्ड है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा और सुबह देखेंगे, अब आप लोग वापस जाइए। तो एक लिमिट के बाद 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे और फिर हम लोगों ने ये किया कि कम से कम हम लोग घेराबंदी वगैरह करके रखते हैं, कोई बात हो भागने की कोशिश करें।
0: अरविंद के फायरिंग में उसका 8 साल का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो तुरंत बच्चे को बाहर निकाला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल अरविंद को भी बाहर निकाला, अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी अरविंद की 2 मासूम बेटियां बाल बाल बची हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आजमगढ़, आज तक।
4: आखिर कैसे कोई शख्स ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दे सकता है? 4 हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, हर कोई हैरान है कि आरोपी अरविंद ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। 4 हत्या की तमाम थ्योरी के बीच परिजन और ग्रामीण बता रहे हैं कि वो निजी मामलों को लेकर काफी परेशान रहता था।

0: सोचिए उस आदमी की मनोस्थिति क्या रही होगी जिसने अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया, जिसने अपने ही बेटे को जान से मार डाला, जिसने अपनी ही बच्चियों को बंधक बना लिया और दो पुरोहितों महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा की भी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक कई पीढ़ियों से महेंद्र पाठक अरविंद सिंह के परिवार के पुरोहित थे। 3 दिनों से वे अपने मौसेरे भाई अरविंद मिश्रा और अरविंद मिश्रा के बेटे आयुष के साथ पूजा पाठ में जुटे थे, लेकिन अरविंद सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने पुरोहितों से उनका आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड न मिलने पर उसने पुरोहितों के सीने पर बंदूक तान दी, लेकिन अरविंद की पत्नी पुरोहित के सामने आ गई और पहली गोली अरविंद सिंह की पत्नी को ही लगी।
1: के बाद जो है वह गोली निकाल लिया, उसके पास पहले से ही 6 राउंड या 7 राउंड की जो है पिस्टल थी, वो अपना भर करके सबसे पहले फायर किया। तो इसके बाद जो है उसकी पत्नी जो है एक ब्राह्मण के सामने जाकर के खड़ी हो गई, तो पहली गोली तो उसकी पत्नी को लग गया, वो तुरंत वहीं गिरी और सर पर लगी थी, मर गई। और इसके बाद जो है ये हमारे मौसी का लड़का अखिलेश जो था, दूसरी गोली उसको 2 गोली मारे सिर पर, वो भी तुरंत वहीं मर गया।
0: ऐसा नहीं है कि अरविंद सिंह पुरोहितों को पहचानता नहीं था, क्योंकि जो पंडित पूजा कराने आए थे वो पीढ़ियों से अरविंद के परिवार के पुरोहित।
2: कब से पूजा पाठ हो रहा था इनके घर में और आप लोग उनके पुरोहित हैं?
1: हाँ, पुरोहित हैं, इसके ही नहीं उसके आजा बाबा के हम लोग पुरोहित हैं, मैंने पुराना संबंध हम लोगों का है। तो यह इसकी तबीयत कुछ खराब थी, तो ये हुआ कि इसके लिए महामृत्युंजय कुछ करा दिया जाए। तो उसकी पत्नी और उसकी माँ ने यह ब्यौरा रखा अपना, तो पूजा चालू हो गई। तो पूजा चालू होने के साथ इसको यह पूजा अच्छी नहीं लग रही थी, पत्नी से और अपने माता से कहता था कि पूजा मत कराओ, लेकिन अब माँ जो चाहती है कि हमारा लड़का ठीक रहे।
3: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
8: ओले, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट।
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही. आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ.
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर. प्रेजेंटेड बाय

0: चुनाव आयोग पर सवाल को लेकर राजनीतिक बवाल, बीजेपी ने कहा बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते तीनों लोकसभा चुनाव। तो हम नहीं छोड़ेंगे, इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव। अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। नितिन नवीन की टीम में नए प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़, विनोद तावड़े को यूपी, अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। और अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत ने खोला कूटनीतिक मोर्चा, न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने रूबियो से की बात, मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ का उठाया मुद्दा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे बड़ी खबर जिससे आज सब खबरदार हैं वो है चुनाव आयोग और चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको लेकर जुड़ी हुई खबर से, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसको लेकर कुछ इस तरह की बातें की गई कि अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है।
1: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है।
2: अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी,
3: लोकतंत्र खत्म, इसलिए आखिरी चुनाव होने जा रहा है यूपी का, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद आपके वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे।
2: लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही।
4: भाजपा ने खोला है लोकतंत्र की हत्या का कार्यालय।
5: जेल में तो ज्ञानेश कुमार जाना चाहिए,
6: राहुल गांधी जी हैज बीन हाइलाइटिंग अगेन एंड अगेन विद द मैनिपुलेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट।
7: तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने इम्पीचमेंट पिटीशन दिया था।
8: दिस इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अरेस्टेड।
2: लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
9: प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है।
10: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
11: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
10: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
12: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
10: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
1: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
10: जैसे ही ये दावा हुआ देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
13: सभी चुनावों में
8: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
10: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
14: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गर्माती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए, क्या है बड़ी मांग?
15: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
10: वही BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
2: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
10: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
8: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
10: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
16: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: देश में जो चुनाव आयोग
16: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: देश में जो चुनाव आयोग
10: ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
9: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है। अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
17: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
10: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
18: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
10: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
2: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन CEC एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, CEC नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
10: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
3: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: आजादी के बाद चुनाव आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करते थे, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किए गए, जब 21 से 18 साल की उम्र की गई, उसके बाद से अक्टूबर 1989 से 3 सदस्यीय इसको संस्था कर दिया गया, हालांकि व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, लेकिन उसके बाद फिर 1993 में इसे बहाल किया गया और तब से लेकर व्यवस्था इसी रूप में चल रही है।
10: भारत में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके पास पूरी प्रशासनिक मशीनरी को नियंत्रित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। चुनाव के वक्त एक तरह से पूरा सरकारी सिस्टम चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हो जाता है। चुनाव आयोग की मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले होते हैं। भारत जैसे देश में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइन से चलता है, कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग को मिली इसी शक्ति के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, खासकर ज्ञानेश कुमार उनके निशाने पर रहे।
6: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड हूएवर इज डूइंग इट हैज टू बी टेकन टू टास्क। देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड नॉट बाय पीपल हु आर नॉट गोइंग टू हैव अ फेयर investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know, we are the largest democracy in the world and we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues.
19: ये देश के प्रति बेईमान है, लोकतंत्र के प्रति बेईमान है, भ्रष्ट है। अमित शाह जो गृहमंत्री है उनके एजेंट है, सीधे पंटर्स है। सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के गुनहगार है।
10: मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने और फिर अगले साल 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त पद संभालने के अगले ही दिन 16 मार्च 2024 को देश में आम चुनावों की घोषणा हुई। इसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम में विधानसभा चुनाव हुए। अब विपक्ष ताजा मीडिया रिपोर्ट के दावों के बाद बिहार और बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहा है।
20: चाहे बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहाँ विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है। तो हमारा अंतिम में यही मांग है कि चुनाव आयोग एक पुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके, और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए।
21: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया। उन्होंने अपने खुद के ईसीस को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है।
10: एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, इसके बाद लाखों वोट काटे गए, इसे लेकर काफी सियासी विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव लूटने की साजिश करार दिया, लेकिन अब ताजा दावों के बाद वो भी नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
8: यदि एक फुटा मॉडल थाके आमादेर इलेक्शन फिरिए दिन, जोर करे जे इलेक्शन गुलो जीते छेन, आपनारा जेतेन नि, बिहारे जेतेन नि, मध्यप्रदेशे जेतेन नि, हरियाणाते जेतेन नि, বাংলায় যেতেন নি, গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষা কবচ ইলেকশন কমিশন বসে আছে।
10: विपक्ष के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में वो इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एसआईआर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाएगा। इस तरह आने वाले वक्त में भी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सियासी खबरदार करते रहेंगे।
0: इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की सफाई आई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि आयोग की ओर से जितने भी काम किए गए हैं वो सब कानूनी हैं, और नियमों के दायरे में।
10: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
2: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
10: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
0: आईआईटी बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास आ रहा है। जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके एग्जामिनेशन हॉल का सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पे पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया था और उसके बाद उसे बाहर ले गए थे। तो जिस क्रूशियल मोमेंट की बात प्रोफेसर्स की तरफ से की जा रही है, उस समय की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उस क्रम में ये तस्वीरें दिख रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्येश इस समय जुड़ रहे हैं, आईटी के बाहर ही इस समय मौजूद हैं। दिव्येश, ये टीचर्स की तरफ से जो बातें की जा रही हैं और जो आरोप लगे हैं उनके बीच, ये कितना क्रूशियल, कितना अहम ये सीसीटीवी फुटेज?
4: और जी सदा जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम ये सीसीटीवी जो है जो सामने आया है, जो आजकल दूल्हे के हाथ लगा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो क्षण है जिस क्षण की वजह से पूरा घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ था, और जिसमें साहिल जब चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और तभी उसे रोक कर, उसका पेपर जो लिख रहा था उसे रोक कर प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला जो है उसे बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही समय है जिसको लेकर आईआईटी फैकल्टी, जो आईआईटी की फैकल्टी है पवई की, उनके द्वारा ये लगातार दावे किए जा रहे थे कि प्रोफेसर दुल्ला ने कोई आपत्तिजनक काम नहीं किया या कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे बुरा लगे। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया है। और ये सीसीटीवी सामने आने के बाद दिखाई दे रहा है कि जैसे ही चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड हो रहे थे पेपर, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने रोका और तुरंत साहिल को लेकर बाहर जाते हुए इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर कॉलेज की तरफ से क्या राय आती है, हालांकि उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये काफी अहम सीसीटीवी सामने आया है। खास करके पुलिस की जांच पर भी इस सीसीटीवी का काफी अहम किरदार जो है वो साबित होगा।
0: दिवेश, एक तरफ पुलिस की जांच है जो चल रही है और उसमें इन सारे सबूतों का मोल है, इन सारे सबूतों के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बीच दिन भर प्रदर्शन भी चलते रहे, प्रोटेस्ट भी चलते रहे।
4: जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन भी आईआईटी मुंबई के बाहर जो है इसी तरीके का माहौल देखने को मिला। प्रोटेस्ट आईआईटी पवई के बाहर लगातार शुरू थे। सुबह कांग्रेस के लोग आए थे, फिर शाम को सुजाता अम्बेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं, प्रकाश अम्बेडकर के बेटे हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया। सुजाता अम्बेडकर अंदर भी गए, जो अंदर छात्र थे उनसे भी मुलाकात की, फिर बाहर आके भी उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और काफी इल्जाम और बड़े आरोप उन्होंने जो है आईआईटी फैकल्टी पर भी लगाए हैं कि अगर चीटिंग हो रही थी तो इसका वीडियो या इसके कोई सबूत क्यों नहीं सामने आ रहा है। हालांकि उनके इस आरोपों का जवाब भी आईआईटी फैकल्टी द्वारा नहीं दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो है आईआईटी पवई द्वारा आज 10 सदस्यों की एक कमेटी स्थापित की गई जो आने वाले 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और तब तक के लिए प्रोफेसर डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है।
0: बहुत शुक्रिया दिवेश इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात दिल्ली गैंगरेप मामले की करते हैं। कालकाजी में एक 17 साल की बेटी जो कि अपना जन्मदिन मना रही थी, मंदिर से पार्क जाना उसे कितना भारी पड़ा, जीवन भर का दर्द दे गया। जहां पर ये पार्क है उसी के पास LSR कॉलेज की छात्राओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें रोजाना छेड़खानी का सामना करना पड़ता है।
5: आजादी के नारे लगा रही ये छात्राएं दिल्ली की हैं और जो इनके साथ हो रहा है वो राजधानी की दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
7: बाउंड्री वॉल्स एज आई सेड इन लाल दीवारों में ही हम सेफ हैं, उसके बियॉन्ड तो ये कुछ भी हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, हमें पता है हम अंदर हैं तो हम सेफ हैं। दिस इज द सेफेस्ट आई हैव एवर फेल्ट इन दिल्ली। हम यहाँ सेफ हैं, उसके अराउंड कॉलेज के अराउंड बाहर निकलते ही हम दिल्ली में आ जाते हैं, जो कोई बात छुपी भी नहीं है, इट्स वेरी अनसेफ।
22: आदमी पीछा करते हैं, कारों ने पीछा किया हुआ है, आदमी कैट कॉल करके जाते हैं, सीटिया बजा के जाते हैं और ग्रोप छूने की कोशिश करते हैं, छूते भी हैं, कुछ पीछे पड़ जाते हैं।
5: सोचिए ये दिल्ली में हो रहा है जहां LSR कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने कॉलेज की चार दीवारी में ही अब सुरक्षा महसूस होती है क्योंकि दिल्ली पुलिस इन्हें सुरक्षित महसूस करवाने में बुरी तरह से नाकाम है।
22: जो आस्था कुंज के आसपास के रास्ते हैं वो जो पार्क है फिजिकली असॉल्ट करते हैं बच्चों को, इस चीज को लेके कोई एडमिनिस्ट्रेशन कभी अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है।
23: एंड एवरी डे वी आर सीइंग न्यूज अबाउट हैरेसमेंट टुवर्ड्स माइनर्स इन दिल्ली, टुवर्ड्स केसेस लाइक दिस, सो वी वांट टू आस्क दिल्ली गवर्नमेंट, वी आल्सो वांट टू आस्क द सेंटर बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक हुम आर वी सपोज टू गो टू? रेखा गुप्ता जी हु इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर नीड्स टू गिव अस सम रीअश्योरेंस, मैम व्हाट आर वी सपोज टू डू? What is your government doing? What is the Delhi police doing?
22: दिल्ली पुलिस की बनती है यहाँ पे, ये 300 मीटर दूर ये पुलिस अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे बस स्टैंड पे बैक गेट पे क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं खुले में, इतनी हिम्मत कैसे आ रही है उनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पुलिस इनइफेक्टिव है, उन्हें आना चाहिए और ज्यादा उनको पावर।
5: दिल्ली विश्वविद्यालय की ये छात्राएं नाबालिग से हुए गैंगरेप के खिलाफ भले ही सड़क पर उतरी हों, ये मौका वारदात प्रदर्शन की जगह से ज्यादा दूर नहीं है। खबरदार करने वाली बात यह है कि इस इलाके में छेड़खानी होना बहुत आम बात है। कॉलेज और पीजी आते जाते छेड़खानी हर छात्रा को छेड़नी ही पड़ती है क्योंकि इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती ही नहीं।
24: लेडी श्रीराम कॉलेज के बिल्कुल सामने ये एक सॉलिडेरिटी मार्च जो छात्र लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती हैं, जो आसपास गार्गी कॉलेज में पढ़ती हैं, कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती हैं और DU की तमाम छात्र यहां पर एकत्रित हुई हैं, इन सॉलिडेरिटी कह रही हैं, जो 17 साल की माइनर नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था उसके साथ सॉलिडेरिटी में है। पर एक चीज मैं आपको यहां पर नोटिस करने के लिए बोलूंगी, हर छात्र का मुंह ढका हुआ है, हर छात्र का मुंह ढका हुआ है और ये ना मीडिया से बात कर सकती हैं क्योंकि इनको एक ही कंडीशन पे ये प्रोटेस्ट मार्च मान लीजिए या सॉलिडारिटी मार्च मान लीजिए निकालने की आजादी दी गई है कि ये मीडिया से बात ना करें। ये प्रशासन जो पुलिसिंग है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है, इन सॉलिडारिटी है, उसके साथ हैं जो 17 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, प्रॉपर पुलिसिंग मांग रहे हैं। और आयरनी कह लीजिए कि ये पूरी प्रोटेस्ट मार्च एक जो पुलिस यहाँ पर है, कम से कम हमने 100 से 200 पुलिस पर्सनल देखे हैं जो पूरे इस प्रोसेशन को, जो पूरा ये प्रोसेशन निकल रहा है, इसको फ्लैंक कर रहे हैं।
5: तो दिल्ली पुलिस छात्राओं के प्रदर्शन करने पर तो सुरक्षा के नाम पर आ जाती है, लेकिन जब इनके साथ पीजी और कॉलेज जाते वक्त छेड़खानी होती है तो पुलिस मदद को नहीं आती।
24: ये जो लेन लेडी श्रीराम कॉलेज के बिल्कुल पीछे है, ये लेन एक मान लीजिए बिल्कुल ही खाली लेन है, और यही लेन बहुत सारी छात्राएं जो लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती हैं, ये लेन लेती हैं कि वो अपने पीजी में जा पाए। ये देख सकते हैं आप, इतने सारे पोस्टर जो लगे हुए हैं, गर्ल्स पीजी, ये सारे आप इस लेन पे अगर आप आगे चलेंगे, आपको आगे जाकर ये पीजीज दिखेंगे। पर ये लेन जो है ये लेन में ना सीसीटीवी है, बिल्कुल खाली रहती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम कॉलेज के दिन पर यहाँ पर कितना सन्नाटा होगा। और ये जो छात्राएं यहाँ के आए दिन ऊपर नीचे करती हैं अपनी क्लासेस के लिए, उन पे क्या बीतती होगी।
5: अब ये रास्ता देखिए, ये LSR कॉलेज के पीछे का गेट है। इसके अलावा इसी रोड पर आगे छात्राओं का पीजी है। इसके बावजूद रात छोड़िए, दिन में निकलने में छात्राओं को डर लगता है, क्योंकि पास में बने आस्था कुंज पार्क में मनचले अक्सर छात्राओं को निशाना बनाते हैं। इसी आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप की शिकार नाबालिग अपने दोस्त के साथ आई। 17वें जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने के लिए कालकाजी मंदिर आई ये बेटी नहीं जानती थी कि कुछ ही दूर पर बने इस पार्क में जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा, क्योंकि यहाँ छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए न तो पुलिस मिलेगी, अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ लापरवाही का अंधेरा, जिसके सबूत चारों तरफ फैले हुए हैं।
1: इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। ये वो वक्त है जब 21 सितंबर को नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ आस्था कुंज पार्क में दाखिल हुई थी। डीडीए का ये पार्क है। 7 बजे के आसपास कितना घुप अंधेरा इस पार्क में होता है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 150 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है, डीडीए का पार्क है, लेकिन लाइट यहां पर नहीं है। तकरीबन 8 बजे के आसपास 21 सितंबर को पीड़िता के साथ यहीं पर गैंग रेप की वारदात हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस पार्क का जो एंट्री और एग्जिट गेट है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसका मतलब कि पार्क में कौन दाखिल होता है और अंदर से जब बाहर जाता है तो उसके बारे में तीसरी आंख यानी जो सीसीटीवी कैमरा है, चूंकि कैप्चर नहीं करता जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। करोड़ों खर्च करके ये पार्क बनाया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो लगभग ना के बराबर है। और चूंकि 150 एकड़ में ये फैला पार्क है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। पीड़िता ने जो शिकायत दी उसके आधार पर FIR दर्ज हुई थी और 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के पार्क का ये हाल देखिए, ये डीडीए का पार्क।
0: निर्भया हादसे के बाद ये तय किया गया था कि दिल्ली के भीतर जितने डार्क स्पॉट्स हैं हर जगह पर रोशनी की जाएगी, अंधेरा दूर किया जाएगा। लेकिन कालकाजी मंदिर के पास ये जो पार्क है वहाँ घुप अंधेरा है। आसपास के लोगों से बात कीजिए तो आपको हकीकत समझ में आती।
1: इस वक्त मैं आस्था कुंज पार्क में ही मौजूद हूं और शाम हो चुकी है, अंधेरा ढल चुका है। कुछ फैमिली है यहां पर घूमने के लिए आई हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या पार्क में आते रहते हैं?
11: जी, हर 3-4 दिन हम लोग आते हैं। ऐसे हम लोग क्रिएटर हैं तो हम लोग आते रहते हैं। आज कुछ ज्यादा टाइम हो गया है, ज्यादा रात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, इसलिए अब थोड़ा सा डर लग रहा है। और जैसे कि कुछ हुआ बीच में, अभी कान सुन के और डर लग रहा है, वरना तुम काफी देर तक स्टे करते हैं यहाँ पर रुकते, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ पर रुकने की।
1: क्रिएटर है, यहाँ आती रहती होंगी, पार्क में क्या लाइट का बंदोबस्त आपको ठीक दिखता है?
24: यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे मंदिर है और जहाँ पे रोड वगैरह मेन रोड है तो वहाँ पे लाइट वाइट का है, बल्कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कितना अंधेरा है। अभी लमसम 7 बज रहा होगा लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइट का व्यवस्था नहीं है। अभी सुनने में हम लोग पार्क में आते हैं, सुनने में आया कि जो है कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे कुछ हुआ भी है, कोई हादसा हुआ है, तो उस चीज को सुन के हम लोग पहले नंबर तो डर गए, इसलिए डर गए क्योंकि हम लोग बच्चों को लेकर के आते हैं, हस्बैंड भी कभी कभी नहीं आते और ये सब यहाँ पे हो रहा है, ये सब सुन के डर लगता है। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था लाइट की होनी चाहिए।
12: बाहर पता चला सीसीटीवी फुटेज भी नहीं, सीसीटीवी भी नहीं लगा,
24: यहाँ कुछ भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है।
12: घूमते कभी कभी
24: देखते जी
12: एंट्री का है, जबकि यहाँ से काफी लोग इस्कॉन टेम्पल जाता है, कोई लाइट नहीं है, देखिए अब तक कोई लाइट नहीं है। अब यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ वालों को पता नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं।
24: यहाँ पे अगर अभी कुछ हो भी जाता है ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं। अगर हम लोग के साथ कुछ होता है, जब तक हम लोग एक दूसरे को नहीं बताएंगे ना, अगर हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो कैसे बताएंगे। अगर बाय द वे मेरे साथ कुछ होता, अगर हम लोग मर भी गए तो कौन बताएगा, कुछ पता ही नहीं।
0: आजकल देश भर में छात्रों की मांगें जब उठती हैं तो सभी नेता, सभी सियासी दल खबरदार हो जाते हैं। पर क्या वाकई दिल्ली में हॉस्टल की कमी की बात तब से हो रही है जब से सत्य निकेतन में हमने देखा कि किस तरीके से पीजी में रह रहे छात्रों की जान चली गई। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसे में एक हॉस्टल के निर्माण से जुड़ी यह खबर देखिए और छात्रों के हित में खबरदार हो जाइए।

0: सत्य निकेतन में 5 छात्र और 2 मजदूर के दबकर मरने के बाद हॉस्टल की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार जागी और मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया।
1: ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम दिल्ली को और बड़े एजुकेशन हब के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ साथ हॉस्टल की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना जरूरी है। लाखों बच्चे दिल्ली शहर में पढ़ने के लिए आते हैं परंतु एडमिशन मिल जाता है, हॉस्टल नहीं मिलता। दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि 10,000 बच्चों के लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी जहां उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाएगी। ये हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए भी।
0: दिल्ली सरकार की इस घोषणा से बाहरी छात्रों को आने वाले सालों में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये इमारत इस अच्छी नियत वाले ऐलान से दिल्ली सरकार को खबरदार कर दी, क्योंकि अगर ये हॉस्टल की इमारत समय से बनकर तैयार हो गई होती तो हजारों छात्रों को महंगे और असुरक्षित पीजी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। आखिर क्या है राजीव गांधी कन्या छात्रावास की कहानी, बता रहे हैं आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में अवैध रूप से चल रहे पीजी के अंदर जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, 5 छात्रों की जान चली गई और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कोर्ट के जरिए भी कि आखिरकार दिल्ली में जो छात्र दिल्ली के ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों से जो पढ़ने आते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था रहने की नहीं है। हम इस वक्त जहां मौजूद है ये मुखर्जी नगर का ढाका कॉम्प्लेक्स है। मेरे पीछे अगर आप ये बड़े बड़े टीम जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रोजेक्ट है हॉस्टल प्रोजेक्ट जो कि 2022 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर्स हैं योगेश सिंह, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए 2000 बेड की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। 2023 सितंबर में ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 2023 से होते होते 2026 अक्टूबर आने वाला है, सितंबर तक ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया।
0: तो 10,000 बेड के हॉस्टल के ऐलान के बीच पुरानी योजनाओं की रफ्तार सरकारी ऐलानों को खबरदार करने के लिए काफी है, क्योंकि मई 2022 में डीयू के कुलपति योगेश सिंह करीब 2000 बेड की क्षमता वाले 2 हॉस्टल बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन 4 साल बाद भी हॉस्टल का काम पूरा नहीं हो पाता। डीयू की इस हॉस्टल परियोजना का काम साल 2023 में एनबीसीसी को दिया गया, लेकिन साल 2023 से 2025 के बीच काम ठप रहा जो इस साल अप्रैल में शुरू हुआ, अब इसके जुलाई 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।
2: अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर बात की जाए तो नींव जो है वो ही डल पाई है। अप्रैल के अंदर ये प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत हुई, लेकिन जो अंदर के इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट 2023 में मिलने के बावजूद 2026 तक शुरू नहीं हो पाया। उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जो दिल्ली नगर निगम है उसकी तरफ से जो क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी वो क्लियरेंस इनको नहीं मिल पाई, ना ही क्लियरेंस जल बोर्ड से मिल पाई, ना ही क्लियरेंस एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से मिल पाई, और यही वजह है जिसके कारण ये हॉस्टल का प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइमलाइन से काफ़ी डिले जो है वो शुरू हुआ। लगभग 2023 से 2026 अप्रैल के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है और 2028 जून जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की टारगेट जो है वो रखा गया है।
0: कहने की जरूरत नहीं है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं का ये हॉस्टल समय से बन गया होता तो सत्य निकेतन में रहने वाली ऐसी सैकड़ों हजारों छात्राओं को खतरनाक पीजी में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ता। इसलिए छात्रों से जुड़ा खबरदार करता सवाल ये है कि नए हॉस्टल बनाए जाने का काम दिल्ली सरकार कितनी तेजी से पूरा कर पाती है, इसी पर छात्रों की राहत टिकी है। वरना राजीव गांधी कन्या छात्रावास हॉस्टल का उदाहरण सबके सामने है जिसके बनने तक हजारों छात्राओं के सामने निजी पीजी में रहने की मजबूरी बनी रहेगी, जिनकी हालत को देखकर एमसीडी की नींद सत्य निकेतन में हादसे के बाद टूटी है। दिल्ली में 2453 पीजी भवनों का सर्वे एमसीडी ने किया, इनमें से 2342 यानी करीब 95.5% भवन देखने में सुरक्षित पाए गए, सिर्फ 4 इमारतों को खतरनाक पाया गया जहां नवासी लोग रह रहे हैं।
3: इसके अलावा 121 इमारतों की मरम्मत की जरूरत बताई गई है।
2: जो अनसेफ है उनके लिए एमसीडी क्या कर रही है, क्या हादसे का इंतजार कर रही है कि जब ये इस तरीके का हादसा हो जाएगा तब उनको रेस्क्यू किया जाएगा?
4: देखिए बिल्कुल हादसे का इंतजार नहीं कर रहे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 77 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो माइनर रिपेयर है, जैसे किसी का छोटा सा मान लीजिए प्लास्टर कहीं से उखड़ रहा है या इस तरह से माइनर रिपेयरिंग है। केवल 4 बिल्डिंग ऐसी पाई गई जो ज्यादा खतरनाक है, उनको तुरंत खाली करा लिया गया और उनमें जो है बच्चों को सेफ जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया।
0: एमसीडी के सर्वे में 4 इमारतों को भले ही खतरनाक बताया गया, लेकिन दिल्ली में ऐसी इमारतों की कमी नहीं है। आज तक संवाददाता को ऐसी ही एक जर्जर इमारत में दुकान चलती दिखी।
2: मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल लाइन इलाके में। अगर आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक आपको स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपको खंडर नज़र आएगा। इसके नीचे आपको कमर्शियल एक्टिविटी भी जो है वो होती हुई नज़र आएगी। और ये जो पूरी एक्टिविटी है वो दिल्ली के सिविल लाइन जोन जो MCD का जोन है उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कई बार इस बिल्डिंग्स को लेकर के खाली करने के नोटिस भी जो है वो नज़र आए, लेकिन बावजूद इसके MCD और का जो अगर कहा जाए एक कमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, एक लापरवाही देखने को मिलती है कि जब इस तरीके के डेंजर हो चुकी बिल्डिंग जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ लगातार जारी है उसके बावजूद ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे होती है।
0: तो दिल्ली में खतरनाक इमारतों से जुड़ा मामला एक ढूंढो हजार वाला है। विडंबना ये है जिसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन में रह रहे हैं जहां कभी भी सत्य निकेतन जैसा हादसा हो सकता है। ऐसे में छात्रों के लिहाज से सबसे बड़ी सौगात सरकार की तरफ से ही हो सकती है कि इस तरह के पुराने हॉस्टल प्रोजेक्ट सरकारी विभागों के बीच मंजूरी की प्रक्रिया के चलते न फंसे और समय से पूरा हो। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
5: और जब छात्रों और शिक्षकों और शिक्षा के हक में हम खबरदार आपको कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जहां पर सरकारी पैसों को किस तरीके से खर्च किया गया है, किन कारणों से खर्च किया गया है और किस तरह के सवाल यहां उठ रहे हैं, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।
0: 450 रुपए की चाय सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए कार का किराया 3,000 रुपए। ये भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के खर्चों का हिसाब है जिसका खुलासा RTI से मिले दस्तावेजों से हुआ है।
6: RTI लगाने के पीछे की सोच आपकी क्या थी, क्यों आपको लगा कि इस मुद्दे पे RTI लगा करके जानकारी लेनी चाहिए?
7: मेरी सोच ये थी कि मैं देखा कि कई प्रोग्राम मिल्टो हॉल में, कभी रविंद्र भवन में यहाँ हो रहे हैं, जबकि ये करोड़ों रुपए खर्च कर ज्ञान विज्ञान भवन को बरसों पहले बनाया गया और अभी हाल ही में इसमें 2 करोड़ रुपए रिनोवेशन पर खर्च किए गए, पूरी तरीके से सुसज्जित है। और अभी आप पीछे देख सकते हैं आज से 5 दिन का प्रोग्राम MPCST मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विभाग का यहाँ MP लेवल का प्रोग्राम चल रहा है और ये अपना बरकतुल्ला लेवल का प्रोग्राम वहाँ कुशवाहा ठाकरे मिंटो हॉल में लेकर जाते हैं जिसका कि किराया ही 2 लाख रुपये पर डे है और इसका 1 रुपया नहीं है। आपके यहाँ मेन पावर और सब कुछ यहाँ मौजूद है, आपके पास सारी व्यवस्था है, पानी बिजली दुनिया भर की, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आना जाना कितना खर्च, और उसके बाद में IT आप दे रहे हैं 450 रुपया, यहाँ पर आप करेंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में पड़ेगी आपको। तो ये शासन के धन का दुरुपयोग है ना, बच्चों की फीस का, माँ बाप कैसे कमा कर बच्चों को फीस पढ़ाता लिखाता सब करता है।
0: लेकिन मामला सिर्फ चाय और कार के बिल तक सीमित नहीं। ये इमारत जिस पर ज्ञान विज्ञान लिखा हुआ है दरअसल ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, यानी आयोजन के लिए यूनिवर्सिटी के अपने परिसर में ही बड़ा ऑडिटोरियम मौजूद है जिसे इस तरह के कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसके बावजूद दीक्षांत समारोह के लिए भोपाल के रविंद्र भवन का हॉल बुक किया गया जिसके लिए 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अब सवाल है कि जब यूनिवर्सिटी के पास अपना ऑडिटोरियम था तो बाहर हॉल किराए पर लेने की जरूरत क्यों पड़ी?
8: MP टूरिज्म की जो संस्था है पलाश, उसके माध्यम से ली, नंबर वन। नंबर टू, जो कन्विंस का कोई 3,000 रुपया कोई सर्टेन अमाउंट बताया जा रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक सब कुछ सामान ले जाने लाने का पूरा, और आप जानते हैं कि हम किसी भी ट्रेवल्स को या किसी भी लोडिंग को करते हैं तो 1 दिन का मिनिमम वो चार्ज करता है, तो वो ऐसे उसको हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जस्टिफाई हैं। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ऑडिटोरियम है ज्ञान विज्ञान भवन और हमने वहाँ मिंटो हॉल मतलब कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन उसमें क्यों कराया, वो बड़ा कार्यक्रम होता है, कुल मिला के विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दीक्षांत समारोह। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है।
0: हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है इसलिए विचार किया जाएगा कि आगे ऐसे आयोजनों में क्या किया जा सकता है।
8: निश्चित रूप में इसमें जांच तो नहीं, मगर हाँ एक कैलकुलेशन और या जांच कहें या एक उच्च स्तरीय हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि कोई खबर आई है और संज्ञान में आई है तो निश्चित तौर पे इस पे हम जो है विचार करेंगे। और
9: आपत्ति भी लगी है, जो कुछ फाइनेंस की जो आपत्ति लगी इसमें,
8: वो अभी मैंने फाइल देखी नहीं और मेरे को वो जानकारी नहीं है कि कैसे उनको ये जानकारी लगी कि फाइनेंस में आपत्ति है, तो वो यदि ये होगी तो उसको भी देखा जाएगा।
5: अब छात्रों से जुड़ी दो बड़ी खबरों से आपको खबरदार करते हैं। पहली खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार पुलिस के लिए परीक्षा हुई थी, दो पालियों में परीक्षा हुई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें गड़बड़ी पाई गई और इसे रद्द कर दिया गया। बिहार में छात्र परीक्षा रद्द होने के बाद खुशी मना रहे हैं, तो हरियाणा में पानीपत में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। वो चाहते हैं कि हरियाणा में HTET की अनिवार्यता को रद्द किया जाए।
10: बैरिकेड लगाने की जरूरत क्या है? टीचर अपने मंत्री से मिलने आ रहे हैं और मंत्री से मिलने इसलिए नहीं आ रहे, हमने 15 दिन पहले नोटिस दिया और 1 साल पहले साथी ने बताया कि हम यहाँ फिर आए थे और 9 जून को हम अपने निदेशालय पर गए थे।
5: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पापा,
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ,
5: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
6: Maddie, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF, there's nothing small about them.
6: Okay.
7: उज्जीवन, nothing small about us.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशन के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सर्वनाश की खुली चेतावनी दी, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका की ही सरजमी से उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि तुमने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक और ताकत से हम पर हमला किया, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। ट्रंप की धमकी के सामने ईरान ने अपनी लकीर खींच दी है और कहा कि वो सिर्फ अपनी आजादी और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक टकराने को तैयार है।
1: They martyred, assassinated our scientists, our men, women and children. Innocent children whom in truth had committed no crimes, no sins. Those who are terrorists and train and protect terrorists describe us as such. We have only defended ourselves. We are not terrorists.
0: आपने देखा, एक शख्स उठकर जा रहा था। दरअसल अमेरिका का जो प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस की सभा में बैठा हुआ था, जहां पर बोल रहे थे ईरान के राष्ट्रपति, वो वहां से उठा और चल गया क्योंकि वो आईना दिखा रहे थे आज ईरान के राष्ट्रपति। बहरहाल, यूएन महासभा के मंच से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बार फिर वही किया जिसकी आशंका थी। एर्दोगान ने फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया है, लेकिन उसका भाषण उनका सुनकर ऐसा लगा जैसे वो तुर्की के राष्ट्रपति नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हो या फिर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ का पर्चा पढ़ रहे हो। सवाल यह है कि जिस मुद्दे से तुर्की का कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें एर्दोगान टांग क्यों अड़ा रहे हैं? क्या वो भारत की सारी मदद भूल चुके हैं? अगली खबर, 11 साल बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे हैं, जहां उनका स्वागत खुद ट्रंप एयरपोर्ट पर जाकर करने वाले हैं। सवाल है कि आखिर ट्रंप ने शी जिनपिंग के लिए यह खास रेड कार्पेट क्यों बिछाया है? एक तरफ नवंबर में खत्म हो रही ट्रेड डील को बढ़ाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ एआई टेक्नोलॉजी की रेस और ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव। दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर ईरान संकट को लेकर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, यानी इस रेड कार्पेट के पीछे सिर्फ कूटनीतिक दिखावा नहीं बल्कि भारी भरकम सौदेबाजी का मंच तैयार हो चुका है। आज आपको बताएंगे कि क्या चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त, जो दो चुनाव आयुक्त हैं, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 14 बार 10 महीने के अंदर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं। विपक्ष इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग इस फैसलों को, इसे अगर आप देखें तो इसे फैसलों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया अपनी तरफ से बता रहा है। अगली खबर जमुई कांड को लेकर है, जिसमें एक बड़ी खबर है। इस शर्मनाक घटना को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है। नाबालिग से बदसलूकी के आरोपी हरे राम यादव की आज कोर्ट में पेशी की गई है। इस दौरान पुलिस कस्टडी में जा रहे आरोपी हरे राम यादव को एक वकील ने ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां एक ही आंगन में 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। जिस घर में मंत्र गूंज रहे थे, वहां अचानक गोलियों की आवाज, चीख पुकार मच गई। घर के ही मुखिया अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी, दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी आरोपों के मुताबिक, और 3 मासूम बच्चों को भी आरोप है कि उन्होंने बंधक बना लिया। अब पुलिस का कहना है कि उसने बाद में अपने बेटे को भी गोली मार दी और जवाबी फायरिंग में उसे भी गोली लग गई जिसमें दोनों की मौत हो गई। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। मौका था 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म कलाकारों को कहा कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रचार ना करें क्योंकि असली स्टार वही है जो समाज में रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।
2: जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए अंधेरा नहीं।
0: इधर राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में देर रात भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर चला। मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सड़क चौड़ी करने के लिए मदीना मस्जिद समेत आसपास के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मस्जिद गिराए जाने की खबर फैलते ही मौके पर हंगामा हुआ। AIMIM के नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि इसे सहारनपुर पार्ट 2 नहीं बनने देंगे। अगली खबर आपके लिए एक जरूरी खबर। 28 से 30 सितंबर यानी सोमवार से बुधवार तक देशभर में बैंक कर्मचारियों की 3 दिन की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। बैंक लगातार लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि वो इससे पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें। लेकिन इस बीच RBI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस रविवार को भी बैंक खुले रखने का आदेश दे दिया है, जिससे लोग बैंक जाकर कैश निकालना हो, चेक जमा करना हो, KYC जैसा अपना कोई भी जो उनका काम है वो नहीं रुके, वो काम पहले निपटा लें। और अगली खबर, IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के केस में एक मोड़ आ गया है। इस मामले में छात्र साहिल और परीक्षा हॉल का CCTV वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में साहिल परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। आरोप था कि मोबाइल फोन पर साहिल एग्जाम पेपर को ChatGPT पर अपलोड कर रहे थे और इसी दौरान टीचर ने उन्हें देख लिया। इस CCTV वीडियो में साहिल मोबाइल फोन के साथ दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के कहने पर वो मोबाइल फोन उन्हें दे देता है। CCTV में दिखाई देता है कि जैसे ही प्रोफेसर डुल्ला ने साहिल को मोबाइल का इस्तेमाल करते देखा वो तुरंत उनके पास पहुंचे। फुटेज के अंत में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर डुल्ला साहिल को परीक्षा हॉल से बाहर ले जा रहे हैं।

0: शुरुआत करते हैं। यूएन का मंच ईरान और अमेरिका के लिए जंग का एक नया मैदान बन गया है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वनाश की बात कही थी। आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने अमेरिका से उसी के देश में अमेरिका को ही खरी खोटी सुनाई। यूएन में अपने 18 मिनट के संबोधन में पहले शब्द से आखिरी शब्द तक ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को ताकत का दुरुपयोग बताया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही डोनाल्ड ट्रंप की उन शब्दों से जिसमें ईरान को आतंकी देश कहा गया था। मसूद पजेशकियान ने अपनी संबोधन में कहा कि कल उनके देश को आतंकी देश कहा गया, लेकिन वो आतंकी देश नहीं बल्कि आतंक से पीड़ित देश है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर के साथ की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बताया कि अमेरिका और इसराइल ने बिना किसी वजह से उनके सुप्रीम लीडर को मार डाला। इसके बाद मसूद पजेशकियान ने मिनाब स्कूल के उन बच्चियों की तस्वीरें दिखाई और कहा कि अमेरिका ने इन मासूम बच्चों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने इन बच्चों की कब्र की तस्वीरें भी दिखाई और पूछा कि इनकी क्या गलती थी बावजूद इसके बमबारी की और अमेरिका की वजह से इन बच्चियों की जान चली गई, इन्हें मार दिया गया। इसके बाद उन्होंने लामर्ट स्पोर्ट्स हॉल पर हुए हमले की तस्वीरें दिखाई और कहा कि अमेरिका और इसराइल ने उनके स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी इमारतों पर हमला किया जिसमें ऐसे लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। देखिए,
1: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा। हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: मसूद पजेशकियान ने जो पहली तस्वीरें दिखाई वो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की थी, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। 28 फरवरी को हुए हमले में खामनेई की मौत हुई थी, वो मारे गए थे। उनके साथ उनकी बेटी, पोती, बहू, दामाद भी इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा इस हमले में ईरान के कुछ बड़े अधिकारी भी मारे गए थे। दूसरी तस्वीरें ईरान के मिनाब स्कूल की हैं जहां पर अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल से हमला किया गया था और इस हमले में 175 लोग मारे गए थे जिसमें ज्यादातर 7 से 12 साल के बच्चे थे। इसी दिन लामर्ट स्पोर्ट्स हॉल पर भी हमला हुआ था और इस हमले में 21 लोग मारे गए थे जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। इन तस्वीरों को दिखाकर ईरानी राष्ट्रपति ने दुनिया को बताया कि वो ऐसे देश आते हैं जहां के लीडर्स को ऐसे देश से आते हैं जहां के लीडर्स को मार दिया गया, स्कूलों पर बम गिराए गए। मसूद पजेशकियान ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो हमें आतंकी कहा जा रहा है जबकि हम खुद की सुरक्षा कर रहे हैं और इसके लिए ईरान को किसी की अनुमति नहीं चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। सुनिए।

0: उनकी बातचीत का वो हिस्सा जैसे आएगा हम आपको सुना देंगे, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन पूरे संबोधन में अगर आप देखिए तो जो तेवर थे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान के, वो बहुत सख्त थे। उनके संबोधन से ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि जाहिर तौर पर तस्वीर के बाद तस्वीर, और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें ऐसा नजर आ रहा है अपने संबोधन से पहले वो कुछ पेपर्स पढ़ते नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इन पेपर्स में ही संबोधन के पॉइंट्स तक लिखे हुए थे। पहले सुनिए।
1: नो किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
0: तो वो तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं उन तस्वीरों में जो उसके बाद आई थी। अमेरिका के खिलाफ मसूद पेजेशकियान के तेवर इतने कड़क थे कि यूएन में अमेरिका के राजदूत डैन नेग्रिया उनके संबोधन को 3 मिनट से ज्यादा सुन ही नहीं पाए। जैसे ही मसूद पेजेशकियान ने अमेरिकी हमलों में मारी गई बच्चियों की तस्वीरें दिखानी शुरू की, वैसे ही डैन नेग्रिया जो है ये देखिए उठे, अपने फाइल्स समेटे और वहां से निकल पड़े। इन तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के राष्ट्रपति कितने भड़के हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी को लेकर मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश ऐसे लोगों की आवाजाही को रोकता रहेगा जो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया ईरान पर युद्ध थोपा गया है, वो अंत समय तक लड़ते रहेंगे। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन के इसी मंच से ईरान को सधे हुए शब्दों में दरअसल बड़ी धमकियां दी थी। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जोर देकर कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना था कि अमेरिका उसे कभी भी परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देगा। अब ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया एकदम साफ है। वो ईरान के साथ समझौता तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान को दो रास्ते बताए। पहला, ईरान अमेरिका से समझौता कर ले, और दूसरा, अमेरिकी सेना ईरान का सर्वनाश कर दे। ईरान को धमकाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कोताही नहीं बरती। उनका कहना था कि ईरान को बर्बाद करने से पहले उन्हें बचने का मौका जरूर देना चाहिए, और अमेरिका उसे अभी यही मौका दे रहा है। सुनिए।
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
0: Strait of Hormuz में जहाजों के सुरक्षित ट्रांजिट को लेकर अभी भी ईरान और अमेरिकी सेनाओं के बीच जंग चल रही है, और हमने आपको दिखाया ही कैसे यूएनजीए का मंच डोनाल्ड ट्रंप और पेजेशकियान के लिए एक दूसरे पर फूट पड़ने का एक मंच बन गया है। देखिए, अगर आप देखिए तो अमेरिकी सेना ने प्रतिदिन 10 से 14 जहाजों को ही हॉर्मुज से सुरक्षित निकाल पाने में वो इस वक्त सफल हो रहे हैं। ईरान उसके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हॉर्मुज में। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी सेना ने ईरान पर सैन्य दबाव बनाया हुआ है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर आर्थिक दबाव बना दे ताकि वो समझौता करने को तैयार हो जाए और कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित आने जाने दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान फिलहाल समझौता नहीं करना चाहेगा, वो कम से कम अमेरिका के मिड टर्म चुनाव का इंतजार करेगा और उसके बाद बातचीत के लिए आएगा।
2: But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running. I did that already and won in a landslide. We won in a giant landslide. And I'll be here for 2.5 years. The Republican Party is running, and I'll be helping them. But I am not running. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
0: यूनाइटेड नेशन के मंच से भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बर्बाद करने की बातें कह दी हों, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सुलह की बातचीत की खबरें भी आई हैं। अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें सुलह के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई है। दावा है कि यह बातचीत कतर के मध्यस्थों के जरिए हुई है और इस बातचीत को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आया है कि इस बातचीत से हल क्या निकला, लेकिन इतना जरूर है कि इस बातचीत के बाद ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा बदल गया है। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की सामान्य और बिना टोल वाली आवाजाही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को प्रोडक्टिव बताया है। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में ईरान ने समझौते से पहले कुछ शर्तें रखी हैं और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खोलने को अमेरिकी सेना की कार्रवाई से जोड़ा है। पहली शर्त, अमेरिकी सेना द्वारा लगाई गई नाकेबंदी हटाई जाए। दूसरी शर्त, ईरान की जितनी भी संपत्तियां फ्रीज की हुई है अमेरिका ने उसको लौटाया जाए और डीफ्रीज किया जाए। और तीसरी शर्त, ईरान पर अमेरिका के हमले बंद। अब ईरान का कहना है कि अगर इन शर्तों को मान गया तो हॉर्मूज तुरंत खोला जा सकता है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका बस ये शर्तें मान ले। रॉयटर्स ने ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों से नाकेबंदी खत्म करती है तो ईरान 7 दिनों के अंदर हॉर्मूज को खोल सकता है। हालांकि किसी तरह के समझौते की बात अभी सामने नहीं आई है।
2: स्टीव एंड जेरेड हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद मीडिएटर्स of Iran, merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: United Nations में Donald Trump के भाषण के बाद ईरान की लेगो वीडियोस बनाने वाली जो टीम है, एक्सप्लोसिव मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। अपने वीडियो में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने वाले एक कार्टून कैरेक्टर पिनोकियो की तरह दिखाया है। अगर आपको पिनोकियो की कहानी याद हो तो आपको पता होगा कि जब भी पिनोकियो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। अब एक्सप्लोसिव मीडिया टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को पिनोकियो बता दिया है। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर की नाक को लंबा होते दिखाया गया है कि जब जब वो झूठ बोल रहे थे उनकी नाक लंबी हो रही थी। वैसे ईरान पर बरसने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फेवर में एक बात कह दी है। यूएन महासभा में संबोधन के बाद उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और मिडिल ईस्ट के देशों के प्रतिनिधियों से वो मिले थे। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट को अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन रास्तों से दूर ले जाने की जरूरत है जो ईरान के टारगेट पर रहते हैं। इसी मीटिंग में उन्होंने ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर किए गए हमलों का भी जिक्र करके चिंता जताई और इसी वजह से उन्होंने इस मीटिंग में आईएमईसी का समर्थन किया है। आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। साल 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने इसे एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया था। इस पहल की प्रस्ताव पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने हस्ताक्षर किए थे। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसमें 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाने की बात कही गई है, जिसमें एक होगा ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा होगा नदर्न कॉरिडोर। इसका मकसद है एशिया, मिडिल ईस्ट जो खाड़ी के देश हैं, यूरोप, उनके बीच व्यापार का एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना ताकि वैश्विक व्यापार को बढ़ाया जा सके और हॉर्मूज है या कोई भी स्ट्रेट जिसको कोई भी बंद कर सकता है उससे अलग किया जा सके। अब हम आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये एशिया को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक कैसे जोड़ेगा। आईएमएक का रूट कुछ इस तरह से होगा। पहला रूट होगा ईस्टर्न यानी पूर्वी कॉरिडोर। यह भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होगा, जहां से व्यापारी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यूएई के जबल अली पहुंचेंगे और फिर यहां से रेल मार्ग के जरिए सामान सऊदी अरब के हरद शहर पहुंचेगा। फिर ये रियाद से होते हुए सीमावर्ती शहर अल हदीथा पहुंचेगा। सऊदी अरब का अल हदीथा जॉर्डन की सीमा पर है, इसलिए सामान का कार्गो जॉर्डन से होते हुए इसराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा। हाइफा के बाद आईएमएक का नदन यानी उत्तरी कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, जिसमें सामान फिर से व्यापारी जहाजों के जरिए ग्रीस, इटली, फ्रांस और फिर जर्मनी तक जाएगा। तो इस तरह से आईएमएक एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का एक व्यापारिक कॉरिडोर बनेगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा और इसमें शामिल सभी देशों को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आईएमएक का समर्थन यूरोपीय देशों के दबाव का नतीजा भी हो सकता है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ है और इसका बुरा असर यूरोपीय देशों पर दिखा है। यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि हॉर्मुज पर ईरान के प्रभाव को खत्म करने के लिए अलग रास्तों को सोचने की जरूरत है। इससे कच्चे तेल के व्यापार मार्ग पर ईरान का कि जो दबंगई है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी।
3: Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India Middle East Europe economic corridor and other places of the form of getting oil out, whether it's pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for decades. This has gone on for decades.
0: यूएन महासभा अमेरिका और ईरान के लिए जंग का नया मैदान है और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए उनके प्रोपेगेंडा के प्रचार का माध्यम भी है। कल यूएन के मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को बोलने का मौका मिला। उनके भाषण से ऐसा लगा जैसे वो पाकिस्तान द्वारा लिखा हुआ कोई पर्चा पढ़ रहे हैं। लगातार दो साल से तुर्की के राष्ट्रपति यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन तुर्की या किसी अन्य देश का इसमें घुसना बेगानी शादी में दीवाना होने वाली कहावत को सिद्ध करता है। यूएन में एर्दोगान ने कहा है कि दक्षिण एशिया के विवादों को बातचीत के जरिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दायरे में रहकर सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। देखा जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति गलत नहीं कह रहे हैं, भारत भी चाहता है कश्मीर मुद्दे का हल हो, लेकिन इसके लिए एर्दोगान को अपने दोस्त पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा। लेकिन आतंकवाद की फैक्ट्री पर एर्दोगान का मुंह बंद हो जाता है। उसे बताना पड़ेगा कि पीओके को तुरंत प्रभाव से भारत के हवाले कर दे पाकिस्तान। हां, अगर एर्दोगान में इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान को बोल के दिखाएं कि पीओके दे दो इंडिया को, नहीं तो तुर्की भी भारत को रोक नहीं पाएगा। रही बात भारत के कश्मीर की, तो एर्दोगान उसकी चिंता छोड़कर अपने देश और वहां के मुद्दों की चिंता करें, और अगर कश्मीर से इतना ही प्यार है तो तुरंत पीओके जाएं, वहां मारे जा रहे लोगों के परिवारों से मिलें, फिर अपने दोस्त शहबाज और मुनीर से सवाल जवाब करें। हम आपको सुनवाते हैं कि एर्दोगान ने पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के मुद्दे को किस तरह से यूएन में फिर से घसीटा है।
4: साउथ एशिया,
5: दक्षिण एशिया में ये जरूरी है कि कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए किया जाए।
0: मजेदार बात तो यह है कि पीओके में आम नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले शहबाज शरीफ उस वक्त यूएन महासभा में मौजूद थे और वो एर्दोगान के मुंह से अपनी लिखी हुई लाइन सुनकर जरूर खुश हुए होंगे। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास खुशी के मौके बहुत कम होते हैं, इसलिए उनको दूसरों के मुंह से अपना प्रोपेगेंडा सुनना बहुत पसंद है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता दिया, लेकिन अभी तक ऐसा माना जाता है कि तुर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब भी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई देश इधर उधर की बेकार बातें करता है तो भारत उस पर अपने नाराजगी जाहिर करता है। भारत लगातार कहता आया है कि पीओके समेत जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका देश का अभिन्न अंग है। भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे पर साल 1972 के शिमला समझौते के तहत शांतिपूर्ण सीधी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तुर्की ने पाकिस्तान से अपनी गहरी दोस्ती का सबूत दिया है, कश्मीर के मुद्दे को जानबूझकर यूएन में अपने भाषणों में शामिल किया है। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो दुनिया उसे गंभीरता से लेगी, लेकिन सच यह है कि तुर्की की यह कोशिश कई बार नाकाम हो चुकी है और दुनिया भर के देश ना तुर्की को गंभीरता से लेते हैं और ना अर्दवान के कश्मीर मुद्दे पर की गई बातों को। साल 2017 में जब अर्दवान भारत आए थे तब उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी थी। शायद उन्हें नहीं पता था कि कश्मीर मुद्दा भारत के लिए क्या मायने रखता है। भारत ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। इसके बाद एर्दोगान लगातार यूएन हो और ओआईसी हो, इसके मंचों पर कश्मीर पर जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है उसको फैलाते रहते हैं। साल 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 खत्म किया, इसके बाद से पाकिस्तान और तुर्की आपे से बाहर हो गए। उस साल एर्दोगान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे का समाधान करने में नाकाम बताया। फिर साल 2020 में जब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर गए तो वहां की संसद में कहा कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही अहम तुर्की के लिए है। कहां से? अभी पिछले साल जब यूएन की बैठक हुई थी तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान से कहा कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद लेकर मुद्दे को सुलझाएं। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद ही हुई थी और तब उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर सीज फायर का जिक्र भी किया था।
6: वी आर प्लेस्ड विद द सीज फायर अचीव्ड।
5: पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बाद हुए संघर्ष और उसके बाद हुए संघर्ष विराम से हम खुश हैं। हमें उम्मीद है कि कश्मीर में हमारे भाई बहनों की भलाई के लिए बातचीत के जरिए और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर के मुद्दे का समाधान किया जाएगा।
0: हालांकि एर्दोगान के द्वारा इस साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना रणनीतिक रूप से एक बड़ी चाल है। दरअसल इस साल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मक्का पैक्ट हुआ है जिसे इस्लामिक नेटो जैसा बताया जा रहा है। इसमें तीनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आए। इस पैक्ट के तहत जब भी कोई देश इन तीनों देशों पर हमला करेगा तो तीनों मिलकर उससे लड़ेंगे। मक्का पैक्ट के बाद साझेदार पाकिस्तान के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाना तुर्की की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक मक्का पैक्ट फेल ही रहा है। सऊदी अरब इसका उदाहरण है। हुती लगातार हमले कर रहा है, यहां तक कि सऊदी अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की जिन्होंने मक्का पैक्ट पर दस्तखत किए थे वो बस तमाशा देख रहे हैं। ईरान के खिलाफ, हुती के खिलाफ ना उनकी हिम्मत है ना हौसला कि मुंह खोल दे। सच यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सौदेबाजी है। तुर्की की डिफेंस कंपनीज के लिए पाकिस्तान एक बड़ा बाजार है और इस साल मार्च में आई सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 से 25 के बीच तुर्की ने दुनिया में हथियार बेचने के मामले में अपना 11वें नंबर पर पोजीशन बना लिया है। अब दुनिया में हथियार निर्यात के मामले में 1.8% हिस्सेदारी तुर्की है और तुर्की के हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार कौन? पाकिस्तान। तुर्की के हथियार निर्यात में 16% हिस्सेदारी तो पाकिस्तान की है, इसके बाद 12% हिस्सेदारी यूएई की और 8.4% हिस्सेदारी यूक्रेन की है। इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियारों का बड़ा खरीदार उससे अलग हो जाए। इसीलिए हथियार की सौदेबाजी जो है वो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा तुर्की की एक वर्षों पुरानी इच्छा है जिसमें वो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी बढ़ाए जाने की एक वजह यह है कि इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तुर्की हमेशा से एक परमाणु हथियार संपन्न देश बनना चाहता है। पिछले 10 वर्षों में उसने भारत से परमाणु हथियार से जुड़ी तकनीक हो, वैज्ञानिक सहयोग हो, लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की। माना जाता है कि भारत के खिलाफ जो ये बयानबाजी है वो इसी का बदला है। तुर्की को उम्मीद है कि पाकिस्तान उन्हें परमाणु तकनीक देगा ताकि वो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सके। तुर्की एक मुस्लिम देश है और उसे यह भी लगता है कि मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान उन्हें परमाणु तकनीक दे सकता है। इसीलिए तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की बोली बोलता है। परमाणु ताकत बनने के लिए तुर्की ने काफी पैसे खर्च किए हैं और उसने रशिया हो और ईरान उनसे भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। तुर्की के पास थोरियम के भंडार है जिसे परमाणु हथियार की तकनीक में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए उसे परमाणु तकनीक चाहिए। भारत भले ही तुर्कियों के बुरे वक्त में उसकी मदद करता हो, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष लेने की आती है तब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरोध में खड़ा हो जाता है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद की। भारतीय सेना के कई अधिकारी ये बात कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि तीन देशों के खिलाफ लड़ रहा था और इसमें एक तुर्की भी था। तुर्की ने खुफिया जानकारियों से ही नहीं बल्कि हथियारों से पाकिस्तान की मदद की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। बाद में खबरें ये आई कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स तुर्की ने ही पाकिस्तान को दिए थे। ये आत्मघाती ड्रोन्स तुर्की की कंपनी एसएस गार्ड ने बनाए थे जिन्हें वो सोंगर ड्रोन कहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्की ने अपनी नौसेना का एक युद्ध पोत टीसीजी बुकुकारा कराची के बंदरगाह पर तैनात कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, तुर्की ने युद्ध पोत को कराची पहुंचाने से पहले C-130 एयरक्राफ्ट को कराची में लैंड करवाया था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि इस एयरक्राफ्ट में तुर्की के हथियार आए हैं जिससे पाकिस्तान को मदद मिलेगी। हालांकि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हथियार भेजने वाली खबरों को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि उनका एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतरा था। लेकिन युद्ध के माहौल में किसी देश की सेना का विमान का पाकिस्तान पहुंचना संदेह पैदा करता है। सच्चाई यह है कि भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। वो हर देश के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहने की भारतीय परंपरा को निभाता है। लेकिन तुर्की ने भारत की मदद के बदले हमेशा धोखा दिया। उदाहरण के तौर पर 6 फरवरी 2023 को तुर्की के अंदर एक भयानक भूकंप आया था। 55,000 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और तुर्की को 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल हॉस्पिटल, मेडिकल सपोर्ट, डॉग स्क्वाड के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी थी। भारत ने तुर्की की मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम खासतौर से ऑपरेशन दोस्त रखा गया। तुर्की और हिंदी दोनों भाषाओं में दोस्त का मतलब एक ही है, सच्ची मित्रता। भारत में तुर्की के तत्कालीन राजदूत फिराज सुनेल ने भी जो है उस वक्त बात कही थी। उन्होंने एक तरह से भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन को सच्चे दोस्त की तरफ से मिली मदद बताया था। हालांकि इस मदद के बावजूद भारत के प्रति तुर्की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, पाकिस्तान की बोली बोलता है। न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के संबोधन के बीच एक और बड़ी खबर आई है। शी जिनपिंग, जी हां, पूरे 11 साल बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा अमेरिका और चाइना के रिश्तों की नई परिभाषा तय कर सकता है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर चल रही है और एआई को लेकर अमेरिका की असली लड़ाई चाइना के साथ ही है। इसके अलावा हाल ही में भारत में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना, भारत और रशिया की दोस्ती देखकर अमेरिका परेशान है। वो चाहता है कि चाइना के साथ उसके रिश्ते सुधरे और इसीलिए खबर यह मिल रही है कि शी जिनपिंग का जहाज जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रूज में उतरेगा तो उनका स्वागत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शी जिनपिंग की यह यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण के बाद हो रही है और इसी साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता दिया था। यानी शी जिनपिंग की यह यात्रा एक तरह की रेसिप्रोकल यात्रा है, जैसे दोनों देश एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हुए हैं, ठीक वैसे ही इस यात्रा को भी रेसिप्रोकल विजिट कहा जा रहा है। इस बार शी जिनपिंग 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। भारतीय समय के मुताबिक वो आज रात करीब 1:30 बजे के आसपास वॉशिंगटन पहुंचेंगे। पिछली बार वो सितंबर 2015 में अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे और तब उन्होंने बराक ओबामा से मुलाकात की थी जो अमेरिका के उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे। शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा इस बार कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही है, जैसे उनकी अगवानी के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति का आना। अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की अगवानी के लिए ज्यादातर नहीं जाते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका का कोई मित्र देश ही क्यों ना हो। अमेरिका के इतिहास में करीब 64 साल बाद ये मौका आया है जब अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए मुमकिन है कि खुद एयरपोर्ट जाए। पिछली बार इस तरह की परंपरा 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने निभाई थी। इसके बाद केवल ईसाई धर्मगुरु पोप को रिसीव करने की ही अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट तक गए हैं। साल 2008 में पोप बेनेडिक्ट का स्वागत करने के लिए जॉर्ज बुश और फिर 15 में पोप फ्रांसिस के स्वागत के लिए ओबामा खुद एयरपोर्ट तक गए थे। अब आप खुद सोचिए कि शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना महत्व रखती है। उस सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अगर वाकई एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो ये अपने आप में चर्चा के लिए एक विषय बनेगा। इस विजिट को लेकर व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा जानकारियां तो नहीं दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन इतना जरूर है कि शी जिनपिंग के स्वागत के लिए जॉइंट बेस एंड्रूज में एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक के मिले कार्यक्रम के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लुआन शामिल होंगे। इस यात्रा की इस खास बात यह है कि शी जिनपिंग के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है। अमेरिका में किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए स्टेट डिनर का आयोजन एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है। यह परंपरा साल 1874 में तत्कालीन राष्ट्रपति यूलिसेस सिम्पसन ग्रांट ने शुरू की थी। तब से लेकर अब तक यानी करीब 150 से ज्यादा 152 वर्षों में करीब 300 लोगों को ही स्टेट डिनर का सम्मान दिया गया है। इसके जरिए मेहमान देश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है। अनौपचारिक माहौल में कई मुद्दों पर चर्चाएं होती है। इसी के साथ साथ स्टेट डिनर में अमेरिका अपनी संस्कृति और मेहमान देश की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम रखता है। इसमें खास तौर से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं और माना जाता है कि अमेरिका टेक कंपनीज के मालिकों को भी इसमें शामिल करेगा। यानी कुल मिलाकर जिसको कहते हैं न सिर्फ संस्कृति बल्कि हर स्तर पर लोग आपस में मिल पाए। हालांकि पिछली बार भी जब शी जिनपिंग ने अमेरिका का स्टेट विजिट पर वो गए थे तब बराक ओबामा ने भी उनके सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अमेरिका और चाइना के रिश्तों में खटास आई। टैरिफ को लेकर दोनों देश एक दूसरे से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं और इसीलिए अमेरिका अलग अलग तरह से सम्मान देकर शी जिनपिंग को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस कोशिश की तीन खास वजह है। पहली, व्यापार, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से दोनों देशों में तनाव है। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर अमेरिका और चाइना एक दूसरे को पीछे छोड़ने की एक होड़ में लगे हैं और कुछ दिनों से खबरें यह आ रही हैं कि AI भविष्य में इंसानों के लिए मुसीबत बन सकता है। और तीसरी वजह है ताइवान के साथ हुआ अमेरिका का हथियार सौदा, जिसको लेकर चाइना भड़का हुआ है। दो दिन के इस दौरे में 24 तारीख सबसे अहम रहने वाली है। इसी दिन दोनों देशों के बीच दिन में अहम द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल होगा और फिर स्टेट डिनर का आयोजन। इसके बाद शुक्रवार को शी जिनपिंग वापस लौट आएंगे, लेकिन वापसी से पहले व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने एक हाईटी का भी आयोजन किया है। शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा में जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है उनमें कई पेच भी फंसे हुए हैं। टैरिफ, ताइवान, AI का डेवलपमेंट, तीनों ही मुद्दों को अगर आप देखिए तो एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जैसे इस यात्रा का एक मकसद अमेरिका चाइना ट्रेड अग्रीमेंट को रिन्यू करना है। ये अग्रीमेंट इस नवंबर में खत्म हो रहा है। साल 2025 में जब दोनों देशों के बीच जब टैरिफ वॉर चल रही थी तब इस मुद्दे पर दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत दोनों देश 10% रेसिप्रोकल टैरिफ पर सहमत हुए थे। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के व्यापार में कमी आई है। दरअसल चाइना के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 8,72,000 करोड़ रुपए का हो गया है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब इस अग्रीमेंट के आगे बढ़ने या कोई नई ट्रेड डील की बात सामने आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है, मसला है, वो है AI का, जिस पर सहमति बनी तब व्यापार टैरिफ पर बात आगे बढ़ेगी। दरअसल दोनों देशों के बीच AI को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर भी बातचीत हो सकती है। हाल फिलहाल में AI सुरक्षा में सेंध लगाने वाली शक्ति के तौर पर सामने आया है। इससे कई देशों की चिंताएं बढ़ी हैं और वो चाहते हैं कि AI को विकसित करने की कुछ हदें तय की होनी बहुत जरूरी है। फिलहाल अमेरिका और चाइना इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। AI और टैरिफ पर तो सहमति तब बन पाएगी जब दोनों देशों के बीच सबसे पुराने मुद्दे पर कोई बात बनेगी, ताइवान। ताइवान को लेकर पहले से ही अमेरिका और चाइना में ठनी हुई है। अमेरिका ने ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार देने की डील की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उस पर साइन नहीं किए। चाइना चाहता है कि ट्रंप ताइवान को हथियार ना दे। यानी देखा जाए तो तीनों मुद्दों पर दोनों देशों को कुछ कदम पीछे हटना होगा और सबसे पहले ये कौन सा देश करेगा ये चुनौती होगी। चुनाव आयोग पर राजनीति का घमासान आज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। 10 महीनों में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की 14 आपत्तियों पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट कर कहा, ये राजद्रोह है, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
7: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
0: ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने लोकतंत्र का सवाल उठाया। बंगाल, बिहार, दिल्ली के पिछले चुनाव को रद्द करने की मांग तक उठ गई। कथित तौर पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी पर वोट चोरी का विपक्ष का आरोप नया नहीं है, लेकिन अब की बार विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से सामने आई आपत्तियों के आधार पर आरोप लगाने का बड़ा मौका हाथ लगा है। खासकर एसआईआर प्रक्रिया के बीच नए वोटर को जोड़ने वाले फॉर्म 6 में बदलाव और वोटर डेटाबेस के सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण जैसे मसलों पर चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियां विपक्ष के आरोपों को मजबूत कर रही हैं। ये दोनों ही चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके साथ दो चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी। अब ये दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 मसलों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन जो बड़ी आपत्तियां हैं उसे मैं आपको बताना चाहती हूं। मई 2026 में विवेक जोशी ने वोटर डेटाबेस के ऑडिट का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ अथॉरिटीज को छोड़कर किसी को इसमें बदलाव का अधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब संवैधानिक रूप से कानून के तहत जिन लोगों को अधिकार है वोटर के नाम डिलीट करने का या जोड़ने का, उन्हीं को यह अधिकार मिलना चाहिए। इसका ऑडिट हो कि क्या उनके अलावा भी कोई कर रहा है। वोटर डेटाबेस के ऑडिट की बात क्यों आई, इसे अगस्त 2026 में सुखबीर सिंह की आपत्ति से समझा जा सकता है। अगस्त 2026 में संधू ने अपने नोट में लिखा था कि राज्य चुनाव अधिकारियों से ईरोनेट का जो पूरा एक्सेस है वो नहीं मिलने की शिकायतें आ रही हैं। अब ये ईरोनेट क्या है पहले समझिए। ईरोनेट दरअसल वो प्लेटफॉर्म है जिससे जितने भी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, ईआरओ हैं, वो लोगों के वोटर्स के नाम या तो जोड़ते हैं या डिलीट करते हैं, वो डेटाबेस है। उन्होंने चुनाव आयोग के आईटी विभाग की डायरेक्टर जनरल सीमा खन्ना, जो डायरेक्टर जनरल है डीजी सीमा खन्ना के अधिकारों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सीमा खन्ना के पास एक्सेस रोकने का, कि इन जो ये जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं इनका एक्सेस रोकने का लीगल अधिकार नहीं है, उनका एक्सेस रोका जा रहा है। अब दोनों चुनाव आयुक्तों संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 में बदलाव पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने विवेक जोशी ने तो मई में सवाल खड़ा किया कि पिछले एसआईआर में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके जो माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनकी एंट्री पूछने का बदलाव फॉर्म में कैसे हुआ, क्योंकि फॉर्म 6 में बदलाव रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में बदलाव किए बिना संभव ही नहीं है, और ये बदलाव कौन कर सकता है, सरकार। संधू ने अगस्त में अपने नोट में फॉर्म 6 के इस बदलाव को अनऑथोराइज्ड कहा, इलीगल कहा, अवैध करार दिया, कहा इसको तुरंत वापस लीजिए। चुनाव आयुक्त संधू ने यह आपत्ति भी दर्ज कराई कि बंगाल में ट्राइब्यूनल के सामने चुनाव आयोग की ओर से अपील की इजाजत किसने दी। दोनों चुनाव आयुक्त ने अपने नोट से गोवा के उन 97 वोटर्स का मसला भी उठाया, इन्हें लोकल इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों यानी ईआरओ ने योग्य मतदाता बताया था, लेकिन ईआरओ के निर्णय को केंद्रीय तौर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर में शामिल करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। अब दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से जो अन्य आपत्तियां दर्ज कराई हैं उनमें शामिल है चुनाव आयोग की कार्यशैली का मसला। 29 जुलाई को विवेक जोशी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में आधिकारिक कामों के बंटवारे का, किस अधिकारी का क्या काम है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो बंटवारे की बात की और उस बंटवारे पर, काम के बंटवारे पर जानकारी ना मिलने की बात कही। 29 जुलाई को ही संधू ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में वर्क रोस्टर का मुद्दा उठाया, कार्रवाई की मांग की। 16 अप्रैल को विवेक जोशी ने आयोग की बैठकों के मिनट्स नहीं जारी किए जाने, बैठकों के पहले बैठक का एजेंडा नहीं मिलने पर आपत्ति दर्ज की। 16 अप्रैल को विवेक जोशी ने चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारियों को विदेश की यात्राओं पर भेजने पर भी आपत्ति नोट लिखा था। चुनाव आयोग एक ऐसा संवैधानिक संस्था है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से फैसले लिए जाने जरूरी है। ऐसे में चाहे वो संधू साहब हो या विवेक जोशी, उनकी 14 आपत्तियों को लेकर विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में हुए फैसलों को वोट चोरी कह रहा है।
8: आपने बदला फॉर्म 6? हाँ। किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीईसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधु साहब और जोशी साहब ने कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है, ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए, हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे।
0: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऑफ विपक्ष के गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी हुआ है, प्रेस नोट जारी किया। बयान पर चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी पवन के दस्तखत हैं। 8 पॉइंट्स में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अलग अलग विचार और टिप्पणियां निर्णय की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पिछले 10 महीनों के कुछ आंतरिक नोट्स और ऑब्जर्वेशंस को बताना, जबकि अप्रूवल, निर्णय, निर्देश, इनिशिएटिव को नजरअंदाज करना केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई निर्णय लिए, निर्देश दिए और 40 नए इनिशिएटिव्स लिए और एसआईआर समेत कई चुनाव सुधार किए। ये सभी पिछले एक साल में आयोग के सामूहिक निर्णय हैं, यानी यूनानिमस फैसले। चुनाव आयोग के जवाब में कहा गया कि यह भी कहा कि बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया बड़े प्रशासनिक और ऑपरेशनल अप्रूवल और सहमतियों से हुई है। आयोग ने जिन 6 राज्यों की बात की, यही वो राज्य है जहां ज्ञानेश कुमार के सीसी रहते हुए चुनाव हुए। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट सख्त प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। ईआरओज, डीईओज जो हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनको वोटर रजिस्ट्रेशन और डिलीशन के फैसले का अधिकार वैधानिक शक्तियों के तहत मिला हुआ है और वही कर। अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर आए अनुमानों से जुड़ी है। IMF, मूडीज हो, S&P ग्लोबल, दुनिया की बड़ी एजेंसियों का भारत की ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान सकारात्मक है। बिल्कुल अंजना, जब दुनिया में युद्ध का तनाव है और महंगे कच्चे तेल का दबाव है, इस सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस बात का दावा दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियां कर रही हैं। सबसे ताजा आंकड़ा आया है S&P ग्लोबल का। S&P ने वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। S&P से ठीक पहले मूडीज रेटिंग्स ने भी विकास दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर सीधे 7% कर दिया था। मूडीज का मानना है कि मिडिल ईस्ट के तनाव और वैश्विक झटकों का भारत ने उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से सामना किया है। इसी के साथ हम रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: our state of mind with a Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler Spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर।
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
12: Sadhana!
13: Ek do, ek
14: Vishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: लोगे कहने वालों ने हमेशा बुरा मानने वाली बात ही कही है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इतिहास गवाह है, बुरा तो नहीं।

0: चुनाव आयोग पर सवाल को लेकर राजनीतिक बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद, कहा आयुक्तों के बीच चर्चा स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोप को राहुल ने बनाया बड़ा मुद्दा, कहा ये देश द्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल पीसी कर सकते हैं राहुल। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं। अखिलेश तेजस्वी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई प्रक्रिया का हिस्सा। नितिन नवीन की टीम में नए प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़ विनोद तावड़े को यूपी, अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। और आईआईटी बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर डुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज हम दस्तक देंगे सोते हुए उस सिस्टम के खिलाफ जहां आम जनता की जिंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। आज बात अहमदाबाद जिले के 5 गांवों की रोंगटे खड़े करने वाली आप बीती पर। डेवलपमेंट, विकास के नाम पर तमाम फैक्ट्रियां लगा दी गई। इनमें कुछ केमिकल की फैक्ट्रियां भी हैं, वही फैक्ट्रियां जिन्हें आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की खुली छूट मिली हुई है। बीते कुछ वर्षों में केमिकल फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी ने पूरे इलाके के भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को जहर बना दिया। और आज स्थिति यह है कि 5 गांवों में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां कैंसर का कोई मरीज ना हो। कैंसर वाले पानी के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि कैंसर वाले पानी से सरकार मुक्ति दिलाए। तो आज हम स्थानीय लोगों की आवाज सोती हुई सरकार की नींद तोड़ने के लिए उठा रहे हैं, जिसके 2 जिम्मेदार ये हैं।
1: आज अहमदाबाद जिले के 5 गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने से पहले एक बार नहीं बल्कि हजार बार सोचते हैं, क्योंकि पता नहीं साफ दिखाई देने वाला यही पानी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का शिकार न बना दे। फेटावाड़ा गांव के हर्षद भाई हों, नरेश भाई हों, रविंद्र लालजी भाई हों, मनु भाई हो, संगीता बेन हो, लाभू बेन हो या फिर तारा बेन, नाम अलग, चेहरे अलग, लेकिन कहानी एक जैसी। कैंसर से पीड़ित गांव वालों की आप बीती यही है कि जीवन देने वाला पानी ही भेटावाड़ा, त्रासद, नेस्टा, पालड़ी और अंबारेली गांव के लिए काल बन चुका है। एक दो नहीं, बीते कुछ सालों में 54 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और जहर वाले पानी ने हर घर को कैंसर का रोगी बना दिया है। आलम यह है कि गांव के हर घर में मातम है और आंखों में आंसू। बावजूद इसके ना तो जिला प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार है, और तो और आरोप यही है कि सरकार ने इन्हें बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है।
2: कि मैं तो उसकी मौत हुई थी 3 महीने के बाद ही मौत हुई है, और मैं कहना चाहता हूँ कि उसको भी वही तकलीफ हुई थी, खाने की ही तकलीफ हुई थी। तो उसके पहले मेरे मम्मी को भी यही तकलीफ थी। 10 बरस उसको तो हो गया, लेकिन मेरे भाई को अभी 3 महीना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवी है, मेरे को उसके भी खर्च ज्यादा लगा है। 70 से 18 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी मेरे भैया नहीं बचा अभी।
3: अभी ये पानी गांव में आ रहा है ना, वो बोले तो केमिकल युक्त आ रहा है और नगर पालिका का पानी आ रहा है। ये वो पानी पीने लायक नहीं है, कोई चीज बनाने के लायक नहीं है। इनकी वजह से जो पानी के अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में आते नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया आते हैं। इनसे इनकी वजह से शरीर को खराब करता है और कैंसर की बीमारी होती है। मेरे पापा के बड़े भाई की डेथ लगभग अभी 8 साल हो गए हैं, उनका भी कैंसर से पीड़ित थे, उसका भी ऐसे ही मेरे पापा की तरह ही हालत थी। उन्होंने भी खेत को भाड़े बेचकर इलाज करवाया था।
1: जहर वाले पानी से छुटकारा पाने के लिए गांव वाले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग यही है कि हजारों लोगों के सिर पर बनरा रहे जानलेवा खतरे से निजात मिले।
0: आज तक के संवाददाता अतुल तिवारी गुजरात के कैंसर वाले गांव पहुंचे, कैंसर के चलते जान गंवा चुके लोगों के परिजनों से बात की। ये पीछे कुछ तस्वीरें हैं, कुल इनकी तादाद 54 है। गांव में जहरीले पानी से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों की आप बीती आप सुनिए। विश्वास कीजिए, गुजरात के कैंसर वाले गांवों की दर्द भरी कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी।
1: भेटावाड़ा गांव के रहने वाले हर्षद मकवाना। 10 साल पहले माँ को कैंसर ने छीन लिया। 3 महीने पहले बड़े भाई की मौत की वजह भी कैंसर बना। अब इसी जानलेवा बीमारी से हर्षद खुद जूझ रहे हैं। कैंसर वाले पानी ने पूरे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया।
2: हमको पता घर में से 2 लोग को हुआ था, इसलिए हमको ज्यादा दिन तक हमारे को मालूम पड़ा कि हमारे को भी ऐसा लगता है, तो हमने सारवल ले ली।
4: अच्छा, आपको क्या समस्याएं हो रही थी जब आपको कैंसर हुआ था और आपने इलाज कहाँ पे करवाया?
2: हमारे ये होने के बाद खाने में तकलीफ हो रही थी, इसके लिए हमने इलाज अहमदाबाद में करवाया।
4: अच्छा, अन्न नली का आपको कैंसर हुआ था, कितना खर्च हुआ, क्या आपका जो खर्च हुआ उसमें किसी प्रकार की मदद कहीं से मिली या पूरा खर्च आप ही को उठाना पड़ा?
2: नहीं नहीं, किसी की मदद नहीं मिली और एक सारा खर्च हमारे को 8-10 लाख का उठाना पड़ा, अभी हमने उठे रहे।
1: हर्षद का परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही दर्द नरेश भाई को जीने नहीं दे रहा, क्योंकि पिता भगवान भाई और माँ कैंसर से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ताऊ की कैंसर से ही मौत हो चुकी है।
3: मेरी माता को भी कैंसर 2 महीने अभी होने वाले हैं, उनको अंदर पेट में गांठ का ऑपरेशन किया था, वो कैंसर के गांठ का ऑपरेशन किया था।
4: अच्छा, कितना खर्च हुआ है आपके पिता के इलाज में, आपकी माता के इलाज में, और इलाज के लिए जो खर्च हुआ क्या किसी ने सहायता की या आपके पास पैसे पहले से ही थे?
3: मेरी माता को और मेरे पिता को एक ऑपरेशन का 4 लाख का खर्चा हुआ है।
1: ये है संगीता बहन। कैंसर ने माथे का सिंदूर मिटा दिया। पति गौतम ही जिंदगी का एकमात्र सहारा थे। एक बीमारी ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। आज संगीता बहन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि गहने और खेत पति के इलाज में बिक चुके हैं और 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है।
5: पति को कैंसर हुआ था, एक बार हमने ऑपरेशन करवाया मगर कुछ फिर नहीं पड़ा। फिर हमने गहने बेचकर पहला ऑपरेशन कराया, फिर भी दूसरी बार ऑपरेशन कराना पड़ा तो हमने हमारा खेत बेचा। 3 साल हमने उनके कैंसर की होली कराई। 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। हमको किसी से मदद कुछ नहीं मिली। 12-13 लाख तो हुए होंगे।
1: इनका कसूर सिर्फ इतना है कि अपना घर बार छोड़कर कहीं और नहीं बस सकते, क्योंकि घर के मुखिया की मौत हो चुकी है और कैंसर के इलाज में जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं। 14 साल का अक्षय अपनी दादी और पिता को खो चुका है, जबकि चाचा कैंसर के मरीज हैं।
4: तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये अक्षय है जो कि गुजराती में बोल रहा है, उसकी उम्र 14 साल है। घर में उसकी दादी, उसके पिता और उसके एक चाचा हैं जिन्हें कैंसर हुआ। चाचा अभी फिलहाल कैंसर ग्रस्त हैं, लेकिन दादी जो कि कई साल पहले उनका कैंसर से निधन हो गया, उसके पिता जिनकी कुछ ही दिनों पहले अभी कैंसर की वजह से निधन हुआ है। जब अक्षय से हमारी बातचीत हो रही है, अक्षय का यही कहना है कि फिलहाल उसकी उम्र 14 साल है, उसकी माता जो कि गृहिणी है और उसकी माता के द्वारा ही उसका पूरा परिवार का गुजरान चलाया जा रहा है। 3 भाई हैं और ये उन्हीं 3 भाइयों में सबसे छोटा है। अक्षय, आंखों में जो आंसू गिर रहे हैं वो परिस्थितियां दिखा रहा है कि इस गांव के लोग किस प्रकार से जो केमिकल युक्त पानी, दूषित पानी जो कि छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से जो लोगों को कैंसर हो रहा है और कैंसर के बाद हो रही मौतों से किस प्रकार से लोग परेशान हैं, उसकी गवाही अक्षय की आंखें दे रही हैं।
1: गांव के ही लालजी भाई की उम्मीदें जवाब दे चुकी हैं। कैंसर की बीमारी ने सब कुछ छीन लिया, न खेत बचे न गहने।
6: मेरा पापा का नाम लालजी भाई है, उनको कैंसर हुआ था, 4 साल हो गए और ट्रीटमेंट में कीमोथेरापी और सेक लिया था। खर्चा तो 3-3.5 लाख रुपया हुआ था, वो प्रदूषण पानी केमिकल वाला आया था इसलिए हुआ था।
7: आपने गुजरात के कैंसर वाले गांव के लोगों की आप बीती सुनी। 5 गांव के लोग आज कैंसर वाला पानी पीने के कारण लाइलाज बीमारी कैंसर का शिकार बन गए। अब सवाल यही है कि पानी में ऐसा क्या है कि लोगों को बेमौत मार रहा है ये पानी? कैसे जीवन देने वाला पानी ही गांव वालों पर मौत का कहर बरपा रहा है? मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर सब सो रहे हैं। गहरी नींद, किसी की नींद नहीं टूट रही।
1: एक तो नहीं बल्कि 54 लोग कैंसर की वजह से जान गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि कैंसर की वजह है गांव के आसपास चल रही केमिकल की फैक्ट्रियां, वही फैक्ट्रियां जो केमिकल वाला जहरीला पानी सीधे गांव के नाले में बहा देती हैं। नतीजा ये हुआ कि जब तक लोग संभलते उससे पहले ही ग्राउंड वाटर जहर बन गया।
2: मेरा मानना है कि ये केमिकल युक्त पानी से ही हमें सबको कैंसर हुआ है, कहें कि हमको कुछ व्यसन ही नहीं है तो कहाँ से होगा, पानी का ही होगा ना। हमको हमारे सारे गांव में जब जब किसी को कैंसर होता है तो पानी से ही होता है, कि पानी पानी के दूसरे और कोई ऑप्शन ही नहीं। सभी के सभी लोग को कुछ हमें, मेरे को भी कुछ व्यसन भी नहीं है तो कैसे होगा, पानी से ही होगा ना। और वो सबको हमारे घर में तीन लोग को हुआ था, वो सभी लोग को पेट का ही होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पानी से ही होता है ना, कि पानी के दूसरे तो कुछ वो सबको भी व्यसन नहीं था।
1: गांव वालों की माने तो ये संयोग नहीं है, क्योंकि कैंसर से जूझ रहे या फिर कैंसर के चलते जान गंवा चुके लोगों को पेट में कैंसर वाली गांठ हुई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार केमिकल युक्त दूषित पानी को लेकर आवाज उठाई, लेकिन जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली।
3: अभी ये पानी गांव में आ रहा है ना, वो बोले तो केमिकल युक्त आ रहा है और नगर पालिका का पानी आ रहा है, ये वो पानी पीने लायक नहीं है, कोई चीज बनाने के लायक नहीं है। इनकी वजह से जो पानी के अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में आते नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया आते हैं, इनसे इनकी वजह से शरीर को खराब करता है और कैंसर की बीमारी होती है।
1: आज केमिकल वाले पानी के चलते कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। सरकार से मांग यही है कि जल्द से जल्द इसका स्थायी समाधान निकले।
8: मेरे दादाजी को कैंसर की बीमारी थी, वो लगभग 5 सालों से थी, वहाँ हम कितना भी खर्चा किया पर वो बच नहीं पाए, क्योंकि वो यही पानी के कारण ही हुआ था। और अभी भी वो पानी हमारे गांव में आ रहे हैं और लोगों भी वो पानी पी रहे हैं। हम सरकार श्री से यही विनंती करना चाहते कि वो पानी बंद करे, क्योंकि हमने हमारा घर का सदस्य गुमाए हैं तो हम उनकी पीड़ा जानते हैं। हमारे घर में ऑक्सीजन के बाटले खुद हमने रखे थे।
1: लोगों को कैंसर बेमौत मार रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी आज भी बदस्तूर नालों में आपको नजर आ जाएगा।
4: धोड़का के भेटावाड़ा गांव में मेरी मौजूदगी है और इसी गांव के स्थानियों का दावा है कि बीते कुछ ही साल और महीनों में 21 लोगों की मौत कैंसर से हुई है, और कैंसर होने की जो वजह बताई जा रही है वो दूषित पानी, केमिकल युक्त पानी जो कि आसपास की फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख लीजिए, ये जो नाला है इसके अंदर दूषित पानी साफ तौर से देखने को मिल रहा है और नाला कितना दूषित दिखाई पड़ रहा है वो तस्वीरों से ही आप समझ पा रहे हैं। और अगर मैं अपने सहयोगी साहित्य से भी कहूंगा कि आपको जूम करके भी जो केमिकल युक्त पानी जो कि बीते 15 पहले छोड़ा जा रहा था उसके निशान अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की स्थिति अभी भी नाले में मौजूद है, खास करके इसी दूषित पानी और केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से बीते कुछ ही महीनों और सालों में इसी गांव के 21 लोग और आसपास के 5 गांवों को मिलाकर करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से होने का दावा इसी गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है।
1: स्थानीय स्तर पर गांव वालों का इलाज करने वाली एक संस्था भी मानती है कि कैंसर की वजह फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वाला पानी है।
9: मुख्य वजह तो स्वच्छता एक है और एक किसी भी मतलब केमिकल युक्त पानी या फिर पेस्टिसाइड उसके कांटेक्ट में आने से भी मतलब हो सकता है एलर्जी।
7: आज हमारा सीधा सवाल जिम्मेदारों से है, गुजरात सरकार से है, जिला प्रशासन से है, आखिर गुजरात के कैंसर वाले गांवों पर जिम्मेदार आंखें मूंद कर क्यों बैठे। बीते कुछ वर्षों में 54 लोगों की कैंसर से मौत हो गई, लेकिन गांव वालों को बेमौत मार रही फैक्ट्रियों को मनमानी का लाइसेंस किसने दिया? क्या आम आदमी की कीमत पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मौत बांटने की इजाजत मिली हुई है?
1: जवाब दीजिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मौत बांटती फैक्ट्रियां कब तक चलती रहेंगी? जवाब दीजिए वन एवं पर्यावरण मंत्री, पानी में जहर घोलने की खुली छूट कब तक? जवाब दीजिए अहमदाबाद के कलेक्टर, कैंसर वाले गांव का इलाज कब तक? जवाब दीजिए धोलका के विधायक, कैंसर पीड़ित पर आंखें बंद कब तक? सवाल सिर्फ कैंसर से जूझते गांव वालों का नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे जिम्मेदारों की संवेदना का भी है। जहर वाले पानी से मुक्ति पाने के लिए स्थानीय लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि स्थानीय विधायक किरीट सिंह दा भी प्रदर्शन के स्थल पर आए, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर विधायक किरीट सिंह ने स्थानीय लोगों की मांग को अनसुना कर दिया।
10: प्रोटेस्टर जो है वो लोकल जितने गांवों के आदमी हैं लोकल, उन सबको पता है कि मेरा प्रयास क्या है। मैंने कलेक्टर जी को भेजा था, प्रांत अधिकारी को, मामलतदार जी को, TDO को, आरोग्य विभाग वाले को, ज्यादा बारिश थी तो फूड पैकेट की व्यवस्था की थी, कैश डोल दिलवाया था, जो भी मेरे से हो सके मैं दिया है। लेकिन वो उनका आग्रह है कि आप जमीन या रोड पर आ जाओ। मैंने वो जो उसका हैंडलिंग कर रहा है उस सबको बोला कि आप यहाँ पे मेरे घर पे आओ, कहीं कार्यालय पे आओ, कोई सरकारी ऑफिस पे आओ, हम बात बैठ के बात करेंगे, मैं पूरा अधिकारी साथ में रखूंगा, लेकिन उसका आग्रह है कि आप यहीं पे आओ। और मुझे ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो आना चाहिए, जो दूसरी जो विरोध पक्ष अभी हैंडलिंग कर रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा, आप सोचो।
1: ये जनता का अपमान है, क्योंकि MLA किरीट सिंह खुद मानते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से 5 गांवों के लोग कैंसर जैसी बीमारी के शिकार बन गए। सरकार की जिम्मेदारी है जनता की सेहत और सुरक्षा का ख्याल रखे, लेकिन यहां तो आम जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। सोचिए, गांव के लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और जिम्मेदारों ने इसका समाधान पैसे के बदले पानी वाले फॉर्मूले से निकाला।
11: भेटावाड़ा गांव में जिस पानी के बोर से पानी का सप्लाई होता है, फिलहाल हमारी वहीं पे मौजूदगी है, लेकिन इस बोर पर जब हम पहुंचते हैं तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें जो मिलती हैं वो आप ये देख लीजिए। RO का यहां पे मशीन जरूर से लगाया गया है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी की तरफ से लगाया गया है। और यहां पे गुजराती में जो लिखा है कार्ड में, रिचार्ज का समय बुधवार का एक समय लिखा हुआ है, रविवार का समय लिखा हुआ है, यानी कि गांव वालों को अगर RO का पानी चाहिए तो एक कार्ड प्राइवेट कंपनी की तरफ से दिया गया है, साथ ही में बुधवार और रविवार को यहां पे एक समय लिखा गया है जहां कार्ड को रिचार्ज करने के लिए लोगों को इसी समय के दौरान आना है। अब सबसे मजेदार चीज यह है कि यहां पे 5 रुपए गर्म पानी के और 10 रुपए ठंडे पानी के लिए जा रहे हैं, यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी का ये जो RO है, यहां से अगर गांव वालों को शुद्ध पानी अगर चाहिए तो 5 रुपए और 10 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं।
1: जमीनी हालात ऐसे हैं कि पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाए, क्योंकि जिम्मेदार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बड़ी बेशर्मी से दलील देते हुए नजर आए।
12: जो 5 गांव हैं, धुलका का, बेटावाड़ा, त्रासद, पालड़ी, आंबारेली, जो गांव है उसमें कैंसर कैसे हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारी हेल्थ का डिपार्टमेंट से जो कैंसर हुआ है वो सभी की दवाई देनी चाहिए। सब लोगों को PM जय कार्ड 10 लाख रुपया सुधी का है, तो सब जितने के सभी हमारे है रनिंग 33 केसेस, सबको PM जय कार्ड है, सभी को फ्री ऑफ सारवार मिलेंगे। हमारे एक बहुत बड़ा कैंप भी किया, चमड़ी के डॉक्टर को बुलाया, मेडिसिन डॉक्टर को बुलाया, हमने कैंसर अस्पताल है वहां से भी डॉक्टर लोगों को बुलाया, हमारे टीम भी गई और पूरा एक बड़ा कैंप किया, उसके पहले भी कैंप किया था और सब लोगों को हमने सारवार और ट्रीटमेंट की।
1: सवाल जिंदगी का है, लेकिन जिम्मेदारों को जवाबदेही का कोई डर नहीं। आज तक ने जब कैंसर वाले गांव की आप बीती गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोटवाड़िया को सुनाई, तब कहीं जाकर सोती सरकार की नींद टूटी।
13: ये कंप्लेंट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई, तय किया गया कि जो भी वहाँ फैक्ट्री है वहाँ हम CCTV कैमरा भी लगाएंगे, उसकी जांच भी करेंगे, ग्राउंड वाटर की भी जांच करवाएंगे, और जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है, अगर कहीं पोल्यूशन है तो उनके सामने लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने भी सूचना दी है कि जल्दी से वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया जाए। अकॉर्डिंगली जो गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है उन्होंने 168 करोड़ का ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है।
1: आज तक ने कैंसर वाले गांव की आवाज सरकार तक पहुंचाई, ताकि सिस्टम की अंधेर गर्दी का शिकार लोग ना बने। गुजरात के पर्यावरण मंत्री ने केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का दावा किया है। अब देखना यही है कि ये वादा सिर्फ सरकारी कागजों में सिमट कर रह जाएगा या फिर भेटवाड़ा, त्रासद, नेस्टा, पालड़ी और अंबारेली गांव को इंसाफ मिलेगा।
7: आपने देखा गुजरात के कैंसर वाले गांव कैसे सरकारी सिस्टम की अंधेरगर्दी का नतीजा है। अब हम आपको दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सरकारी बुलडोजर के एक्शन पर उठ रहे सवालों की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज दिल्ली में मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक हुई। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी की अगुवाई में मीटिंग में बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का रोडमैप तैयार किया गया।
1: सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर चला, दिल्ली के शालीमार बाग में मस्जिद पर बुलडोजर चला। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरोप यही है कि चुन चुन कर मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली के शालीमार बाग का है, जहां सड़क के चौड़ीकरण के चलते कई इमारतों पर बुलडोजर चला, जिनमें एक मस्जिद भी थी।
14: कुछ नहीं, इसी बात का तो विरोध है कि आप कुरान निकालने की मोहनत नहीं दे रहे, आप जानेमाज निकालने की। दिस इज सहारनपुर पार्ट टू। ये सहारनपुर में जिस तरीके से डीएम ने किया वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है, ये राजधानी है, वाइब्रेंट यहाँ लोकतंत्र है।
1: एआईएमएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामेई का आरोप है कि दिल्ली में मस्जिद पर चला बुलडोजर सहयोग नहीं बल्कि सहारनपुर वाला प्रयोग है।
15: बीच में आप ये देखेंगे जो ये सामने आपको इमारत नजर आएगी, दरअसल यहाँ पर एक मस्जिद है और जिस मस्जिद की ऊपरी दो फ्लोर को भी देखिए, उसके लेंटर को भी तोड़ा गया है। दरअसल यहाँ पर ये बताया गया था कि मस्जिद का जो पूरे जो नक्शा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है और ऊपर के दो फ्लोर की मंजूरी नहीं थी, जिसे बाद में बनाया गया था। इसको लेकर के सिविक एजेंसियों ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद प्रशासन का कहना है कि 15 दिनों के अंदर बैक टू बैक 3 नोटिस दिए गए, उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया।
1: दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासी घमासान छिड़ गया। बड़ी बात यह है कि सहारनपुर मस्जिद पर चले बुलडोजर को लेकर भी ओवैसी और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे।
16: तुम जुल्म के एतबार से मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, हम ईमान की ताकत पर, इत्तेहाद की ताकत पर उस मस्जिद की एक एक ईंट को जमा करके दोबारा मस्जिदें बनाएंगे और उसको आबाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह ताला।
17: वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म के सम्मान न करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते जो दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हों। वो सनातनी कभी नहीं हो सकते और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है।
1: इसी कड़ी में आज जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि मदरसे और मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।
18: एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। पहले मॉब लिंचिंग चलती थी, फिर घरों पर बुलडोजर चले, अब मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और जो इबादत की जगह हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हो सकता है कहीं कुछ गलत भी हो।
1: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कार्य समिति के फैसलों की जानकारी दी। दावा यही किया कि ये खास तबके को डराने की कोशिश है।
18: ये अनार्की की तरफ ले जाने वाली चीज है। इसकी वजह से जो इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है या सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उसके बीच में बेचैनी, गुस्सा।
1: मौलाना महमूद मदनी ने साफ किया कि न्याय और संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए सभी कानूनी और लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मस्जिदों की जमीन को अवैध बताकर बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगवाई जा सके। आज तक ब्यूरो।
7: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए दस्तक में हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ट्रंप को ईरान की खरी खरी। आप देखते रहिए 10 तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
22: Tera pyar pyar pyar unka baar baar baar तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
23: क्या चीज है वायरल है
22: थैंक यू
24: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
23: मैं हूं ना मेरे पास एक आइडिया है।
22: क्या
23: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
25: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता नो सर क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
24: ओ नादान परिंदे बैठ
23: बैठ बैठ
24: सर मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है
23: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है

0: बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: पापा
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
6: ओले ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: बिजोटे चार्ज हुआ यार।
8: ओले बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट।
19: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
20: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
21: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
20: स्मॉल बैंक?
21: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDF, there's nothing small about them.
20: Okay.
21: Ujjivan, nothing small about us.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
15: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
22: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
20: आगे आगे।
23: अरे उधर उधर।
20: करेक्ट करेक्ट।
24: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbaag Group.
2: In association with
25: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
26: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
27: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
28: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
29: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
30: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 प्लान रोकने के लिए।
31: इतना कॉन्फिडेंस होके कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
32: आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी। ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी जी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
0: इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, समाज को बदनाम कर देने वाली ये घटना है। और एक बेटी होने के नाते जब ये घटनाएं घर से करीब होती है तो निश्चित रूप से मन और ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ जो विपक्ष की टिप्पणी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करना अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी संकुचित है।

0: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर, यूएन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के उस भाषण की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की हवा निकाल कर रख दी। बीते दिन संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बताया था। दावा किया था ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो उसके पास आज परमाणु हथियार होते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का जवाब आज संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने दिया। ट्रंप के एक एक आरोप पर पजिश्कियान ने खरी खरी ट्रंप को सुनाई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने क्या क्या कहा, क्यों कहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
1: दुनिया के सबसे बड़े मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब दिया। ये जवाब 24 घंटे के बाद आया, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो कहा उसका मुंहतोड़ जवाब पजिश्कियान ने दिया। ट्रंप ने बीते दिन ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताया। आज पजिश्कियान ने सबूतों के साथ तस्वीरों के जरिए ट्रंप के एक एक दावे की हवा निकाली।
2: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
1: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए।
3: The world's peril, then the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर आरोप लगाया था कि वो समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। इस आरोप का जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया।
4: No.
2: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
1: दरअसल ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ अमेरिका ने शांति का प्रस्ताव रखा था। अगर ईरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो 28 फरवरी को हमले की नौबत नहीं आती।
3: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in this hall would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their air force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone, their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
1: हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर युद्ध थोपा था। ईरान ने अपने बचाव में पलटवार किया। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी।
4: Israel has the bombs, has weapons.
2: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है। न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जाँच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है, यही असली विडंबना है।
1: ईरान के मुताबिक उसका परमाणु प्रोग्राम मुख्य रूप से अपने बिजली ग्रिड को मजबूत करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नागरिक और शांतिपूर्ण प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए परमाणु हथियारों की झूठी कहानी गढ़ी।
3: From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
1: भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान को किसी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, वहीं ईरान ने भी दुनिया के सबसे बड़े मंच से यह ऐलान किया कि ना ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भविष्य में कभी बनाएगा। लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो वो झुकेगा नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा। यानी ट्रंप की धमकी से ईरान डरने वाला नहीं।
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
0: और अब खबर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की अमेरिकी दौरे की। 11 साल बाद चीन के राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। वो 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। व्हाइट हाउस ने जिनपिंग के अमेरिकी दौरे को ऐतिहासिक बताया है। दावा यही है कि दुनिया की दो महाशक्तियों के मिलन से अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट दूर होगी। ट्रंप ने जिनपिंग की मेजबानी के लिए विशेष तैयारियां की।

0: चीन की मेजबानी को क्यों तैयार हुए ट्रंप? टैरिफ वॉर के बीच क्या चीन से सुधरेंगे रिश्ते? क्या ताइवान पर ट्रंप बदलेंगे अपना स्टैंड? आखिर ट्रंप का प्लान जिनपिंग क्या है? ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात बनेगी बात? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के चंद दिन बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले दिल्ली और अब वॉशिंगटन की यात्रा को लेकर कई मायने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग की यात्रा से ठीक पहले रूस के साथ कारोबार को लेकर चीन और भारत पर 100% टैरिफ से जुड़ा एक कानून अमेरिकी संसद में पास हुआ है। यानी भारत और चीन पर 100% अमेरिकी टैरिफ की तलवार लटक रही है। सवाल यही है कि अमेरिका में जिनपिंग के भव्य स्वागत की तैयारी से पहले ट्रंप ने ये दांव क्यों चला? क्या 100% टैरिफ का दांव जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान मोल भाव की रणनीति का हिस्सा है?
1: And you remember I had it up to 145% at one point, but it was too much. It was really hurting them badly, and I didn't want to do that. No, we get along very well. We have a good relationship. Now, you know, somebody said, oh, they spy on us. And I said, maybe they do, but we spy on them too. You know, I don't want to give any certified or classified information, but we spy on them too. They said, they spy on you, sir. I said, we spy on them too.
0: सवाल यही है कि दुश्मन की मेजबानी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति तैयार कैसे हो गए, क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की बात किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका में जिनपिंग के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप खुद जॉइंट बेस एंड्रयूज पर जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना असामान्य प्रोटोकॉल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस के स्टेट फ्लोर पर जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत करेंगे। इसके बाद कल जिनपिंग के स्वागत में एक सैन्य प्रदर्शन होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक एक B-2 स्पिरिट और 4 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान इसमें हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा, बीते साल अलास्का में पुतिन के स्वागत के दौरान अमेरिकी सेना ने एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ साथ F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन किया था। कल से शुरू होने वाली इस शिखर बैठक में तीन अहम मुद्दों पर ट्रंप और जिनपिंग के बीच चर्चा होगी, जिसमें चीन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार, तकनीक और ताइवान शामिल है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते जिनपिंग का ये पहला अमेरिका दौरा है। इससे पहले 2015 में जिनपिंग अमेरिका गए थे, तब ओबामा राष्ट्रपति थे। इससे पहले दोनों नेता आखिरी बार मई में ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान मिले थे, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। ट्रंप अब ईरान के साथ चल रहे युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। सवाल यही है कि अमेरिका जिस दौरे को ऐतिहासिक बता रहा है, क्या इसका असर बातचीत के नतीजों पर भी दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
2: चीन के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा का टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर को लेकर तनातनी पूरी दुनिया देख चुकी है। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, समझते हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत से।
3: जी सईद, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा पर होंगी, क्योंकि 11 साल बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद जॉइंट एयरबेस एंड्रयू जा रहे हैं। जॉइंट बेस एंड्रयू, उनके स्वागत के लिए जबरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर रखा गया है, लड़ाकू विमानों की उड़ान रखी गई है। तो एक तरह से एक बड़े राष्ट्राध्यक्ष के लिए बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट शी जिनपिंग को दिया जाएगा, लेकिन ये तो सांकेतिक तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच तनाव काफी ऊंचा रहा है और काफी ज्यादा तनाव रहा है दोनों देशों के बीच भी, खासतौर पर अतिरिक्त करों को लेकर, टैरिफ को लेकर, फिर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। देखिए, चीन का एक तरह से वर्चस्व रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स पर, और अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए जल्द से जल्द सुचारू रूप से ये चलती रहे, पहली बात। लेकिन चीन का ये कहना है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी पर जो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, उस तरह के प्रतिबंध हाई एंड टेक्नोलॉजी पर ना लगे चीन के लिए, और उसको रेयर अर्थ मिनरल अगर वो अमेरिका को देगा तो उसको हाई एंड टेक्नोलॉजी का सामान मिलता रहे, पहली बात। दूसरी बात, अतिरिक्त कर, अगर अमेरिका ने चीन पर सैंक्शन या एडिशनल टैरिफ लगाए तो चीन ने अमेरिका पर वो टैरिफ लगाए, और खासतौर पर अब जो एक नया कानून अमेरिका में बना है कि रूस से अगर आप ऑयल का ईंधन खरीदेंगे तो आप पर 100% तक एडिशनल टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, और इसीलिए दोनों देशों के नेता जब साथ बैठेंगे और दो दिनों की ये महत्वपूर्ण मुलाकात है तो प्रयास ये होगा कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। फिर दोनों ही देशों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा ताइवान का आता है। चीन लगातार चाहता है कि अमेरिका ये ऐलान करे कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वो ताइवान को हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन अमेरिका इस पर जो अमेरिका की भाषा में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है कि वो अपना रुख इस पर अभी साफ नहीं कर रहा है और ताइवान को हथियार बेचना जारी रखे हुए है, ये चीन के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। फिर हिंद प्रशांत महासागर में फ्री एंड ओपन नेविगेशन, इस तरह के कई मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच आएंगे, और उम्मीद है अगर बात समाधान की तरफ बढ़ती है तो इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक इसका असर होगा। लेकिन अगर ये विवाद रहते हैं तो आने वाला समय कई मुद्दों को लेकर दुनिया की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां, नंबर वन पर अमेरिका, नंबर टू पर चाइना, इनका तनाव पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, खासतौर पर ऐसे समय जब चीन रूस की भी मदद कर रहा है और इंटेलिजेंस देने के तौर पर वो ईरान की भी मदद कर रहा है, और मध्य पूर्व का जो तेल है या रूस का जो तेल है वो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक है। तो कई पेचीदा मुद्दे हैं जिन पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।
2: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोला स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: Papa,
8: sorry यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
8: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार रुमटा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार रुमटा बार बार बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
6: क्या चीज है वायरल है?
5: थैंक यू।
7: आप पे वो TMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
10: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: ओ नादान परिंदे, बैठ
8: बैठ जा, बैठ जा।
7: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
12: तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
6: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी।
3: दिस मैन शुड बी सस्पेंडेड, दिस गणेश कुमार शुड बी सस्पेंडेड फोर्थविथ।
4: क्या चुनाव आयोग में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त में बन नहीं रही? क्या SIR पर अपनी चला रहे हैं ज्ञानेश कुमार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अलग अलग फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में चार बड़े मुद्दों का जिक्र है। पहला, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में बदलाव। दूसरा, वोटर डेटाबेस और उसके डिजिटल एक्सेस के केंद्रीकरण को लेकर चिंता। तीसरा, पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े कुछ मामलों में अपील की प्रक्रिया। और चौथा, गोवा में ऐसे मतदाताओं का मामला जिन्हें स्थानीय स्तर पर पात्र पाए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतों के कारण रोल में शामिल करने में समस्या आई। सबसे ज्यादा चर्चा फॉर्म 6 को लेकर है। यही वो फॉर्म है जिसके जरिए नया मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 6 में SIR से जुड़े पुराने चुनावी रिकॉर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। दावा है कि दोनों आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके लिए नियमों में बदलाव जरूरी है। यहीं से सवाल उठा कि क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर फॉर्म 6 में इस तरह का बदलाव कर सकता है या इसके लिए नियमों में औपचारिक संशोधन जरूरी है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ बता दिया।
5: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
4: वहीं अखिलेश यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आयोग के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने आंतरिक मतभेद की बात को फैसलों में असहमति के बराबर मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी संस्था में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन राय अलग होने का मतलब ये नहीं कि अंतिम फैसला अलग हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक SIR समेत सभी फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के बाद सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि कई मौके पर शुरुआती मतभेद के बाद तीनों आयुक्तों के बीच सहमति बनी और सुधार के कदम उठाए गए। सबसे अहम सवाल कि क्या चुनाव आयोग में CEC अकेले फैसला कर सकते हैं? कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2023 के कानून की धारा 18 में कहा गया है कि आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाए। अगर किसी मामले पर राय अलग हो तो फैसला बहुमत के आधार पर होता है। तो क्या चुनाव आयुक्तों में मुख्य ज्ञानेश कुमार बड़े फैसले खुद ले रहे हैं, बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की अनदेखी कर रहे हैं? भले ही चुनाव आयोग विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के नोट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन मान रही हो, लेकिन शब्दों के चयन तो इससे आगे जाते हैं, कई सवाल उठाते हैं। संजय शर्मा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले

0: को लेकर सियासी बवाल। बीजेपी ने बताया बेबुनियाद, कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा, कहा यह देश द्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। नितिन नवीन की टीम में नई प्रभारियों का ऐलान, स्मृति ईरानी को हरियाणा, छत्तीसगढ़ विनोद तावड़े को यूपी, अनिल बलूनी बने हैं बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। और आईआईटी बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर डुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आजमगढ़ में एक घर के अंदर एक बाप अपने 3 बच्चों को बंधक बना लेता है। उसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी, उसी पिस्टल से बस कुछ देर पहले ही वो अपनी पत्नी और 2 पुजारियों को गोली मार चुका था। अब इसके बाद अलग अलग एजेंसियों के कमांडो और आसपास के 10 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद बच्चों को बंधक बनाने वाला बाप एक एक कर पहले एसएसपी, फिर एसडीएम, इसके बाद तहसीलदार और आखिर में एडीजी को मौके पर बुलाता है। करीब 7 घंटे बीत चुके थे।
2: आजमगढ़ का शंभूपुर गांव, आधी रात का वक्त, लेकिन रात के सन्नाटे की जगह गांव में चारों तरफ पुलिस और कमांडोज का डेरा, रह रहकर सुनाई देती गोलियों और सायरन की आवाज और फिजा में अजीब सी बेचैनी। शंभूपुर का यही वो मकान है जिसके अंदर से आई एक खबर ने आसपास के 10 थानों की पुलिस के साथ साथ एटीएस और एसओजी की टीमों को भी इसके इर्द गिर्द ला खड़ा किया है। 100 से ज्यादा पुलिस के जवान और कमांडोज मकान को घेर चुके हैं। पुलिस चारों तरफ से मकान की मैपिंग करने में जुटी है ताकि बगैर किसी खून खराबे के इस एपिसोड का अंत किया जा सके। लेकिन मामला इतना आसान नहीं लगता। मकान के अंदर एक हथियारबंद शख्स 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद है और वो रह रहकर मासूमों की जान लेने की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि पुलिस यहां से वापस चली जाए वरना वो बच्चों को गोली मार देगा। यहां एक छोटी सी गलती भी बच्चों की जिंदगी छीन सकती है, लिहाजा पुलिस के अफसर थोड़ी थोड़ी देर में कमरे के अंदर मौजूद शख्स से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उसे समझाने बुझाने का सिलसिला चलता है लेकिन हर कोशिश के बाद अंदर से जवाब ना मिल आता। करीब 7 घंटे की मान मनवल के बाद रात के 1 बजते बजते कुछ ऐसा होता है कि पुलिस सही मायने में एक्शन में आ जाती है। पहले कमरे में स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और तब शूटआउट की शुरुआत होती है। और जब तक इस सिलसिले का अंत होता है, मकान के अंदर से बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स की लाश के साथ साथ 9 साल का एक बच्चा लहूलुहान हालत में बरामद होता है, जिसकी आखिरकार अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान चली जाती है। ये कहानी बस इतनी सी नहीं है बल्कि इन 2 मौतों के साथ साथ इस मकान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 तक पहुंच जाती है, जिनमें 4 लोग तो उस सिरफिरे शख्स की गोलियों का ही शिकार बन चुके हैं, जबकि 5वीं मौत खुद पुलिस की गोलियों से उस सिरफिरे की होती है। करीब 8 घंटे पहले तक गांव शंभूपुर के इस मकान में पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण का सिलसिला चल रहा था। महामृत्युंजय मंत्र के स्वर गूंज रहे थे, हवा में हवन की खुशबू थी, लेकिन अब इसी मकान में सन्नाटा है। जगह जगह खून के छींटे हैं और अगर कुछ बाकी है तो वो है रह रहकर आती रोने बिलखने की यह आवाजी, चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस वाले। लेकिन एक ऐसे घर में जहां मंगलवार शाम तक माहौल खुशनुमा था, पूजा पाठ चल रहा था, आखिर वहां एकाएक ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बदल गए? तो सुनिए, उसी मकान के मुखिया ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच अचानक घर में आए पुजारियों पर ऐसा हमला बोला कि इस हमले में पहले उसने एक एक कर तीन लोगों की जान ली और फिर अपने ही तीन छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद हो गया। और इस खून खराबे का अंत उसी सिरफिरे शख्स के 9 साल के छोटे से बेटे और खुद सिरफिरे की मौत के साथ हुआ। ये मकान श्यामबाला देवी का है। यहाँ बुजुर्ग श्यामबाला अपने 42 साल के बेटे अरविंद सिंह और उसकी पत्नी बबीता और उनके तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। 9 साल का पोता शौर्य, 5 साल की परी और महज 7 महीने की एक छोटी और प्यारी सी बच्ची के साथ। पिछले कई सालों से अरविंद की मानसिक स्थिति खराब थी और उसे पूजा पाठ जैसी बातों से सख्त चिढ़ थी। लेकिन उसी की मानसिक स्थिति को ठीक करने की कामना लिए अरविंद की माँ श्यामबाला और उसकी पत्नी बबीता ने घर में 4 दिनों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप रखवाया था, जिसकी शुरुआत शनिवार यानी 19 सितंबर को हुई थी। 4 दिन बाद मंगलवार को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी, यानी पूजा संपन्न होना था। लेकिन इससे पहले ही अरविंद के दिमाग पर इस पूजा को लेकर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने एकाएक कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। मंगलवार को अरविंद कहीं बाहर गया हुआ था। इधर मकान में पूजा पाठ चालू था, लेकिन शाम को जैसे ही वो घर लौटा, हवन पूजन के सिलसिले को देखकर गुस्से में पागल हो गया और सीधे घर आए पुजारियों से उलझ पड़ा। उनसे आधार कार्ड मांगने लगा। पुजारी भी कहीं दूर दराज के नहीं, बल्कि उसी शंभूपुर गांव के रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में पुजारियों ने अरविंद से पूछा कि जब वो जानता है कि वो कौन है, तो फिर उनसे आधार कार्ड मांगने का क्या दुख है। बस इतनी सी बात पर अरविंद ने 60 साल के बुजुर्ग पुजारी महेंद्र पाठक और 55 साल के उनके भाई अखिलेश मिश्रा को पीटने की कोशिश की।
3: तो उसमें इन्होंने पंडित जी लोगों से मना किया था कि आप लोग पूजा करने मेरे यहाँ मत आइएगा। तो उसमें पंडित जी जब लोग ये इनकी माँ और जो फैमिली वाले पंडित जी के यहाँ लोग गए, तो पंडित जी बताए कि इनके बड़े भाई का इनके ऊपर कुछ है ऊपर का, तो उसको ये लोग शांत करवाने के लिए पूजा करवा रहे थे। अच्छा। तो ये पंडित जी को मना किए थे कि मेरे घर मत आइएगा। अच्छा। भाई जी,
4: मतलब परिवार वालों ने पूजा करवाने के लिए, माँ जैसे कह रहे हैं महामृत्युंजय का जाप करने के लिए बुलाया था, तो परिवार वालों ने बुलाया?
3: जी, परिवार वालों ने, अरविंद ने नहीं बुलवाया था। अरविंद उसका विरोध कर रहा था। ये जो क्या बोलते हैं, कल कौन सी तारीख थी, हाँ, उसके एक दिन पहले 100 नंबर भी शाम को आई थी पूजा के दौरान भी। अच्छा। लड़कियां बुलाई थी, डिस्टर्ब कर रहा था पूजा को, ठीक ना। तो पंडित जी लोग किसी तरह से पूजा करके चले गए। फिर जब ये लोग कल आए पूजा करने, तो शाम के टाइम माहौल खराब हुआ। वो उसको लगता था कि जो मेरे घर आ रहा है मुझको मारने के लिए आ रहा है। पूजा से मना कर रहा था और बोल रहा था आधार कार्ड दिखाइए आप हमको, नहीं तो आप मेरा कत्ल करने आए हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, पंडित जी लोगों से ही बोला।
5: उसकी पत्नी और उसकी माँ ने यह ब्यौरा रखा अपना, तो पूजा चालू हो गई। तो पूजा चालू होने के साथ इसको यह पूजा अच्छी नहीं लग रही थी। पत्नी से और अपने माता से कहता था कि पूजा मत कराओ, लेकिन अब माँ जो चाहती है कि हमारा लड़का ठीक रहे, पत्नी भी यही चाहेगी। इस स्थिति में पूजा हुई उसकी। कल का चौथा दिन था। इसके बीच में भी कुछ एकाध बार जो है ब्राह्मणों से वह तकझक किया, लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस भी आ गई थी
4: सोमवार को।
5: लेकिन कल की ऐसी स्थिति हुई कि पूजा कार्ड पाठ करके सभी लोग जा रहे थे, तो वह कहा कि आधार कार्ड हमको दीजिए आप लोग। आधार कार्ड एक बहाना बनाया, जबकि हमारा उसका संबंध यहाँ से 500 मीटर की दूरी है घर पर, और उसके बहुत पुराने पुरोहित हैं वहाँ। आधार कार्ड की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन एक बहाना बना करके झगड़ा मैंने पैदा किया।
2: लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पुजारियों पर हमला होता हुआ देख अरविंद की पत्नी बबीता ने बीच बचाव करने की कोशिश की, और तभी अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अरविंद ने बबीता पर फायरिंग कर दी। अरविंद का ये रूप देखकर पुजारी भागने लगे, लेकिन उसने पीछा कर 2 पुजारियों महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा को भी गोली मार दी। जबकि एक पुजारी उनके घर की दीवार कूदकर भागने में कामयाब रहा। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई।
4: मंगलवार शाम करीब 5 बजे फिर जब अरविंद घर में पहुंचा तो 3 पुरोहित और उसकी पत्नी बबीता पाठ पूजा पाठ कर रही थी और उसको देखते ही फिर अरविंद ने आपा खो दिया। बीती कई पीढ़ियों से जो पुरोहित अरविंद सिंह के परिवार में पंडिताई कर रहे थे, पुरोहिती कर रहे थे, पूजा पाठ कराते थे, उनसे आधार कार्ड मांगने लगा। आधार कार्ड मांगने के दौरान तय हुआ, इसके बाद पत्नी ने विरोध किया कि घर आए पुरोहितों का अपमान मत करो। जिसके बाद आपा खो चुके अरविंद ने पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद 3 पुरोहितों में 2 पुरोहितों को गोली मार दी और जो सबसे छोटा एक पुरोहित था नौजवान वो किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला।
2: इतने राउंड की फायरिंग और एकाएक घर में हुए 3-3 कत्ल के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने पुलिस को खबर दी और अगले ही पल आजमगढ़ पुलिस का अच्छा खासा लवाजमा मौके पर हाजिर था। लेकिन 3 जान ले चुके अरविंद का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने हथियार डालने या मौके से भागने की बजाय अपने ही 3 बच्चों को एक कमरे में बंधक बना दिया। उसने पुलिस वालों को वहां से लौट जाने की चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने बच्चों की जान ले लेगा। फिर तो शाम से ही कमरे में बंद अरविंद को समझाने बुझाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मंगलवार और बुधवार की देर दरमियानी रात तक चलता रहा। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि खुद अरविंद की मां श्यामबाला देवी, उनके रिश्तेदार और यहां तक कि गांव वालों ने भी अरविंद को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था कि पुलिस वहां से वापस चली जाए वरना वो अपने ही बच्चों की जान ले लेगा।
6: बाबू पूजा होते है कोनो झगड़ा रगड़ा पंडित से थोड़ी करे, हमें पूजा होते है महामृत्युंजय जाप होते है। वह 3 दिन तो भर चौथे दिन पता न कहा जैसे बहुत झगड़े कहा पूजा ना होके पंडित लोग ने आधार कार्ड दा हमें तो पंडित सब की कहा हमने आधार कार्ड दा तो कहना रे बाबू हमें ना चंद कहना तो उन्होंने आधार कार्ड दा आधार कार्ड दा कहना अच्छा आधार कार्ड मिले तो ले लाठी निकलना मारे के उन्हें डंडा
4: पंडित जी लोगों ने
6: हाँ डंडा निकलना दीवार खोसले रहे हरिवाल हर में है खोसे उनका मेहरारू गेल धरे के पंडित लोगन के अपमान ना करे कि नहीं मैं जब मारे उन्होंने के अपमान ना करे तले मार दे मेहरारू के गिर गई।
4: आप थी वहाँ पर
6: नहीं रहनी वही जब मेहरारू गिर पंडित लोगन सोचने कि हम भाग जाए एक पंडित तब भागिन वकी दुई जने एक जन दुआरी पर ले आओ तो मार दे एक जन के हुआ मार दे।
4: अच्छा कुल कितने पंडित आए थे पूजा के लिए?
6: 3
4: एक जने चले गए दुई का मार दी। फिर बच्चे कितने रहे जो ने जो बंधक बनाए गए?
6: 3 एक लड़का 2 लड़की।
2: हालात बिगड़ता देखकर अब 10 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। ATS और SOG की टीमें पोजीशन ले चुकी थी और बच्चों को सिरफिरे बाप के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन तभी रात के करीब 1 बजे अरविंद ने कथित तौर पर एक गोली चलाई जो उसके 9 साल के इकलौते बेटे शौर्य को लगी और वो लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। बस इसके बाद पुलिस ने पहले स्मोक ग्रेनेड और फिर टियर गैस यानी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, मगर अंदर से अरविंद ने फायरिंग शुरू कर दी और कम से कम 6 राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार पुलिस की गोली से अरविंद की जान चली गई। इसके बाद पुलिस अंदर फंसे 3 बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक 9 साल के बच्चे शौर्य की जान जा चुकी थी।
7: पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी ने अपने बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करवाने का और बच्चों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए समझाने का प्रयास किया। इस समझाइश में जो आरोपी था उसके परिजनों का भी सहयोग लेने का प्रयास किया गया। आरोपी द्वारा पुलिस और परिजनों को गोली मार देने और बच्चों को मार देने की धमकी दी गई और इसी दौरान आरोपी ने अपने बेटे को भी गोली मार दी और गोली की आवाज़ पर पुलिस तुरंत कमरे के अंदर घुसी। वहां पर आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर शुरू कर दी। पुलिस ने उसको चेतावनी दी और हवा में फायरिंग करने के बावजूद जब उसने अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई जिसमें आरोपी घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मृत्यु हो गई है।
4: अरविंद ने अपने 3 बच्चों को बंधक बना लिया। सबसे बड़ा बेटा शौर्य, उसके बाद 5 साल की बेटी और एक 6 महीने की उसकी दूध मुही बेटी भी उसके साथ थी। 2 लड़की और 1 लड़के को परिवार में बंधक बनाने के बाद उसने कमरे में खुद को कैद कर लिया। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर आजमगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब देखा कि आरोपी ने खुद को बंद कर लिया तो उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 8 घंटे तक चला। बच्चों की जिंदगी का सवाल था, लिहाजा मौके पर डीआईजी आजमगढ़, एडीजी जोन वाराणसी तक पहुंच गए। जो कमांडो टीम थी उसको भी बुलाया गया, पूरे घर को घेर लिया गया और इसी बीच में अचानक घर के अंदर से एक गोली की आवाज आई। पुलिस को लगा कि अरविंद हमलावर हो रहा है और इसी बीच में पुलिस ने स्टैंड ग्रेनेड और टीयर गैस का इस्तेमाल करते हुए फोर्स एंट्री कर दी और पुलिस को आता देख अरविंद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में का जवाब देते हुए पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें अरविंद की मौत हो गई। पुलिस की टीमें जब अंदर गई तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। वजह कि अरविंद के साथ साथ उसका बड़ा बेटा भी वहीं पर तड़प रहा था, उसको भी गोली लगी थी। आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां पर दोनों की मौत हो गई।
2: आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आज तक।
1: चार कत्ल और एक एनकाउंटर के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत 2018 में एक और कत्ल से हुई थी। 8 साल पहले ये कत्ल हुआ था अरविंद के भाई का और ये कत्ल खुद अरविंद की पत्नी की वजह से हुआ। जिस दिन अरविंद के भाई का कत्ल हुआ उस दिन वो मंदिर जा रहा था।
2: अब सवाल ये था कि आखिर अरविंद को पूजा पाठ से इतनी सख्त नफरत क्यों थी और आखिर क्यों अरविंद की इस नफरत को जानते हुए भी उसकी माँ और बीवी ने घर में 4 दिनों के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया। तो इस कहानी का कनेक्शन 8 साल पुरानी खून खराबे की एक और वारदात से जुड़ता है। खबरों के मुताबिक उन दिनों अरविंद की पत्नी बबीता का अपने ही एक चचेरे देवर मनीष के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी अरविंद के बड़े भाई सुनील सिंह को हो गई थी। सुनील इसका विरोध करता था। सुनील के कहने पर ही बबीता ने तब अपने कथित प्रेमी मनीष के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था। कहते हैं इसी रेप केस का बदला मनीष और उसके भाई अविनाश ने सुनील की हत्या करके लिया। 2018 में सुनील सिंह की हत्या तब हुई जब वो मंदिर में पूजा करने जा रहा था। बस यही वो दिन था और यही वो वजह थी कि अरविंद को पूजा पाठ से नफरत हो गई। यहाँ तक कि अरविंद उन्हीं दिनों से अपनी पत्नी बबीता को भी नापसंद करने लगा, मगर जिंदगी फिर भी चल रही।
4: जो है घटनाक्रम, ये जो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सुनील सिंह की हत्या कैसे हुई, फिर उसमें एक बलात्कार का भी मामला था, ये क्या कहानी है?
3: उसमें तो मुकदमा जिसे लोगों को सजा हुई है उसमें तो जी
4: 2018 की हत्या से पहले का
3: जी 2015-15 का ये मामला है। तो उसमें वो लोग इनके भाई मुकदमा तो इनकी वाइफ के द्वारा लिखवाया गया था, लेकिन जी लेकिन सब कुछ उसमें उनके बड़े भाई के थे जी। तो मुकदमे के बाद जो है ये लोग कुछ दिन जेल में थे भाई, तो इस मैटर से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है जो कल वाला वाकया हुआ है। उन लोगों का वही बलात्कार वाला और 302 वाला मामला चल रहा है, उसमें सुनवाई चल रही है। अरविंद बिल्कुल जो है हम लोगों से, अपने फैमिली वालों से, जो बहुत खास लोग थे उनसे सबसे दूरी बनाते चले गए और ये पूजा पाठ का विरोध करना शुरू कर दिए।
4: आप लोग चूंकि पुरोहित हैं, कई पीढ़ियों से उसके पुरोहित हैं, तो ये अरविंद ने ऐसा क्यों किया?
5: अब यही तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा किया क्यों और निरर्थक हत्या किया। कोई इसमें रहस्य नहीं है, न हमारी उसकी कोई दुश्मनी थी, न दोस्ती, ऐसी कोई बात नहीं, न खेती बाड़ी का कोई झंझट था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम उसका हमेशा हित ही करते थे।
2: अपने भाई सुनील सिंह की हत्या का अरविंद के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और वो सबसे कटा कटा रहने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्तों से भी मिलना जुलना और बातचीत करना बंद कर दिया। उधर अरविंद के बड़े भाई सुनील के पास जो दो लाइसेंसी हथियार थे, उन हथियारों में से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर अरविंद को मिल गया, जबकि एक हथियार सुनील की पत्नी को मिला। हालांकि सुनील की पत्नी अपने पति की मौत के बाद चार बेटियों को लेकर दिल्ली चली गई और वहीं रहने लगी। अरविंद ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले कभी भी उस लाइसेंसी रिवॉल्वर का दुरुपयोग नहीं किया था, लेकिन ये भी सच है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। यहाँ तक कि उसका इलाज भी चल रहा था। कुछ लोग इसे उस पर अपने भाई का साया होने की बात भी कहते थे।
4: ये अगर लाइसेंसी की बात करें तो ये दो दो लाइसेंस मतलब इनके घर में थे?
3: उन्हीं सुनील के नाम से दो लाइसेंस था। इनके बड़े भाई थोड़ा सा भाई समाज में उठने बैठने वाले थे और उच्च लेवल के अधिकारियों से उनकी पकड़ थी, संबंध था। उनको दो लाइसेंस डीएम साहब ने दिया था। अब जैसे भी दिया था वो तो भाई वही जान सकते हैं। तो दो लाइसेंस था तो दोनों उन्हीं के नाम से था। तो जब वो मरे तो बाद में एक भाई को वरासत हुई और एक उनकी वाइफ को हुई। जी, अरविंद को एक वरासत हुई, एक उनकी वाइफ को हुई,
4: मतलब सुनील सिंह की पत्नी को ट्रांसफर। और एक
3: हाँ जी, अभी इन्होंने शायद डीएम साहब के यहाँ अर्जी लगाई कि हमारी जान को खतरा है, हमारे भाई की मौत हो ही चुकी है, तो डीएम साहब ने बिना कुछ सोचे समझे फाइनल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया।
4: उसी रिवॉल्वर से, जो भाई की रिवॉल्वर थी उसी से घटना हुई?
3: उसी से घटना हुई है। वही रिवॉल्वर अच्छी रिवॉल्वर थी, लंबे रेंज की थी। और लेकिन ये उसका कभी मिसयूज नहीं किया था, पहली बार मिसयूज किया है और इसको देखने से भी नहीं लगता था कि कभी मिसयूज करेगा।
4: क्या ऐसी बात हो गई कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया?
3: अब उसके दिमाग में जो भी चला हो अरविंद के,
4: पूजा बस एक
3: पूजा से मना कर रहा था और बोल रहा था आधार कार्ड दिखाइए आप हमको, नहीं तो आप मेरा कत्ल करने आए हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, पंडित जी लोगों से ही बोला। अब पंडित जी लोकल थे हमारे बगल के, तो उनको लगा कि रोज हमको देखता जानता है, हमारे पर गोली थोड़ी चलाएगा। लेकिन अब उसके मन में था कि ये इनसे हमको खतरा है, तो गोली चलाया।
4: जो भी घर में आता था उसी से खतरा महसूस,
3: जो घर के अंदर जाता था बाहरी आदमी उससे खतरा महसूस करता था, घर वालों से खतरा नहीं महसूस करता था बाहरी आदमी।
2: इन हालात में अरविंद की मां श्यामबाला देवी और पत्नी बबीता ने उसकी बेहतरी के लिए घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाने का फैसला किया और घर में यही पूजा पाठ देखकर अरविंद का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। शनिवार को जब से घर में हवन पूजन की शुरुआत हुई थी वो तभी से इसे रोकने में लगा था। वो पुजारियों को अपने घर से जाने को कह रहा था मगर पुजारी कर्मकांड में लगे रहे। आखिरकार चार दिन गुजरते गुजरते पूर्णाहुति के रोज अरविंद हिंसक हो गया और उसने पुजारियों को पीटने की कोशिश की। इसके बाद जब उसकी पत्नी बबीता ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसने पहली गोली बबीता पर चलाई, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की हत्या हुई थी। फिर इसके बाद तो जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं।
8: पुलिस अधिकारियों से बात कराई और हर बार उसका यही जवाब था कि नहीं, मैं बच्चों को साथ में है और यही मेरे शील्ड है और इसका कोई समझौता नहीं होगा और सुबह देखेंगे, अब आप लोग वापस जाइए। तो एक लिमिट के बाद 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे और फिर हम लोगों ने ये किया कि कम से कम हम लोग घेराबंदी वगैरह करके रखते हैं, कोई बात को भागने की कोशिश करें। फाइनली तैयारी हमारी चली रही थी, उस बीच में अंदर से एक फायर की आवाज आई और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अंदर 3 बच्चे थे और एक फायर का मतलब था कि कितनी भी घटनाएं हो सकती थी। तुरंत स्टन ग्रेनेड और टीयर गैस ग्रेनेड का यूज करके और दरवाजा तोड़कर, डोर बस्टर से दरवाजा तोड़ा गया, तखत से तोड़ा गया और एसएसपी साहब, एसओजी इंचार्ज और एक कांस्टेबल एसओजी का है प्रदीप, 3 लोग अंदर गए और अंदर जाते ही उसने लगातार 4-5 फायर किए और टोटल उसकी 6 राउंड की हुए थे, रिवॉल्वर थी, उसने सारे खाली कर दिए। पुलिस की तरफ से 3-4 राउंड फायर करना पड़ा। उसके बेटे को ऑलरेडी गोली लगी हुई थी, जब अंदर गए तो देखा ऑलरेडी वो घायल था, और उसके 2 बच्चे थे जिसमें से छोटी बच्ची स्लिप होकर उसके हाथ से नीचे गिरी, और जो बड़ी बेटी थी उसको अपने शील्ड के रूप में उसने रख लिया।
4: पुलिस का कहना है कि पूरा मामला मानसिक विक्षिप्त, मानसिक तनाव होने के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक की टीमों के साथ इस मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है जो अरविंद को अपने बड़े भाई सुनील सिंह की मौत के बाद वरासत में ट्रांसफर हुई थी, उसको भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि जब अरविंद मानसिक तौर पर ठीक नहीं था तो उसको आखिर भाई की रिवॉल्वर वरासत में ट्रांसफर क्यों की गई?
2: आजमगढ़ से राजीव कुमार के साथ संतोष शर्मा, आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
11: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
12: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
13: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
14: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
15: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
16: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
10: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। कहा यह देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमला, बरही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव। अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 समूहों के मंत्रियों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर हुई चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV फुटेज आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर ChatGPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया था और उसे वो बाहर लेकर चले गए थे। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जातिसूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया है।
2: IIT बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोड़े की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में ChatGPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गया। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
3: साहिल वाकोड़े IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट है, जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक CCTV फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये CCTV फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये CCTV फुटेज में दिख रहा है। अब ये CCTV फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है, जिससे पुलिस भी प्रूव करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये CCTV फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था IIT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने ChatGPT पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
2: IIT बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब IIT बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ IIT बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
4: IIT पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब IIT पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जाँच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही है, जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
2: आज आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
5: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाकोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाकोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर और एचओडी ने साहिल वाकोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
2: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
6: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित अच्छे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी एससी एसटी की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। एससी एसटी की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा एससी एसटी और 50% से ज्यादा ओबीसी की पदे अभी भी रिक्त है।
2: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
7: कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे कि अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था। कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इनविजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
2: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
8: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा हूँ, शिरीष केदारे और डुल्ला ना
9: डुल्ला
8: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
10: मेरा बच्चा गया है, हा? मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है। और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
2: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला सीसीटीवी सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: इधर दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री के मामले में आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस का जवाब दिया है। जिसमें आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो अपने इस बयान पर कायम है कि वो दिशा से कभी नहीं मिले, उसे नहीं जानते थे और उन्होंने दिशा के पिता के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, उन्हें खारिज कर दिया। लेकिन दिशा के पिता अभी भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी के गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई, जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे और तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सतीश सालियान अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेज चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के 500 करोड़ के मानहानि नोटिस का जवाब देते हुए कहा, ना तो वो अपना बयान वापस लेंगे और ना ही माफी मांगेंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील अंशुमन सिन्हा के जरिए जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सालियान के नोटिस में लगाए गए सभी आरोप, दावे, इशारे, व्याख्याएं और मांगे झूठे हैं, गलतफहमी पर आधारित और तथ्यों कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं है। मेरे वकील आदित्य ठाकरे अपने इस बयान पर पूरी तरह कायम है कि मैं कभी दिशा सालियान से नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। केस की आधिकारिक जांच स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार होनी चाहिए।
1: सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए दो नोटिसेस आदित्य ठाकरे को भेजे थे। एक नोटिस इस बात पे था कि पॉलिटिकल टूल के जैसे, जब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सतीश सालियान को पॉलिटिकल टूल के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बात को लेकर एक नोटिस भेजा गया था। और दूसरा नोटिस इस बात पे था कि आदित्य ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कहा था जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो दिशा सालियान केस है, दिशा सालियान को वो न जानते थे और न कभी संपर्क रखा था। इन दोनों मामलों पर दो दो नोटिसेस भेजे गए थे सतीश सालियान की तरफ से और कहा गया था 500 करोड़ का डेफामेशन का केस फॉलो होगा अगर आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे। अब आदित्य ठाकरे ने सीधे एक अपने जो वकील हैं अंशुमन सिन्हा उनके जरिए एक रिप्लाई भेजा है पहले नोटिस को, जिसमें कि सोशल मीडिया पोस्ट की बात कही गई थी और कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर सतीश सालियान करते हैं तो उसको भी वो पुरजोर जो कानूनी जवाब है वो देंगे और उसमें लीगल रिपरकशंस होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपना सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डिलीट करेंगे और न ही माफी मांगेंगे।
0: इससे पहले दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा था, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोल, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया।
0: सालियान ने अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि उनका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक पार्टियां एक हथियार के तौर पर कर रही हैं।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई।
0: आदित्य ठाकरे पहले भी अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रख चुके हैं। आदित्य ने लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और वहीं विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उस आरोप से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वोट शुद्धिकरण को लेकर हो रहे SIR में चुनाव आयोग के अंदर अगर उठापटक हुई तो क्यों हुई? उद्धव ठाकरे ने भी आज चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
5: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि 3 आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो 2 आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेन दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया। इसलिए दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई है। अब हमारी मांग ये है कि तुरंत ज्ञानेश कुमार को जेल में डालना चाहिए और प्रजातंत्र को बचाना चाहिए।
4: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक टीचर की संघर्ष की कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। 55 साल के जीवन मिठारी नाम के टीचर पहाड़ों पर एक दुर्गम गांव में महज एक छात्रा को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं और जान की बाजी लगाते हैं। वो 13 साल से जंगल से गुजरते हुए जानवरों के खतरों को उठाते हुए अपने मिशन पर लगातार लगे हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर ये टीचर वायरल हो चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि स्वरा बिटिया के डॉक्टर बनने का सपना साकार करना है।

0: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की गगन बावड़ा तहसील का काविलटेक धनगरवाड़ा गांव। यहां न सड़क है न बिजली, सिर्फ घना जंगल और एक छोटा सा जिला परिषद स्कूल। 1974 में शुरू हुए इस स्कूल में कभी 50-70 बच्चों का शोर सुनाई देता था, लेकिन अब यहां सिर्फ एक छात्रा है, 8 साल की स्वरा बोर्ड की। लेकिन सिर्फ इस छात्रा को पढ़ाने के लिए 55 साल के शिक्षक जीवन मिठारी रोज सुबह घर से 50 किलोमीटर से ज्यादा की संघर्ष भरी यात्रा पर निकलते हैं। आखिरी के 2.5 किलोमीटर का सफर पैदल घने जंगलों से गुजरते हुए तेंदुए जैसे जंगली जानवरों से निपटने के लिए हाथ में डंडा, जंगली और पहाड़ी इलाकों में पैरों की सुरक्षा के लिए स्पेशल बूट का सहारा।
1: कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा तहसील में धुंदौड़े जो गांव है, यहाँ जो स्कूल है वह स्कूल है जो जंगल इलाके में रहता है। करीब यहाँ के जो मिठारी सर है उनको करीब घर से यहाँ तक आने के लिए 28 किलोमीटर का सफर रोजाना तय करना पड़ता है पहुँचने में, और जंगल का सफर रहता है वो आना जाना करीब 5 किलोमीटर का दूर रहता है। यही गांव के सरपंच हैं, उनकी क्या राय है इस स्कूल के बारे में, और जो सफ़र करते हैं टीचर है वो भी उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि उनको रोज़ाना जो लगता है उनका जो हाथ में डंडा आप देख रहे हैं, पैर में बूट देख रहे हैं, और ये डंडे का सहारा लेकर वो हर रोज स्कूल में पहुंचते हैं।
0: जंगली जानवरों की वजह से यहाँ वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाए हैं। वन विभाग की सलाह है कि कोई पैदल रास्ते में रुके ना, लेकिन जुनून की जिद ऐसी कि जीवन मिठारी नाम के टीचर कहते हैं कि अगर दुर्गम इलाके में रहने वाली ये बच्ची पढ़ लिख कर देश की सेवा कर सके तो उन्हें इससे बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। 13 साल से धुन के पक्के ये टीचर रोज अपने घर से निकल पड़ते हैं सिर्फ एक बच्ची को पढ़ाने के लिए।
1: रोजाना वो 28 किलोमीटर आना और 28 किलोमीटर जाना ऐसा उनका तय होता है। यहाँ तक उन्होंने अपने मोटरसाइकिल से आए, लेकिन जो जंगल का सफ़र है क्योंकि जंगली इलाके में स्कूल बसा हुआ है जो जिला परिषद का है, और वहाँ पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ही छात्र है। सर यहाँ अक्सर ऐसे दंडे लेकर और जो पैर में जो बूट है उनका उसका सेप लेकर यहाँ जंगल इलाके से गुजरते हैं। सर हर रोज़ ऐसा तय होता है?
2: हर रोज़ का ऐसा ही तय होता है सर।
1: कितने साल से आपके ये
2: यहाँ? 2013 से आज तक हूँ, और ये 13 बरस हो गए पूरे मैं यहाँ काम करता हूँ।
1: 13 बरस हो गए अभी एक ही छात्र यहाँ पे होती है?
2: छात्र 2000 से जो यहाँ से स्थलांतरित लोग हुए वहाँ उस तारीख से देखे तो यहाँ छात्र की संख्या 2-3-1 ऐसी होती है।
0: पढ़ाते तो लाखों टीचर हैं लेकिन पढ़ाने का ऐसा समर्पण कम ही देखने को मिलता है। जीवन मिठारी जैसे टीचर अगर अपनी जान पर खेलकर एक छात्रा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो स्वरा बोर्ड के जैसी छात्रा का भविष्य संवरने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ऐसा 5 किलोमीटर का जंगल का सफर वो तय करके पैदल चल के यहाँ तक पहुँचते हैं। अभी स्कूल में देखिए तो पूरा ये स्कूल का इलाका देखिए, और बात करते हैं कि सर से। सर एक ही छात्र है, कितने साल से आप पढ़ाई कर देते हैं उसको?
2: यहाँ मैं अध्यापक ये काम मैं यहाँ 13 बरस हुए मैं करता हूँ, 13 बरस से कर रहा हूँ, 2013 से आज 2026 तक मैं करते आया हूँ।
1: इससे पहले बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट थे?
2: हाँ यहाँ पे 35 तक स्टूडेंट थे, और जो स्टूडेंट थे वहाँ तब यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ 100 फैमिलीज यहाँ पे रहती थी।
0: स्वरा का सपना है बिटिया बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि दुर्गम इलाकों में रहने वालों के लिए डॉक्टर भगवान से कम नहीं होते।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
3: आई एम सवादक रुबोडिके, माय विलेज नेम इज कावलटेक धुंदौड़े धनगरवाड़ा, आई एम 8 ईयर ओल्ड।
0: जीवन मिठारी पहले कोल्हापुर जिला प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक में अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने खुद चुनौती स्वीकार कर ये दुर्गम स्कूल चुना। वो मई 2029 में रिटायर होंगे, लेकिन उनका संकल्प है कि नौकरी के आखिरी दिन तक रोज उनका ये संघर्ष जारी रहेगा।
1: आप आगे में जाके क्या बनना चाहते हैं, क्या आप आगे में होना चाहते हैं? इतनी पढ़ाई करके बड़े होते हैं ना, तब क्या बनेगी?
3: डॉक्टर।
1: डॉक्टर बनना है आपको? इसकी पढ़ाई अभी कर रहे हैं। सर अच्छी तरह से सिखाते हैं आपको? पूरा खुश है आप? सर चांगले शिकवतात का तुला?
3: चांगले शिकवतात।
1: हो देखे तो ये सोरा है, इसकी आगे जाके जो बात कही है उन्होंने, उसको डॉक्टर बनना है। जो बचपन का जो क्लास रहता है वो सर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि अपने गांव से जैसे जो उनका घर है सर जी का, मिठारी सर का, वो कड़े कोल्हापुर के, वहाँ से वो रोज़ाना 28 किलोमीटर आना और 28 किलोमीटर वापिस जाना। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर आज तक।
4: दक्षिण मुंबई में स्थापित अखिल चंदनवाड़ी गणेशोत्सव मंडल गॉड गणपति के नाम से मशहूर है और इस बार बप्पा की थीम है केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर। बप्पा की ऊंचाई है 28 फीट की और गणपति बप्पा नंदी पर सवार हैं। इसके साथ ही यहां श्रद्धालु बार है ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर रहे हैं। यहां मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालु गणेश जी को चीनी चढ़ाते हैं।
5: इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्रिम्बकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं। आखिर क्यों गोड़ गणपति के नाम से मशहूर हैं? आखिर क्यों हर किसी के मोबाइल पे बप्पा की तस्वीरें, बप्पा के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं।
6: पांच पांडव सब युद्ध होने के बाद जा रहे थे, जब ये शंकर को ढूंढने गए।

0: पर विराजमान है गणपति बप्पा। नहीं तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। कितना कितना साल हो गया मंडल को?
1: 49।
0: अच्छा, तो इस बार क्या खास है जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु उनके लिए क्या खास है?
2: केदारनाथ का दर्शन ही है अपने 12 ज्योतिर्लिंग है।
0: अच्छा, फिर से एक बार सुशाल काय गणपति बप्पा का आप दर्शन करें जो इस समय नंदी पर विराजमान है। गोड़ गणपति के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं इस समय मौजूद हूँ अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल में, जो इस समय अपना 49 ईयर्स मना रहा है। और देखिए किस तरीके से लोग बड़े श्रद्धालु में हुए होते हैं। घंटी बजाई जा रही है, अगरबत्ती जलाई जा रही है, बप्पा से वो सारी चीजें मांगी जा रही है जो वो चाहते हैं। और वाकई में बेसब्री से इंतजार होता है गणपति बप्पा के आगमन का। लेकिन अब समय आ चला है उनके विसर्जन का और बहुत ही मायूसी लोगों के चेहरे पे देखी जा रही है। लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये भी है कि गणपति बप्पा जाएंगे नहीं तो वापस अगले साल आएंगे कैसे। वो कहते ना कि गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, आज तक मुंबई।
3: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: वहीं गिरगांव का राजा के दरबार में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार चर्चा का विषय है बप्पा के सिर पर बंधी हुई देश की सबसे बड़ी पगड़ी। इसकी लंबाई है 6 फीट और चौड़ाई है 5 फीट। बप्पा के दरबार की थीम है द्वारिकाधीश और इस गणेश मंडल की तारीफ साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी, क्योंकि बप्पा को मिट्टी से बनाया जाता है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गिरगांव के राजा के दरबार में और सबसे पहले आप बप्पा के यहां का दर्शन करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं, वायरल हैं। हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहां पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहां पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूं तो इनकी तरह हूं।
3: हम लोग खुद बहुत सोचते हैं, हमको भी बहुत दुख होता है गणपति जब भी विसर्जन के लिए निकलता है, तो जैसा आपको मालूम है कि गणपति खुद थोड़ा नर्वस में जाते हैं विसर्जन के लिए और हमारे भी आंखों में से पानी आता है कि गणपति अभी विसर्जन पे आ गए, हम लोग जल्दी से उसको वापिस बोलते जल्दी वापिस आपको आना है और हमारे दरबार में विराजमान होना है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल। गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया ये कहते हैं, आपके भी आंखों में पानी आ गया थोड़ा भी?
4: जी हाँ जी हाँ। देखिए कैसे है कि इतने साल भर मेहनत करने के बाद 10 दिन बप्पा अपने साथ में रहते हैं और उसको विदा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लाखों भक्तों का श्रद्धा
2: लग जाता है, एक मन लग जाता है,
4: लगाव लग जाता है और लाखों भक्तों का श्रद्धा स्थान है गिरगांव का राजा। और ये जिम्मेदारी है मंडल की कि ये उत्सव अच्छे से अच्छा हो और उसी उत्सव में कार्यकर्ता बिजी रहते हैं, यानी वो सब करने में और पता ही नहीं चल जाता कि 10 दिन कहाँ पे चले गए।
2: वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, आज तक मुंबई।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माना नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई।
2: कुछ किसी को भी काट सकता है।

चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव। अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट आने के बाद से अब आयोग की सफाई। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। अलग अलग टिप्पणियों को आयोग ने बताया सामान्य, कहा पिछले एक साल में हुए सम्मति से निर्णय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर को लेकर दोनों ही आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई। फॉर्म 6 को लेकर भी मतभेद नजर आए। आयोग के सूत्रों के सिस्टम से केंद्रीय हस्तक्षेप का इनकार, कहा पूरे देश के लिए एक सिस्टम है, सभी ईआरओ क्या डेटा फीड करते रहे। चुनाव आयोग पर मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर सियासत भी तेज हुई है। राहुल गांधी बोले वोट चोरी राजद्रोह का मामला है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की है। उद्धव गुट बोला इस्तीफा दें ज्ञानेश। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल के चुनावों को रद्द करने की मांग की। उद्धव गुट ने समर्थन किया। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, समित पात्रा बोले बिना ज्ञानेश कुमार के तीन लोकसभा के चुनाव। बीजेपी ने कांग्रेस राज की दिलाई याद, कहा कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी ने 27 के चुनावों से पहले अपनी टीम का विस्तार किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान। अनिल बलूनी बने हैं बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। संजय भाटिया को राजस्थान और विप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। गयाराम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी। यूपी के लिए बीजेपी का अलग प्लान, 4 नए सह प्रभारी नियुक्त किए गए। एसपी और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी नेता संगीत सोम का निशाना, बोले सीट नहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ तंज बोले अखिलेश राज में चोरी हो जाते थे भैंसे। अयोध्या में बुलडोजर एक्शन को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले सरकार जानती है सिर्फ तोड़ना। मायावती ने फिर से चौंकाया, छोटे भतीजे ईशान आनंद को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। सहारनपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दलित कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर खाना खाया। रविदास मंदिर में पूजा अर्चना भी की। घी को लेकर रामदेव और ब्रिजभूषण के बीच खत्म हुआ विवाद। ब्रिजभूषण से मुलाकात के बाद बोले रामदेव मेरा कोई सामान नकली नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट पर बवाल, बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी के सीएम मोहन यादव को चिट्ठी, प्रधानमंत्री ने ओबीसी छात्रों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के लातूर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखा पीड़ित खेतों का जायजा लिया। किसानों से रोते हुए अपनी तकलीफें उन्हें बताई। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा रद्द हुई, अभ्यर्थियों की मांग पर चुनाव आयोग का फैसला। जमुई में आरोपी हरे राम यादव की पेशी, कोर्ट परिसर में वकील ने थप्पड़ मारा। आईआईटी बॉम्बे सुइसाइड मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को बॉम्बे आईआईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया। मैनेजमेंट ने 10 मेंबर्स के पैनल का भी गठन किया। एक हफ्ते में रिपोर्ट देगा पैनल। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन किया। मृतक साहिल के पिता ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी, बोले अगर दुल्ला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। जोधपुर एम्स में डॉक्टर के सुइसाइड पर विरोध प्रदर्शन, डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग। कालकाजी में नाबालिग से हुए हैवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया, पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए छात्र, सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कालकाजी गैंगरेप को लेकर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर के साथ चर्चा। दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान बनेगी, पिंक फोर्स संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग होगी। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में दुर्गा ईविया ऑटो योजना को मंजूरी। आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, मर्डर करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्नी बेटे और दो पुजारी समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले संघ की आरोपी का एनकाउंटर किया गया। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को 3 बच्चों के साथ घर के अंदर कैद कर लिया था। सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। संघ के आरोपी ने अपने 10 साल के बेटे को भी गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने फोर्स एंट्री की। अरविंद सिंह ने पीड़ित से मांगा था आधार कार्ड, इसी बात को लेकर बढ़ गया था विवाद। बरेली में पंचायत का तालिबानी फरमान, रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित लड़की से शादी करने का आदेश। वाराणसी में नशे में तालाब पार करते समय शर्त जीतने के चक्कर में युवक की जान चली गई, डूबकर मौत हुई, अस्पताल में हंगामा। यूपी के सीतापुर में गणेश पूजा पंडाल पर बरसात के चलते छज्जा गिरा, एक महिला की मौत हुई, 8 घायल। मुरादाबाद में वनस्पति घी से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, सड़क पर बिखरे घी की मच गई थी लूट, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों की चोरी, 2 आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के बाद पकड़ी गई विदेशी शराब की खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
कोडरमा में तीन नाबालिगों को अश्लील हरकत करते समय ग्रामीणों ने पकड़ा था, खंभे से बांधकर पिटाई कर डाली, पुलिस जांच में जुटी। माकुरा में तीन नक्सलियों ने किया सरेंडर, रिहैबिलिटेशन नीति पर भरोसा जताते हुए छोड़ा गया। गुजरात के खेड़ा में बड़ी वारदात नाकाम हुई, एनआरआई के मकान में डकैती की कोशिश में चार बदमाशों की गिरफ्तारी। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग से रेप, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को उड़ाया, बोनट पर लटके हुए युवक की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। तिरुपति में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा से 60 ग्राम सोना चोरी, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई, तलाश जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चाकू से कूदकर टोल कर्मचारी की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। संगरूर में ऐसी बच्चों के दाखिलों की जांच में बड़ा खुलासा, स्कूल के स्टोर से मिली दर्जनों नई यूनिफॉर्म और किताबें। प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी भर्ती की पुरानी नियमावली की मांग पर बवाल, छात्रों और पुलिस में झड़प हुई। एमपी के सागर में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी मनीष लोधी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली किया गिरफ्तार। मोतिहारी में एक पुलिसकर्मी पर बहन को सर्विस पिस्टल से गोली मारने का आरोप है, बाद में पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मारी। कर्नाटक के उडुपी में शख्स को बेरहमी से उतारा गया मौत के घाट, शव के 9 टुकड़े मिले, पत्नी बेटा लापता। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आरोपों में पैर में गोली लगी, दो आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में भोजपुरी गाने पर रिलीज बनाने को लेकर दो बहुएं आपस में ही भिड़ गईं, जमकर मारपीट। झारखंड के पलामू में कर्मा पूजा विसर्जन के दौरान 6 बच्चों की डूबने से मौत की खबर, इलाके में हड़कंप। पटना में पुलिसकर्मी के नाले में शव मिला, रात भर नाले में पड़ा रहा शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। असम के बोकाखाट में 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां बरामद की गई, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के बीकानेर में युद्ध अभ्यास 2026 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर की दमदार एंट्री, भारत अमेरिका की संयुक्त तैयारियां। फिर लौटा लकी अली का दौर, फिल्म दृश्यम 3 के गाने को दिया आवाज, रिलीज हुआ मुस्कुरा दो गाने का टीजर। फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी, लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही फिल्म अगले साल अलग अलग 5 भाषाओं में रिलीज होगी। एक्टर वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज किया गया, फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर रिलीज किया गया, कॉलेज स्टूडेंट्स पर आधारित है ये फिल्म। राजस्थानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म धूड़ का मोशन पिक्चर जारी किया गया, 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 49 किलो कैटेगरी में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में मीराबाई का पहला मेडल। इस जीत के साथ चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा, 1998 में कर्ण मल्लेश्वरी के सिल्वर मेडल जीतने के बाद से ये दूसरा मेडल है। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस ने भी भारत के लिए खुशखबरी दी, पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने ब्रॉन्ज जीता। भारत ने महिला स्कीट टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, रजिया ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान और परिनास की तिकड़ी ने किया 331 का स्कोर। भारत की पुरुष की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, नरुवा फाइनल में अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेग की जीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशन के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सर्वनाश की खुली चेतावनी दी, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका की ही सरजमी से उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि तुमने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक और ताकत से हम पर हमला किया, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। ट्रंप की धमकी के सामने ईरान ने अपनी लकीर खींच दी है और कहा कि वो सिर्फ अपनी आजादी और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक टकराने को तैयार हैं।
1: They martyred, assassinated our scientists, our men, women and children. Innocent children whom in truth had committed no crimes, no sins. Those who are terrorists and train and protect terrorists describe us as such. We have only defended ourselves. We are not terrorists.
0: आपने देखा, एक शख्स उठकर जा रहा था। दरअसल अमेरिका का जो प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस की सभा में बैठा हुआ था, जहां पर बोल रहे थे ईरान के राष्ट्रपति, वो वहां से उठा और चल गया क्योंकि वो आईना दिखा रहे थे आज ईरान के राष्ट्रपति। बहरहाल, यूएन महासभा के मंच से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बार फिर वही किया जिसकी आशंका थी। एर्दोगान ने फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया है, लेकिन उसका भाषण उनका सुनकर ऐसा लगा जैसे वो तुर्की के राष्ट्रपति नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हो या फिर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ का पर्चा पढ़ रहे हो। सवाल यह है कि जिस मुद्दे से तुर्की का कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें एर्दोगान टांग क्यों अड़ा रहे हैं? क्या वो भारत की सारी मदद भूल चुके हैं? अगली खबर, 11 साल बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे हैं, जहां उनका स्वागत खुद ट्रंप एयरपोर्ट पर जाकर करने वाले हैं। सवाल है कि आखिर ट्रंप ने शी जिनपिंग के लिए ये खास रेड कार्पेट क्यों बिछाया है? एक तरफ नवंबर में खत्म हो रही ट्रेड डील को बढ़ाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ एआई टेक्नोलॉजी की रेस और ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव। दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर ईरान संकट को लेकर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, यानी इस रेड कार्पेट के पीछे सिर्फ कूटनीतिक दिखावा नहीं बल्कि भारी भरकम सौदेबाजी का मंच तैयार हो चुका है। आज आपको बताएंगे कि क्या चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त, जो दो चुनाव आयुक्त हैं, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 14 बार, 10 महीने के अंदर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं। विपक्ष इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग इस फैसलों को, इसे अगर आप देखें तो इसे फैसलों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया अपनी तरफ से बता रहा है। अगली खबर जमुई कांड को लेकर है, जिसमें एक बड़ी खबर है। इस शर्मनाक घटना को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है। नाबालिग से बदसलूकी के आरोपी हरेराम यादव की आज कोर्ट में पेशी की गई है। इस दौरान पुलिस कस्टडी में जा रहे आरोपी हरेराम यादव को एक वकील ने ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां एक ही आंगन में 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। जिस घर में मंत्र गूंज रहे थे, वहां अचानक गोलियों की आवाज, चीख पुकार मच गई। घर के ही मुखिया अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी, 2 पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी आरोपों के मुताबिक, और 3 मासूम बच्चों को भी आरोप है कि उन्होंने बंधक बना लिया। अब पुलिस का कहना है कि उसने बाद में अपने बेटे को भी गोली मार दी और जवाबी फायरिंग में उसे भी गोली लग गई जिसमें दोनों की मौत हो गई। आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। मौका था 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म कलाकारों को कहा कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का प्रचार ना करें, क्योंकि असली स्टार वही है जो समाज में रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं।
2: जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए अंधेरे नहीं।
0: इधर राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में देर रात भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर चला। मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र का है जहां सड़क चौड़ी करने के लिए मदीना मस्जिद समेत आसपास के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मस्जिद गिराए जाने की खबर फैलते ही मौके पर हंगामा हुआ। AIMIM के नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि इसे सहारनपुर पार्ट 2 नहीं बनने देंगे। अगली खबर आपके लिए एक जरूरी खबर। 28 से 30 सितंबर यानी सोमवार से बुधवार तक देशभर में बैंक कर्मचारियों की 3 दिन की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। बैंक लगातार लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि वो इससे पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें। लेकिन इस बीच RBI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस रविवार को भी बैंक खुले रखने का आदेश दे दिया है, जिससे लोग बैंक जाकर कैश निकालना हो, चेक जमा करना हो, KYC जैसा अपना कोई भी जो उनका काम है वो नहीं रुके, वो काम पहले निपटा लें। और अगली खबर, IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के केस में एक मोड़ आ गया है। इस मामले में छात्र साहिल और परीक्षा हॉल का CCTV वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में साहिल परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। आरोप था कि मोबाइल फोन पर साहिल एग्जाम पेपर को ChatGPT पर अपलोड कर रहे थे और इसी दौरान टीचर ने उन्हें देख लिया। इस CCTV वीडियो में साहिल मोबाइल फोन के साथ दिख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के कहने पर वो मोबाइल फोन उन्हें दे देता है। CCTV में दिखाई देता है कि जैसे ही प्रोफेसर डुल्ला ने साहिल को मोबाइल का इस्तेमाल करते देखा वो तुरंत उनके पास पहुंचे। फुटेज के अंत में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर डुल्ला साहिल को परीक्षा हॉल से बाहर ले जा रहे हैं।

0: शुरुआत करते हैं। यूएन का मंच ईरान और अमेरिका के लिए जंग का एक नया मैदान बन गया है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वनाश की बात कही थी। आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका से उसी के देश में अमेरिका को ही खरी खोटी सुनाई। यूएन में अपने 18 मिनट के संबोधन में पहले शब्द से आखिरी शब्द तक ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को ताकत का दुरुपयोग बताया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही डोनाल्ड ट्रंप की उन शब्दों से जिसमें ईरान को आतंकी देश कहा गया था। मसूद पेजेशकियान ने अपनी संबोधन में कहा कि कल उनके देश को आतंकी देश कहा गया, लेकिन वो आतंकी देश नहीं बल्कि आतंक से पीड़ित देश है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर के साथ की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बताया कि अमेरिका और इसराइल ने बिना किसी वजह से उनके सुप्रीम लीडर को मार डाला। इसके बाद मसूद पेजेशकियान ने मिनाब स्कूल के उन बच्चियों की तस्वीरें दिखाई और कहा कि अमेरिका ने इन मासूम बच्चों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने इन बच्चों की कब्र की तस्वीरें भी दिखाई और पूछा कि इनकी क्या गलती थी बावजूद इसके बमबारी की और अमेरिका की वजह से इन बच्चियों की जान चली गई, इन्हें मार दिया गया। इसके बाद उन्होंने लामर्ट स्पोर्ट्स हॉल पर हुए हमले की तस्वीरें दिखाई और कहा कि अमेरिका और इसराइल ने उनके स्कूल, हॉस्पिटल, रिहायशी इमारतों पर हमला किया जिसमें ऐसे लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। देखिए,
1: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: मसूद पेजेशकियान ने जो पहली तस्वीरें दिखाई वो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की थी, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। 28 फरवरी को हुए हमले में खामनेई की मौत हुई थी, वो मारे गए थे। उनके साथ उनकी बेटी, पोती, बहू, दामाद भी इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा इस हमले में ईरान के कुछ बड़े अधिकारी भी मारे गए थे। दूसरी तस्वीरें ईरान के मिनाब स्कूल की हैं जहां पर अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल से हमला किया गया था और इस हमले में 175 लोग मारे गए थे जिसमें ज्यादातर 7 से 12 साल के बच्चे थे। इसी दिन लामर्ट स्पोर्ट्स हॉल पर भी हमला हुआ था और इस हमले में 21 लोग मारे गए थे जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। इन तस्वीरों को दिखाकर ईरानी राष्ट्रपति ने दुनिया को बताया कि वो ऐसे देश आते हैं जहां के लीडर्स को ऐसे देश से आते हैं जहां के लीडर्स को मार दिया गया, स्कूलों पर बम गिराए गए। मसूद पेजेशकियान ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो हमें आतंकी कहा जा रहा है जबकि हम खुद की सुरक्षा कर रहे हैं और इसके लिए ईरान को किसी की अनुमति नहीं चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। सुनिए,
1: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
0: तो वो तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं उन तस्वीरों में जो उसके बाद आई थी। अमेरिका के खिलाफ मसूद पेजेशकियान के तेवर इतने कड़क थे कि यूएन में अमेरिका के राजदूत डैन नेग्रिया उनके संबोधन को 3 मिनट से ज्यादा सुन ही नहीं पाए। जैसे ही मसूद पेजेशकियान ने अमेरिकी हमलों में मारी गई बच्चियों की तस्वीरें दिखानी शुरू की, वैसे ही डैन नेग्रिया जो है ये देखिए उठे, अपने फाइल्स समेटे और वहां से निकल पड़े। इन तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के राष्ट्रपति कितने भड़के हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी को लेकर मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश ऐसे लोगों की आवाजाही को रोकता रहेगा जो ईरान के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया, ईरान पर युद्ध थोपा गया है, वो अंत समय तक लड़ते रहेंगे।
1: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है, न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जांच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है, यही असली विडंबना है।
0: कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन के इसी मंच से ईरान को सधे हुए शब्दों में दरअसल बड़ी धमकियां दी थी। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जोर देकर कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना था कि अमेरिका उसे कभी भी परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देगा। अब ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया एकदम साफ है। वो ईरान के साथ समझौता तो चाहते हैं लेकिन वो ये भी कह रहा है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन के मंच से ईरान को दो रास्ते बताए। पहला, ईरान अमेरिका से समझौता कर ले, और दूसरा, अमेरिकी सेना ईरान का सर्वनाश कर दे। ईरान को धमकाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कोताही नहीं बरती। उनका कहना था कि ईरान को बर्बाद करने से पहले उन्हें बचने का मौका जरूर देना चाहिए और अमेरिका उसे अभी यही मौका दे रहा है। सुनिए।
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
0: Strait of Hormuz में जहाजों के सुरक्षित ट्रांसिट को लेकर अभी भी ईरान और अमेरिकी सेनाओं के बीच जंग चल रही है, और हमने आपको दिखाया ही कैसे यूएनजीए का मंच डोनाल्ड ट्रंप और पेजेश्कियान के लिए एक दूसरे पर फूट पड़ने का एक मंच बन गया है। देखिए, अगर आप देखिए तो अमेरिकी सेना ने प्रतिदिन 10 से 14 जहाजों को ही हॉर्मुज से सुरक्षित निकाल पाने में वो इस वक्त सफल हो रहे हैं। ईरान उसके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हॉर्मुज में। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी सेना ने ईरान पर सैन्य दबाव बनाया हुआ है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर आर्थिक दबाव बना दे ताकि वो समझौता करने को तैयार हो जाए और कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित आने जाने दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान फिलहाल समझौता नहीं करना चाहेगा, वो कम से कम अमेरिका के मिड टर्म चुनाव का इंतजार करेगा और उसके बाद बातचीत के लिए आएगा।
2: But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running. I did that already and won in a landslide. We won in a giant landslide. And I'll be here for 2.5 years. The Republican Party is running and I'll be helping them. But I am not running. I gave absolutely no credence and will not give credence to the election when it comes to Iran. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
0: United Nations के मंच से भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बर्बाद करने की बातें कह दी हों, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सुलह की बातचीत की खबरें भी आई हैं। अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें सुलह के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई है। दावा है कि यह बातचीत कतर के मध्यस्थों के जरिए हुई है और इस बातचीत को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आया है कि इस बातचीत से हल क्या निकला, लेकिन इतना जरूर है कि इस बातचीत के बाद ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा बदल गया है। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सामान्य और बिना टोल वाली आवाजाही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को प्रोडक्टिव बताया है। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में ईरान ने समझौते से पहले कुछ शर्तें रखी हैं और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को अमेरिकी सेना की कार्रवाई से जोड़ा है। पहली शर्त, अमेरिकी सेना द्वारा लगाई गई नाकेबंदी हटाई जाए। दूसरी शर्त, ईरान की जितनी भी संपत्तियां फ्रीज की हुई है अमेरिका ने, उसको लौटाया जाए और डिफ्रीज किया जाए। और तीसरी शर्त, ईरान पर अमेरिका के हमले बंद हो। अब ईरान का कहना है कि अगर इन शर्तों को मान गया तो हॉर्मुज तुरंत खोला जा सकता है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका बस ये शर्तें मान ले। रॉयटर्स ने ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों से नाकेबंदी खत्म करती है तो ईरान 7 दिनों के अंदर हॉर्मुज को खोल सकता है। हालांकि किसी तरह के समझौते की बात अभी सामने नहीं आई है।
2: स्टीव एंड जेरेड हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद मीडिएटर्स ऑफ ईरान, मेरली मीडिएटर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। दे हैव बीन मीडिएटिंग फॉर अ व्हाइल, बट आई थिंक देयर इज a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: United Nations में Donald Trump के भाषण के बाद ईरान की लेगो वीडियोस बनाने वाली जो टीम है, एक्सप्लोसिव मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। अपने वीडियो में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने वाले एक कार्टून कैरेक्टर पिनोकियो की तरह दिखाया है। अगर आपको पिनोकियो की कहानी याद हो तो आपको पता होगा कि जब भी पिनोकियो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। अब एक्सप्लोसिव मीडिया टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को पिनोकियो बता दिया है। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर की नाक को लंबा होते दिखाया गया है कि जब जब वो झूठ बोल रहे थे उनकी नाक लंबी हो रही थी। वैसे ईरान पर बरसने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फेवर में एक बात कह दी है। यूएन महासभा में संबोधन के बाद उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और मिडिल ईस्ट के देशों के प्रतिनिधियों से वो मिले थे। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट को अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन रास्तों से दूर ले जाने की जरूरत है जो ईरान के टारगेट पर रहते हैं। इसी मीटिंग में उन्होंने ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर किए गए हमलों का भी जिक्र करके चिंता जताई और इसी वजह से उन्होंने इस मीटिंग में आईएमईए का समर्थन किया है। आईएमईए यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। साल 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने इसे एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया था। इस पहल की प्रस्ताव पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने हस्ताक्षर किए थे। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसमें 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाने की बात कही गई है, जिसमें एक होगा ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा होगा नदर्न कॉरिडोर। इसका मकसद है एशिया, मिडिल ईस्ट जो खाड़ी के देश हैं, यूरोप, उनके बीच व्यापार का एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना ताकि वैश्विक व्यापार को बढ़ाया जा सके और हॉर्मूज है या कोई भी स्ट्रेट जिसको कोई भी बंद कर सकता है उससे अलग किया जा सके। अब हम आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये एशिया को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक कैसे जोड़ेगा। आईएमएक का रूट कुछ इस तरह से होगा। पहला रूट होगा ईस्टर्न यानी पूर्वी कॉरिडोर। ये भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होगा, जहां से व्यापारी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यूएई के जबल अली पहुंचेंगे और फिर यहां से रेल मार्ग के जरिए सामान सऊदी अरब के हरद शहर पहुंचेगा। फिर ये रियाद से होते हुए सीमावर्ती शहर अल हदीथा पहुंचेगा। सऊदी अरब का अल हदीथा जॉर्डन की सीमा पर है, इसलिए सामान का कार्गो जॉर्डन से होते हुए इसराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा। हाइफा के बाद आईएमएक का नदन यानी उत्तरी कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, जिसमें सामान फिर से व्यापारी जहाजों के जरिए ग्रीस, इटली, फ्रांस और फिर जर्मनी तक जाएगा। तो इस तरह से आईएमएक एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का एक व्यापारिक कॉरिडोर बनेगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा और इसमें शामिल सभी देशों को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आईएमएक का समर्थन यूरोपीय देशों के दबाव का नतीजा भी हो सकता है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ है और इसका बुरा असर यूरोपीय देशों पर दिखा है। यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि हॉर्मुज पर ईरान के प्रभाव को खत्म करने के लिए अलग रास्तों को सोचने की जरूरत है। इससे कच्चे तेल के व्यापार मार्ग पर ईरान का कि जो दबंगई है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी।
2: Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the
3: India, Middle East, Europe Economic Corridor, and other places of the form of getting oil out, whether it's pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for decades. This has gone on for decades.
0: यूएन महासभा अमेरिका और ईरान के लिए जंग का नया मैदान है और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए उनके प्रोपेगेंडा के प्रचार का माध्यम भी है। कल यूएन के मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को बोलने का मौका मिला। उनके भाषण से ऐसा लगा जैसे वो पाकिस्तान द्वारा लिखा हुआ कोई पर्चा पढ़ रहे हैं। लगातार दो साल से तुर्की के राष्ट्रपति यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन तुर्की या किसी अन्य देश का इसमें घुसना बेगानी शादी में दीवाना होने वाली कहावत को सिद्ध करता है। यूएन में एर्दोगान ने कहा है कि दक्षिण एशिया के विवादों को बातचीत के जरिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दायरे में रहकर सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। देखा जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति गलत नहीं कह रहे हैं, भारत भी चाहता है कश्मीर मुद्दे का हल हो, लेकिन इसके लिए एर्दोगान को अपने दोस्त पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा। लेकिन आतंकवाद की फैक्ट्री पर एर्दोगान का मुंह बंद हो जाता है। उसे बताना पड़ेगा कि पीओके को तुरंत प्रभाव से भारत के हवाले कर दे पाकिस्तान। हाँ, अगर एर्दोगान में इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान को बोल के दिखाएं कि पीओके दे दो इंडिया को, नहीं तो तुर्की भी भारत को रोक नहीं पाएगा। रही बात भारत के कश्मीर की, तो एर्दोगान उसकी चिंता छोड़कर अपने देश और वहां के मुद्दों की चिंता करें, और अगर कश्मीर से इतना ही प्यार है तो तुरंत पीओके जाएं, वहां मारे जा रहे लोगों के परिवारों से मिलें, फिर अपने दोस्त शहबाज और मुनीर से सवाल जवाब करें। हम आपको सुनवाते हैं कि एर्दोगान ने पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के मुद्दे को किस तरह से यूएन में फिर से घसीटा है।
4: साउथ एशिया,
1: दक्षिण एशिया में ये जरूरी है कि कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए किया जाए।
0: मजेदार बात तो यह है कि पीओके में आम नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले शहबाज शरीफ उस वक्त यूएन महासभा में मौजूद थे और वो एर्दोगान के मुंह से अपनी लिखी हुई लाइन सुनकर जरूर खुश हुए होंगे। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास खुशी के मौके बहुत कम होते हैं, इसलिए उनको दूसरों के मुंह से अपना प्रोपेगेंडा सुनना बहुत पसंद है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता दिया, लेकिन अभी तक ऐसा माना जाता है कि तुर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब भी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई देश इधर उधर की बेकार बातें करता है तो भारत उस पर अपने नाराजगी जाहिर करता है। भारत लगातार कहता आया है कि पीओके समेत जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका देश का अभिन्न अंग है। भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे पर साल 1972 के शिमला समझौते के तहत शांतिपूर्ण सीधी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तुर्की ने पाकिस्तान से अपनी गहरी दोस्ती का सबूत दिया है, कश्मीर के मुद्दे को जानबूझकर यूएन में अपने भाषणों में शामिल किया है। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो दुनिया उसे गंभीरता से लेगी, लेकिन सच यह है कि तुर्की की यह कोशिश कई बार नाकाम हो चुकी है और दुनिया भर के देश ना तुर्की को गंभीरता से लेते हैं और ना एर्दोगान के कश्मीर मुद्दे पर की गई बातों को। साल 2017 में जब एर्दोगान भारत आए थे तब उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी थी। शायद उन्हें नहीं पता था कि कश्मीर मुद्दा भारत के लिए क्या मायने रखता है। भारत ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। इसके बाद एर्दोगान लगातार यूएन हो और ओआईसी हो, इसके मंचों पर कश्मीर पर जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है उसको फैलाते रहते हैं। साल 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 खत्म किया, इसके बाद से पाकिस्तान और तुर्की आपे से बाहर हो गए हैं। उस साल एर्दोगान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे का समाधान करने में नाकाम बताया। फिर साल 2020 में जब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर गए तो वहां की संसद में कहा कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही अहम तुर्की के लिए है। कहां से? अभी पिछले साल जब यूएन की बैठक हुई थी तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान से कहा कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद लेकर मुद्दे को सुलझाएं। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद ही हुई थी और तब उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर सीज फायर का जिक्र भी किया था।
4: We are pleased with the ceasefire achieved.
1: पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बाद हुए संघर्ष और उसके बाद हुए संघर्ष विराम से हम खुश हैं। हमें उम्मीद है कि कश्मीर में हमारे भाई बहनों की भलाई के लिए बातचीत के जरिए और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर कश्मीर के मुद्दे का समाधान किया जाएगा।
0: हालांकि एर्दोगान के द्वारा इस साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना रणनीतिक रूप से एक बड़ी चाल है। दरअसल इस साल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मक्का पैक्ट हुआ है, जिसे इस्लामिक नेटो जैसा बताया जा रहा है। इसमें तीनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आए। इस पैक्ट के तहत जब भी कोई देश इन तीनों देशों पर हमला करेगा तो तीनों मिलकर उससे लड़ेंगे। मक्का पैक्ट के बाद साझेदार पाकिस्तान के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाना तुर्की की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक मक्का पैक्ट फेल ही रहा है। सऊदी अरब इसका उदाहरण है। हुती लगातार हमले कर रहा है, यहां तक कि सऊदी अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की जिन्होंने मक्का पैक्ट पर दस्तखत किए थे वो बस तमाशा देख रहे हैं। ईरान के खिलाफ, हुती के खिलाफ ना उनकी हिम्मत है ना हौसला कि मुंह खोल दें। सच यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सौदेबाजी है। तुर्की की डिफेंस कंपनीज के लिए पाकिस्तान एक बड़ा बाजार है और इस साल मार्च में आई सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 से 25 के बीच तुर्की ने दुनिया में हथियार बेचने के मामले में अपना 11वें नंबर पर पोजीशन बना लिया है। अब दुनिया में हथियार निर्यात के मामले में 1.8% हिस्सेदारी तुर्की है और तुर्की के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन? पाकिस्तान। तुर्की के हथियार निर्यात में 16% हिस्सेदारी तो पाकिस्तान की है, इसके बाद 12% हिस्सेदारी यूएई की और 8.4% हिस्सेदारी यूक्रेन की है। इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियारों का बड़ा खरीदार उससे अलग हो जाए। इसीलिए हथियार की सौदेबाजी जो है वो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा तुर्की की एक वर्षों पुरानी इच्छा है जिसमें वो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी बढ़ाए जाने की एक वजह यह है कि इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तुर्की हमेशा से एक परमाणु हथियार संपन्न देश बनना चाहता है। पिछले 10 वर्षों में उसने भारत से परमाणु हथियार से जुड़ी तकनीक हो, वैज्ञानिक सहयोग हो, लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की। माना जाता है कि भारत के खिलाफ जो ये बयानबाजी है वो इसी का बदला है। तुर्की को उम्मीद है कि पाकिस्तान उन्हें परमाणु तकनीक देगा ताकि वो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सके। तुर्की एक मुस्लिम देश है और उसे यह भी लगता है कि मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान उन्हें परमाणु तकनीक दे सकता है। इसीलिए तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की बोली बोलता है। परमाणु ताकत बनने के लिए तुर्की ने काफी पैसे खर्च किए हैं और उसने रशिया हो और ईरान उनसे भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। तुर्की के पास थोरियम के भंडार है जिसे परमाणु हथियार की तकनीक में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए उसे परमाणु तकनीक चाहिए। भारत भले ही तुर्कियों के बुरे वक्त में उसकी मदद करता हो, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष लेने की आती है तब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरोध में खड़ा हो जाता है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद की। भारतीय सेना के कई अधिकारी ये बात कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि 3 देशों के खिलाफ लड़ रहा था और इसमें एक तुर्की भी था। तुर्की ने खुफिया जानकारियों से ही नहीं बल्कि हथियारों से पाकिस्तान की मदद की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। बाद में खबरें ये आई कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स तुर्की ने ही पाकिस्तान को दिए थे। ये आत्मघाती ड्रोन्स तुर्की की कंपनी एसएस गार्ड ने बनाए थे जिन्हें वो सोंगर ड्रोन कहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्की ने अपनी नौसेना का एक युद्ध पोत टीसीजी बुकुकारा कराची के बंदरगाह पर तैनात कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, तुर्की ने युद्ध पोत को कराची पहुंचाने से पहले C-130 एयरक्राफ्ट को कराची में लैंड करवाया था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि इस एयरक्राफ्ट में तुर्की के हथियार आए हैं जिससे पाकिस्तान को मदद मिलेगी। हालांकि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हथियार भेजने वाली खबरों को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि उनका एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतरा था, लेकिन युद्ध के माहौल में किसी देश की सेना का विमान का पाकिस्तान पहुंचना संदेह पैदा करता है। सच्चाई यह है कि भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। वो हर देश के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहने की भारतीय परंपरा को निभाता है। लेकिन तुर्की ने भारत की मदद के बदले हमेशा धोखा दिया। उदाहरण के तौर पर 6 फरवरी 2023 को तुर्की के अंदर एक भयानक भूकंप आया था। 55,000 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और तुर्की को 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल हॉस्पिटल, मेडिकल सपोर्ट, डॉग स्क्वाड के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी थी। भारत ने तुर्की की मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम खासतौर से ऑपरेशन दोस्त रखा गया। तुर्की और हिंदी दोनों भाषाओं में दोस्त का मतलब एक ही है, सच्ची मित्रता। भारत में तुर्की के तत्कालीन राजदूत फिराज सुनेल ने भी जो है उस वक्त बात कही थी। उन्होंने एक तरह से भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन को सच्चे दोस्त की तरफ से मिली मदद बताया था। हालांकि इस मदद के बावजूद भारत के प्रति तुर्की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, पाकिस्तान की बोली बोलता है। न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के संबोधन के बीच एक और बड़ी खबर आई है। शी जिनपिंग, जी हां, पूरे 11 साल बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा अमेरिका और चाइना के रिश्तों की नई परिभाषा तय कर सकता है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर चल रही है और एआई को लेकर अमेरिका की असली लड़ाई चाइना के साथ ही है। इसके अलावा हाल ही में भारत में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना, भारत और रशिया की दोस्ती देखकर अमेरिका परेशान है। वो चाहता है कि चाइना के साथ उसके रिश्ते सुधरे और इसीलिए खबर यह मिल रही है कि शी जिनपिंग का जहाज जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रूज में उतरेगा तो उनका स्वागत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शी जिनपिंग की यह यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण के बाद हो रही है और इसी साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता दिया था। यानी शी जिनपिंग की यह यात्रा एक तरह की रेसिप्रोकल यात्रा है, जैसे दोनों देश एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हुए हैं, ठीक वैसे ही इस यात्रा को भी रेसिप्रोकल विजिट कहा जा रहा है। इस बार शी जिनपिंग 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। भारतीय समय के मुताबिक वो आज रात करीब 1:30 बजे के आसपास वॉशिंगटन पहुंचेंगे। पिछली बार वो सितंबर 2015 में अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे और तब उन्होंने बराक ओबामा से मुलाकात की थी जो अमेरिका के उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे। शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा इस बार कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही है, जैसे उनकी अगवानी के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति का आना। अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की अगवानी के लिए ज्यादातर नहीं जाते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका का कोई मित्र देश ही क्यों ना हो। अमेरिका के इतिहास में करीब 64 साल बाद ये मौका आया है जब अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति की अगवानी के लिए मुमकिन है कि खुद एयरपोर्ट जाए। पिछली बार इस तरह की परंपरा 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने निभाई थी। इसके बाद केवल ईसाई धर्मगुरु पोप को रिसीव करने की ही अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट तक गए हैं। साल 2008 में पोप बेनेडिक्ट का स्वागत करने के लिए जॉर्ज बुश और फिर 15 में पोप फ्रांसिस के स्वागत के लिए ओबामा खुद एयरपोर्ट तक गए थे। अब आप खुद सोचिए कि शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना महत्व रखती है। उस सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अगर वाकई एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो ये अपने आप में चर्चा के लिए एक विषय बनेगा। इस विजिट को लेकर व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा जानकारियां तो नहीं दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन इतना जरूर है कि शी जिनपिंग के स्वागत के लिए जॉइंट बेस एंड्रूज में एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक के मिले कार्यक्रम के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लुआन शामिल होंगे। इस यात्रा की इस खास बात यह है कि शी जिनपिंग के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है। अमेरिका में किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए स्टेट डिनर का आयोजन एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है। यह परंपरा साल 1874 में तत्कालीन राष्ट्रपति यूलिसेस सिम्पसन ग्रांट ने शुरू की थी। तब से लेकर अब तक यानी करीब 150 से ज्यादा 152 वर्षों में करीब 300 लोगों को ही स्टेट डिनर का सम्मान दिया गया है। इसके जरिए मेहमान देश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है अनौपचारिक माहौल में कई मुद्दों पर चर्चाएं होती है। इसी के साथ साथ स्टेट डिनर में अमेरिका अपनी संस्कृति और मेहमान देश की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम रखता है। इसमें खास तौर से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं और माना जाता है कि अमेरिका टेक कंपनीज के मालिकों को भी इसमें शामिल करेगा। यानी कुल मिलाकर जिसको कहते हैं न सिर्फ संस्कृति बल्कि हर स्तर पर लोग आपस में मिल पाए। हालांकि पिछली बार भी जब शी जिनपिंग ने अमेरिका का स्टेट विजिट पर वो गए थे तब बराक ओबामा ने भी उनके सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अमेरिका और चाइना के रिश्तों में खटास आई। टैरिफ को लेकर दोनों देश एक दूसरे से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं और इसीलिए अमेरिका अलग अलग तरह से सम्मान देकर शी जिनपिंग को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस कोशिश की तीन खास वजह है। पहली, व्यापार, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से दोनों देशों में तनाव है। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर अमेरिका और चाइना एक दूसरे को पीछे छोड़ने की एक होड़ में लगे हैं और कुछ दिनों से खबरें यह आ रही हैं कि AI भविष्य में इंसानों के लिए मुसीबत बन सकता है। और तीसरी वजह है ताइवान के साथ हुआ अमेरिका का हथियार सौदा, जिसको लेकर चाइना भड़का हुआ है। दो दिन के इस दौरे में 24 तारीख सबसे अहम रहने वाली है। इसी दिन दोनों देशों के बीच दिन में अहम द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल होगा और फिर स्टेट डिनर का आयोजन। इसके बाद शुक्रवार को शी जिनपिंग वापस लौट आएंगे, लेकिन वापसी से पहले व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने एक हाई टी का भी आयोजन किया है। शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा में जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है उनमें कई पेच भी फंसे हुए हैं। टैरिफ, ताइवान, AI का डेवलपमेंट, तीनों ही मुद्दों को अगर आप देखिए तो एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जैसे इस यात्रा का एक मकसद अमेरिका चाइना ट्रेड अग्रीमेंट को रिन्यू करना है। ये अग्रीमेंट इस नवंबर में खत्म हो रहा है। साल 2025 में जब दोनों देशों के बीच जब टैरिफ वॉर चल रही थी तब इस मुद्दे पर दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत दोनों देश 10% रेसिप्रोकल टैरिफ पर सहमत हुए थे। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के व्यापार में कमी आई है। दरअसल चाइना के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 8,72,000 करोड़ रुपए का हो गया है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि बातचीत के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब इस अग्रीमेंट के आगे बढ़ने या कोई नई ट्रेड डील की बात सामने आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है, मसला है, वो है AI का, जिस पर सहमति बनी तब व्यापार टैरिफ पर बात आगे बढ़ेगी। दरअसल दोनों देशों के बीच AI को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर भी बातचीत हो सकती है। हाल फिलहाल में AI सुरक्षा में सेंध लगाने वाली शक्ति के तौर पर सामने आया है। इससे कई देशों की चिंताएं बढ़ी हैं और वो चाहते हैं कि AI को विकसित करने की कुछ हदें तय की होनी बहुत जरूरी है। फिलहाल अमेरिका और चाइना इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। AI और टैरिफ पर तो सहमति तब बन पाएगी जब दोनों देशों के बीच सबसे पुराने मुद्दे पर कोई बात बनेगी, ताइवान। ताइवान को लेकर पहले से ही अमेरिका और चाइना में ठनी हुई है। अमेरिका ने ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार देने की डील की है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उस पर साइन नहीं किए। चाइना चाहता है कि ट्रंप ताइवान को हथियार ना दे। यानी देखा जाए तो तीनों मुद्दों पर दोनों देशों को कुछ कदम पीछे हटना होगा और सबसे पहले ये कौन सा देश करेगा ये चुनौती होगी। चुनाव आयोग पर राजनीति का घमासान आज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। 10 महीनों में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की 14 आपत्तियों पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट कर कहा ये राजद्रोह है, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
0: ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने लोकतंत्र का सवाल उठाया। बंगाल, बिहार, दिल्ली के पिछले चुनाव को रद्द करने की मांग तक उठ गई। कथित तौर पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी पर वोट चोरी का विपक्ष का आरोप नया नहीं है लेकिन अब की बार विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से सामने आई आपत्तियों के आधार पर आरोप लगाने का बड़ा मौका हाथ लगा है। खासकर SIR प्रक्रिया के बीच नए वोटर को जोड़ने वाले फॉर्म 6 में बदलाव और वोटर डेटाबेस के सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण जैसे मसलों पर चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियां विपक्ष के आरोपों को मजबूत कर रही हैं। ये दोनों ही चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके साथ दो चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी। अब ये दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 मसलों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन जो बड़ी आपत्तियां हैं उसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। मई 2026 में विवेक जोशी ने वोटर डेटाबेस के ऑडिट का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ अथॉरिटीज को छोड़कर किसी को इसमें बदलाव का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब संवैधानिक रूप से कानून के तहत जिन लोगों को अधिकार है वोटर के नाम डिलीट करने का या जोड़ने का, उन्हीं को यह

0: दावा भी कोई कर रहा है। वोटर डेटाबेस के ऑडिट की बात क्यों आई, इसे अगस्त 2026 में सुखबीर सिंह की आपत्ति से समझा जा सकता है। अगस्त 2026 में संधू ने अपने नोट में लिखा था कि राज्य चुनाव अधिकारियों से ईरोनेट का जो पूरा एक्सेस है वो नहीं मिलने की शिकायतें आ रही हैं। अब ये ईरोनेट क्या है पहले समझिए। ईरोनेट दरअसल वो प्लेटफॉर्म है जिससे जितने भी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, ईआरओ हैं, वो लोगों के वोटर्स के नाम या तो जोड़ते हैं या डिलीट करते हैं, वो डेटाबेस है। उन्होंने चुनाव आयोग के आईटी विभाग की डायरेक्टर जनरल सीमा खन्ना, जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी सीमा खन्ना के अधिकारों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सीमा खन्ना के पास एक्सेस रोकने का, कि इन जो ये जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं इनका एक्सेस रोकने का लीगल अधिकार नहीं है, उनका एक्सेस रोका जा रहा है। अब दोनों चुनाव आयुक्तों संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 में बदलाव पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने विवेक जोशी ने तो मई में सवाल खड़ा किया कि पिछले एसआईआर में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके जो माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनकी एंट्री पूछने का बदलाव फॉर्म में कैसे हुआ, क्योंकि फॉर्म 6 में बदलाव रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में बदलाव किए बिना संभव ही नहीं है, और ये बदलाव कौन कर सकता है, सरकार। संधू ने अगस्त में अपने नोट में फॉर्म 6 के इस बदलाव को अनऑथोराइज्ड कहा, इलीगल कहा, अवैध करार दिया, कहा इसको तुरंत वापस दीजिए। चुनाव आयुक्त संधू ने यह आपत्ति भी दर्ज कराई कि बंगाल में ट्राइब्यूनल के सामने चुनाव आयोग की ओर से अपील की इजाजत किसने दी। दोनों चुनाव आयुक्त ने अपने नोट से गोवा के उन 97 वोटर्स का मसला भी उठाया, इन्हें लोकल इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों यानी ईआरओ ने योग्य मतदाता बताया था, लेकिन ईआरओ के निर्णय को केंद्रीय तौर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर में शामिल करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। अब दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से जो अन्य आपत्तियां दर्ज कराई हैं उनमें शामिल है चुनाव आयोग की कार्यशैली का मसला। 29 जुलाई को विवेक जोशी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में आधिकारिक कामों के बंटवारे का, किस अधिकारी का क्या काम है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो बंटवारे की बात की और उस बंटवारे पर, काम के बंटवारे पर जानकारी न मिलने की बात कही। 29 जुलाई को ही संधू ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे नोट में वर्क रोस्टर का मुद्दा उठाया, कार्रवाई की मांग की। 16 अप्रैल को विवेक जोशी ने आयोग की बैठकों के मिनट्स नहीं जारी किए जाने, बैठकों के पहले बैठक का एजेंडा नहीं मिलने पर आपत्ति दर्ज की। 16 अप्रैल को विवेक जोशी ने चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारियों को विदेश की यात्राओं पर भेजने पर भी आपत्ति नोट लिखा था। चुनाव आयोग एक ऐसा संवैधानिक संस्था है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से फैसले लिए जाने जरूरी है। ऐसे में चाहे वो संधू साहब हो या विवेक जोशी, उनकी 14 आपत्तियों को लेकर विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में हुए फैसलों को वोट चोरी कह रहा है।
1: आपने बदला फॉर्म 6? हाँ। किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीईसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधू साहब और जोशी साहब ने, कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है, ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका आप दुष्प्रभाव देखिए, हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे।
0: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और विपक्ष के गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी हुआ है, प्रेस नोट जारी किया। बयान पर चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी पवन के दस्तखत हैं। 8 पॉइंट्स में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अलग अलग विचार और टिप्पणियां निर्णय की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, पिछले 10 महीनों के कुछ आंतरिक नोट्स और ऑब्जर्वेशंस को बताना जबकि अप्रूवल निर्णय निर्देश इनिशिएटिव को नजरअंदाज करना केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई निर्णय लिए, निर्देश दिए और 40 नए इनिशिएटिव्स लिए और एसआईआर समेत कई चुनाव सुधार किए, ये सभी पिछले एक साल में आयोग के सामूहिक निर्णय हैं, यानी यूनानिमस फैसले। चुनाव आयोग के जवाब में कहा गया कि ये भी कहा कि बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया बड़े प्रशासनिक और ऑपरेशनल अप्रूवल और सहमतियों से हुई है। आयोग ने जिन 6 राज्यों की बात की, यही वो राज्य है जहां ज्ञानेश कुमार के सीसी रहते हुए चुनाव हुए। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ईसीआई नेट सख्त प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं, ERO's, DEO's जो हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनको वोटर रजिस्ट्रेशन और डिलीशन के फैसले का अधिकार वैधानिक शक्तियों के तहत मिला हुआ है और वही कर। अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर आए अनुमानों से जुड़ी है।

IMF, Moody's हो, S&P Global, दुनिया की बड़ी एजेंसियों का भारत की ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान सकारात्मक है। बिल्कुल अंजना, जब दुनिया में युद्ध का तनाव है और महंगे कच्चे तेल का दबाव है, इस सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस बात का दावा दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियां कर रही हैं। सबसे ताजा आंकड़ा आया है S&P ग्लोबल का। S&P ने वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। S&P से ठीक पहले मूडीज रेटिंग्स ने भी विकास दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर सीधे 7% कर दिया था। मूडीज का मानना है कि मिडिल ईस्ट के तनाव और वैश्विक झटकों का भारत ने उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से सामना किया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इतिहास गवाह है, बुरा तो नहीं मानोगे कहने वालों ने हमेशा बुरा मानने वाली बात ही कही है। नमस्कार।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गर्माती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और इसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वहीं BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में SIR की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें SIR से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बदलाव किया गया, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
6: যে মানুষগুলো নাম বাদ গেছে সমস্ত পুরনো লিস্ট ফিরিয়ে দিতে হবে, এবং যে যে রাজ্যে SIR এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড। Don't you think you have the responsibility? You are liable to the country. You are liable to the democracy. You are liable to the constitution. But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ECI नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधू ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, आरएसएस और इसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
9: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है, कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल. दे आर इन अ फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री. लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है.
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं. तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं.
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए. इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है. अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है.
1: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है. ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए. अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर. अब समय देखिए, 12:38. यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया. अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे.
15: साहिल वाकोडे आईआईटी बी आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी. एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है. प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है. ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है. अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है. पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में. मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी. ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था.
1: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है. छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी.
16: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जाँच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है. कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही है जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था. पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी.
1: आज आईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर दुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की.
17: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है. चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है. चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाकोडे ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था. चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है. पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाकोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और एचओडी ने साहिल वाकोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
1: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
18: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित अच्छे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी एससी एसटी की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवी ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। एससी एसटी की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा एससी एसटी और 50% से ज्यादा ओबीसी की पदे अभी भी रिक्त है।
1: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर दुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
19: कैसे झूठे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे क्या? अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता? तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या? नहीं। कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं? वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
1: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
20: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और दुल्ला ना, श्री नारायण दुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साया नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
21: मेरा बच्चा गया है, हा? मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है। और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
1: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला सीसीटीवी सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: जमुई में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के आरोपी हरेराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने तमाचा उसे मार दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरेराम यादव को गाड़ी में बिठा लिया, इसको लेकर बाद में उसे निकल गई।
22: उन्होंने कृत्य किया उसके लिए तो थप्पड़, उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
23: तो आप एडवोकेट है? और
22: बिल्कुल है, एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है,
23: कोर्ट परिसर में ही आपने।
22: हाँ तो क्यों नहीं करें हम,
2: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया?
22: ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज देखा, जो चीज जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था, इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देश द्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मत।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को।
1: विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
4: अब तक हुए सभी चुनावों में
5: दिस इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अरेस्टेड, ही हैज नो मोरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू।
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
6: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। क्या है बड़ी मांग?
7: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वहीं BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
8: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में SIR की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें SIR से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
5: যে মানুষগুলো নাম বাদ গেছে সমস্ত পুরনো লিস্ট ফিরিয়ে দিতে হবে, এবং যে যে রাজ্যে SIR এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড। Don't you think you have the responsibility? You are liable to the country. You are liable to the democracy. You are liable to the constitution. But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
9: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ECI ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ECI के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ECI नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
8: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल. दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री. लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है.
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं. तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं.
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए. इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है. अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है.
1: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है. ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए. अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर. अब समय देखिए, 12:38. यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया. अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे.
10: साहिल वाकोडे आईआईटी बी आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी. एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है. प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है. ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है. अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रूव करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है. पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में. मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी. ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था.
1: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है.

0: छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण तुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
1: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर डुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
0: आज आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
2: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर और एचओडी ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
0: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
3: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित अच्छे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी एससी एसटी की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। एससी एसटी की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा एससी एसटी और 50% से ज्यादा ओबीसी की पदे अभी भी रिक्त है।
0: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
4: कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर, कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे क्या? अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता? तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या? नहीं। कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं? वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
0: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाघमोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
5: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा हूँ, शिरीष केदारे और डुल्ला ना, श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
6: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है। और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
0: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री के मामले में आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान यानी कि दिशा के पिता के 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस का जवाब दिया है। इसमें आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो अपने इस बयान पर अभी भी कायम है, वो दिशा से कभी नहीं मिले और उन्होंने दिशा के पिता के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। लेकिन दिशा के पिता अभी भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी, जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे और तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सतीश सालियान अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेज चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के 500 करोड़ के मानहानि नोटिस का जवाब देते हुए कहा, ना तो वो अपना बयान वापस लेंगे और ना ही माफी मांगेंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील अंशुमन सिन्हा के जरिए जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सालियान के नोटिस में लगाए गए सभी आरोप, दावे, इशारे, व्याख्याएं और मांगे झूठे हैं, गलतफहमी पर आधारित और तथ्यों कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं है। मेरे वकील आदित्य ठाकरे अपने इस बयान पर पूरी तरह कायम है कि मैं कभी दिशा सालियान से नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूं। केस की आधिकारिक जांच स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार होनी चाहिए।
1: सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए दो नोटिसेस आदित्य ठाकरे को भेजे थे। एक नोटिस इस बात पे था कि पॉलिटिकल टूल के जैसे, जब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सतीश सालियान को पॉलिटिकल टूल के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बात को लेकर एक नोटिस भेजा गया था। और दूसरा नोटिस इस बात पे था कि आदित्य ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कहा था जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो दिशा सालियान केस है, दिशा सालियान को वो न जानते थे और न कभी संपर्क रखा था। इन दोनों मामलों पर दो दो नोटिसेस भेजे गए थे सतीश सालियान की तरफ से और कहा गया था 500 करोड़ का डेफामेशन का केस फॉलो होगा अगर आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे। अब आदित्य ठाकरे ने सीधे एक अपने जो वकील हैं अंशुमन सिन्हा उनके जरिए एक रिप्लाई भेजा है पहले नोटिस को, जिसमें कि सोशल मीडिया पोस्ट की बात कही गई थी और कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर सतीश सालियान करते हैं तो उसको भी वो पुरजोर जो कानूनी जवाब है वो देंगे और उसमें लीगल रिपरकशंस होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपना सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डिलीट करेंगे और न ही माफी मांगेंगे।
0: इससे पहले दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा था, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनु मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया।
0: सालियान ने अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, कि उनका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक पार्टियां एक हथियार के तौर पर कर रही हैं

0: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके कई इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई।
1: आदित्य ठाकरे पहले भी अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रख चुके हैं। आदित्य ने लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए।
3: गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंगरेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
4: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर सीसीटीवी, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
3: उधर दिल्ली गैंगरेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंगरेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
5: इस वक्त आप देखिए, हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए, हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी, ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है। और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
3: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीडीए के वीसी और एनसीडी कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है? आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपापोती की जाती है? आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज तक ब्यूरो।
2: जमुई में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के आरोपी हरेराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने तमाचा उसे मार दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरेराम यादव को गाड़ी में बिठा लिया। इसको लेकर बाद में उसे निकल गई
6: उन्होंने कृत्य किया, उसके लिए तो थप्पड़, उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
7: आप एडवोकेट हैं? और
6: बिल्कुल है, एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है,
7: कोर्ट परिसर में ही आपने,
6: हाँ तो क्यों नहीं करें हम?
7: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया?
6: ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज देखा, जो चीज जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था।

0: इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
1: यूएनजीए में ईरानी राष्ट्रपति पजेशकियान के उस भाषण की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की हवा निकाल दी, बड़ी चर्चाएं हैं। बीते दिन संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क बताया था। दावा किया था कि ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो उसके पास आज परमाणु हथियार होते। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का जवाब संयुक्त राष्ट्र

0: अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का जवाब संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने चुन चुन कर दिया।
1: दुनिया के सबसे बड़े मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब दिया। ये जवाब 24 घंटे के बाद आया, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो कहा उसका मुंहतोड़ जवाब पजेश्कियान ने दिया। ट्रंप ने बीते दिन ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताया। आज पजेश्कियान ने सबूतों के साथ तस्वीरों के जरिए ट्रंप के एक एक दावे की हवा निकाली।
2: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
1: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए।
3: The world's peril, then the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर आरोप लगाया था कि वो समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। इस आरोप का जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया।
4: No.
2: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
1: दरअसल ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ अमेरिका ने शांति का प्रस्ताव रखा था। अगर ईरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो 28 फरवरी को हमले की नौबत नहीं आती।
3: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation in the world would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their air force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone, their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
1: हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर युद्ध थोपा था। ईरान ने अपने बचाव में पलटवार किया। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी।
4: Israel has the bombs, has weapons.
2: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है। न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जांच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है। यही असली विडंबना है।
1: ईरान के मुताबिक उसका परमाणु प्रोग्राम मुख्य रूप से अपने बिजली ग्रिड को मजबूत करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नागरिक और शांतिपूर्ण प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए परमाणु हथियारों की झूठी कहानी गढ़ी।
3: From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused.
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: अब तक हुए सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए, क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किए जाना चाहिए।
1: वही BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
6: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোটাধিকার ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधु ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है, इसे अंजाम देने वाले बीजेपी RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन CEC एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, CEC नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो UP का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाव पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: चुनाव आयोग के इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ECI ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ECI के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
9: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं।
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जातिसूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
1: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गया। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
15: साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का यह सीसीटीवी फुटेज है और उसमें यह दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
1: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
16: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जाँच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
1: आज आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
17: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाकोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाकोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और एचओडी ने साहिल वाकोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
1: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
18: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित अच्छे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
1: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद IIT कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
19: कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर, कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे, कि अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या, नहीं कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
1: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
20: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और डुल्ला, ना
21: डुल्ला
20: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
22: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
1: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: जमुई में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के आरोपी हरेराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने तमाचा उसे मार दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरेराम यादव को गाड़ी में बिठा लिया। इसको लेकर बाद में उसे निकल गई।
2: उन्होंने कृत्य किया उसके लिए तो थप्पड़, उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
3: तो आप एडवोकेट हैं? और
2: बिल्कुल हैं, एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है,
3: कोर्ट परिसर में ही आपने,
2: हाँ तो क्यों नहीं करें हम।
3: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया?
2: ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज़ नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज़ देखा, जो चीज़ जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था, इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
0: दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए।
21: ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
23: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर सीसीटीवी, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपसेस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
21: उधर दिल्ली गैंग रेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंग रेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
24: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहां पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है, और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
21: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है? आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपा पोती की जाती है? आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और आईआईटी बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में एसआईआर करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या एसआईआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में एसआईआर की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित आईवाईसी मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए, क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वहीं बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में SIR की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें SIR से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
6: है। এবং যে যে রাজ্যে SIR এর নামে দখল করে EVM মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ECI नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधु ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है, इसे अंजाम देने वाले बीजेपी आरएसएस और ईसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपालस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं, डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: आजादी के बाद चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे, लेकिन जब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई तब अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लेकिन 1993 में दोबारा ऐसा किया गया, तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है।
1: भारत में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके पास पूरी प्रशासनिक मशीनरी को नियंत्रित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। चुनाव के वक्त एक तरह से पूरा सरकारी सिस्टम चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हो जाता है। चुनाव आयोग की मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले होते हैं। भारत जैसे देश में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइन से चलता है, कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग को मिली इसी शक्ति के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, खासकर ज्ञानेश कुमार उनके निशाने पर रहे।
15: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड हूएवर इज डूइंग इट हैज टू बी टेकन टू टास्क। देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड नॉट बाय पीपल हु आर नॉट गोइंग टू हैव अ फेयर investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know, we are the largest democracy in the world and we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues.
16: ये देश के प्रति बेईमान है, लोकतंत्र के प्रति बेईमान है, भ्रष्ट है। अमित शाह जो गृहमंत्री है, उनके एजेंट है, सीधे पंटर्स है। सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के गुनहगार है।
1: मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने और फिर अगले साल 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त पद संभालने के अगले ही दिन 16 मार्च 2024 को देश में आम चुनावों की घोषणा हुई। इसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम में विधानसभा चुनाव हुए। अब विपक्ष ताजा मीडिया रिपोर्ट के दावों के बाद बिहार और बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहा है।
17: चाहे बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहाँ विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है। तो हमारा अंतिम में यही मांग है कि चुनाव आयोग एक पुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके, और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए।
18: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया। उन्होंने अपने खुद के ईसीस को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है।
1: एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, इसके बाद लाखों वोट काटे गए, इसे लेकर काफी सियासी विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव लूटने की साजिश करार दिया, लेकिन अब ताजा दावों के बाद वो भी नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
6: यदि एक फुट मोड़ल थाके आमादेर इलेक्शन फिरिए दिन, जोर करे जे इलेक्शन गुलो जीतेछेन आपनारा जेतेननी, बिहारे जेतेननी, मध्यप्रदेशे जेतेननी, हरियाणाते जेतेननी, বাংলায় জেতেননি, গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষক অবস্থায় ইলেকশন কমিশন বসে আছে।
1: विपक्ष के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में वो इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एसआईआर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाएगा। इस तरह आने वाले वक्त में भी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सियासी खबरदार करते रहेंगे।
0: चुनाव आयोग के इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
9: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं।
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
1: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
19: साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में। मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
1: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
20: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जाँच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर डुला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
1: आज आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
2: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर और एचओडी ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज

0: ने तो चीटिंग की है तो साबित करो।
1: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
2: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसे IIT पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवी ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में IIT के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
1: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद IIT कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर दुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
3: कैसे झूठे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसके परिणाम भोगने नहीं थे कि अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
1: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
4: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और दुल्ला ना श्री नारायण दुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उससे या नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के
5: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है। और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे।
1: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
6: जमुई में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के आरोपी हरेराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने तमाचा उसे मार दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरेराम यादव को गाड़ी में बिठा लिया, इसको लेकर बाद में उसे निकल गई।
7: उन्होंने कृत्य किया उसके लिए तो थप्पड़ उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
8: आप एडवोकेट है और
7: बिल्कुल है, एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी है, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है,
8: कोर्ट परिसर में ही आपने
7: हाँ तो क्यों नहीं करें हम।
8: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया,
7: ठीक है तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज देखा, जो चीज जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था, इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
6: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और आईआईटी बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में एसआईआर करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या एसआईआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में एसआईआर की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित आईवाईसी मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए, क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वहीं बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
6: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधु ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर BJP ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन CEC एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, CEC नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: BJP का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ECI ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ECI के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
9: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
0: बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों और 24 राज्यों में सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है।
1: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये है। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति रानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जातिसूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब IIT बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
1: IIT बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट GPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
15: साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट है, जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक CCTV फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है, जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये CCTV फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये CCTV फुटेज में दिख रहा है। अब ये CCTV फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है, जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये CCTV फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में। मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था IIT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट GPT पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
1: IIT बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को बीन पद से हटाने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
16: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर डुला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
1: आज आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
17: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और एचओडी ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
1: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
18: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
1: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
19: एक कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके परिणाम भोगने नहीं थे कि अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था। कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
1: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाघमोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
20: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और डुल्ला ना,
21: डुल्ला
20: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकशी में आएगा उसको देख, चौकशी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
2: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
1: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए।
21: ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
22: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर CCTV, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपसेस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
21: उधर दिल्ली गैंग रेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंग रेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
23: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आप
21: कर रही है
23: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है, और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
21: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर DDA के VC और MCD कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है, आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपा पोती की जाती है। आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा, का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए, एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं, क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किए जाना चाहिए।
1: वहीं BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
6: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधू ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है, इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है, इसे अंजाम देने वाले बीजेपी आरएसएस और ईसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में। 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट gives all information to the Congress party, सारे information लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
1: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गया। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
15: साहिल वाकोड़े आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
1: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
16: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जाँच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही है जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
1: आज आईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर दुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
17: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या रहा है? सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और एचओडी ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
1: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
18: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
1: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईआईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर दुर्लभ बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
19: कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर, कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके परिणाम भोगने नहीं थे, कि अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया, और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
1: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
20: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और दुल्ला, ना
21: दुल्ला,
20: श्री नारायण दुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको, जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उससे नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है, हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के
22: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था, आप पत्रकार है आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
1: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री के मामले में आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान यानी कि दिशा के पिता के 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस का जवाब दिया है। इसमें आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो अपने इस बयान पर अभी भी कायम है, वो दिशा से कभी नहीं मिले और उन्होंने दिशा के पिता के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। लेकिन दिशा के पिता अभी भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी, जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे और तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सतीश सालियान अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेज चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने सतीश सालियान के 500 करोड़ के मानहानि नोटिस का जवाब देते हुए कहा, ना तो वो अपना बयान वापस लेंगे और ना ही माफी मांगेंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने वकील अंशुमन सिन्हा के जरिए जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सालियान के नोटिस में लगाए गए सभी आरोप, दावे, इशारे, व्याख्याएं और मांगे झूठे हैं, गलतफहमी पर आधारित और तथ्यों और कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं है। मेरे वकील आदित्य ठाकरे अपने इस बयान पर पूरी तरह कायम है कि मैं कभी दिशा सालियान से नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। केस की आधिकारिक जांच स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार होनी चाहिए।
1: सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए दो नोटिसेस आदित्य ठाकरे को भेजे थे। एक नोटिस इस बात पे था कि पॉलिटिकल टूल के जैसे, जब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सतीश सालियान को पॉलिटिकल टूल के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बात को लेकर एक नोटिस भेजा गया था। और दूसरा नोटिस इस बात पे था कि आदित्य ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कहा था जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो दिशा सालियान केस है, दिशा सालियान को वो न जानते थे और न कभी संपर्क रखा था। इन दोनों मामलों पर दो दो नोटिसेस भेजे गए थे सतीश सालियान की तरफ से और कहा गया था 500 करोड़ का डेफेमेशन का केस फॉलो होगा अगर आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे। अब आदित्य ठाकरे ने सीधे एक अपने जो वकील हैं अंशुमन सिन्हा, उनके जरिए एक रिप्लाई भेजा है पहले नोटिस को, जिसमें कि सोशल मीडिया पोस्ट की बात कही गई थी और कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर सतीश सालियान करते हैं तो उसको भी वो पुरजोर जो कानूनी जवाब है वो देंगे और उसमें लीगल रिपरकशंस होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपना सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डिलीट करेंगे और न ही माफी मांगेंगे।
0: इससे पहले दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा था, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया।
0: सालियान ने अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए आरोप लगाया था कि आदित्य

0: दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने, मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि 37 सालियन के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके कई इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई।
1: आदित्य ठाकरे पहले भी अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रख चुके हैं। आदित्य ने लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दीक्षा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा, का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और आईआईटी बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा, परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए, एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में एसआईआर करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या एसआईआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में एसआईआर की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखबीर

0: संधू और विवेक जोशी ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
1: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
0: जैसे ही ये दावा हुआ देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
1: सभी चुनावों में
2: दिस इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अरेस्टेड। ही हैज नो मोरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू।
0: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
3: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित आईवाईसी मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गर्माती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और इसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं झंडे लेकर इकट्ठे हुए क्या है बड़ी मांग।
4: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
0: वहीं बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
5: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए वह लोकतंत्र है।
0: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में SIR की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें SIR से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
2: যে মানুষগুলো নাম বাদ গেছে সমস্ত পুরনো লিস্ট ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যে যে রাজ্যে SIR এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে জ্ঞানেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন, বাট ইউর অব্লিগেশন ইজ অনলি টু স্যাটিসফাই দ্য ইগো অফ বিজেপি।
0: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
6: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
7: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
0: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखवीर सिंह संधू ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
8: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
9: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
0: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
10: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
0: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, आरएसएस और ईसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
5: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
11: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
12: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
7: आजादी के बाद चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे, लेकिन जब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तब अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लेकिन 1993 में दोबारा ऐसा किया गया, तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है।
11: भारत में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके पास पूरी प्रशासनिक मशीनरी को नियंत्रित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। चुनाव के वक्त एक तरह से पूरा सरकारी सिस्टम चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हो जाता है। चुनाव आयोग की मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले होते हैं। भारत जैसे देश में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइन से चलता है, कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग को मिली इसी शक्ति के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, खासकर ज्ञानेश कुमार उनके निशाने पर रहे।
13: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड हूएवर इज डूइंग इट हैज टू बी टेकन टू टास्क, देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड नॉट बाय पीपल हु आर नॉट गोइंग टू हैव अ फेयर investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know, we are the largest democracy in the world and we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues.
14: ये देश के प्रति बेईमान है, लोकतंत्र के प्रति बेईमान है, भ्रष्ट है। अमित शाह जो गृहमंत्री है, उनके एजेंट है, सीधे पंटर्स है, सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश के गुनहगार है।
11: मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने और फिर अगले साल 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त पद संभालने के अगले ही दिन 16 मार्च 2024 को देश में आम चुनावों की घोषणा हुई। इसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम में विधानसभा चुनाव हुए। अब विपक्ष ताजा मीडिया रिपोर्ट के दावों के बाद बिहार और बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहा है।
15: चाहे बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहाँ विपक्ष हारी नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है। तो हमारा अंतिम में यही मांग है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके, और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए।
16: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया। उन्होंने अपने खुद के ईसीज को हाईजैक कर दिया। यह एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है।
0: एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, इसके बाद लाखों वोट काटे गए, इसे लेकर काफी सियासी विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव लूटने की साजिश करार दिया, लेकिन अब ताजा दावों के बाद वो भी नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
2: यदि एक फुट मोड़ल थके आमादेर इलेक्शन फिरिए दिन, जोर करे जे इलेक्शन गुलो जीते छेन, आपनारा जेतेन नी, बिहारे जेतेन नी, मध्य प्रदेशे जेतेन नी, हरियाणाते जेतेन नी, বাংলায় যেতেন নি, গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষা কবস্থ ইলেকশন কমিশন বসে আছে।
0: বিপক্ষ কে তেবরো সে সাফ হয় কি আনে ওয়ালে সময় মে ও ইসে বড়া চুনাবি মুদ্দা বানায়েগি। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एसआईआर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाएगा। इस तरह आने वाले वक्त में भी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सियासी खबरदार करते रहेंगे।
7: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
0: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं है। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
17: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
0: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
7: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
0: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गया। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
18: साहिल वाकोड़े IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक CCTV फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का यह CCTV फुटेज है और उसमें यह दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये CCTV फुटेज में दिख रहा है। अब ये CCTV फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये CCTV फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था IIT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
0: IIT बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब IIT बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ IIT बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
13: IIT पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब IIT पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
0: आज IIT बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर दुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
19: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या रहा है? सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और HOD ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से IIT पवई अभी तक CCTV दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
0: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
20: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित अशे IIT पवई में इस तरीके की सुसाइड होना, ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में IIT के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
0: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईआईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
1: कैसे झूठे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे कि अगर वो अगर पकड़ा जाता वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया, और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उनपे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
0: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
21: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष के दारे और डुल्ला ना,
22: डुल्ला
21: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साया नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है, हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको,
23: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था, आप पत्रकार है आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
0: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: अब तक ये सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IYC के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। क्या है बड़ी मांग?
8: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वही BJP ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
9: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
6: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
1: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
10: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
0: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
1: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखबीर सिंह संधु ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
11: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
12: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
13: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
1: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
9: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन CEC एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, CEC नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
1: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
14: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाव पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
0: आजादी के बाद चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे, लेकिन जब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई तब अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लेकिन 1993 में दोबारा ऐसा किया गया, तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है।
1: भारत में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसके पास पूरी प्रशासनिक मशीनरी को नियंत्रित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। चुनाव के वक्त एक तरह से पूरा सरकारी सिस्टम चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हो जाता है। चुनाव आयोग की मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले होते हैं। भारत जैसे देश में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइन से चलता है, कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग को मिली इसी शक्ति के बेजा इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, खासकर ज्ञानेश कुमार उनके निशाने पर रहे।
15: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। इट इज एक्चुअली इट इज ट्रेचरी विद द नेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड हूएवर इज डूइंग इट हैज टू बी टेकन टू टास्क। देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड नॉट बाय पीपल हु आर नॉट गोइंग टू हैव अ फेयर investigation into it, but it should be looked into in a manner where we know and the whole nation knows that this is being done in a proper manner. Because the nation can know we are the largest democracy in the world and we have had a robust democracy for years, for decades. We cannot afford to go lightly on these issues.
16: ये देश के प्रति बेईमान है, लोकतंत्र के प्रति बेईमान है, भ्रष्ट है। अमित शाह जो गृहमंत्री है उनके एजेंट है, सीधे पंटर्स है। सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के गुनहगार है।
1: मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने और फिर अगले साल 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त पद संभालने के अगले ही दिन 16 मार्च 2024 को देश में आम चुनावों की घोषणा हुई। इसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम में विधानसभा चुनाव हुए। अब विपक्ष ताजा मीडिया रिपोर्ट के दावों के बाद बिहार और बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहा है।
17: चाहे बिहार का नतीजा हो या महाराष्ट्र का नतीजा हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या बंगाल का हो, यहाँ विपक्ष हारी नहीं है बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग से बीजेपी को जिताने का काम इन राज्यों में जो है किया गया है। तो हमारा अंतिम में यही मांग है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में हर राज्य में आ रही है फर्जीवाड़ा करके। और बिहार और बंगाल का चुनाव फर्जीवाड़ा था, यहाँ पुनः चुनाव होना चाहिए।
18: माननीय सीसी ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया। उन्होंने अपने खुद के ईसीस को हाईजैक कर दिया। ये एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है।
1: एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई, इसके बाद लाखों वोट काटे गए, इसे लेकर काफी सियासी विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव लूटने की साजिश करार दिया, लेकिन अब ताजा दावों के बाद वो भी नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
6: यदि एक फुट मोड़ल थाके आमादेर इलेक्शन फिरिए दिन, जोर करे जे इलेक्शन गुलो जीते छेन, आपनारा जेतेन नि, बिहारे जेतेन नि, मध्यप्रदेशे जेतेन नि, हरियाणाते जेतेन नि, বাংলায় যেতেন নি, গায়ে জোরে যে রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে বিজেপি ভাবছে আমাদের ফুল রক্ষা কবচ ইলেকশন কমিশন বসে আছে।
1: বিপক্ষ কে তেবরো সে সাফ হয় কি আনে ওয়ালে সময় মে ও ইসে বড়া চুনাবি মুদ্দা বানায়েগি। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एसआईआर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाएगा। इस तरह आने वाले वक्त में भी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सियासी खबरदार करते रहेंगे।
0: चुनाव आयोग के इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
1: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
9: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
1: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
0: बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों और 24 राज्यों में सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है।
1: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये हैं। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
0: यूएनजीए में ईरानी राष्ट्रपति पजेशकियान के उस भाषण की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की हवा निकाल दी, बड़ी चर्चाएं हैं। बीते दिन संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क बताया था। दावा किया था कि ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो उसके पास आज परमाणु हथियार होते। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का जवाब संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान ने चुन चुन कर दिया।
1: दुनिया के सबसे बड़े मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब दिया। ये जवाब 24 घंटे के बाद आया, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो कहा उसका मुंहतोड़ जवाब पजेशकियान ने दिया। ट्रंप ने बीते दिन ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताया। आज पजेशकियान ने सबूतों के साथ तस्वीरों के जरिए ट्रंप के एक एक दावे की हवा निकाली।
19: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
1: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए।
20: The world's peril, then the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर आरोप लगाया था कि वो समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। इस आरोप का जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया।
19: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
1: दरअसल ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ अमेरिका ने शांति का प्रस्ताव रखा था। अगर ईरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो 28 फरवरी को हमले की नौबत नहीं आती।
20: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation at all would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their air force is gone. Their radar is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. Their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone. Their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
1: हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का यही कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर युद्ध थोपा था। ईरान ने अपने बचाव में पलटवार किया। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी।
19: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है। न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जाँच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है। यही असली विडंबना है।
1: ईरान के मुताबिक उसका परमाणु प्रोग्राम मुख्य रूप से अपने बिजली ग्रिड को मजबूत करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नागरिक और शांतिपूर्ण प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए। ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव, अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे। चुनाव आयोग की सफाई, बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
7: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित IYC मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो IYC के कार्यकर्ता हैं हाथ में तकियां लेकर, पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गर्माती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और CEC ज्ञानेश कुमार के

0: की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं, क्या है बड़ी मांग?
1: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किए जाना चाहिए।
2: वहीं बीजेपी ने इसे इस तरह से खारिज कर दिया।
3: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
4: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका, उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
5: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
4: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
6: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
7: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
4: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखवीर सिंह संधू ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
8: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
9: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
4: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
10: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
4: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, आरएसएस और ईसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
3: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
4: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
11: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
7: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
4: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले 1 साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
3: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
4: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
7: बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों और 24 राज्यों में सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है।
4: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये है। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
7: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
4: आईआईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
12: साहिल वखोड़े IIT बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक CCTV फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये CCTV फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये CCTV फुटेज में दिख रहा है। अब ये CCTV फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रूव करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये CCTV फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था IIT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने ChatGPT पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
4: IIT बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण तुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब IIT बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ IIT बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
13: IIT पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब IIT पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर डुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
4: आज IIT बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर डुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
14: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं ChatGPT पे साहिल वाघमोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। ChatGPT पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर ChatGPT को जाएगा तो ChatGPT का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाघमोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर और HOD ने साहिल वाघमोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से IIT पवई अभी तक CCTV दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
4: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
15: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसे IIT पवई में इस तरीके की सुसाइड होना, ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बात है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बात है। और इस संदर्भ में IIT के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा SC ST और 50% से ज्यादा OBC की पदे अभी भी रिक्त है।
4: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद IIT कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
16: कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर, कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके उसको किधर उसको उसके परिणाम भोगने नहीं थे क्या? अगर वो अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता? तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या? नहीं। कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं? वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया। और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये, उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
4: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
17: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष के दारे और डुल्ला, ना
18: डुल्ला
17: श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए। बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको, जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर कर के
19: मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए। मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था। आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है। और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
4: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए।
20: ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
21: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर CCTV, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
20: उधर दिल्ली गैंग रेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंग रेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
22: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है। और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
20: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, DDA के VC और MCD कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है? आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपा पोती की जाती है? आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज तक ब्यूरो।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कौन से ग्रह मोटापा बढ़ा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दुबला पतला होता है? और कौन सा रत्न मोटापा बढ़ाता है और कौन सा रत्न मोटापा घटाता है? क्या है मोटापे का ग्रहों से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
2: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
3: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
4: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
2: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
5: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: चुनाव आयोग पर सवालों को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा आयुक्तों के बीच चर्चा, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बिना। ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने बनाया बड़ा मुद्दा। का ये देशद्रोह है, वक्त आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर कल कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर पर लगातार हमलावर रही ममता की मांग, रद्द किया जाए ज्ञानेश की अगुवाई में हुए चुनाव। अखिलेश और तेजस्वी भी बिफरे, चुनाव आयोग की सफाई बताया प्रक्रिया का हिस्सा। चिंतन शिविर के पहले दिन मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, करीब 4.5 घंटे तक 8 मंत्रियों के समूहों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, आज भी मंथन। और IIT बॉम्बे में छात्र के खुदकुशी के मामले में नया मोड़, नकल करते हुए मृतक साहिल के CCTV फुटेज का दावा। परीक्षा हॉल में प्रोफेसर दुल्ला ने पकड़ा, बाद में केंद्र से ले गए बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में, विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करके केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उन आरोपों से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या SIR के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में SIR की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयुक्त। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
4: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
5: सभी चुनावों में
6: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।